सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आज गुरुवार है, शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 मई सन 2026। सुबह के 7 बजे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत करते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज भगवती चरण बोहरा का शहादत दिवस है, साथ ही विनायक दामोदर सावरकर की जयंती। रेडियो आज़ाद हिंद इन्हें शत शत नमन करता है। आप सभी को ईद उल अजहा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं, ईद उल अजहा यानी बकरीद इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसे कुर्बानी का त्यौहार भी कहा जाता है। ये त्यौहार पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अपने बेटे हजरत इस्माइल की अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के जज्बे की याद में मनाया जाता है। अल्लाह ने उनके इस त्याग को कबूल किया और बेटी की जगह एक जानवर की कुर्बानी दी गई। ये पर्व मक्का में होने वाले वार्षिक हज यात्रा के संपन्न होने का मुख्य दिन भी होता है। तो आप सभी को एक बार पुनः ईद उल अजहा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए अब आपको जानकारी दे दें आज की प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे जीवन सौरभ, साथ ही सुनेगा अक्षय निधि और आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। सुबह 8 बजे कार्यक्रम होगा वतन का राग, जो केंद्रित है भगवती चरण बोहरा पर। 8:30 बजे सुनाना भूलेगा बाल सभा, आज का विषय खेलना क्यों जरूरी है।

0: सुबह 9 बजे सुनेगा हमारी सेना हमारा गर्व। आज का विषय भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। आज सुनेगा इसका चौथा भाग। 9:30 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा, जो केंद्र थे शहीद भगत सिंह। ये एक प्ले है जो मार्च शैली में है। आज सुनेगा इसका तीसरा भाग। सुबह 10 बजे कार्यक्रम होगा देश के संस्थान। आज इसके अंतर्गत आप जानेंगे DRDO के बारे में। 10:30 बजे सुनेगा याद करो कुर्बानी, जो केंद्रित है विनायक दामोदर सावरकर पर। 11 बजे परिक्रमा और साथ ही सुनेगा रेडियो रिपोर्ट, जो केंद्रित है सदा नीरा उत्सव पर। 11:30 बजे युग प्रवर्तक विवेकानंद और दिन में 12 बजे सुनना न भूलेगा तराने आजादी। 11:30 बजे आज की प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ।
1: जीवन सौरभ।
0: एक बार बादशाह अकबर ने दरबारियों से पूछा कि हर समय कौन चलता है और बढ़ता है। बादशाह अकबर का सवाल सुनकर किसी ने कहा सूर्य हमेशा चलता है, कभी रुकता नहीं। किसी ने कहा महाराज धरती हमेशा चलती रहती है। किसी दरबारी ने चंद्रमा को हमेशा चलायमान बताया, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ बताया। आखिर में राजा अकबर ने बीरबल से यही सवाल किया, बीरबल तुम बताओ कि हमेशा चलायमान कौन है जो हमेशा चलता है और बढ़ता ही रहता है। महाराज, अकबर का सवाल सुनकर बीरबल ने कहा, महाराज बनिए का ब्याज हमेशा चलता और बढ़ता रहता है, उसे कभी थकान नहीं होती। वो ब्याज दिन दूनी रात चौगनी की रफ्तार से चलता और बढ़ता है। बीरबल का उचित उत्तर सुनकर राजा अकबर सहित सब दरबारी वाहवाही करने लगे।
1: जीवन सौरभ।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 126वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं कक्षीवान दैर्घतमस, स्वने भाव्यव्य, रोमशा, और देवता हैं स्वने भाव्यव्य, रोमशा, और छंद है त्रिष्टुप और अनुष्टुप।
2: अमंदांत सोमान प्रभरे मनीषा सिंधावधि क्षियतो भाव्यस्य यो मे सहस्र ममिमीत सवान तूर्तो राजा श्रव इच्छमानः। हिंसादि कष्टों से परे जिस राजा भाव्य ने कीर्ति की कामना से युक्त होकर हमारे लिए सहस्रों यज्ञों को उत्पन्न किया, उस सिंधु नदी के किनारे वास करने वाले नरेश के लिए हम ज्ञान से भरे स्तवनों का विवेक बुद्धिपूर्वक उच्चारण करते हैं। शतम राज्ञों नाधमानस्य निष्कांक्षतमश्वान् प्रयतान् सद्य आदम शतम कक्षीवाम असुरस्य गोनाम दिवि श्रवो जरमा ततान। कक्षीवान ने स्तोता और धनदाता राजा से 100 स्वर्ण मुद्राएं, 100 वेगशाली अश्व तथा 100 श्रेष्ठ वृषभ ग्रहण किए। इससे उस नरेश की स्वर्गलोक में चारों ओर अक्षुण्य कीर्ति फैल रही है। उपमा श्यावाह स्वनयेन दत्ता वधूमन्तो दशरथासो अस्थुः षष्टिः सहस्रमनु गव्यमागात् सनत् कक्षीवाम् अभिपित्वे अहनाम। स्वनय द्वारा प्रदत्त श्रेष्ठ वर्णों के अश्वों से युक्त और श्रेष्ठ स्त्रियों से युक्त 10 रथ हमारे यहाँ आए हैं। दिन की प्रारंभिक वेला में राजा से कक्षीवान ने 60,000 गौओं को प्राप्त किया। चत्वारिंशत् दशरथस्य शोणाः सहस्याग्रे श्रेणीं नयन्ति मदच्युतः कृशनावतो अत्यान् कक्षीवन्त उदमृक्षन्त पज्राः। हजारों की पंक्ति के आगे 10 रथों को 40 घोड़े खींचे ले जा रहे हैं। अन्नयुक्त घास खाकर पुष्ट हुए स्वर्णालंकारों से युक्त जिनसे मद टपकता है ऐसे घोड़ों को कक्षीवंत अपने वश में करते हैं। पूर्वा मनु प्रयति माददे वस्त्रीन न्युक्ताम अष्टावरिधायसो गाह सुबंधवो ये विश्या इव व्रा अनस्त्वंतः श्रव एशंत पज्राः। हे अन्नादि से पुष्ट श्रेष्ठ आचरण युक्त बंधुओं, आपके लिए हमने 4-4 अश्वों तथा वैभवों से युक्त 8 और 3 11 अर्थात 10 इंद्रियां, 11वां मन को अगणित गौओं पोषण देने वाली धाराओं सहित प्रथम अनुदान के रूप में प्राप्त किया है। ये सब प्रेम पूर्वक रहने वाली प्रजाओं परिवारों की तरह रहकर रथादि युक्त होकर श्रेय की कामना करें। आगधिता परिगधिता या कशिकेव जंगहे ददाति मह्यम यादुरी याशूनाम भोज्या शता। मेरी सहधर्मिणी मेरे लिए अनेक ऐश्वर्य एवं भोग्य पदार्थ उपलब्ध कराती है। यह सदा साथ रहने वाली गुणों को धारण करने वाली मेरी सहस्वामिनी है। उपोप मे परा मृषमा मे दभ्राणी मन्यथाह सर्वाहमस्मि रोमशा गंधारीणामिवाविका। हे पतिदेव, आप मेरे पास आकर बार बार मेरा स्पर्श करें, मेरे कार्यों को अन्यथा न लें। जिस प्रकार गंधार की भेड़ रोमों से भरी होती है, उसी प्रकार मैं गुणों से युक्त प्रौढ़ हूं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 126वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण दीप्ति के साथ। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत।

भक्ति संगीत सुनने वाले सभी साथियों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस भक्ति रचना के साथ।

श्रोताओं, तप के बल से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, तपोबल से विष्णु रक्षा करते हैं और तपोबल से ही शंकर संहार करते हैं। तप से संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है।

श्रोताओं, जीवन कभी भी एक समान नहीं चलता। इसमें कभी सुख की ठंडी छांव होती है तो कभी दुख के काले बादल। ऐसे में प्रभु का नाम स्मरण करते रहने से हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं और दुख सहने की शक्ति मिलती है।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त दीप्ति को। नमस्कार, आप बने रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। एक छोटे से अंतराल के बाद सुनेगा हमारा अगला कार्यक्रम

मैं हूँ मितुल प्रदीप, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

हमें ऐसे लोग चाहिए जो आशा की अनुपस्थिति में भी भय और झिझक के बिना युद्ध जारी रख सकें। हमें ऐसे लोग चाहिए जो आदर सम्मान की आशा रखे बिना उस मृत्यु के वरण को तैयार हों जिसके लिए न कोई आंसू बहे और न ही कोई स्मारक बने। भारतीय स्वाधीनता के महायज्ञ में अपने जीवन की आहुति देने के लिए देश के युवाओं का इन शब्दों में आह्वान करने वाले महान क्रांतिकारी थे भगवती चरण वोहरा। भारत की स्वाधीनता के लिए बिना किसी अपेक्षा के बस क्रांति कर्म किए जाना जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। भगवती चरण वोहरा सशस्त्र क्रांति के अगुआ थे। बम बनाने में उन्हें महारत हासिल थी। वो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के सदस्य थे और सरदार भगत सिंह के साथ मिलकर इस दल में क्रांति गतिविधियों की रणनीति बनाने तथा दल को सैद्धांतिक दिशा प्रदान करने में उनकी प्रमुख भूमिका होती थी। क्रांतिकारियों के बीच प्रसिद्ध दुर्गा भाभी उनकी सहधर्मिणी थीं। भगवती चरण वोहरा दल में एक लेखक, विचारक, संगठक, सिद्धांतकार और प्रचारक की भूमिका में थे। कई क्रांति गतिविधियों में अभियुक्त होने के बावजूद न तो वो कभी गिरफ्तार हुए और न ही उन्हें कभी सजा सुनाई गई। अपराजेय, आदर्श निष्ठा, प्रतिबद्धता, साहस और मनोयोग से वो आखिरी सांस तक भारत की स्वाधीनता के लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे। भगवती चरण वोहरा का जन्म 15 नवंबर सन 1903 को लाहौर में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवचरण वोहरा था जो रेलवे के एक उच्च अधिकारी थे। बाद में वो आगरा से लाहौर चले गए थे। पिता आर्थिक रूप से अत्यंत समृद्ध थे। ब्रिटिश राज के प्रति वफादारी के कारण उन्हें राय बहादुर की उपाधि भी प्रदान की गई थी। ऐसे पारिवारिक वातावरण के बावजूद भगवती चरण वोहरा के मन में आजादी की लगन थी। उनकी शिक्षा दीक्षा लाहौर में हुई। मात्र 14 वर्ष की आयु में भगवती चरण वोहरा का विवाह इलाहाबाद की 11 वर्षीय दुर्गावती देवी के साथ संपन्न हुआ। वो अपने पति के साथ सदा कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहीं और आगे चलकर दुर्गा भाभी के नाम से विख्यात हुईं। भगवती चरण वोहरा अपने पिता के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत थे। उन पर 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। इसीलिए रूसी क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर भगवती चरण वोहरा ने एक अध्ययन मंडली का गठन किया था जिसके मूल में भारत को पराधीनता से मुक्त करने का विचार था। इस अध्ययन मंडली में नियमित रूप से शामिल होने वालों में भगत सिंह, सुखदेव आदि भी थे। आगे चलकर इन्हीं साथियों ने मिलकर नौजवान भारत सभा का गठन भी किया था। अभी जबकि वो कॉलेज में ही अध्ययनरत थे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और युवाओं का आह्वान किया। गांधी जी के आह्वान पर भगवती चरण वोहरा अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े।

भगवती चरण वोहरा एक अत्यंत विचारशील युवा थे। वैश्विक परिदृश्य में घटित क्रांतियों पर भी उनकी पैनी दृष्टि थी। वो भारत को गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कृषि संकट और शोषणकारी सामाजिक परिस्थितियों से मुक्ति दिलाना चाहते थे। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, इससे तमाम युवाओं की तरह भगवती चरण वोहरा भी निराश हुए। आंदोलन से वापस आने के बाद उन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर से पढ़ाई पुनः जारी रखी। यहीं उन्होंने राष्ट्र की परतंत्रता और उससे मुक्ति के प्रश्न पर स्टडी सर्कल चलाना शुरू किया, जिसमें सरदार भगत सिंह और सुखदेव भी शामिल थे। भगवती चरण वोहरा ने लाहौर नेशनल कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और भगत सिंह के साथ नौजवान भारत सभा के गठन और कार्य को आगे बढ़ाया। इस सभा के महासचिव के पद पर थे सरदार भगत सिंह और प्रचार सचिव थे भगवती चरण वोहरा। अप्रैल 1928 में नौजवान भारत सभा का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। भगत सिंह और अन्य साथियों के सलाह मशवरे से इस मसौदे को तैयार करने का काम भगवती चरण वोहरा ने ही किया था। नौजवान भारत सभा के उत्कर्ष में भगत सिंह के साथ भगवती चरण वोहरा की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सरदार भगत सिंह के साथ वही संगठन के प्रमुख सिद्धांतकार थे। अपनी पत्नी दुर्गावती देवी को भी उन्होंने पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। खादी के वस्त्र धारण कर दुर्गावती ने पढ़ाई जारी रखी और समय आने पर प्रभाकर की परीक्षा उत्तीर्ण की। भगवती चरण वोहरा के मन में क्रांतिकारियों के प्रति असीम श्रद्धा थी। यही कारण है कि जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उन्होंने महान क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल के सम्मान में अपने बेटे का नाम शचीन्द्रनाथ ही रखा था। भगवती चरण वोहरा वैचारिक रूप से बेहद परिपक्व थे। वो अपने समय में दल के प्रमुख विचारक और लेखक रहे थे। क्रांति कर्म में हर वैचारिक लेखन में भगत सिंह के साथ उनकी जुगलबंदी थी। एक लिखता तो दूसरा उसे ठीक करता। 1 जनवरी 1925 को हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ ने द रिवॉल्यूशनरी नाम से एक 4 पेज का घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने अपनी विचारधारा और उद्देश्य की उद्घोषणा की थी। इस पत्र का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार और भारतीयों के समक्ष संगठन की नीतियों और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उनके विचारों को स्पष्ट करना था। इस पत्र में संगठन की हिंसक गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हथियारों का उपयोग करने की भी बात कही थी। इसे हिंदुस्तान के सभी प्रमुख स्थानों पर वितरित किया गया। इसे वितरित करने की प्रमुख जिम्मेदारी भगवती चरण वोहरा पर ही थी। इस कार्य को उन्होंने अत्यंत कुशलता के साथ संपन्न किया। एक तरह से ये पत्र अंग्रेजों द्वारा भारत पर शासन करने की नीतियों और तरीकों पर एक प्रतिक्रिया थी। साथ ही इसमें युवाओं का आह्वान किया गया था कि वो भारत की स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे इस महासमर में शामिल हों।

आगे चलकर सरदार भगत सिंह के सुझाव पर संगठन का नाम हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ कर दिया गया। इसी संघ ने सांडर्स वध और असेंबली बम कांड जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण क्रांति घटनाओं को अंजाम दिया था। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने

सुजाता रखा गया। लाहौर स्टेशन पर भगत सिंह की तलाश में 500 पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन उन सबको चकमा देते हुए दुर्गा भाभी के सहयोग से भगत सिंह लाहौर से बाहर निकल आए। असेंबली बमकांड के बाद जब सरदार भगत सिंह जेल में थे, तब भगवती चरण बोहरा और यशपाल ने दिल्ली आगरा रेल लाइन पर भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन को ले जा रही विशेष ट्रेन को बम से उड़ाने की योजना बनाई। लंबी तैयारी के बाद ये हमला किया गया। बम फटा और ट्रेन के डिब्बे के परखच्चे उड़ गए। ट्रेन में सवार एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, लेकिन इरविन बच गया। हालांकि गांधी जी ने इस घटना की निंदा की थी और यंग इंडिया में बम की पूजा शीर्षक से लेख लिखा था। इस पर भगवती चरण बोहरा ने चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की सलाह पर गांधी जी के लेख के जवाब में बम का दर्शन इस शीर्षक से एक लेख लिखा। सरदार भगत सिंह ने जेल में इस लेख को अंतिम रूप दिया था। इस लेख में इरविन पर किए गए हमले के पक्ष में तर्क रखे गए तथा इसे राष्ट्रहित में बताया गया, जिसकी व्यापक चर्चा हुई। दल की योजना बनी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल से कोर्ट ले जाते समय छुड़ा लिया जाए। ब्रिटिश शासन की कड़ी सुरक्षा को चकमा देने के लिए शक्तिशाली बम की आवश्यकता थी। भगवती चरण बोहरा बम बनाने में सिद्धहस्त थे। वो अपने साथियों के साथ लाहौर की कश्मीर बिल्डिंग के एक किराए के कमरे में बम बनाने का कार्य किया करते थे। कुछ ही दिनों में शक्तिशाली बम बना लिए गए, लेकिन बम मौके पर धोखा न दे इसलिए तय हुआ कि इसका एक परीक्षण किया जाए। 28 मई 1930 को परीक्षण के लिए क्रांतिकारी रावी नदी के किनारे पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य से बम भगवती चरण बोहरा के हाथ में ही फट गया। उनकी कलाई के आगे का पूरा हाथ उड़ गया। पेट में हुए बड़े घाव से आंतें बाहर आ गईं और वो ये कहते हुए शहीद हो गए कि ये नामुराद मौत दो दिन और टल जाती तो इसका क्या बिगड़ जाता। उनका आशय यही था कि तब वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को छुड़ा लेते। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम एक छोटी से अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: हैं रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: 90.8 रेडियो आज़ाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है खेलना क्यों जरूरी है।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों नमस्ते, मैं हूँ आपकी मनीषा दीदी और फिर बाल सभा लेकर आपको तो पता ही है मैं हर सप्ताह आपसे मिलती हूँ। बच्चों की बातें, बच्चों की दुनिया, उनके मन से जुड़े हुए विषय और एक बार फिर से उन सब विषयों पर बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों आप जानते आज का विषय क्या है? आज का विषय है खेलना क्यों जरूरी है। बच्चों खेल बचपन की ना सबसे सुंदर पहचान होते हैं, क्योंकि खेल केवल समय बिताने के माध्यम नहीं है बल्कि ये खेल बच्चों को स्वस्थ, आत्मविश्वासी और मिलनसार बनाते हैं। खेल में एक बात और होती है बच्चों, वो होती है जीवन की छोटी छोटी लेकिन बहुत बड़ी बड़ी सीखें। अब आप सोचोगे कि खेल से कैसे सीख मिलती है, तो ये तो बच्चों आपको पता ही है कि मैं आपसे कोई भी बात, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो, वही बात करती हूँ जिसमें कोई ना कोई सीख छुपी होती है। क्योंकि बच्चों हमेशा हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो मीनिंगफुल हो, थॉटफुल हो, जो हम देख रहे हैं उसका कोई अर्थ निकले। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, है ना। अगर हम सिर्फ ऐवें कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो बच्चों वो समय का दुरुपयोग है और इस विषय पर हमने पिछली बाल सभा में बात की थी। आज जो बच्चा मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में आने वाला था, उसका मेरे पास सुबह सुबह फ़ोन आया, बोला दीदी मैंने ना आज ही सुबह बहुत ज़रूरी काम से जाना है। मैंने कहा किस काम से जाना है? तो उसने बताया कि एक कॉलोनी में उनकी खेल प्रतियोगिता है, उसमें जाना है। तो बोला दीदी सॉरी, मैं आज स्टूडियो ना आऊँ, आज मैं अपनी खेल प्रतियोगिता में चला जाऊँ। बस वहीं से मुझे ये विषय मिल गया। मैंने कहा ठीक है, तुम जाओ प्रतियोगिता में, ना सिर्फ खेल के आओ बल्कि जीत के आओ। और आज मैं अपने सभी श्रोताओं से, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने श्रोताओं से बात करूंगी कि खेलना क्यों ज़रूरी है और क्यों मैंने उस बच्चे से कहा कि हाँ यहाँ बच्चों से बात करना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि जो प्रतियोगिता में तुम नाम लिखवा चुके हो पहले जाकर उसमें खेलो और ना सिर्फ खेलो बल्कि जीतने का प्रयास भी करो। क्योंकि बच्चों ये तो आप जानते हैं कि आज के समय में जब बच्चों का अधिक समय स्क्रीन पे जा रहा है, और ये बात बिल्कुल सच भी है, छोटे छोटे बच्चों को मैं कितने इतने छोटे बच्चों को देखती हूँ, 4 साल के, 5 साल के, जो खाना खाते वक्त अपनी मम्मा से ये बात ज़रूर कहते हैं कि थोड़ी सी देर के लिए फ़ोन दे दीजिए। मतलब भाषा में तोतलापन है, मतलब आप सोचिए मम्मा पानी पीना है लेकिन स्क्रीन देखते हुए पीना है। कितने बच्चे छोटे छोटे वजहों से स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल ऑनलाइन स्टडी भी है, उसका एक रीज़न है। लेकिन बच्चों जितना ज़रूरी है उसके अलावा हमें स्क्रीन पर समय नहीं बिताना है बल्कि हमें खेलने जाना है। अब मैं पूछूं आप लोगों को कौन कौन से खेल पसंद हैं, तो वहाँ से आवाज़ आएगी कि मुझे कबड्डी पसंद है, क्रिकेट पसंद है, रस्सी कूद पसंद है, है ना, जो मैं अपने दोस्तों के साथ रोज़ खेलता हूँ या खेलती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को खेल खुश भी रखते हैं, पता है आपको। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे वाले समय में ले जाऊँ, जब हम लोग खेलते थे, ये सारे खेल तो खेलते ही थे, इसके साथ साथ कुछ और भी खेलते थे बच्चों। क्या होता था कि मम्मियाँ ना दोपहर में काम करके थक जाती थीं। अब जब थक गईं तो उन्हें एक चीज़ ये भी है कि दोपहर में धूप बहुत है, तो धूप में एकदम बाहर तो खेलने आपको नहीं जाना है, लेकिन जब तक मम्मी सो रही हैं, जब तक माँ और घर में दादी नानी ये लोग सो रही हैं, तब तक बच्चों का हल्ला करना, शोर करना बिल्कुल मना था। और हम लोग अपनी पेरेंट्स की ना बात बहुत मानते थे, तो अब ऐसे में क्या खेल खेलें कि आवाज़ भी ना आए। तो छोटे छोटे से खेल बना लेते थे हम लोग, जैसे आंगन में गए और अष्टाचंगा खेलने लगे। अब आप सोचो अष्टाचंगा क्या होता है। इमली बहुत खाते थे बच्चे गर्मियों में ना, इमली खा रहे हैं तोड़ तोड़ के पेड़ों से, उसके जो बीज निकल रहे उससे हम लोग खेलते थे। आप लोग जिसे

0: असा और ये सब खेलते हो, लूडो खेलते हो आप लोग, उसी तरीके से हम लोग पत्थर पे किसी चीज़ से, चौक से या और पेंसिल किसी ऐसी चीज़ से जिससे वहाँ पर निशान बन जाए, एक चौकोर खाना बना लेते थे और उसमें अष्टाचंगा खेलते थे। सारे दोस्तों को बहुत मज़ा आता था और फिर जैसे ही सब लोग जग जाते थे और हमें परमिशन मिल जाती थी थोड़ा शोर मचाने की, थोड़ा ऊधम करने की, तो हम लोग पिट्ठू खेलते थे, कंचे बहुत खेलते थे बच्चे। उससे एक चीज़ होती थी बच्चों, जो कंचे कई जगह उसे अंटा भी बोलते थे, उससे ना निशाना बहुत अच्छा साध पाते थे। तीरंदाजी बच्चे छोटी छोटी जगहों पे बहुत करते थे, गुलेल खेलते थे आप सोचो, और तो और पिट्ठू के अलावा खो खो खेलते थे। खो खो तो अभी भी अब बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। एक खेल हुआ करता था गिल्ली डंडा, उसमें छोटी सी लकड़ी से बच्चे अपने लिए वो बना लेते थे, और तो और जो साइकिल के पुराने टायर होते थे ना बच्चों, उसको भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे छोटी सी लकड़ी से बहुत दूर दूर तक दौड़ा कर ले जाते थे। अब आप सोचिए कि इस खेल में क्या है, इस खेल में जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि बहुत सारा खर्चा नहीं है, है ना, ठीक है। हमको हर चीज के लिए बाजार का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है, हम अपने खेल न सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि उनको बना भी खुद रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो बच्चा साइकिल के पुराने टायर को एक लकड़ी से दूर तक दौड़ाता हुआ ले जा रहा है, उसका फोकस कितना अच्छा हो जाता होगा, सोचिए सोचिए, क्योंकि ये सोचना जरूरी है बच्चों। अगर वो बच्चा अपनी मम्मा से रोज कहे कि आज मुझे ये खेल खेलना है, कल मुझे वो खेल खेलना है, आज ये बाजार से ले आई, आज वो बाजार से, तो पता चलता है कि गर्मियों की छुट्टियों में मम्मी पापा का बजट बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है। तो हमको ये नहीं करना है, हमको ऐसे खेल खेलने की कोशिश करनी है जिसको हम थोड़े थोड़े खुद भी बना सकें, और सच बताऊं बच्चों इसमें मजा भी बहुत आता है। एक और खेल हम लोग खेलते थे, वो पता है क्या था, उस खेल का नाम था किल किल कांटे। अजीबो गरीब सा नाम है ना, पर मुझे आज था कि मैं स्टूडियो में जब आप लोग के साथ खेलों की बात करूंगी तो वो सारे खेल आपको बताऊंगी जो हम लोग खेला करते थे, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन तब बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होते थे बच्चों, है ना, कि छोटी छोटी सी चीज़ के लिए हम लोग बाजार भाग जाएं, नहीं होता था। इनफैक्ट बाजार में भी इतने खेल नहीं थे जैसे आजकल मैं देखती हूँ, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों काम करें उसके लिए नए नए गेम्स आ रहे हैं, नई नई बुकलेट्स आ रही हैं। ठीक है, बाजार में नई चीज़ों का इन्वेंशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि आप जब खुद कोई खेल बनाते हैं उसमें जो मजा आता है, उसमें जो आपका ब्रेन यूज होता है ना, वो कहीं नहीं होता और कभी नहीं होता, सच मानिए। जैसे वो किलकिल कांटे में हम लोग क्या करते थे कि आपको खूब सारी लाइनें खींचनी है लेकिन ऐसी जगह जो दूसरे को पता ना चले, वो फिर आपकी लाइनें ढूंढता था कि आपने कहां बनाई है और उसको काटता था, तो जो आपने लाइन बनाई है उसने अगर सारी काट दी तो वो जीत गया, और नहीं तो बाकी बच्चे ना एक कपड़ा लेते थे और उसकी पीठ पर कपड़े से मारते थे, तो चोट भी नहीं लगती थी, मजा भी आता था और खूब दौड़ा भागी होती थी, खूब दौड़ा भागी होती थी। ऐसे ही खो खो खेलते वक्त हम लोग बोलते थे कि घोड़ा जमाल खाए पीछे देखा मार खाए, तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा हमारी भाषा को भी समृद्ध करती थी, इसलिए मैं आज आपसे खेलना क्यों जरूरी है इस विषय पर बातचीत करना चाह रही थी। एक बात और थी कि मेरी कुछ दोस्तों को ना गुड़िया के कपड़े बनाना बहुत पसंद था। अब वो अपनी मम्मी से पुराने कपड़े लेती थी, उसमें फिर सुई धागा लेती थी और हाथों से छोटे छोटे से कपड़े बनाती थी कैंची से काट काट के, मुझे बहुत अच्छे से याद है। इनफैक्ट उनमें से एक दोस्त थी जिसको लगता था कि गुड़ियों को थोड़े से वेस्टर्न कपड़े पहनाने चाहिए, तो वो पता है किससे कपड़े बनाती थी, आश्चर्य करोगे, वो बैलून से कपड़े बनाती थी, वो गुब्बारे को पहनाकर गुड़िया को सजाती थी। और मैं आज आपको बताते हुए बहुत गर्व भी हो रहा है कि मेरी वो दोस्त इंडियन फैशन इंस्टीट्यूट में है। तो आपके बचपन के खेल की यात्रा कहाँ तक जाएगी बच्चों, ये किसी को नहीं पता, है ना। और आपको पता है आजकल आप देखते होंगे कि बच्चे चूंकि स्क्रीन टाइम बहुत है और चूंकि आंखों की बहुत एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, पहले हरियाली देखना, घूमना, टहलना, दूर दूर निशाना साधना, तो आपने देखा होगा कई बच्चों को आजकल बहुत कम उम्र में चश्मे लग जाते हैं। पहले हमारे यहाँ सुई धागा रेस भी होती थी, सुई में धागा डालो, अब सोचो आप सुई में धागा डालना, अब अगर आप आज कोशिश करना कि अपनी मम्मी पापा को बोलो कि एक सुई और धागे की आपसे रेस करवाएं, कितने लोग सुई में धागा डाल पाएंगे ये आप मुझे अगली बाल सभा में जरूर बताना, ठीक है? या तो आप मुझे, जो बच्चे यहाँ स्टूडियो में आएंगे वो बताएंगे, या तो मैं कैसे ना कैसे अपने बच्चों से पूछ ही लूंगी, आज पार्क जाऊंगी शाम को तब भी पूछूंगी और ये बोलूंगी कि घर पे जाके एक्सरसाइज करो। अब आप देखिए कि सुई में धागा डालना कहने को बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन उसमें भी बच्चों आपका फोकस काम आता है ना। आप कितने ध्यान से सुई में जो छोटा सा बहुत बारीक सा छेद है उसको देख पा रहे हो और उसमें धागा पिरो पा रहे हो, है ना। ये छोटी छोटी सी चीज़ है, जैसे बैलेंसिंग के लिए एक बहुत अच्छी होती थी, चम्मच में नींबू को रख कर और फिर रेस करवाते थे, तो ये मैंने अभी भी बहुत देखी है, अभी भी बच्चे बहुत खेलते हैं। तो इससे क्या होता था, इससे बैलेंसिंग आती थी। अब ये संतुलन, ये फोकस, ये हर चीज़ क्या आपकी ज़िंदगी में काम नहीं आती बच्चों? आती है ना। बिल्कुल ऐसे ही हमें ये समझना होगा कि खेलों से दरअसल हमारी ज़िंदगी में क्या असर पड़ रहा है, क्या ख़ास बात हम सीख पा रहे हैं, है ना। क्योंकि बैलेंस तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अब जैसे एक छोटी सी बात बताऊँ आपको, एक बच्ची है, वो जहाँ मैं रहती हूँ उसके पास में ही रहती है। अब उस बच्ची में मैं हमेशा देखती हूँ कि थोड़ा व्यवहार में संतुलन कहीं ना कहीं कम हो रहा है। कैसे हो रहा है कि जैसे उसे बाहर खेलना पसंद है तो वो पूरे समय बाहर खेलना चाहती है, ठीक। अब उसका देखिए बैलेंस्ड बिहेवियर कैसे डगमगा रहा है कि मैंने देखा कि कल वो बहुत धूप में भी ना सबके घर जाकर बच्चों को बुला रही थी, बाहर आओगे खेलने आओगे। अब क्या हुआ कि एक दो घरों में गई वो, मैं वापस लौट रही थी कहीं से कुछ सामान लेकर, तो मैं चुपचाप खड़े होकर उसकी गतिविधियां देख रही थी, तो उसने किसी एक का दरवाज़ा खटखटाया, तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी मम्मी ने बोला नहीं बेटा अभी हम नहीं भेजेंगे क्योंकि धूप बहुत है। फिर उसने क्या किया, बगल वाले घर का दरवाज़ा खटखटाया, आंटी उसको भेज दीजिए ना, मुझे उसके साथ खेलना है। तो उसकी मम्मी ने भी मना कर दिया कि नहीं बेटा धूप बहुत है अभी नहीं भेजेंगे, शाम को आना। अब जब दो तीन घरों में उसे मना किया गया तो चूंकि मैं सिर्फ उसी को देख रही थी, वो बच्ची थोड़ी देर बाद ना रुआंसी हो गई, तो मैं उसके पास गई क्योंकि मैं जानती हूँ और मैं, आप लोगों को तो पता ही है मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, कोई बच्चा दुखी हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं उसके पास गई, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा बेटा क्या हो गया, जबकि मैं देख सब रही थी, समझ सब रही थी कि यहाँ चल क्या रहा है। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, उसने मतलब ऐसा लगा जैसे वो रोने के लिए तैयार बैठी थी, वो रो पड़ी एकदम से, आंटी मेरे साथ कोई खेलने नहीं आता। मैंने कहा सब तो आते हैं, कहाँ आया आंटी, मैं पिछले कितनी देर से सबके घर पे जाके बैल बजा रही हूँ, कोई नहीं आया। मैंने कहा बेटा टाइम देखो कितना बज रहा है, तो उसने टाइम देखा, उसने बताया कि 3 बज रहा है। फिर मैंने कहा कि इस वक्त धूप देखो, तो ऊपर देखा उसने, मैंने कहा ऊपर देखने की ज़रूरत ही नहीं है सच में, मतलब ऐसा लगता है थोड़ी देर अगर खड़े हो जाओ बाहर तो जैसे जल रहे हैं। मैंने कहा इतनी धूप में आप कहाँ खेलोगे? बोली वो आंटी पेड़ के नीचे खेलूंगी। मैं कहा ये जो इतना धूप से एक्सपोजर होगा आपका उसका क्या, और कई बार लू जैसी भी स्थिति हो जाती, गर्म हवा भी चलती है धूप में। तो वो रोने लगी, बस उसको एक ही जिद थी कि नहीं मुझे अगर मैं बुलाऊं तो तुरंत दोस्त आ जाने चाहिए, अगर नहीं आ रहे तो वो अच्छे दोस्त नहीं है। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा बहुत बैलेंस्ड बिहेवियर रखना ही पड़ेगा, आपको टाइम देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि अगर किसी ने आपसे मना किया है तो क्यों मना किया है। कई बार बच्चों हम सोचते हैं ना कि हमारे किसी दोस्त ने या दोस्त की मम्मी ने या उसकी बड़ी दीदी ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, तो मैं देखती हूँ बच्चे तुरंत बोलते वो अच्छी नहीं है, उसकी दीदी अच्छी नहीं है, उसकी मम्मी मेरी बात नहीं मानती है। आजकल मैं ये वाले चर्चाएं बहुत सुन रही हूँ बच्चों से, तब मुझे लगता था कि मैं बाल सभा में बैठूंगी तो आपसे ज़रूर बैलेंस्ड बिहेवियर की बात करूंगी बच्चों, है ना। पता है इसके लिए आप लोग छोटी छोटी प्रैक्टिस करिए, मैं जो बाद में आपसे संकल्प के वक्त करवाती हूँ ना कि हम एक धीमा संगीत सुनेंगे, शांति से बैठेंगे, संकल्प लेंगे कि हम कुछ अच्छी चीज़ें करें, हम क्या करें और क्या ना करें, तो बच्चों सबसे पहले आप अपने अंदर धैर्य लाइए, सबसे पहले अधीर होना बंद कीजिए, है ना। थोड़ा शांति से 2 मिनट सोचना शुरू कीजिए, जो आपका कंसंट्रेशन टाइम है ना बच्चों वो बहुत कम होता जा रहा है। मैं देखती हूँ एक बच्चा एकदम बैठता है, फिर दूसरे काम में लग जाता है, दूसरे काम से तीसरे काम में लग जाता है, और जब तक उसको उसके मन की चीज़ ना दे दी जाए वो तब तक शोर करता है। ऐसे कितने बच्चों की कहानियाँ हैं मेरे पास बच्चों, पर मुझे पता है जो बच्चे मेरी बाल सभा सुनते हैं, जो मेरे साथ स्टूडियो में आते हैं और जो हर बार मुझे बहाने बहाने से कहीं कभी स्कूल जाती हूँ मैं तब बच्चे बताते हैं कि बाल सभा सुनकर दीदी हमने ये सीखा। तो बच्चों जो भी मुझे सुन रहा है ना, एक चीज़ ज़रूर सीख लेना, अधीर होना नहीं अच्छी बात नहीं है। हाँ, आपको किसी ने कुछ चीज़ के लिए मना किया है तो आप खुद भी आत्म मूल्यांकन कीजिए। बच्चों रुकिए, ठहरिए, सोचिए कि आपको इस काम के लिए मना क्यों किया गया। कोई ना कोई कारण जरूर होगा। वापस अपने विषय पर आ जाएं कि खेलना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज बहुत से बच्चे, आपने देखा ही है कि किस तरीके से अभी जो बातें मैं बता रही हूँ, एक दूसरे से गुस्सा हो जाना, एक बहुत खास बात है, खेल भावना की विकास होता है खेल खेलने से। इसमें जो सबसे बड़ी सीख है ना, जब बच्चे टीम में खेलते हैं तो वो एक दूसरे के साथ सपोर्ट सिस्टम सीखते हैं। जैसे आपने देखा होगा बास्केटबॉल हो, या आपने देखा होगा कि फुटबॉल हो, या इवन वॉलीबॉल हो, ये जो आउटडोर गेम है और जो टीम गेम है, आपने देखा होगा कि सिर्फ जो गोल करता है या जो बॉल को बास्केट में डालता है वही इम्पॉर्टेंट नहीं है, वही चैंपियन नहीं है। जो बॉल को पीछे से लेते चला रहा है, लाता चला रहा है, नेट के पास तक जो बॉल को लाया है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है ना। तो कई बार हमें ये होता है ना, अरे ये काम मेरे कारण हुआ। कई बच्चे आपने देखा होगा जब बहुत अच्छे आप जाते होगे, खेलते होगे पार्क में, कहीं टीम में, स्कूल टीम की तरफ से आप खेल रहे होगे, या आपने देखा होगा स्कूल में भी कई बच्चों को ना हल्का सा, बहुत छोटा सा ही सही, पर अहंकार जैसा आ जाता है, अरे उस मैच में तो मैंने गोल मारा था, अरे उस वाले गेम में तो मैंने सिक्स मारा था। नहीं, पूरी टीम का सपोर्ट था आपके उस सिक्स के पीछे। पूरी टीम चाहती थी कि आप जब नेट तक बॉल पहुंच जाए तो आप उसको बास्केट में डाल दें, सब चाहते थे, समझ रहे हैं आप। तो बच्चों कभी भी ये मत सोचिएगा कि खेल सिर्फ खेल है, खेल में बहुत छोटी छोटी छोटी छोटी सी इतनी इतनी माइक्रो सीख छुपी हुई है कि आपको ना अपने दिमाग का लेंस लगाना पड़ेगा कि अरे इसमें तो ये भी छुपा था। जैसे अभी मैंने बताया ना कि टीम में जब आप रहते हो तब आप सपोर्ट सिस्टम सीखते हो। दूसरा, जिन बच्चों को लगता है कि हार गए तो झगड़ लिए, आपने कई जगह देखा होगा कि कई बच्चे एकदम से खेलते खेलते अगर हार रहे तो बैट पटक देते हैं, या झल्ला जाते हैं, या उनका टोन ऑफ वॉइस थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता फिर। तो बच्चों हमें वो चीज़ें भी सीखनी है और हमें वो चीज़ें भी सोचनी है। अब अगर हम बात करें कि जैसे अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही मुझे एक बच्चे के पापा बता रहे थे कि वो बहुत मोबाइल पे खेलता है, मतलब हर खेल मोबाइल पे खेल लेता है, और बच्चा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। अब कौन कौन से गेम खेलता है, तो आजकल तो क्रिकेट भी आप मोबाइल पे खेल सकते हो, आजकल तो आप फुटबॉल भी मोबाइल पे खेल सकते हो, आप गाड़ी की रेस मोबाइल पे लगाते रहते हो। लेकिन आप बच्चों बस मुझे ये बताओ कि हाथ में स्क्रॉल करते करते आप कितना भी खेल लेना, उससे क्या होगा, उससे आप बैठे बैठे अनफिट होते जाओगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी फूड क्रेविंग बढ़ती है ना। फिर आप सोचोगे कुछ पैकेट में आपको खाने को मिल जाए, फिर आप क्या करोगे, फिर आप कुछ खा लोगे, फिर आप टॉफी चॉकलेट मुंह में डाल लोगे, और फिर थोड़ी देर बाद आप थक जाओगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं खेल रहे हैं, खेल कोई और ही रहा है जो वो खेल बना रहा है मोबाइल के लिए, है ना, और आप उसमें बंधते जा रहे हो, ठीक है। और बच्चों फिर आप क्या करते हो, धीरे धीरे आप रियलाइज करना आप अकेले होते जाते हो, क्योंकि आप बाहर नहीं जा रहे, मोबाइल बात तो कर नहीं सकता आपसे, है ना, बस वो आपके लिए खूब सारी गाड़ियां दौड़ाता जा रहा है, आप स्क्रॉल करते जा रहे हो और आपको लग रहा है आप खेल रहे हो। और ये बात मैं कर रही हूँ अपने छोटे छोटे बच्चों की, 7 साल के 8 साल के 9 साल के ऐसे बच्चों की। तो बच्चों ये बात आपको बहुत समझना जरूरी है कि जब आप बहुत समय मोबाइल पर गेम खेलते हुए बिताओगे, आपका दोस्त कौन बचेगा, सोचो आप किसके कंधे पर हाथ रखोगे। अगर आप स्कूल जाते वक्त आपके दोस्तों से बात नहीं करोगे तो आप बात करने का तरीका ही भूल जाओगे। सच्ची मानिए, मैंने बहुत बच्चों में ये चीज देख रही हूं कि वो समझ ही नहीं पाते कि क्या बात करें, हेलो बस चुपचाप बैठ गए, ये नहीं पूछते आज तुमने क्या पढ़ा, कहानी पढ़ी क्या कोई, और आज तुम खेलने गए थे कौन सा खेल खेल रहे हो, तो क्या बताओगे आप? मैं मोबाइल पर गाड़ियों की रेस लगा रहा हूँ, क्या बताओगे आप? मैं मोबाइल पे वो खेल रहा हूँ क्रिकेट, मैं मोबाइल पे ही बास्केटबॉल खेल रहा हूँ। तो ठीक है, आपके टीम प्लेयर्स कौन है? वो नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप अकेले रहते हो। जब आप स्क्रीन पे खेलते हो तब आप अकेले होते हो, और जब आप बाहर खेलते हो तो आपके साथ पूरी टीम होती है जो आपको एक संवेदनशील नागरिक बनाने में बहुत सपोर्ट करती है। क्योंकि जब कोई गिर जाता है तो आप उसका हाथ पकड़ के उठाते हो, जब किसी के चोट लग जाती है तो आप उसको पानी से साफ करते हो, उसके घर तक उसको लेके जाते हो। तो इससे आपको बिहेवियर में बहुत चेंजेस आने लगते हैं। आप अचानक से हेल्पिंग होने लगते हो, आप अचानक से बहुत मीठा बोलने लगते हो, आप अचानक से फ्रेंडली हो जाते हो, है ना? लेकिन ये सब कब आता है? जब आप घर के दरवाजे खोलते हो, अपने अकेलेपन से बाहर निकलते हो, जब आप लोगों के बीच उठते बैठते हो। नहीं तो क्या होता है? नहीं तो एक कमरा, आपकी स्क्रीन, आपका हाथ, और उससे आपका सारा खेल, खेलते जा रहे हो। तो बच्चों, मैं नहीं सुनूं अब कि कोई भी बच्चा स्क्रीन टाइम ज़्यादा ले रहा है। मैंने आज खेल क्यों ज़रूरी है इस विषय पे बात ही इसलिए रखी थी कि ये जो छुट्टियां चल रही हैं इसमें आप कोई ना कोई खेल ज़रूर खेलोगे, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, जूडो हो, कराटे हो, कुछ भी हो, सेल्फ डिफेंस से लेकर गेम जो भी जुड़े हुए हैं वो आपको ज़रूर सीखने चाहिए, वो भी आपको काम आते हैं, है ना? वो खेल ज़रूर खेलिए, क्योंकि यही खेल बच्चों आपको न सिर्फ फिट करेंगे बल्कि आपको, मैं बार बार बोलती हूँ कि खेल से खेल भावना का विकास होता है, और खेल भावना से आप एक बहुत अच्छे बच्चों में बढ़ते जाते हो, तब्दील होते जाते हो। आपकी अचानक से सारी कमजोरियां आपको बाय बाय कहने लगती हैं, है ना? और अब ऐसी ही एक, आपको तो पता ही है एवरेस्ट की बातें हम लोग कर रहे हैं आजकल, तो अब हम फिर से आपको सुनाते हैं बचेंद्री पाल जी का आगे का हिस्सा कि उनका जो प्रथम अभियान था एवरेस्ट का वो कैसा रहा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिसमें वो हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। काठमांडू में कुछ दिन बिताने के पश्चात हम जीरी चले गए, जो वहां से 4-5 घंटे की यात्रा पर था। जब हमने नामचे बाजार तक की 8 दिन की यात्रा आराम से की, पर्वतों के स्वभाव के विपरीत हम रोज लगभग 1000 मीटर ऊपर नीचे चढ़ते उतरते, जिससे हम में मजबूती आई और ऊंचाइयों के वातावरण और जलवायु के अनुकूल स्वयं को ढालने में हमें मदद मिली। रास्ते में हमें हसमुख और मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ उस क्षेत्र के व्यक्ति विशेष शेरपा मिले। नामचे बाजार शेरपा लैंड की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरी क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को यहीं से निहारा था, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है, और मुझे ये नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का एक बड़ा फूल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज जैसा लग रहा था। मुझे बताया गया कि ये दृश्य शिखर की ऊपरी सतह से लगभग 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ का पत्थर उड़ता रहता था। बर्फ का ये ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। हम पर्वतीय लोग सदा से पर्वतों की पूजा करते आए हैं, अतः इस भय मिश्रित प्रेरणास्पद दृश्य के प्रति मेरे ऊपर हावी भावना एक प्रकार से श्रद्धा भाव की थी। मैंने अपने हाथ जोड़े और सागर माथा की तरफ श्रद्धा से सिर झुकाया। एक दिन के बाद हम प्रसिद्ध थ्यांग बोके मठ तक पहुंचे, जहां मूर्तिमान थामा ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी सफलता तथा सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की। थ्यांग बोके न केवल सुंदर था बल्कि उसकी 4000 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई हमारी जलवायु अनुकूलता प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त थी। तो बच्चों, ये पर्वत पर जाने की, आप जो हिमालय तक पहुंचने की यात्रा सुन रहे हैं बचेंद्री पाल जी की, वो भी हमें हर पल यही संदेश देती है कि हमें जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है, घर से बाहर निकलना ज़रूरी है, थोड़ी हिम्मत करना ज़रूरी है। तो बस एक बार जो आप सोच लें उसे पूरा करके दिखा दीजिए। और यहाँ जो बच्चे अभी हो सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट टीम में हो, किसी स्टेट टीम में हो, या फिर हमारे यहाँ के कुछ बच्चे नेशनल भी खेल रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि जूनियर, सब जूनियर, ऐसे बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएँ होती हैं। और एक बार आप स्कूल का जो खेल विभाग है बच्चों, उसमें ज़रूर जाना। और जो आपके कोच, जो आपके स्पोर्ट्स टीचर जो भी होंगे, उनसे मिलकर कहना कि आपको कोई ना कोई खेल ज्वाइन करना है। और जब आप कोई खेल खेलने लगोगे तो सच बोल रही हूँ, आपकी मनीषा दी को बहुत अच्छा लगेगा। और यही बाल सभा में मेरी आपसे बातें करने का जो पूरा पूरा मंतव्य है, वो यही है कि हम यहाँ जो बोलते हैं ना बच्चों स्टूडियो में बैठ के, बस उसका असर बच्चों पे पड़े, है ना। तो अगर आप में से दो बच्चों ने भी अपना स्क्रीन टाइम कम कर दिया, दो चार बच्चे अगर किसी खेल टीम में चले गए, तो सच मानिए मेरा तो पर्पस पूरा हो गया। और रेडियो आज़ाद हिंद भी यही चाहता है कि जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हमको सुनते हैं ना, बस वो धीरे धीरे अच्छे मार्ग पर चलें, है ना। एक बात चलते चलते और बताऊंगी कि जो पारंपरिक खेल थे ना, जिनके बारे में आज मैंने चर्चा की थी आपसे, उसके बारे में अपनी मम्मी से, अपने पापा से पूछना कि आप लोग कौन से खेल खेलते थे जब छोटे थे, वो ज़रूर कुछ ना कुछ मज़ेदार कहानी किससे बताएंगे। और तो और एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ना, धीरे से अपनी दादी, दादा, नाना, नानी से भी पूछ लेना, दादू आप छोटे थे तो कौन सा खेल खेलते थे, देखना कितनी मज़ेदार कहानियाँ निकल के आएंगी और देखना कितने अच्छे अच्छे खेल आपको पता चलेंगे। और फिर आप उन पारंपरिक खेलों को खेलने की कोशिश करना, उससे क्या होगा, अच्छी चीज़ें अगली पीढ़ी तक ऐसे ही पहुँचेंगी। तो बच्चों अब चलने का वक्त आ गया है, आपको पता ही है हमारा आपसे जो अंतिम संवाद होता है वो होता है संकल्पों का। तो वो संवाद शुरू करते हैं एक धीमा संगीत और उसके बाद अपनी बातें। शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अब आज खुद से ये प्रॉमिस कीजिए कि आप कोई ना कोई खेल जरूर खेलेंगे। जो भी बच्चे इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, वो अगर वीडियो गेम या स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, उसे कम करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। एक इंडोर गेम साथ ही साथ एक आउटडोर गेम में महारत हासिल करने का प्रयास करेंगे। अपनी कॉलोनी, अपने मोहल्ले में या जहां भी आप रहते हैं, आसपास बच्चों की एक टीम बनाएंगे और सप्ताह में कम से कम 3 दिन कोई ना कोई टीम गेम खेलेंगे, ताकि आप में खेल भावना का विकास हो। अब आंखें आप खोल सकते हैं और अब मुझे बाय बाय भी कह सकते हैं, क्योंकि बाल सभा का समय पूरा हो चुका है। बच्चों चलती हूँ, अपनी मनीषा दीदी को अनुमति दीजिए और ये प्रॉमिस कीजिए, भले ही चाहें तो रेडियो के पास आ जाइए। अगर आप मुझे कार में सुन रहे हैं, मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं और मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, तो अपने मन ही मन खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने मम्मी पापा की बात मानेंगे और कोई ना कोई खेल में हिस्सा ज़रूर लेंगे। तो चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए, गर्मी से खुद को बचा कर रखिए, थोड़ा सा धूप में कम निकलिए जैसे मैंने उस बच्चे की कहानी सुनाई थी, और शाम को खूब जम कर खेलिए। बाय बाय और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।
1: बाल सभा।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय था खेलना क्यों ज़रूरी है। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और आपके साथ थी मैं आपकी दोस्त मनीषा। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। एक अंतराल के बाद सुनेगा हमारा अगला कार्यक्रम।
3: मैं हूं पवन सिन्हा और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर। और मैं आपसे कहना चाहता हूं भारत को प्रणाम कीजिए, यह है तो हम हैं। हम जिन्हें पूजते हैं वो भी इसी भारत माता की संतान है। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सीना हमारा गर्व। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को और सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम भारतीय सेना के इतिहास के उन गौरवशाली पलों को जी रहे हैं जिसमें कि हमारी सेना के तीनों अंगों, चाहे वो थल सेना हो या फिर वायुसेना या फिर हमारी नौसेना हो, उनके एक बेहतरीन समन्वय, उनके अदम्य साहस और उनके बेहतरीन रण कौशल का अद्भुत मेल हमें देखने को मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की, जब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था और एक नए देश बांग्लादेश का अभ्युदय हुआ। कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में हमने जिक्र किया है कि लड़ाई में हमारी वायुसेना ने और हमारी नौसेना ने अपनी अपनी भूमिकाएं किस तरह निभाई। आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हमारी आर्मी यानी कि थल सेना ने इस युद्ध में किस तरह अपना पराक्रम दिखाया कि मात्र 14 दिनों के भीतर पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर होना पड़ा। हमारी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए एक बार फिर हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर।
4: नमस्कार बुरुआ जी एंड नमस्कार श्रोताओं। इट इज सेड दैट विक्ट्री लाइज अंडर द फीट ऑफ सोल्जर।
3: जी,
4: नो स्ट्रेटेजिक विक्ट्री कैन बी क्लेम अंटिल बूट्स आर फिजिकली ऑन द ग्राउंड। जो विजय होती है
3: जी
4: वो तभी मानी जाती है जब उस जमीन पे आपका
3: हक हो, अधिकार,
4: कब्जा हो।
3: जी बिल्कुल,
4: खड़े होते हैं। तो ये काम जो है आर्म फोर्सेस में आर्मी करती है।
3: जी बिल्कुल
4: ठीक। एंड आर्मी जो है तीनों अंगों में, मतलब उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, एंड इट्स अ डिसाइसिव फैक्टर।
3: जी,
4: तो सिमिलरली 71 वॉर में भी आर्मी प्लेड द डिसाइसिव रोल।
3: जी,
4: एंड उसने लैंड, एयर और सी तीनों में जो है हिस्सा लेके जो है ये ऑपरेशन पूरा किया
3: जी
4: था। जो 71 वॉर था वो हम जैसे समझते हैं कि ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ा गया था
3: जी,
4: लेकिन जो आर्मी है वो एक्टिवली सारे बॉर्डर्स पे डिप्लॉयड थी, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट में भी जो चाइना है
3: जी जी
4: उससे भी हमें खतरा था
3: जी बिल्कुल,
4: कि इस दौरान अगर उन्होंने वो फ्रंट खोल दिया
3: जी, पाकिस्तान का साथ दे दिया,
4: पाकिस्तान का साथ दे दिया तो भी उसको हमें कंट्रोल करना
3: जी
4: है।
3: बिल्कुल,
4: ये ऑपरेशन है 71 का। इसको हम दो भागों में जो है डिस्कस करेंगे
3: जी बिल्कुल,
4: ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर
3: जी।
4: तो ईस्टर्न सेक्टर में बांग्लादेश जो इसको कि उस समय ईस्ट पाकिस्तान कहते थे,
3: हाँ जी,
4: जहाँ की मेन मतलब जो है जिसको आजाद कराने की लड़ाई चल रही थी। तो वॉर जैसे हम सबको पता है कि 3 दिसंबर को जो है शुरू हुआ था, लेकिन उसके बारे में जो है संकेत जो है काफी पहले से आने शुरू हो गए थे और दोनों कंट्रीज जो है अपनी प्रिपरेशन कर रही थी। ठीक है, बांग्लादेश में जो है काफी जो है टर्मोइल चल रहा था, रिवोल्ट चल रहा था, पाकिस्तान ने जो है काफी फोर्सेस डिप्लॉय कर रखी थी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, प्राइमरली अगेंस्ट मुक्ति वाहिनी और अवामी लीग लीडर्स के अगेंस्ट वो लोग लड़ रहे थे
3: जी।
4: 71 की शुरुआत में ईस्ट पाकिस्तान में तकरीबन एक डिवीजन की फोर्सेस थी
3: जी,
4: जो कि वहां उन्होंने डिप्लॉय कर रही थी कि कंट्रोल करने के लिए। और ये बढ़ते बढ़ते जो है
3: जी
4: 5 डिवीजन तक पहुंच गया था,
3: यानी उन्हें भी लगने लगा था कि स्थिति नियंत्रण से बाहर
4: जा रही है
3: जी।
4: उसके अलावा जो है वहां पे तकरीबन 75,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस भी थी
3: अच्छा
4: पाकिस्तान की। और ये जो सिचुएशन थी जब डिटोरिएट होने लग गई तो इससे क्या है इंडिया में जो है रिफ्यूजीज आने शुरू हो गए थे और इसके अलावा जो है ये बिल्डअप जो पाकिस्तान कर रहा था वो एक कॉज ऑफ कंसर्न बन गया था इंडिया के लिए। तो इसको काउंटर करने के लिए आर्मी ने ऑपरेशन कैक्टस लिली लॉन्च किया था।
3: अच्छा,
4: काउंटर बिल्डअप के लिए जो पाकिस्तान जो बिल्डअप कर रहा था उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए इंडियन फॉर्मेशन ने उसी तरह से अपना ऑर्गेनाइजेशन करना शुरू किया, ट्रेनिंग करनी शुरू करी, वेपन्स वगैरह जो है कलेक्शन एंड देन कंसंट्रेशन जो है बॉर्डर के ऊपर मिड अगस्त से शुरू हो गया जो है। ईस्टर्न सेक्टर जो है एक और उसमें इशू ये है कि अगर आप देखें कि उसके साथ चाइनीज बॉर्डर भी लगता है और तो आर्मी को यहाँ पे बांग्लादेश के साथ भी लड़ना था
3: जी
4: और चाइनीज के साथ भी अलर्ट रहना था जिनका बॉर्डर सिक्किम हो गया अरुणाचल प्रदेश के साथ लगा हुआ है। साथ ही साथ उस समय नॉर्थ ईस्ट में एक और जो प्रॉब्लम चल रही थी वो थी इंसर्जेंसी की।
3: अच्छा,
4: जो कि कुछ स्टेट में इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम थी
3: जी,
4: उनसे भी जो है उसको
3: निपटना
4: था जी। क्योंकि ये भी एक तरह से अगर आप देखें खतरा रहता है कि पाकिस्तान काउंटर इंसर्जेंसी के जो मतलब ग्रुप्स थे
3: जी
4: उनका साथ देके उनको भड़का के जैसे कि वो करते भी
3: जी, जी,
4: है ना अगेंस्ट में खड़ा कर सकता था।
3: हाँ जी, अलगाववाद को बढ़ा दे।
4: हाँ, तो मेरा ये कहने का मकसद है कि जब बांग्लादेश के साथ ईस्टर्न सेक्टर में भी लड़ रहे थे
3: जी,
4: तो उस समय फोर्सेस जो थी
3: जी,
4: वो और भी जगह पे एंगेज थी, उनको और भी जगह पे जो है अलर्ट रहना,
3: उतना ही सतर्क रहना
4: जरूरी था
3: जी।
4: तो अब इसमें जो प्लान किया था वो इस तरह से था कि जो ईस्ट पाकिस्तान है उसके जो इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं, इम्पोर्टेंट वाइटल लोकेशंस हैं उसको कब्जा करना है और जल्द से जल्द जो है ढाका जो कि सीट ऑफ गवर्नेंस है उसके वहां पहुंच के उसके ऊपर
3: कब्जा करना है
4: और इस दौरान जो पाकिस्तान की वॉर मशीनरी है उसको ज्यादा से ज्यादा नष्ट करना है ताकि उनका रेजिस्टेंस खत्म हो सके
3: जी।
4: अब इसमें एक अच्छी बात थी दिसंबर के महीने में कि जो ठंड का मौसम होता है जिसके जिस दौरान स्नोफॉल गिरती है तो उसमें जो हमारे हिमालयस है जहाँ पे नॉर्दर्न बॉर्डर चाइना के साथ बॉर्डर है
3: जी,
4: वो काफी कुछ सेफ हो जाते हैं क्योंकि बर्फ के कारण जो है रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये एक हमारे फेवर में एक बात थी। तो आर्मी लॉन्च द वेरी वेल प्लान्ड अटैक ठीक है फ्रॉम द मल्टी डायरेक्शन
3: जी।
4: अगर आप बांग्लादेश को देखें तो वो तीन तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है
3: जी, बिल्कुल।
4: चौथी तरफ बे ऑफ बंगाल
3: जी।
4: तो तीनों तरफ से जो है आर्मी ने जो है अटैक लॉन्च किया था। इसमें 2 कोर 4 कोर 33 कोर और 101 कम्युनिकेशन जोन एरिया ये अलग अलग फोर्सेस थी जो अलग अलग डायरेक्शन से बढ़ी थी।
3: अच्छा,
4: और हम पहले इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बे ऑफ बंगाल में नेवी ऑलरेडी
3: उपस्थित थी
4: और वो ऑपरेशन कैरी आउट कर रही थी, है ना, और साथ साथ एयरफोर्स भी सपोर्ट में थी। तो अभी जब फोर्सेस बढ़ रही थी इनको एक और बहुत बड़ा एडवांटेज था इन द सेंस की जो लोकल पॉपुलेशन है वो सपोर्ट कर रही थी और मुक्ति वाहिनी भी जो है सपोर्ट कर रही थी। तो उनसे इनको जो है इंटेलिजेंस और गाइडेंस मतलब जो है सी देखिए रात के टाइम ऑपरेशंस कर रहे हैं और तो आपको अगर मालूम है कि रास्ता कहाँ है किधर से जाना है दुश्मन किधर है ऑलरेडी तो बहुत बड़ी मदद
3: आसानी है।
4: हाँ, इंटेलिजेंस लोकल इंटेलिजेंस वाज
3: अवेलेबल।
4: वेल प्लान्ड ऑपरेशंस जो थे, लीडरशिप बहुत अच्छी थी
3: जी।
4: और हमने जैसे पहले जिक्र किया कि इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी का जो है काफी अच्छा सपोर्ट था। तो इन सबको मिला के इंडियन आर्मी वॉज एबल टू कैप्चर द ऑब्जेक्टिव ठीक है ढाका पहुंचने में सफली 14 दिन के अंदर जो है
3: जी।
4: ये हम 2-3 बार इसका जिक्र भी कर चुके हैं कैसे हुआ था। इस बीच में जो है आर्मी ने हेलीबॉर्न ऑपरेशंस भी कैरी आउट किए जैसे हमने जो है एयरफोर्स के एपिसोड में जिक्र किया था उनका। एयरबॉर्न ऑपरेशंस भी किए, एम्फीबियस ऑपरेशंस भी लॉन्च किए थे, है ना, एंड विच डेमोंस्ट्रेटेड इन वेरी क्लियर कट टर्म्स द जॉइंटमैनशिप बिटवीन द 3 फोर्सेस,
3: तीनों का समन्वय
4: जी, और एक एक्सपर्टीज कि ये मल्टीफेसेट ऑपरेशंस लॉन्च कर सकते हैं। और इसी के कारण जो है जो फोर्सेस थी उनको विक्ट्री हासिल हुई
3: जी।
4: और हम सबको जैसे विदित है कि 93,000 सोल्जर्स के साथ पाकिस्तान ने सरेंडर किया
3: जी।
4: अब जब हम बात करते हैं तो हम ऐसा लगता है कि हमने इसको बहुत ही जल्दी समेट दिया,
3: छोटा कर दिया है
4: जैसे लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो 14 दिन भी होते हैं इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत है
3: जी, बहुत बड़ी व्यू रचना है सर इसके पीछे,
4: बिल्कुल बहुत
3: प्लान है बनाया हुआ पहले से ही,
4: बिल्कुल इसके ऊपर प्लानिंग है, इसके ऊपर इनमें मूवमेंट्स है, एक एक बटालियन को एक एक को जो टास्किंग दी जाती है और हर बटालियन को जैसे छोटे छोटे टास्क होते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव्स कैप्चर करेंगे, तो वो बहुत छोटे छोटे जो बैटल्स होती हैं मिलके जो है फिर वो
3: बड़ा उद्देश्य बनते हैं। बिल्कुल सर,
4: तो बहुत छोटी छोटी बैटल्स जो थी वो बटालियन लेवल पे, कंपनी लेवल पे, प्लेटून लेवल पे ये लड़ी गई। अगर आप बांग्लादेश का मैप भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे नाले और बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं
3: जी, बिल्कुल,
4: तो उनको एग्जैक्टली कहाँ क्रॉस करना है, और वहाँ पे कई जैसे जो ब्रिज हमने देखा था कि उन्होंने तो पाकिस्तान ने ब्रिज को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो एयरबॉर्न ऑपरेशंस हेलीबॉर्न ऑपरेशंस कैरी आउट किए थे, ठीक है, टांगेल में एयर ड्रॉप किया था। तो ये चाहे हमें लगे कि हमने जो है छोटा वो है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे ऑपरेशंस हुए थे और बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस रहे थे जिसके कारण कि हमें ये सफलता प्राप्त हुई थी। ईस्टर्न सेक्टर में जो सारे ऑपरेशन है इसमें मैं एक का जिक्र करना चाहूंगा।
3: जी बिल्कुल सर।
4: एक नाम है जो वीरता के तौर पे तौर के नाम पे हमेशा लिया जाता है, लांस नायक अल्बेटिक का,
3: जी बिल्कुल,
4: 14 गार्ड्स के। तो इस बहादुर सोल्जर की कहानी का जिक्र जरूर करना चाहूंगा।
3: जी बिल्कुल सर।
4: तो अल्बर्ट इक्का जी जो थे वो रांची के रहने वाले थे, 62 में उन्होंने 14 गार्ड्स ज्वाइन करी थी
3: जी,
4: और 71 वॉर में जो 14 गार्ड्स का यूनिट है उसको टास्क मिला था पाकिस्तान की एक पोजीशन जो कि गंगा सागर नाम की लोकेशन पे थी
3: जी,
4: ये अगरतला के वेस्ट में पड़ता है, ठीक है, उसको ऊपर कैप्चर करने के लिए। तो जो एनिमी की जो पोजीशन थी वो काफी वेल फोर्टिफाइड थी, मतलब इन द सेंस उसमें उसको काफी मजबूती से बनाया गया था, माइनफील्ड्स लगे हुए सब कुछ था जो है, और उसमें काफी लोग थे, स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा थी। तो इसको जो है कैप्चर करना जरूरी था क्योंकि इसके कारण जो है एक और आगे लोकेशन थी अकूरा वो उसको कैप्चर करने में मदद मिल रही थी।
3: अच्छा।
4: तो जब ये अटैक 3 दिसंबर को लॉन्च किया गया तो अल्बर्ट इक्का जी जो थे वो जो लीडिंग कंपनी थी उसका हिस्सा थे, जो कंपनी सबसे आगे जा रही थी
3: जी।
4: तो जब ये लोग आगे बढ़े तो इनके ऊपर बहुत ही इंटेंस आर्टिलरी शेलिंग और स्मॉल आर्म्स फायर आया
3: जी।
4: तो उस दौरान अल्बर्ट इक्का ने ऑब्जर्व किया कि दुश्मन की एक LMG है जो कि बहुत ज्यादा जिसके कारण की उन्हें नुकसान हो रहा, कैजुअल्टी हो रही थी। अब उन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए उस बंकर के ऊपर चार्ज किया।
3: अच्छा।
4: और जो दुश्मन के जो सोल्जर्स थे दोनों उनको मार गिराया, और इस तरह से जो उन्होंने LMG को बिल्कुल जो है नष्ट कर दिया, ठीक है, इसमें उनको भी काफी चोटें लगी
3: जी।
4: बट इसके बावजूद जो है बहादुरी से अपने जो साथी थे कॉमरेड्स के साथ बढ़ते रहे आगे और जो है लड़ाई लड़ते रहे। ये और आगे बढ़े तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर जाने के बाद वो एक और अपने ऑब्जेक्टिव के पास जब पहुंचे हैं
3: जी जी,
4: तो इनके ऊपर फिर से जो है काफी हैवी फायर आया।
3: अच्छा।
4: अब इस हैवी फायर में जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी वो मीडियम मशीन गन थी, जिससे काफी ज्यादा मतलब जो फायरिंग राउंड फायर होते हैं, तो उसके कारण जो इनका एडवांस रुक गया था। और ये जो मीडियम मशीन गन थी उसकी लोकेशन भी जो थी वो जो एक फोर्टिफाइड बंकर था जो कि बिल्डिंग के डबल स्टोरी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे थी।
3: अच्छा।
4: तो मतलब
3: ऊंचाई पर
4: थी। वंस अगेन जो अल्बर्ट इक्का जी है उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा कि मैं जाके इसको नष्ट करूंगा और अपनी पर्सनल सेफ्टी को दरकिनार रखते हुए जो है ये बहादुर जवान आगे बढ़े और जो है वहां तक पहुंचे। वहां तक पहुंचने के बाद उन्होंने उसमें ग्रेनेड फेंका, ठीक है, जिससे कि एक जो है था अंदर सिपाही वो मर गया और दूसरा घायल हो गया, लेकिन MMG फिर भी एक्टिव थी।
3: अच्छा।
4: तो अब उन्होंने ये देखा तो फिर उन्होंने साइड से जो है चढ़ के ऊपर पहुंच के दोबारा उसके ऊपर अटैक किया। अटैक करने के बाद जो है MMG को उन्होंने मतलब न्यूट्रलाइज करा। सुनने में आपको अभी भी लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन जब सामने से फायर आ रहा होता है, दुश्मन होता है और ये नहीं है कि उनको आपको ये भी नहीं पता कि वहाँ अकेले
3: कितने
4: लोग हैं अंदर, कैसे हैं, और उन सब के बावजूद आप इनिशिएटिव लेके जो है आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने एक बार नहीं किया, ये 2 बार 3 बार लगातार जो है करते रहे, एंड दिस ब्रेव सोल्जर लड़ते रहे और इस बीच में इनको काफी इंजरीज हुई एंड अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज लाइफ। तो इन्होंने जो है लड़ते लड़ते देश के लिए अपने प्राण दिए थे। तो इसके लिए उनको जो है परमवीर चक्र से
3: सम्मानित
4: किया गया था। तो ऐसे और भी कई बैटल्स थे, ऐसे और भी कई जवान थे, ऑफिसर्स थे जो उन्होंने बहुत बहादुरी से ये जंग में हिस्सा लिया और उसी के कारण जो है ये विजय हमें हासिल हुई
3: थी। बिल्कुल सर, बिना बलिदान के इतनी बड़ी विजय मिलना तो नामुमकिन है।
4: तो ये एक तरह से जो है ईस्टर्न सेक्टर का वो था
3: जिक्र
4: था जिसको हम कह सकते हैं कि जिसके कारण जो है हमें विजय हासिल हुई।
3: तो सर यहाँ पर तो ये कहानी तो अधूरी है क्योंकि ये तो केवल पूर्वी भाग की बात है।
4: एग्जैक्टली,
3: क्योंकि युद्ध तो पश्चिमी भाग पर भी उतनी ही गति से जारी था।
4: बिल्कुल।
3: तो जब तक दोनों ओर से युद्ध समाप्त नहीं हो जाता या विजय नहीं मिल जाती तो युद्ध समाप्त नहीं हो सकता।
4: बिल्कुल सही कहा आपने।
3: तो फिर अब आप हमें ये बताइए कि ऐसे ही समय में इसी समय पर थल सेना की क्या भूमिका थी पश्चिमी भाग में।
4: अगर हम पश्चिमी भाग देखेंगे तो उसका जो फ्रंटेज है वो काफी बड़ा है
3: जी।
4: अब आप ये देखिए लद्दाख सेक्टर से शुरू होके जो है नीचे रण ऑफ कच्छ तक The complete thing is known as Western border with Pakistan जो है हमारा। तो इस पूरे के पूरे एरिया में you can visualize कि कितना diverse terrain है, high altitude area है, steep mountains हैं, 19,000 से 20,000 की ऊंचाई पे, उसके plains हैं पंजाब के, फिर deserts हैं राजस्थान का, सब कुछ आता है,
3: समुद्र की सीमा भी है।
4: हाँ जी। और हर एक इलाके के लिए आपको अलग अलग तरह से एक्सपर्टीज चाहिए लड़ने के लिए, अलग तरह की टैक्टिक्स चाहिए, अलग तरह की स्ट्रेटेजी चाहिए, अलग तरह के हथियार चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, हर एक कुछ अलग अलग करना होता है। तो इट्स अ मैसिव जॉब टू कोऑर्डिनेट ऑल दीज एस्पेक्ट्स। इसके लिए बहुत ही हाई स्टैंडर्ड ऑफ लीडरशिप चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ट्रेनिंग, उनको जो कोऑर्डिनेट करना। एंड दिस वॉज अचीव्ड बाय द इंडियन आर्मी। ठीक है। तो अगेन अगर हम बात करें वही 3 दिसंबर से शुरू हुआ था जो है और इसका अगर मैं जिक्र करना चाहूंगा तो अगर हम ऊपर लद्दाख सेक्टर से देखें तो लद्दाख में जो है श्योक वैली जहाँ है उसको परतापुर सेक्टर बोलते हैं।
3: अच्छा।
4: तो परतापुर सेक्टर जो है इट इज वन ऑफ द टफेस्ट। इसी के अंदर सियाचिन ग्लेशियर आता है।
3: अच्छा।
4: ठीक है। उस समय ऑफकोर्स सियाचिन ग्लेशियर वॉज नॉट एक्टिव इन द सेंस वहां पे ये हमारा जो अभी कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं चल रहा था, वो बाद में आया था। उस समय वो एरिया डॉर्मेंट था। लेकिन उसका जो बाकी एरिया जो है LOC जो है वो तो मतलब POK का एरिया था जो है। तो उसमें जो है एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन थी, दिसंबर का महीना था और माउंटेन्स जो है मतलब 16,000 से 19,000 फीट की ऊंचाई पे है वहां पे। तो वहां पे लद्दाख स्काउट और नुब्रा गार्ड्स थे, उनके अंडर में एक बहुत ही हाईली डेकोरेटेड सोल्जर थे, ऑफिसर थे मेजर सी रंजन।
3: अच्छा।
4: जो ऑलरेडी महावीर चक्र और सेना मेडल से
3: सम्मानित
4: थे।
3: जी, बिल्कुल।
4: तो उन्होंने जो है POK एरिया में अटैक लॉन्च किया था और ये देखे कि कितना मतलब उन्होंने जबरदस्त अटैक करके जो है एक के बाद एक उन्होंने ऑब्जेक्टिव कैप्चर करके ऑलमोस्ट पाकिस्तान के 5 गांवों के ऊपर कब्जा किया था।
3: क्या बात है।
4: जी। तुर्तुक त्याक्षी से होते हुए 5 गांव थे जो उन्होंने कब्जा किए थे और ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर की जो है टेरिटरी
3: कवर करी
4: उन्होंने
3: जी।
4: एक और मजेदार बात यह है कि जो 5 गांव थे जिसमें मुस्लिम्स रहते थे उन सबने जो है इंडियन सोल्जर्स का वेलकम किया था।
3: यानी वो पाकिस्तान से त्रस्त है जी।
4: तो मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है
3: जी,
4: जो है।
3: बिल्कुल।
4: और इसके अलावा वहां पे उन्होंने एक पोस्ट पे भी कैप्चर किया था जो कि 19,000 की हाइट पे थी। तो उस मौसम में जहाँ सांस नहीं आती है
3: जी,
4: और उन दिनों तो इवन साधन भी नहीं होते थे इतने ज्यादा, उस वक्त इतनी ऊंचाई पर लड़ना काबिले तारीफ है।
3: बिल्कुल अविश्वसनीय
4: है। अविश्वसनीय है
3: जी।
4: मैं खुद इन हाइट्स पर रहा हूँ, सचिन में रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल अभी के हालात में जबकि हमारे को इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल तब 71 के टाइम पे मतलब जो है इसमें लड़ना बहुत बड़ी बात थी। एंड इसके कारण नो डाउट ये जो ट्रुप्स थे इन्होंने बहुत ही अच्छा बहुत ही बहादुरी का काम किया था। उसके लिए मेजर रंजन साहब को एक बार फिर से महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और भी जो है काफी सारे जो लीडर्स थे जवान थे उनको जो है गैलेंट्री अवार्ड्स मिले थे। उसके पश्चात अगर हम थोड़ा वेस्ट में आते हैं तो कारगिल सेक्टर आता है। तो अगेन कारगिल सेक्टर वी ऑल नो के इट्स अ वेरी सेंसिटिव एंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर, ठीक है, हमारे लिए भी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उसमें सबसे हमारे लिए सबसे जरूरी है कि पूरा लद्दाख जो है उसी रोड से जुड़ता है जो कि श्रीनगर से ले जाती है
3: जी।
4: और उसको डोमिनेट जो है कुछ पोस्ट करती थी पाकिस्तान की, तो इसको सेक्टर को उस समय भी 1-to-1 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ग्रुप जो है इसके डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था।
3: अच्छा।
4: और ब्रिगेडियर एम एल विग जो थे वो इसको कमांड कर रहे थे, ठीक है। तो इस सेक्टर में ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च किए

0: हट गए वो
1: बिल्कुल
0: जी।
1: इसके लिए जो ब्रिगेड कमांडर साहब थे तो उनको जो है महावीर चक्र से
0: सम्मानित
1: किया गया था एंड वेरी राइटली ही डिजर्व्ड दिस ऑनर
0: जी बिल्कुल
1: फॉर हिज आउटस्टैंडिंग लीडरशिप एंड ब्रेवरी। ठीक है एंड और भी जो ऑफिसर्स जो थे जिस और जवान लड़े थे भाभी से उनको भी अवार्ड्स मिले थे जो है
0: जी।
1: इसी तरह से और हम वेस्ट में आते हैं तो श्रीनगर वैली उरी सेक्टर में जो है वी वर डिप्लॉयड इन डिफेंसिव रोल। ठीक है यहाँ पे भी ऑफेंसिव ऑपरेशंस लॉन्च करके जो है डिफेंसिव पोस्चर्स को इम्प्रूव करा गया था एंड पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर जो है कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली जो है प्रेशर बनाए रखा था। सबसे ज्यादा जो मेजर ऑफेंसिव पाकिस्तान ने लॉन्च किया था वो पुंछ सेक्टर में 3 दिसंबर को किया था जिसमें कि उन्होंने हमारी लोकेशन थी थानपीर और मंडी हाइट्स उस पर कब्जा किया था। लेकिन इंडियन आर्मी ने जो है उसके ऊपर जो है काउंटर ऑफेंसिव करके वो दोबारा कैप्चर कर ली थी एंड उसके बाद जो है पुंछ में
0: जी
1: उनका जो है अटैक नहीं आया था, फिजल आउट हो गया था, खत्म हो गया था। फिर पाकिस्तान का और सबसे जो है फियर्स अटैक आया था वो था छम सेक्टर जहाँ पे कि दे सक्सीडेड कैप्चरिंग मंडियाला हाइट्स। ठीक है और उसके बाद फिर से जो है पाकिस्तान लॉन्च मेजर अटैक एंड कैप्चर छम और इस सफलता के बाद पाकिस्तान ने जो है मुनव्वर तवी रिवर के अक्रॉस जो है ऑपरेशन लॉन्च करा था। यहाँ पे जो इंडियन आर्मी ने उनको जो है काफी फियर्स फाइट दिया था एंड जो इसमें जो है पाकिस्तान के काफी सारे टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए थे एंड जिससे कि पाकिस्तान जो फोर्सेस है उनको पीछे हटना।
0: यानी सर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के इलाके में यदि हम देखें तो लगभग सारे क्षेत्र में भारतीय सेना युद्ध में हावी रही थी और लगभग उसकी विजय थी
1: आप कह सकते हैं
0: जी,
1: क्योंकि हमने जो ऑपरेशंस वहां करे थे उसमें क्लियर कट जो है कारगिल सेक्टर प्रतापपुर सेक्टर में हमें जो है विजय हासिल हुई थी
0: जी।
1: ऑफ कोर्स जैसे अभी हमने जिक्र किया कि छम सेक्टर में वी लॉस्ट टेरिटरी एंड इसके अलावा भी श्रीनगर में जो उरी सेक्टर था ठीक है उसमें इट इज नॉट दैट कि वी लॉस्ट एनीथिंग बट एट द सेम टाइम वी आर नॉट मेड मेजर सक्सेस। तो ये एक तरह से इस तरह का ऑपरेशन वहां पे चला था जो है। मेजर जो लड़ाई हुई थी उसके बाद वो थी शकरगढ़ बल्ज पंजाब में
0: जी। तो सर मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी कि ये शकरगढ़ बल्ज कहाँ है और ये बल्ज क्या होता है।
1: देखिए बल्ज का मतलब होता है कि जमीन जो है वो एक तरह से हमारी तरफ अंदर से उठी हुई, जैसे आपने गुब्बारे में अगर हवा भरी होती है तो किस तरह से फूलता है
0: जी।
1: उसी तरह से जमीन का जो हिस्सा है जो एक तरह से पाकिस्तान का हिस्सा है जो हमारे अंदर आया हुआ है।
0: अच्छा अच्छा
1: जिसमें कि मतलब इनफैक्ट अगर आप देखें जैसे अगर एक गुब्बारा है उसके मतलब गुब्बारे के जो पूरी बॉर्डरी है
0: जी जी जी
1: उसपे इंडियन फोर्सेस लगी हुई हैं और अंदर जो एरिया है वो पाकिस्तान का है।
0: अच्छा जी जी
1: उसको हम बल्ज बोलते हैं,
0: मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो हमारे देश के क्षेत्र में अंदर तक आया
1: हुआ है
0: जी
1: और ये गोल शेप में
0: जी
1: है तो उसको हम बल्ज कहते हैं।
0: ओके
1: तो ये शकरगढ़ बल्ज का जो एरिया है ये चिनाब और रावी रिवर के बीच में पड़ता है।
0: अच्छा अच्छा
1: और इसका जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ये है कि इससे जो है हमारी जो मेन कम्युनिकेशन लाइन है जो जम्मू से जुड़ती है
0: जी,
1: जो रोड है वो इसके पास से गुजरती है।
0: अच्छा
1: तो पाकिस्तान के लिए बहुत आसान है कि वहां से अपने फोर्सेस लाके अटैक करके सांबा के पास हमारा जो रोड कम्युनिकेशन है उस पर कब्जा कर। तो अगर वो ऐसा कर पाने में सफल होता तो उससे जम्मू सेक्टर एंड नदन सेक्टर को वो पूरा काट सकते थे जिससे कि हमारे लिए काफी मुश्किल खड़ी हो सकती थी। तो ये एक्सपेक्टेड था एक तरह से कि पाकिस्तान वहां पे अपना ऑपरेशन ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च करेगा
0: जी।
1: उसके कारण जो है हमारी जो इंडियन आर्मी थी वो भी इस एरिया में काफी सजग थी,
0: पूर्व तैयारी में थी जी।
1: काफी सजग थी एंड एक तरह से जो है इंटेलिजेंस अवेलेबल भी यही थी जैसे अभी मैंने कहा कि पाकिस्तान ने अपना आर्मर डिवीजन और एक इन्फेंट्री डिवीजन ऑफेंसिव लॉन्च करने के लिए इस सेक्टर में डिप्लॉय करा हुआ है और पाकिस्तान ने जो बल्ज है इसकी जो डिफेंसेस भी बहुत स्ट्रांग बनाई हुई थी क्योंकि उसको भी एक खतरा है कि अगर हम चारों तरफ हैं तो हम भी अंदर आ सकते हैं और या उसको कट कर सकते हैं और उन्होंने काफी एक्सटेंसिव माइनफील्ड्स उसमें वहां पे लगा रखी थी ताकि किसी तरह से भी उनको टेरिटरी लॉस ना हो, मतलब पराजय का सामना ना करना पड़े। लेकिन इस इलाके में जो है पाकिस्तान ने ऑपरेशन नहीं लॉन्च किया
0: अच्छा,
1: इन स्पाइट ऑफ दिस कंफर्मेशन की उनकी फोर्सेस थी, उन्होंने ऑफेंसिव नहीं लॉन्च किया, इंडियन आर्मी लॉन्च दिस ऑफेंसिव।
0: अच्छा, यानी पहले मौका भारतीय सेना को मिल गया।
1: हाँ,
0: ले लिया भारतीय सेना ने।
1: तो 5 दिसंबर को जो हमारी वन कोर थी उसके साथ जो है इंडियन आर्मी लॉन्च ऑफेंसिव विद द एम ऑफ कैप्चरिंग शकरगढ़ बल्ज, मतलब इस बल्ज को कैप्चर करने के लिए लॉन्च किया था। और इस ऑफेंसिव में अगेन जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, अब की एक जैसे अब हम बात कर रहे हैं बल्ज पर अगर अटैक किया है तो इसमें अलग अलग डिविजन्स को टास्क दिए गए थे, तो उसमें जो है अलग अलग जो यूनिट डिविजन के अंदर ब्रिगेड्स थे उनके टास्क थे, फिर यूनिट्स के टास्क थे, तो बहुत सारी बैटल्स मतलब जो है लड़ी गई थी।
0: अच्छा।
1: एक ही टाइम पे जो है कई जगह पे जो है बैटल्स लड़ाई चल रही थी। इसमें जो एक बैटल लड़ी गई थी जिसको बैटल ऑफ बसंतर के नाम से जाना जाता है,
0: बेहद मशहूर है सर,
1: बेहद मशहूर है
0: जी।
1: एंड दिस वाज वन ऑफ द फियर्सेस्ट बैटल ऑफ 71 वॉर, मतलब सबसे ज्यादा जो है आप ये देखिए इस बैटल के अंदर दो परमवीर चक्र जो को सम्मानित किया गया था ऑफिसर्स को, तो मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि कितना मतलब जो है फियर्स बैटल रहा था।
0: सर इस सिलसिले को हम तो जारी रखना चाहते हैं लेकिन समय अभाव है और आज के एपिसोड का यहीं पर समय जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो यदि बसंतर की इस लड़ाई को हम अगले एपिसोड में यदि आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए और हम भी सुनने के लिए बेताब रहेंगे अगले हफ्ते के लिए। सर
1: ज़रूर पूर्वा जी, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे
0: जी सर
1: अगले एपिसोड में।
0: जी बिल्कुल सर, और हम भी इंतज़ार करेंगे इस बैटल को सुनने के लिए क्योंकि ये एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही बहादुरी से भरी हुई एक जंग है।
1: जी बिल्कुल सही कहा
0: जी सर। तो श्रोताओं, सन 1971 में भारत ने केवल युद्ध ही नहीं जीता बल्कि इतिहास को बदल के रख दिया, इतिहास की दिशा बदल दी और इस युद्ध ने विश्व का भूगोल ही नहीं बदला बल्कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को भी बढ़ा दिया। और ये जंग जिसमें हम शकरगढ़ बल्ज तक पहुंच गए हैं इसे हम यूं ही जारी रखेंगे आगे भी और इसके लिए आपको इंतजार करना होगा अगले हफ्ते तक। थैंक यू सर, आज आप हमारे बीच आए और इतनी इंटरेस्टिंग जानकारी हमारे साथ शेयर की।
1: थैंक यू पूर्वा जी एंड थैंक यू श्रोताओं। जय हिंद।
0: तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना की अदिति गौड़ ने और ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का और मैं थी आपके साथ आपके अपनी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो दीजिए अनुमति अब इस कार्यक्रम से, नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।
3: गली में मारे फेरे पास आने को मेरे।
4: मैं हूं सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे शहीद भगत सिंह प्ले के संपादित अंश।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शहीद भगत सिंह नाटक के संपादित अंश।

0: जिसका मंचन हुआ 23 मार्च यानी शहीद दिवस के मौके पर। इस नाटक का निर्देशन किया सुंदरलाल मालवीय ने। यह प्रस्तुति रही माच शैली में। ये इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग है।
1: मित्रों, मैंने जयदेव जी की असेंबली का पास वायस राय की निगरानी रखाओ कही दियो है।
2: ठीक है
3: भगत, तुम असेंबली में बम फेंकवा के मत जाओ, आफत में पड़ी जाओ, और ये मैं नहीं चाहूंगा। अभी तुम्हारो भायर रहना जरूरी है।
2: सही बात है
1: आजाद जी, आप निश्चिंत रहो, मैं तो यो सब जनता के जगावा का वास्ते कर रही हूं।
3: तो ठीक है,
1: हमारी चिंता मत करो।
3: तो ठीक है, पन साथियों आप सब सुनी लो, आपके बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को ध्यान रखना।
4: आज 8 अप्रैल 1929 को दल ने अपने भगत सिंह, अपना साथी, उनका साथ असेंबली का माय
5: कार्यवाही शुरू की जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, पे अटेंशन।
6: इंकलाब जिंदाबाद।

0: हमारा सभी साथी लाहौर जेल में आजाद जी फरार है और हमारा जीवन तो मृत्यु साधना का सिद्धांत पर चली रही है और हम अपनो बयान या जेल में नहीं सीधो सेशन जज की अदालत का मायदागा इनकलाब
1: जिंदाबाद
0: वंदे
1: मातरम
0: साम्राज्यवाद
1: मुर्दाबाद।
2: 4 जून 1924 का दिन भगत सिंह जी की पेशी दिल्ली की अदालत में हुई। कार्यवाही शुरू की जाए।
0: जज साहब, कानून पे कानून तमलाव हो और हमारे घना डराव हो। फ्रांस रूस की क्रांति देखो, कोई भी नहीं दबाई पायो। आजादी को कारगो ऐसे ही आगे बढ़तो जाएगो और फांसी अगर न्याय तमारो तो फंदा कम पड़ जाएगा। दस साहब, हमारी बात सुनी के नौजवान में जोश खूब भराएगा। सच्चा वीर सपूत भारत माँ का देश पे बलि बलि जाएगा। इनकलाब
1: जिंदाबाद
0: वंदे
1: मातरम
0: साम्राज्यवाद
1: मुर्दाबाद।
2: देखियो, देखियो आपने भगत सिंह के बयान का सच। आखो देश भगत सिंह जी का साथ हुई गयो। बच्चों देश का ऊपर बलिदान करवा के लिए तैयार हुई। अबे 10 जून 1929 का दिन फैसला आवे।
3: ओ रामलाल जी।
4: अरे हाँ, कई बात है रामलाल।
3: राव थोड़ा इधर आओ जरा।
4: हाँ,
3: काम की बात है। हमारे मालूम है
4: कहीं
3: भगत सिंह ने बट्टू केशर दत्त को आजीवन कारावास की सजा भई है।
4: हाँ,
3: और ने भगत सिंह के मियाँ वाली जेल में ने बट्टू केशर दत्त के लाहौर जेल में भी सीखी है। और वहाँ पे भी उन्होंने इनके साथ साथ सारा कैदी उन भी सब भूख हड़ताल पे बैठी जा। भगत सिंह ने वहाँ कितना परेशान कर रखा।
4: तुम सही कह रहे हो, वहाँ लाहौर जेल में भी बट्टू केशर दत्त ने ऐसा ही माहौल बनाई रखे।
3: हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखा कर अपना।
4: तुम भी अपना ध्यान रखा करो।
3: ठीक
4: है, मिलते हैं फिर।
0: मैंने इंस्पेक्टर जनरल के पत्र लिखो कि हमारे यहाँ से लाहौर जेल भेजो जाए। और भी ने हमारी बात मानी ली है और अब मैं भी लाहौर जेल में आई हूँ।
2: दस जुलाई 1929 का दिन भगत सिंह जी के पेशी हुआ वाली थी, लेकिन बटू केशव दत्त और भगत सिंह की हालत ऐसी थी कि विद्रोही चले भी नहीं पाई गया था। जो सब सुनी के भारत की जनता का मन में अंग्रेज सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़तो जा रही थी। विद्रोही कदोई अदालत का माय हड़ताल पे बैठी गया। यो सब होने से अदालत की कार्रवाई में बाधा पहुंची। जब इनके पाछो जेल में पहुंची।
0: सरकार की परेशानी तो बढ़ती जा रही है, हमारा साथियों की हालत दिन पे दिन खराब हो रही है। सरकार तो चाह रही है कि हड़ताल खत्म हो जाए, पर यहाँ हड़ताल तो चली रही है। तो हमारो ध्यान अब अपना साथियों की जान बचाव में। ए सुनो जरा, हमारा साथियों के पानी की हो जाए।
5: ए सुनो।
4: जी सर।
5: भगत सिंह वान हड़तालियों को पानी की जगह दूध दिया जाए।
4: सब दूध के मटके इनके लिए पहले से ही भरवा के रख दिए।
5: दूध हम में से कोई भी इना दूध के हाथ भी नहीं लगाए दो,
6: हम पानी ही पियांगा। थोड़ी देर मटका के,
0: थोड़ी देर मटका उनके।
5: है बस है बस। सब इन हड़तालियों ने कैदियों ने तो सारे दूध का मटका फोड़ दिया इनने। अरे इन हड़तालियों को पानी ही देना पड़ेगा। अगर इनमें से किसी को कुछ हो गया तो उस पर क्या जवाब देंगे?
0: जी सर। साथियों, अगर हमारा मित्र यतीन्द्रनाथ जी की मृत्यु नहीं होती तो हम पानी के कभी हाथ भी नहीं लगाता और या हड़ताल भी कभी समाप्त नहीं करता।
7: भगत, तुमने इन अंग्रेजों की हकीकत जनता के सामने लाके रखी थी।
0: मारो जो मकसद हो मैं उनमें सफल हो तो जा रही हूं और हमारा मनोबल अब और बढ़ते जा रही है।

0: कि नौजवान मालूम है ये नौजवान जो है नौजवान ये अपराधी नहीं है, और ये तो क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी, हाँ क्रांतिकारी है,
1: क्रांतिकारी नहीं देशभक्त।
2: भगत सिंह जी की रणनीति से लाहौर षड्यंत्र रचियों ने पूरी अपना साथी उनका माय विन जोश भरी। 1 मई के लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई थी।
3: इनकलाब
4: जिंदाबाद,
3: वंदे
4: मातरम,
3: भगत सिंह, सुखदेव,
2: राजगुरु।
1: कार्यवाही शुरू की जाए।
3: देख साहब, देश की खातिर कौन बाजी लगाएगा और सुनियो कि महफिल में हमारा इम्तहान होएगा। ए खुदा उदन भी आएगो जदे हम कायम होवांगा, जदे अपनी जमीन और अपना आसमान होएगा। इनकलाब
4: जिंदाबाद,
3: वंदे
4: मातरम,
3: साम्राज्यवाद
4: मुर्दाबाद।

इनकी पिटाई देखी के आगा हैदर खान वहां से चलिया गया। तो फिर एक दिन फैसलो आयो कि सुखदेव राजगुरु ने भगत सिंह जी के जल्द से जल्द फांसी दे दी।

0: बेटा वाले।
1: हाँ पिताजी।
2: मैंने सुने थारे फांसी होवा वाली।
1: हाँ पिताजी, तमने सही सुनी, मारे फांसी होवा वाली है।
2: देशभक्ति है इतनी बड़ी, हम समझा मां ने बाप, मारो छोरो फांसी चढ़ी दी, सीना में चली दिया।
1: पिताजी म्हारी मौत जीवन से कीमती, सबके यो बतानो है, देश प्रेम की लो लगे ऐसो फर्ज निभानो है। तम मोह में मत पड़ जो, तमारो बेटो देश का वास्ते शहादत दई के देश की आजादी को रस्तो पक्को करनो चाहिए है।
2: ठीक है भगत, वंदे मातरम।
3: वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम।
3: वंदे मातरम।
4: बेटा महारा, यो कई होएगी?
1: माँ तू रोएगी तो लोग कहेगा कि वीर की मार रो रही है, भगत सिंह की मार रो रही है। तुम्हारी बात सुन माँ,

0: मिलेगा। मैं थारा जैसे वीर सपूत की माँ हूँ।
1: तू अपनो ध्यान रख जे माँ, बेन तू भी अपनो ध्यान रख जे।
2: ठीक है भैया। भैया तुम्हारो यो बलिदान आपको देश याद रखेगा। इंकलाब
3: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
3: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
3: जिंदाबाद।

धोनी के कौन टाली सके, वह तो अटल सत्य। समय सब गुंगो हुई के देखी हुई, लो फांसी को पैगाम है। आपके मालूम भगत सिंह की फांसी से अंग्रेज सरकार इतनी डरी गई कि उनके एक दिन पहला फांसी पे चढ़ावो को हुक्म मिला। आखो देश, आखो देश भगत सिंह के बचाव की प्रार्थना करती, माँ ऐसो भाई चाहिए, माँ ऐसो बेटो चाहिए, बहन ऐसो भाई चाहिए, सबकी आख्या नम, मारी भी नम।

0: ये था मार्च 6 शहीद भगत सिंह। इसे लिखा था श्री सुंदरलाल मालवीय और यशस्विनी निगम ने। परिकल्पना, निर्देशन और संगीत श्री सुंदरलाल मालवीय।
1: आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नाटक शहीद भगत सिंह के संपादित अंश। ये इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग था। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज आपने सुना शहीद भगत सिंह प्ले के संपादित अंश। ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।
3: मैं हूँ रंजीत सावरकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है। कर

1498 में जब वास्को डी गामा का छोटा बेड़ा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर आगे बढ़ा तो वे एक जुनूनी विजन से प्रेरित थे, ईसाई और मसालों की खोज। सदियों से यूरोप में पूर्व में एक खोए हुए ईसाई साम्राज्य की किंवदंतियां प्रचलित थी जिस पर पौराणिक प्रेस्टर जॉन का शासन था। जब पुर्तगाली मालाबार तट पर पहुंचे तो वे इस उम्मीद में इतने अंधे थे कि वे अपने सामने मौजूद सभ्यता की वास्तविकता को देख ही नहीं पाए। इन प्राचीन विश्वासियों के साथ पहली मुलाकात भारत में नहीं बल्कि अप्रैल 1498 में पूर्वी अफ्रीकी तट पर मालिंदी में हुई थी। वहां पुर्तगालियों की मुलाकात क्रगनोर के 4 जहाजों से हुई। उन पर ऐसे लोग सवार थे जिन्होंने खुद को मसीह का अनुयायी सेंट थॉमस ईसाई बताया। यह समुदाय अपनी जड़ों को प्रेरित थॉमस यानी एपोस्टल थॉमस से जोड़ता था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पहली शताब्दी में भारत आए थे और यहीं बस गए और संभवतः यही उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुर्तगालियों का शुरुआती अवलोकन घोर अज्ञानता से भरा था। जब वे कालीकट पहुंचे तो इतिहासकार एल्वारो वेल्हो को पक्का विश्वास था कि उन्होंने एक ईसाई शहर खोज लिया है। मूरो अर्थात मुसलमानों के खिलाफ एक ईसाई सहयोगी खोजने की बेताबी में पुर्तगालियों ने हिंदू मंदिरों को चर्च और स्थानीय धार्मिक रीति रिवाजों को ईसाई अनुष्ठान समझ लिया। जैसे जैसे पुर्तगालियों ने एस्टाडो द इंडिया की स्थापना की उन्हें समझ आया कि यह समुदाय उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। उन्होंने क्रगनोर और कोलम जैसे केंद्रों की पहचान की जो सेंट थॉमस ईसाइयों के गढ़ थे। ये समुदाय सदियों से अपने हिंदू और मुस्लिम पड़ोसियों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते थे। उनकी आस्था यूरोप के लैटिन संस्कार ईसाई धर्म से मौलिक रूप से भिन्न थी। इस खोज का दिलचस्प विरोधाभास तब सामने आया जब धार्मिक टकराव शुरू हुआ। पुर्तगाली इन खोए हुए ईसाइयों को खोजने के लिए महासागर पार कर आए थे, लेकिन उन्हें पाने के बाद उन्होंने उनकी आस्था को मान्य और धर्मसम्मत मानने से इनकार कर दिया। पुर्तगालियों की नजर में सेंट थॉमस ईसाई विधर्मी पूर्वी संस्कारों से दूषित थे। 16वीं शताब्दी के मध्य में जेसुइट्स के आगमन और काउंटर रिफॉर्मेशन की उग्र भावना के साथ पुर्तगाली दृष्टिकोण जिज्ञासा से बदलकर सुधार में बदल गया। 1560 तक इंक्विजिशन को गोवा लाया गया और पुर्तगालियों ने सेंट थॉमस ईसाइयों को जबरदस्ती रोम के अधिकार में लाने का प्रयास किया। वह प्राचीन समुदाय जो कभी पुर्तगालियों की यात्रा का औचित्य था अब उनके आध्यात्मिक अनुशासन का लक्ष्य बन गया। ये कहानी एक डरावना उदाहरण है कि कैसे साम्राज्यवादी आंखें वही ढूंढती है जो वे देखना चाहती है और फिर उसे केवल इसीलिए नष्ट कर देती है क्योंकि वे उनके घर से लाई गई छवि से मेल नहीं खाता।

0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम देश के संस्थान।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे डीआरडीओ के बारे में, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: चरण स्पर्श दादाजी।
2: अरे अरे अरे अरे बेटा, खुश रहो। क्या बात है, आज तो मेरी प्यारी रुचि बिटिया का जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा।
1: थैंक यू दादू।
2: तो बताओ, आज जन्मदिन पर क्या उपहार चाहिए
1: दादू? आज मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ।
2: अच्छा, मतलब ज्ञान वाला उपहार चाहिए? तो फिर जरूर पूछो बिटिया, क्या उपहार चाहिए
1: दादू? अब तक आप मुझे देश की सेनाओं के बारे में बता रहे थे कि कैसे भारतीय थल सेना, वायु सेना और दूसरी सेनाएं हमारे देश की रक्षा करती हैं। लेकिन अब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन सेनाओं के पास जो हथियार, मिसाइलें, रडार, टैंक और रक्षा उपकरण होते हैं, उन्हें कौन बनाता है और वो कौन कौन से संस्थान हैं जो देश की सुरक्षा के लिए नई तकनीक तैयार करते हैं?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। देखो बेटा, अक्सर लोग सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिकों को देखते हैं, लेकिन उनके पीछे हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ भी काम करते हैं, जो देश को मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं।
1: मतलब देश की रक्षा सिर्फ सैनिक ही नहीं, वैज्ञानिक भी करते हैं दादाजी?
2: हाँ बेटा बिल्कुल, सैनिक सीमा पर लड़ते हैं और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में।
1: सच में दादू?
2: हाँ बेटा।
1: क्या वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से भी युद्ध लड़े जाते हैं?
2: बिल्कुल। चलो बेटा, आज तुम्हारे जन्मदिन के लिए ये बेहतर उपहार होगा। हम चर्चा करेंगे देश के संस्थानों के बारे में नए सिरे से। चलो चर्चा शुरू करते हैं। अब से मैं तुम्हें देश के ऐसे ही महान संस्थानों की कहानी सुनाऊंगा बेटा, जहां देश की उन्नति के लिए दिन रात तकनीकों पर काम किया जाता है।
1: सच में दादू?
2: हाँ बेटा।
1: तो फिर शुरुआत किससे करेंगे?
2: शुरुआत करेंगे भारत के सबसे बड़े रक्षा अनुसंधान संस्थान से, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी कहते हैं, समझे बेटा? और शॉर्ट में बोलते हैं DRDO।
1: DRDO यानी वो संस्थान जहां देश के लिए मिसाइलें और आधुनिक तकनीक बनाई जाती है।
2: हाँ बिटिया, जहां विज्ञान देशभक्ति से मिलता है और जहां से निकलती है मिसाइलें, रडार, ड्रोन, युद्ध तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की ताकत।
1: दादू तो बताइए ना कि DRDO क्यों बना, ये कैसे काम करता है और कैसे भारतीय वैज्ञानिक देश को नई शक्ति दे रहे हैं, और DRDO में नौकरी पाना मुश्किल है या फिर आसान है?
2: आसान तो नहीं है बेटा, पर जिसने मेहनत की हो, लगन से पढ़ाई की हो, जिसके मन में देश सेवा का जज्बा हो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं।
1: दादू।
2: हाँ बेटा।
1: आपके एक दोस्त जो हमारे घर आया करते थे, वो मोहन अंकल, वो भी तो DRDO में वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने आपको जरूर बताया होगा कि वहाँ मिसाइलें कैसे बनती हैं।
2: तुम्हें खूब याद रहता है मेरा कौन दोस्त कब आया था?
1: हाँ दादाजी।
2: हाँ, DRDO सिर्फ मिसाइल नहीं बनाता, वो तो हमारे देश की रक्षा विज्ञान की रीढ़ है। ये संस्था वो जगह है जहां हमारे वैज्ञानिक रात दिन मेहनत करते हैं ताकि भारत आत्मनिर्भर बने और विश्व में मजबूती से खड़ा हो सके।
1: दादाजी, अब तो मुझे इसके बारे में डिटेल में बताइए, जैसे DRDO की स्थापना कब हुई थी और इसका इतिहास क्या है?
2: देखो बेटा, DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। असल में ये दो संस्थाओं के विलय से बना था, रक्षा विज्ञान संगठन, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन और तकनीकी विकास निदेशालय, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। और इसका उद्देश्य था भारत के सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करना, यानी हमारे सैनिकों को ऐसे हथियार, उपकरण और तकनीक देना जो पूरी तरह हमारे देश में बने हों।
1: मतलब अब हमें हथियारों और अन्य रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। दादाजी
2: बिल्कुल सही कहा बेटा, आज भारत के पास अपनी मिसाइलें हैं, अपने रडार सिस्टम हैं, यहाँ तक कि अपनी लड़ाकू तकनीकें भी हैं, और ये सब DRDO की देन है।
1: वैसे किस तरह की लड़ाकू तकनीक दादाजी?
2: आज DRDO ने देश को अग्नि, पृथ्वी, आकाश जैसी मिसाइलें दी हैं बेटा। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस बनाया है और सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर ड्रोन तक तैयार किए हैं। उनके वैज्ञानिक न केवल रक्षा में बल्कि अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा और मेडिकल तकनीक में भी योगदान दे रहे हैं।
1: वाह दादाजी, मतलब DRDO सिर्फ प्रयोगशाला नहीं बल्कि देश की रक्षा का मस्तिष्क है।
2: हाँ बेटा बिल्कुल सही कहा, DRDO वही है जो सीमा पर सैनिक की बंदूक में जान डालता है और आसमान में उड़ते विमान को भारतीय आत्मा बना देता है।
1: दादाजी अब मैं भी वैज्ञानिक ही बन जाऊं, ऐसा लग रहा है। मैं भी देश के लिए कुछ नया बनाऊंगी ताकि जब कोई कहे मेड इन इंडिया तो उसमें मेरा भी योगदान हो।
2: शाबाश मेरी बच्ची, यही तो असली देशभक्ति है। सिर्फ तिरंगा लहराना नहीं बल्कि अपने ज्ञान, अपनी मेहनत से उसे ऊंचा उठाना भी देशभक्ति है।
1: दादू एक सवाल है कि क्या DRDO एक बहुत बड़ी संस्था है?
2: बहुत विशाल बेटा, बहुत विशाल संस्था। DRDO का लगभग 41 प्रयोगशालाओं और 5 DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं DYSLS का अपना नेटवर्क है, या कहें कि एक संगठन है जिसमें हजारों वैज्ञानिक, तकनीकी और सहायक कर्मचारी देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कई अलग अलग विषयों को कवर करने वाली रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में काम कर रहे हैं।
1: 5,000 मिसाइलें शामिल हैं दादू?
2: हाँ बेटा, पृथ्वी मिसाइल, त्रिशूल, नाग, आकाश, अलग अलग वर्ग की मिसाइलें इसमें शामिल हैं। DRDO के द्वारा ही विकसित तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान LCA भी हमेशा खूब चर्चा में रहता है। रुस्तम, निशांत, इन जैसे UAVs यानी ड्रोन्स बनाने में DRDO का अहम योगदान है। अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश, ये सभी मिसाइलें तो अभेद मिसाइलें हैं बेटा, जिनको बनाने की उपलब्धियां DRDO ने काफी पहले ही हासिल कर ली थी। अग्नि 5 की रेंज 5,000 किलोमीटर है बेटा, 5,000 किलोमीटर।
1: अच्छा दादाजी, ये तो मिसाइलों का पूरा भंडार है।
2: हाँ बेटा, पूरा भंडार। दरअसल संस्था का विजन है कि देश को अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के साथ सशक्त बनाना है।
1: अच्छा दादू, क्या ये सब DRDO अकेले करता है?
2: नहीं बेटा, DRDO ये सब अकेले नहीं करता। इसे हाल इसरो, BEL और कई निजी कंपनियों से सहयोग मिलता है। आजकल DRDO और प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप तेजी से बढ़ रही है। इससे न केवल नई तकनीकें तेजी से बनती हैं, बल्कि युवाओं के लिए करियर के मौके भी बढ़ते हैं।
1: अच्छा, तो क्या DRDO ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का डिजाइन भी खुद तैयार किया था?
2: हाँ बेटा, साथ ही UVS जैसे रुस्तम, निशांत का निर्माण DRDO ने किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आधारित आधुनिक युद्ध प्रणालियों के लिए AI आधारित निगरानी और लक्ष्य पहचान, क्वांटम संचार, एनक्रिप्शन और साइबर सुरक्षा पर शोध, ये सब DRDO की उपलब्धियां हैं।
1: मतलब विज्ञान सिर्फ नई खोजों के लिए ही नहीं, सुरक्षा के लिए भी होता है दादाजी।
2: बिल्कुल सही बेटा। मोहन जी से चर्चा चल रही थी तब उन्होंने बताया,
1: अच्छा,
2: कि आजकल के युवा वैज्ञानिक हमसे भी एक कदम आगे हैं।
1: वो कैसे भला?
2: देखो बेटा, अब AI आधारित सर्विलांस सिस्टम यानी आर्टिफिशियल सर्विलांस से दुश्मन की पहचान ऑटोनोमस ड्रोन्स यानी बिना इंसान के उड़ने वाले ड्रोन्स और बैटलफील्ड रोबोट्स यानी खुद ही ऑपरेशन करने वाले रोबोट्स पर काम कर रहे हैं। देखना, तुम भविष्य का भारत आज के भारत से 100 गुना ज्यादा ताकतवर पाओगी बेटा।
1: बिल्कुल होगा दादाजी, हमारे वैज्ञानिक दिन रात इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, इसका मतलब DRDO का काम सिर्फ एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा।
2: हाँ बेटा बिल्कुल, इसमें कई क्षेत्र आते हैं, जैसे वैमानिकी, एरोनॉटिक्स, आयुध वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स लड़ाकू वाहन, कॉम्बैक्ट व्हीकल, इंजीनियरिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटरिंग और सिमुलेशन, नौसेना प्रणाली, जीवन विज्ञान, प्रशिक्षण, सूचना प्रणाली और यहाँ तक कि कृषि भी।
1: हे भगवान, ये तो काफी लंबी सूची है दादू। मुझे तो लगा था ये कोई एक सब्जेक्ट वाला ऑर्गेनाइजेशन होगा और DRDO बस मिसाइल बनाता होगा, पर ये तो अपने आप में कई संस्थाओं का अच्छा खासा एक संगठन है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का महासागर है दादू।
2: बिल्कुल बेटा, DRDO का विजन है कि भारत को एक ऐसी अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकें देना जो हमारी सुरक्षा को मजबूत करे, और यही आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत है।
1: तो क्या इस संस्था का विजन बेहतर हथियार बनाना है?
2: नहीं, सिर्फ हथियार बनाना नहीं, बल्कि DRDO वैज्ञानिक अनुसंधान और रक्षा तकनीकी विकास के कई क्षेत्रों में कार्य करता है। इस संस्था का विजन है देश को अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के साथ सशक्त बनाना।
1: ओ, तो DRDO भारत को आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनाने की दिशा में अग्रसर है।
2: हाँ बेटा, और ये न केवल भारत की सैन्य जरूरतों को पूरा करता है बल्कि निर्यात क्षमता भी बढ़ा रहा है। DRDO की तकनीकों का उपयोग नागरिक क्षेत्र जैसे कृषि, मेडिसिन में भी किया जा रहा है।
1: दादाजी, हमारे पास तो पहले से ही कई अत्याधुनिक रक्षा उपकरण है, तो और हथियारों के निर्माण की जरूरत भला क्यों है? वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था कि विज्ञान से शांति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, युद्ध को नहीं।
2: हाँ बेटा, देश को मजबूत रखना ही असली शांति है बेटा। अगर हमारे पास तकनीक और हथियार ना हो तो दुश्मन हमारी शांति छीन सकता है। वैसे भी हमारे शास्त्र कहते हैं बलस्य मूलम विज्ञान, मतलब शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो शांति और युद्ध दोनों में राष्ट्र को संचालित करता है। इसलिए DRDO ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में राष्ट्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़ संकल्प किया है, खासकर सैन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में बेटा।
1: दादाजी, DRDO की और क्या क्या उपलब्धियां हैं? उसके सबसे ताकतवर हथियार कौन कौन से हैं? जरा ये भी बताइए।
2: बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, शाबाश। देखो बेटा, DRDO रोज विकास की नई उड़ान भर रहा है। अब इसने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। क्या तुम यकीन करोगे कि इसकी कुछ खास मिसाइलें दुनिया भर में अब अपनी धाक जमा चुकी हैं, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बेटा। इनके पास अग्नि मिसाइलों की एक पूरी श्रृंखला है जिसमें अग्नि 5 की रेंज करीब 5000 किलोमीटर है। ये भारत की स्ट्रेटेजिक क्षमता है।
1: बिल्कुल होगा दादाजी, हमारे वैज्ञानिक दिन रात इतनी मेहनत जो कर रहे हैं। दादाजी, क्या और भी तकनीकें हैं इस तरह की?
2: हाँ बेटा, क्वांटम कम्युनिकेशन लैब यानी हैकिंग प्रूफ संचार व्यवस्था, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी लेजर और गामा रे बेस्ट हथियार देश के पास होंगे। आने वाली भविष्य की कुछ बेहतरीन तकनीकें हैं बेटा जो भारतीय रक्षा प्रणालियों को और मजबूत बनाएगी।
1: दादाजी, ये सब सुनने में तो बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म के जैसा लग रहा है।
2: हमारे पास मालवेयर डिफेंस, साइबर शील्डिंग और जीरो डे वल्नरेबिलिटी डिक्शन, इन जैसी तकनीकें विकसित हैं। ये सब सुनने में भले ही फिल्मों जैसे लगे बेटा, लेकिन मजे की बात ये है कि ये सब फिल्मों में नहीं बल्कि हम ये सब असली दुनिया में करने की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं।
1: मैं समझी नहीं दादाजी।
2: रुचि बेटा, DRDO सिर्फ हथियार नहीं बना रहा है, ये तो बायो डिफेंस जैसे CBRN, सुटस, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर और बायो डिटेक्शन किट्स भी बनाता है। कोविड महामारी के वक्त में इनकी टेक्नोलॉजी लाखों जिंदगियां बचाने में काफी मददगार साबित हुई थी बेटा। साइबर लैब जैसी विकसित तकनीकों की मदद से देश की सुरक्षा डिजिटल सीमाओं के माध्यम से की जा रही है।
1: यानी डीआरडीओ का मिशन है जमीन, हवा, समुद्र, अंतरिक्ष की सुरक्षा और साथ ही साइबर रक्षा। और सुरक्षा डोमेन में अत्याधुनिक सेंसर, हथियार प्रणालियों, प्लेटफॉर्म और इससे जुड़े उपकरणों के डिजाइन बनाना और इनका विकास करना, साथ ही साथ स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अनुसंधान, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, औषधियाँ, जैविक रक्षा के लिए खोज और अनुसंधान करना। सही समझा ना मैंने दादाजी?
2: शाबाश बेटा, बिल्कुल सही समझा। डीआरडीओ को हर तकनीक का परीक्षण, टेस्टिंग करना पड़ता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में थार रेगिस्तान से लेकर अंडमान तक, रेत, पहाड़, समंदर, हर जगह परिस्थिति, मौसम और तापमान के आधार पर किसी भी परीक्षण में हजारों चुनौतियां होती हैं बेटा। इसके अलावा रिसोर्सेज की लिमिटेशन कई बार लक्ष्य तक पहुंचने में अड़चने पैदा करती है।
1: दादाजी, फिर तो कभी कभी ये मिशन फेल भी होते होंगे?
2: हाँ बेटा, कई बार ये परीक्षण फेल हो जाते हैं। कई बार विदेशी तकनीक पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, लेकिन वैज्ञानिक हार नहीं मानते। आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ने नया जोश भर दिया है। भारत अब खुद के हथियार बना रहा है और दुनिया को भी बेच रहा है। ये डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की मेहनत का फल है बेटा। डीआरडीओ हर युवा के भविष्य का सपना है।
1: वाओ। अच्छा दादाजी, ये बताइए, क्या डीआरडीओ में सिर्फ इंजीनियर ही जा सकते है?
2: नहीं बेटा, डीआरडीओ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, साइकोलॉजी, लाइफ साइंसेज, इन सभी कई शाखाओं के लोग काम करते हैं। यहाँ तक कि डीआरडीओ में कानूनी विशेषज्ञ, एचआर, प्रशासनिक अफसर, अकाउंट्स आदि की भी जरूरत होती है बेटा।
1: अच्छा, तो क्या मैं डीआरडीओ ज्वाइन कर सकती हूँ?
2: बिल्कुल कर सकते हो। अगर तुम्हें विज्ञान से प्यार है तो डीआरडीओ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है बिटिया। और अभी तो डीआरडीओ ने और भी कई कई नई सारी पहल की हुई हैं, जिनमें टेक ड्राइव, यंग साइंटिस्ट लैब्स, आईडेक्स, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस शामिल है, जहां तुम जैसे छात्र छात्राएं न सिर्फ सीख सकते हैं बल्कि नए आइडिया पर काम भी कर सकते हैं।
1: पर दादाजी, जब कोई डीआरडीओ में सिलेक्ट हो जाता है तो उसे ट्रेनिंग कहाँ से और कैसे दी जाती है?
2: डीआरडीओ में प्रशिक्षण भी एकदम वैज्ञानिक तरीके से होता है। जैसे ही कोई युवा वैज्ञानिक साइंटिस्ट बी के रूप में नियुक्त होता है, उसे सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ट्रेनिंग एकेडमी में भेज दिया जाता है। डीआरडीओ हेडक्वार्टर दिल्ली में प्रारंभिक ट्रेनिंग दी जाती है बेटा। ये ट्रेनिंग करीब 4 से 8 हफ्तों की होती है, जिसमें उन्हें रक्षा विज्ञान, संगठन की नीतियां, प्रशासनिक प्रक्रिया, साइबर सुरक्षा और कार्यशाला प्रशिक्षण दिया जाता है।
1: यानी सीधा मिसाइल नहीं, पहले तैयारी।
2: हाँ बेटा, सीधा मिसाइल पे ही थोड़ी आ जाएंगे अपन। हाँ, इसके बाद उन्हें उनकी संबंधित प्रयोगशाला में भेजा जाता है बेटा, जहाँ ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। मसलन मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए DRDL और RCL हैदराबाद, कंप्यूटर साइंस और AI के लिए CIR या DYALAI बेंगलुरु, बायो डिफेंस के लिए INMS दिल्ली या DIPAS के अलावा कुछ वैज्ञानिकों को IITS, IISC, इसरो या विदेश तक भेजा जाता है MTech या PhD करने के लिए।
1: अच्छा दादाजी, भारत में DRDO की प्रमुख लैब्स कहाँ कहाँ पर है?
2: देखो बेटा, DRDO की प्रयोगशालाएं पूरे भारत में फैली हुई हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, जैसे कुछ प्रमुख राज्य, तेलंगाना के हैदराबाद में DRDL, RCI, ASL में मिसाइल एवियोनिक्स की लैब है। कर्नाटक के बेंगलोर में ADA, ADE, CAIR, LRDE में विमानन इलेक्ट्रॉनिक्स AI की।
1: अच्छा, तो इस तरह दिल्ली, मुंबई में और अन्य शहरों में भी तो होंगी?
2: हाँ बेटा, इसी तरह दिल्ली NCR के DRDO हेडक्वार्टर INMS दिल्ली या DIPAS में जीवन विज्ञान बायो डिफेंस की लैब है। वहीं तमिलनाडु चेन्नई के CVRDE में लड़ाकू वाहन और सैन्य इंजीनियरिंग की लैब है बेटा।

0: मतलब DRDO का नेटवर्क पूरे भारत में है दादाजी?
1: बिल्कुल बेटा, और यही इसकी ताकत है। देश के हर कोने में रक्षा विज्ञान की मशाल जल रही है। रुचि बेटा, हमेशा याद रखना, ज्ञान ही शक्ति है और विज्ञान ही रक्षा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान शक्ति का आधार है और तुम कभी भी इन दोनों में से एक विकल्प लेकर अपना जीवन नहीं चला सकते। तुम्हें हमेशा जीवन में ज्ञान और शक्ति का तालमेल बैठा कर ही चलना होगा।
0: अच्छा दादाजी, DRDO में भर्ती कैसे होती है और इसमें भर्ती के लिए कौन कौन सी परीक्षाएं देनी पड़ती है?
1: DRDO में भर्ती के लिए बेटा RAS रिक्रूटमेंट असिस्मेंट सेंटर, यहाँ साइंटिस्ट बी के लिए परीक्षा और इंटरव्यू होता है। इसके लिए गेट स्कोर बहुत जरूरी होता है। आमतौर पर इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी के छात्र इसमें शामिल होते हैं। सेप्टेम, सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, इसके माध्यम से टेक्नीशियन, एडमिन, स्टेनो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए परीक्षा ली जाती है। और इसमें ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर दोनों के लिए बराबर मौके होते हैं। और तीसरा है बेटा इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स के लिए DRDO, IIT नीट और कई कॉलेजों से इंटर्न भी लेता है। इसमें कई छात्र एमटेक या PhD के लिए DRDO के लैब्स में प्रोजेक्ट करते हैं।
0: दादाजी बहुत कठिन डगर है पनगट की।
1: हाँ तो बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाता है। देखो बेटा, तुम्हें या तुम्हारे किसी परिचित को DRDO ज्वाइन करना हो तो ये ध्यान रखना कि तुम्हें गेट की तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा।
0: तो इंजीनियरिंग ही नहीं, ग्रेजुएट भी DRDO में जा सकते हैं दादाजी?
1: बिल्कुल बेटा, DRDO सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, पूरा सिस्टम है।
0: यहाँ इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स किस तरह से करवाए जाते हैं?
1: DRDO में एमटेक PhD के लिए इंटर्नशिप के भी मौके होते हैं बेटा। IIT नीट और बड़ी यूनिवर्सिटी के छात्र वहाँ प्रोजेक्ट करते हैं।
0: दादाजी क्या मैं कॉलेज के दौरान भी DRDO में इंटर्न कर सकती हूँ?
1: क्यों नहीं बेटा, DRDO के दरवाजे मेहनती छात्रों के लिए हमेशा खुले हुए हैं।
0: दादाजी क्या लड़कियाँ भी मिसाइल बना सकती हैं?
1: बिल्कुल, महिलाएं आज DRDO की ताकत हैं।
0: दादू क्या आप महिला वैज्ञानिकों की कहानियाँ सुनाएंगे?
1: बिल्कुल। देखो बेटा, एक महिला वैज्ञानिक थी डॉक्टर टेसी थॉमस, जिन्हें लोग मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। Agni-4 और Agni-5 प्रोजेक्ट के निदेशक डॉक्टर टेसी थॉमस पहली भारतीय महिला हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम लीड कर चुकी हैं।
0: अच्छा।
1: डॉक्टर गगनदीप कंग, जिनका बायो डिफेंस और मेडिकल रिसर्च में अहम योगदान रहा है। डॉक्टर शांति रामास्वामी, जो DRDO में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स की विशेषज्ञ। तो बेटा, लड़कियां न सिर्फ मिसाइल बना रही हैं बल्कि उन्हें दिशा भी दे रही हैं।
0: वाह दादाजी, फिर तो मैं भी मिसाइल साइंटिस्ट बनूंगी।
1: बिल्कुल बेटा, भारतीय वैज्ञानिकों इंजीनियरों की मेहनत का नतीजा है कि आज भारत ताकतवर और आत्मनिर्भर है।
0: दादाजी और कोविड में DRDO ने जो काम किया उसके बारे में भी बताइए ना। सब कहते हैं कि उन्होंने बहुत कम समय में चमत्कार कर दिया था।
1: हाँ बेटा, वो समय था जब पूरी दुनिया जैसे थम गई थी, पर हमारे DRDO के वैज्ञानिक दिन रात प्रयोगशालाओं में जुटे रहे। बहुत कम वक्त में उन्होंने डॉक्स वेंटिलेटर बनाया ताकि हर अस्पताल को मदद मिल सके। UV सैनिटेशन टनल्स बनाए ताकि सामान संक्रमण मुक्त रहे।
0: PPE किट्स, फेस शील्ड्स और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स भी इन्होंने ही डिजाइन किए थे।
1: हाँ बेटा, ताकि हमारे डॉक्टर और नर्स सुरक्षित रहें। याद रखो बेटा, DRDO सिर्फ हथियार नहीं बनाता, वो जीवन रक्षक तकनीक भी लाता है।
0: वाह दादाजी, DRDO के वैज्ञानिक तो असली योद्धा हैं। इनकी हर लैब, हर प्रयोग, हर शोध भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: हाँ बेटा, DRDO का सपना है कि भारत रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बने। हम अपने सैनिकों को दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक दें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम में दुनिया से मुकाबला करें, और सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं बल्कि अपनी तकनीकें दुनिया को निर्यात करें। यही है आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना।
0: दादाजी अब तो मैं पक्का तय कर चुकी हूँ, मैं वक्त आने पर डीआरडीओ में वैज्ञानिक बनूंगी।

0: शाबाश मेरी बिटिया, यही तो चाहिए देश को, युवा और विज्ञान की संगत। पर एक मुश्किल है इसमें।
1: वो क्या दादाजी?
0: अगर तुम्हें कल कोई नया टॉपिक ना मिला तो तुम जरूर डीआरडीओ ज्वाइन कर लोगी। है ना? याद रखना बेटा, देश की सेवा सिर्फ सीमा पर खड़े होकर नहीं होती, कभी कलम से, कभी प्रयोग से, कभी विचार से भी देश की रक्षा होती है। हर युवा अगर अपने क्षेत्र में ईमानदारी और समर्पण से काम करे तो वही असली डिफेंस है, अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने मान की रक्षा करना।
1: जय हिंद दादाजी।
0: जय हिंद प्यारी बच्ची, जय हिंद और जय विज्ञान, जो हर राष्ट्र को सशक्त बनाता है।
2: तो श्रोताओं, ये था आज का रेडियो नाटक देश के संस्थान, जिसमें आज हम बात कर रहे थे DRDO यानी विज्ञान से सुरक्षित भारत की। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का। आपके साथ हम थे आपके रेडियो सेट पर, मैं भगवती सक्सेना
0: और मैं दीपक नेमा।
2: लेखन किया स्वाति गिरी ने। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश के संस्थान। ये रेडियो आजाद हिंद है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण दीप्ति के साथ। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम याद करो कुर्बानी।
2: याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी।
3: दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर की। लंदन के विक्टोरिया रेलवे स्टेशन पर 13 मार्च 1910 को सशस्त्र पुलिस किसी भयंकर अपराधी को पकड़ने के लिए सनत खड़ी थी। प्लेटफॉर्म को चारों ओर से घेर रखा गया था। स्टेशन के बाहर भी पुलिस के बंदूकधारी जवान तैनात थे और उन्हें आदेश था कि यदि अपराधी चंगुल से निकल भागने का प्रयत्न करे तो उसे गोली मार दी जाए। स्टेशन के अंदर के मैदान की रेल लाइनों पर भी सशस्त्र पुलिस के जवानों का पहरा था। वे रेलगाड़ी आने की अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। पुलिस के अधिकारियों को यह भय था कि अपराधी कहीं सबको चकमा देकर निकल न जाए। वह उसे बहुत चालाक और भयंकर अपराधी मानते थे। रेलगाड़ी विक्टोरिया स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। अपराधी को पहचानने वाले व्यक्तियों की आंखें हर डिब्बे पर पड़ने लगी। वह आंखें एक भारतीय नौजवान को खोज रही थी जिसने लंदन में तहलका मचा रखा था और जो कुछ दिन फ्रांस में रहकर इंग्लैंड लौट रहा था। तीसरे दर्जे के एक डब्बे से एक तेजस्वी भारतीय युवक के उतरते ही कई आंखें एक साथ उस पर पड़ी और कई पैर एक साथ उसकी ओर पड़े। कई हाथों ने एक साथ लपक कर उसे दबोच लिया और तत्काल उसे हथकड़ियां पहना दी गई। यह युवक कहता ही रह गया कि गिरफ्तार करने का आदेश पत्र तो दिखाओ, पर ना तो किसी को उसकी बात सुनने का धैर्य था और ना आदेश पत्र दिखाने का नैतिक बल। जिस डिब्बे में युवक ने यात्रा की थी उस डिब्बे में भी नागरिक वेश में पुलिस के लोग उसकी गतिविधियों पर दृष्टि रखे हुए थे। युवक को गिरफ्तार करके लंदन की ब्रिस्टल जेल में डाल दिया गया। अगले ही दिन संसार के सारे समाचार पत्रों के पृष्ठ भारत के महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर की गिरफ्तारी के समाचारों से रंग गए। इस वीर को पकड़ने के लिए भारत की गोरी पुलिस लंदन पहुंची थी। भारत की पुलिस तथा इंग्लैंड की पुलिस ने मिलकर वीर सावरकर को गिरफ्तार करके गर्व का अनुभव किया और चैन की सांस ली। लंदन की एक अदालत में ही सावरकर का मुकदमा प्रस्तुत किया गया। ज्यों ही वीर ने न्यायालय में प्रवेश किया सारा न्यायालय तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसके प्रोत्साहन के लिए सैकड़ों भारतीय नवयुवक न्यायालय में पहले से ही उपस्थित हो गए थे। क्रांतिकारी वीर सावरकर को न्यायालय ने क्या आदेश दिए ये हम बताएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

न्यायालय ने निर्देश दिया कि अभियुक्त को भारत भेजा जाए। उसे भारत भेजने का अर्थ था अजन्म कारावास अथवा फांसी का दंड। वह वीर अपने भविष्य की ओर से निश्चित हो गया। वह समझ गया कि या तो फांसी का फंदा गले में पड़ेगा या जीवन भर सीकचों के अंदर रहना पड़ेगा। वीर भूमि महाराष्ट्र के इस बेटे की स्मृति में छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास सजीव हो उठा। जब मुगल सम्राट औरंगजेब की जेल से युक्तिपूर्वक निकलकर उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की, युवक सावरकर ने भी अंग्रेजों के चंगुल से छूटने का संकल्प किया और भारत को स्वाधीन करने के सपने संजोए। उन दिनों समुद्री रास्ते से इंग्लैंड पहुंचने के लिए इंग्लिश खाड़ी पार करके फ्रांस पहुंचना होता था और वहां से रेलगाड़ी द्वारा इटली और इटली से जहाज द्वारा भारत पहुंचा जाता था। क्रांतिवीर सावरकर को मौर्य जलायान द्वारा इंग्लैंड से भारत लाया जा रहा था। गोरे सिपाहियों का बड़ा सख्त पहरा था। उसकी हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही थी। यहां तक कि जहाज के शौचालय में भी बड़ा शीशा लगा दिया गया था जिससे उसकी गतिविधियां दिखाई देती रहें। सावरकर को ले जाने वाला जलायान 8 जुलाई 1910 को फ्रांस के मर्सेलज बंदरगाह के निकट पहुंचा और वहां उसने लंगर डाला। उन दिनों प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा फ्रांस में थे। सावरकर ने अनुमान लगाया कि शायद श्यामजी ने उनकी मुक्ति की कोई योजना बनाई हो, पर तट पर कोई भी भारतीय दिखाई नहीं दिया। इसका कारण यह था कि सावरकर की यात्रा के समाचार गोपनीय रखे गए थे। किसी सहायक को न देखकर उस वीर ने स्वयं कुछ कर गुजरने का संकल्प ठान लिया। उनके इसी संकल्प के बारे में हम बात करेंगे इस छोटे से देशभक्ति गीत के बाद।

कुछ कर गुजरने का क्या संकल्प ठाना, ये हम आपको बताते हैं। दिन के 11 बजे जहाज बंदरगाह से चल दिया। कुछ समय पश्चात सावरकर ने शौच का बहाना करके शौचालय में प्रवेश किया। उसने अपना कोट उतारा और उसे दरवाजे पर डालकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उछलकर शौचालय की दीवार के छेद पर चढ़ गया। इधर पहरे के संतरियों ने जब देखा कि कैदी ने दरवाजे पर कोट डाल दिया है तो उन्होंने झांक कर अंदर देखा। उन्होंने सावरकर को पोर्ट होल पर चढ़ते देख लिया। एक सिपाही जोर से चिल्लाया, क्या करता है? पर उसकी अनसुनी करके सावरकर ने पोर्ट होल से समुद्र में छलांग लगा दी। सिपाही ने शौचालय का दरवाजा तोड़ दिया और चीख पुकार मचा दी। कई सिपाही और कर्मचारी डेक पर दौड़े और उन्होंने वहीं से क्रांतिवीर पर गोलियां दागना प्रारंभ कर दिया। वीर सावरकर ने कभी डुबकी मारकर और कभी पानी में सांस लेने के लिए सतह पर प्रकट होकर अपना रास्ता नापना प्रारंभ कर दिया। सिपाहियों ने जहाज के कैप्टन को सूचना दी और जहाज से समुद्र में अधर पुल डाल दिया गया और सिपाही उस पर दौड़ दौड़ कर गोलियां चलाने लगे। पर इतने में तो सावरकर काफी फासला पार करके फ्रांस के किनारे जा लगे। जहाज ने भी उसका पीछा किया। तट पर पहुंचने पर ऊंची दीवार ने सावरकर का रास्ता रोक लिया, पर व्यायाम और अभ्यास काम आया और वह वीर फ्रांस की भूमि में पहुंच गया। उसके पीछे अंग्रेज सिपाही चोर चोर कहते हुए भागे जा रहे थे। सावरकर ने एक फ्रांसीसी सिपाही के हाथों आत्मसमर्पण कर दिया। फ्रांस की भूमि में पहुंचकर वीर क्रांतिकारी सावरकर ने क्या किया, ये हम बताएंगे इस देशभक्ति गीत के बाद।

0: 200 वीर क्रांतिकारी सावरकर जब फ्रांस की भूमि पर पहुंच गए तब उन्होंने एक फ्रांसीसी सिपाही के हाथों आत्मसमर्पण कर दिया और टूटी फूटी फ्रांसीसी भाषा में उसे समझाया कि वह भारतीय क्रांतिकारी है और अंग्रेज सिपाही उसे पकड़ना चाहते हैं, पर फ्रांस की भूमि में से किसी को पकड़ने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इतनी देर में अंग्रेज सिपाही भी वहां पहुंच गए। अंग्रेज सिपाहियों ने फ्रांसीसी सिपाही की जेब गर्म कर दी। यूरोप का यह भ्रष्टाचार एक भारतीय क्रांतिकारी को ले डूबा। फ्रांसीसी सिपाही ने वीर सावरकर को अंग्रेज सिपाहियों के हवाले कर दिया। अंग्रेज सिपाही उस वीर को बंदी बनाकर फिर जहाज पर ले गए। वह युवक जो एक बैरिस्टर के रूप में भारत पहुंचने वाला था, एक कैदी के रूप में भारत के किनारे लगा। हथकड़ियों युक्त हाथों से उस वीर ने मातृभूमि को प्रणाम किया। बंबई में संगीनों के पहरे में ले जाकर उस वीर को नासिक की जेल में डाल दिया गया। सावरकर के सहायकों ने अवैध रूप से उसे फ्रांस की भूमि से पकड़ने के विरोध में हैग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक मुकदमा पहुंचाया, पर उस समय वहां से भी न्याय न मिल सका और निर्णय अंग्रेजी शासन के पक्ष में ही रहा। भारत में वीर सावरकर पर 3 मुकदमे एक साथ चले। 2 मुकदमे संगीन थे और उस पर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप थे। एक मुकदमे में यह सिद्ध किया गया कि इंग्लैंड में मदनलाल ढींगरा द्वारा कर्जन वायली की हत्या में सावरकर का भी हाथ था। उसे अजन्म कारावास का दंड सुना दिया गया। दूसरे मुकदमे द्वारा यह सिद्ध किया गया कि भारत में कलेक्टर मिस्टर जैक्सन की हत्या जिस पिस्तौल से की गई थी, वह पिस्तौल इंग्लैंड से सावरकर ने ही चतुर्भुज अमीन द्वारा भारत पहुंचाई थी। इस प्रकरण में भी अभियुक्त को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। निर्णय सुनकर वीर सावरकर ने हंसते हुए करारा व्यंग किया, मैं प्रसन्न हूं कि मुझे 2 जन्म की काले पानी की सजा देकर ब्रिटिश सरकार ने हिंदू धर्म का पुनर्जन्म का सिद्धांत तो मान लिया। वीर सावरकर की सारी संपत्ति जब्त कर दी गई। उसे कुछ दिन डोंगरी जेल में रखकर अंडमान की जेल में भेज दिया गया। वीर को भांति भांति की यातनाएं दी गई। उनसे दिन भर कोल्हू चलवाया जाता था। खाना ऐसा दिया जाता था जैसे जानवरों को दिया जाता है। वीर सावरकर के कारावास की कथा स्वयं में एक बहुत बड़ा इतिहास है। कई भारतीय नेताओं के अथक प्रयत्नों और ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रभावशाली सदस्य मिस्टर बेजवुड के सहयोग से वीर सावरकर को सन 1924 में अंडमान से भारत लाया गया। जब सन 1937 में बंबई में कांग्रेस मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ तो कई नेताओं के प्रयत्नों के फलस्वरूप वीर सावरकर को 10 मई 1937 को बंदी गृह से मुक्त कर दिया गया। यह बड़ी ऐतिहासिक तिथि थी जिस दिन 1857 का स्वाधीनता संग्राम छिड़ा था। इंग्लैंड में रहते हुए वीर सावरकर के प्रयत्नों से ही उस प्रथम स्वाधीनता संग्राम की अर्धशताब्दी समारोह पूर्वक मनाई गई थी। वीर सावरकर ने शेष जीवन भारत की अथक सेवा में बिताया और स्वाधीन भारत में 26 फरवरी सन 1966 को वह दीप बुझ गया जिसने 28 मई 1883 को प्रकाशित होकर भारत को नई रोशनी प्रदान की थी। तो दोस्तों, ये गाथा थी हिंदुस्तान के वीर क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर की। अब दीजिए अपने दोस्त दानिश को इजाजत इस कार्यक्रम से। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: याद करो कुर्बानी, याद करो।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम परिक्रमा। परिक्रमा सुनने वाले सभी साथियों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। ईद उल अजहा का ये पवित्र दिन आपके जीवन को शांति, सुकून और समृद्धि से भर दे। आप सभी को रेडियो आजाद हिंद परिवार की ओर से ईद मुबारक। और आइए अब आपको जानकारी दे दें नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की, साथ ही जानकारी देंगे मौसम की भी। तो बने रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। चैतन्य शोशो कल्चरल सोसाइटी द्वारा आयोजित बेले वंदे मातरम वर्कशॉप का समापन बुधवार शाम उत्कल भवन में हुआ। कार्यक्रम में देशभक्ति, नृत्य और रंगमंच का सुंदर समन्वय देखने को मिला। लघु कथा सृजन में गहरी संवेदना होती है, ये साधारण घटना को असाधारण ढंग से प्रस्तुत करने का कौशल है। नीता सैनी द्वारा प्रस्तुत लघु कथाओं में आम भारतीय परिवारों की व्यथा, स्त्री मन की पीड़ा, बुजुर्गों की उपेक्षा, गरीबी का संघर्ष पूरे तेवर के साथ उभर कर सामने आता है। ये उद्गार थे समीक्षक सुनीता प्रकाश के। कार्यक्रम का शुभारंभ घनश्याम मैथिल सचिव लघु कथा शोध केंद्र के स्वागत उद्बोधन से हुआ। लेखिका ने स्किन एलर्जी, फादर्स डे, बाबा की थकावट, माँ का बरसाती वाला कमरा लघु कथाओं का प्रभावी पाठ किया। युवा वायलिन वादक ऋषभ मलिक का चयन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय अंतर्गत सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग CCRT के यंग आर्टिस्ट नेशनल स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए हुआ। उन्हें ये छात्रवृत्ति हिंदुस्तानी शास्त्रीय वायलिन वादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और प्रतिभा के लिए प्रदान की गई है। ऋषभ वायलिन वादक पंडित महेश मलिक के पुत्र और शिष्य भी हैं। वे आकाशवाणी के बी हाई ग्रेड कलाकार हैं। ऋषभ ने भारत भवन के बादल राग समारोह, विश्व रंग समारोह और युवा खोज समारोह सहित अनेक मंचों पर वायलिन वादन प्रस्तुत किया है। राजधानी में बीती शाम हिंदी जगत के मूर्धन्य व्यंग्यकार शरद जोशी की स्मृति में एक ऐसी महफिल सजी जहां ठहाकों के बीच व्यवस्था व समाज के दोहरेपन पर तीर चलाए गए। अवसर था अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा आयोजित व्यंग गोष्ठी का। अध्यक्षता उर्दू अकादमी के निदेशक व परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर नुसरत मेहंदी ने की। वीर भारत न्यास द्वारा भारत भवन में आयोजित सदा नीरा समागम के शुभारंभ पर भागवत पुराण आधारित नृत्य प्रस्तुति गोवर्धन लीला का मंचन किया गया। इसके जरिए भक्ति, प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण के प्रति सम्मान का संदेश दिया गया। ड्रोन तकनीकी से इंद्र स्वरूप LED स्क्रीन को 40 फीट ऊंचाई तक ले जाया गया। मंच पर नीचे गोवर्धन लीला का होलोग्राफिक दृश्य दिखाया गया। प्रस्तुति में श्री कृष्ण द्वारा लोगों को जल, पर्वत, वृक्ष और पशुओं के सम्मान को ही सच्ची भक्ति बताया गया। कलाकारों के अनुसार ये कथा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और संरक्षण का संदेश देती है। नटराज संस्था द्वारा आयोजित सांस्कृतिक आयोजन तरंग कला महोत्सव 6.0 इस वर्ष एक नई और रोमांचक थीम के साथ दर्शकों के बीच आने जा रहा है। ये आयोजन 3 जून को शाम 5 बजे से रविंद्र भवन में आयोजित होगा। और आइए अब आपको जानकारी दे दें मौसम की। शहर में आज भी तेज धूप निकलने, बादल छाने और तापमान में 43 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। तो श्रोताओं, मौसम चल रहा है गर्मी का और इस समय चलती है लू, तो रखिए आप अपना और अपने अपनों का खास ख्याल। हमें दी अनुमति कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, सुनते रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए भारत भवन के अंतरंग सभागार में।
1: देखिए, हम जो बात करना चाहते हैं आपको, सबसे पहले जो है, आई एम एड्रेसिंग स्टूडेंट्स प्राइमरीली ना, आदतन 40 साल की आदत है वो, तो उसमें हम आपको बताते हैं, जैसे अभी यहाँ का पंच महाभूत की जो बात हो रही है, वो सब आप जानते भी हैं पंच महाभूत क्या है। पंच महाभूत जब वेद लिखे गए थे तब आया था, और आज पंच महाभूत में उसका जो उसके जो प्रिंसिपल सिद्धांत हैं, उसके जो साइंस के सिद्धांत हैं, एक है इंटरडिपेंडेंस। आप बायोलॉजी के विद्यार्थी भी होंगे ना कुछ बहुत इसमें, तो एक इंटरडिपेंडेंस, जितने भी उसके फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, एक दूसरे पे आधारित रहते हैं, एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं होते हैं, एक को प्रभावित करो तो पूरा का पूरा सिस्टम प्रभावित होता है उससे। और दूसरा होता है इक्विलिब्रियम, यानी उनमें इक्विलिब्रियम बना रहता है उन कंपोनेंट्स में, तभी ये पृथ्वी चल रही है, तभी हमारा गाँव चलता है, तभी हमारा शरीर चलता है। एक माइक्रोकॉस्मॉस है, एक मेगाकॉस्मॉस है, मैक्रोकॉस्मॉस है, सब एक ही सिद्धांत वही लगता है। तो अब बताइए, ये जो चीज है, इसमें साइंस है, और ये अब मॉडर्न साइंस जैसे हम पढ़ाते थे, तो आपने होम्योस्टेसिस का नाम सुना हुआ है। होम्योस्टेसिस मतलब अगर कोई भी सिस्टम में कोई खराबी आती है तो उसमें एक ऑटो करेक्शन का उसका एक उसकी एक एबिलिटी होती है, अपने आप को ऑटो करेक्ट करके, और फिर वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ये होम्योस्टेसिस सब में लगता है, अपने बॉडी में भी लगता है, तालाब में भी लगता है। अच्छा, आपको एक बात बता दें, मुझे बोलना था पानी पे, मगर वो बह के पानी वहां से पानी के सत्र से इसमें पृथ्वी के सत्र में आ गया, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत बोलूं जो पानी से जुड़ा हुआ है। वो एक होमोस्टेसिस मतलब वो इक्विलिब्रियम में रखने का, जो अभी हम बता रहे हैं साइंस में खोज करके, वो तब का पंच महाभूत में बताया गया हुआ था। और इसी तरह से बहुत सी चीजें हैं, जैसे आपने वसुधैव कुटुंबकम भी सुना होगा ना, महाउपनिषद में है कि पूरा विश्व एक कुटुंब है। तो वसुधैव कुटुंबकम में कुटुंब की जो परिभाषा है, इसे इट हैज गॉन बियॉन्ड द यू नो ह्यूमन लीनिएज, यानी आदमी के नहीं है कि भाई बहन सब कुछ है, इट इंक्लूड्स द एंटायर बायोस्फीयर। So the human being and the entire biosphere is a Vasudeva Kutumbakam. और यही तो उसने कहा हुआ है, पंचभूत ने भी कहा है कि all the entire cosmos and everything is made by these five elements, और they are sub and they closely knit and then they make the system. अलग अलग कोई नहीं बनाता उसमें सिस्टम। दिस इज द इम्पॉर्टेंस एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन गिवन इन द साइंस ऑल्सो अबाउट पंच महाभूत एंड द मॉडर्न साइंस ऑल्सो। मॉडर्न साइंस में जो अभी जो एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम जो बात करते हैं वो है, मतलब ये जो फ्रेमवर्क एनवायरनमेंट का, इकोलॉजी का फ्रेमवर्क है जो मॉडर्न साइंस कहता है, वो बिल्कुल पंच महाभूत जैसा ही है। और शायद जरूरी ये होगा भी कि वो पंच महाभूत से पढ़ा होगा और पढ़ने से ही वो प्रेरित होकर ये वाले प्रिंसिपल्स बनाए होंगे। एक कहलाता है इकोलॉजिकल सॉलिडेरिटी कहलाती है। इकोलॉजिकल सॉलिडेरिटी यानी क्या कहती है? इकोलॉजिकल सॉलिडेरिटी ये रहती है कि ये जो जितना भी पूरे कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, इन सब में कनेक्टेडनेस बनी है, अनब्रेकेबल कनेक्टेडनेस है, ये पूरी है। एंड दे इफेक्ट ईच अदर, जैसे कि ह्यूमन सोसाइटी है, ह्यूमन सोसाइटी यानी जो हम लोगों की सोसाइटी है वो, और नेचुरल इकोसिस्टम, दे आर इंट्रिकेटली दे रिलेटेड, दे बाउंड टुगेदर। अगर एनवायरनमेंट में या इकोसिस्टम में कुछ भी होगा तो ह्यूमन हेल्थ अफेक्टेड होगी, और हमें कुछ होगा या हम कुछ करेंगे तो इकोसिस्टम की हेल्थ खराब होगी। एंड देयर ये जो सिद्धांत हैं, ये अभी नए सिद्धांत हैं, मॉडर्न इकोलॉजिकल साइंस बताती है, जो पंच महाभूत से प्रेरित हैं या पंच महाभूत जैसे ही हैं। तो अब अगर हमको एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना है और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ करना है, इकोसिस्टम को बचाने के लिए कुछ करना है, जैसे कि मैं तो पानी के बारे में पढ़ाता रहा, तो अगर आपको पानी के बारे में कुछ सोचना है तो अकेले पानी के बारे में नहीं सोच सकते, पंच महाभूत इसको परमिट नहीं करता है। वो ये कहता है कि सब एलिमेंट इंटररिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, और उसके बाद एक उनमें इक्विलिब्रियम बना रहता है। तो पानी के बारे में सोचना यानी हमको अर्थ के बारे में सोचना ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? अर्थ से ही आता है भाई। जो भी पानी बह के आता है, जैसे अपने भोपाल यूनिवर्सिटी, अपने सॉरी ये भोपाल तालाब का पानी है 30 स्क्वायर किलोमीटर का, ये बह के जो आ रहा है वो 365 स्क्वायर किलोमीटर का जो कैचमेंट एरिया है इस लेक का, ये सीक्वेंस कुछ बिगड़ सकता है तो बिगड़ने देना है ना, मतलब बात में सीक्वेंस बनी रहे, तो अगर समझ में नहीं आए तो टोक देना। तो जो पानी, तो हमको तो पानी है, मगर 365 सीहोर पता नहीं कहाँ कहाँ से ये बह के आता है पानी। तो इंटरकनेक्टेडनेस देखिए उसमें, एक तो अर्थ वाला एलिमेंट और पानी वाला एलिमेंट, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और अगर इस 365 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो है, जहां से पानी बह के आता है इस तालाब में, उसमें कुछ भी होगा तो ये तालाब उससे अफेक्टेड होगा, इतना होता है। जैसे जब वहां से सिल्ट आती है, जब पानी बरसता है और जो सिल्ट आती है या जो एग्रोकेमिकल आता है वो इस तालाब में आता है, तो एग्रोकेमिकल जो आता है वो तो क्या प्रभाव डालता है आप पे हम पे और पानी की क्वालिटी पे आपको पता ही है। जो सिल्ट आती है वहां से जो बह के जो सिल्ट आती है वो दैट इज ग्रेजुअली डिटोरेटिंग नॉट द क्वालिटी बट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस सिस्टम। उसमें हमारे पास एक फार्मूला है, हम लोगों ने निकाला भी हुआ था उसमें कि ग्रेजुअली द सिल्ट इज डिपॉजिटिंग हियर, और 365 स्क्वायर किलोमीटर में 80% जो है वो एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से बहुत इजीली पानी बरसता है तो इरोड होता है, प्लोड रहती है ना फूले के, वो सब बह बह के आके इस तालाब में इकट्ठी होती रहती है और इसकी धीरे धीरे डेप्थ कम होती जाती है। तो ये अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट, इन दोनों का मैं रिलेशनशिप आपको बताना है। तो हम अलग से नहीं सोच सकते कि वो जो 365 स्क्वायर किलोमीटर में हो गया वो होता रहेगा, हम तो तालाब को ठीक करने बैठ के इसकी वाटर क्वालिटी ठीक कर लें, वाटर क्वालिटी ठीक कर लें, इट कैन नॉट हैपन, इट नेवर हैपन्स। यही प्रिंसिपल यहाँ जो अप्लाई है यही नदियों के लिए भी होता है। नदियों में नर्मदा जी अगर बह रही हैं तो अगर जबलपुर में कुछ हो गया वहां पर तो वो वहां से नरसिंहगढ़ और जबलपुर में नदी में नहीं होगा, जबलपुर शहर में अगर कुछ होगा या वहां के फॉरेस्ट में कुछ होगा या वहां का जो अर्थ इकोसिस्टम है जो यू नो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जिसे हम कहते हैं वहां कुछ भी होगा, चलिए अगर फॉरेस्ट ही कम हो गया वहां पे या वहां पे पोल्यूशन ऑफ द सॉइल पोल्यूशन हो गया किसी इंडस्ट्री के कारण, तो जो वहां होगा वो आके 100 किलोमीटर या 200 300 500 किलोमीटर दूर यहां आके उसको इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए उसमें इंटरकनेक्टेडनेस है। तो अगर अपन कभी भी विचार करें इस तरह का कि हमको इकोसिस्टम को सुधारना है या इकोलॉजिकल क्वालिटी हमको सुधारना है तो हमको बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा, यानी जब आप मतलब पूरा का पूरा सिस्टम देख के बात करना पड़ेगा उसमें लेके। जैसे अगर हमको अगर कहीं भी शरीर में तकलीफ होती है तो बाकी डॉक्टर बाकी ऑर्गन्स भी देखता है कि वो किस तरह से इससे रिलेटेड है। इट इज लाइक दिस, एक तो ये हो गया और दूसरा मैं अब पानी पानी पे ही हमको बोलना पड़ेगा, मेजर एम्फेसिस रहेगा। वाई वाटर, वाटर इसलिए कि हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए वाटर ही जरूरी है, और वाटर का जो रिलीजियस इंपॉर्टेंट भी है, इट इज एसेंशियल एंड इट्स अ वेरी डिवाइन थिंग वाटर। वाटर इज नॉट ए वस्तु, जैसे सभी लोग ने पहले भी कहा था। तो इसलिए हम पानी को, अगर पानी ठीक रखेंगे ना तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो पानी ऐसे बहता है जैसे ब्लड बहता है हमारे शरीर में ना, हमारे वेन्स में और आर्टरीज और वेन्स में उस तरह से पानी बहता है। तो उसको हमको आर्टरीज बना के रखना है, वेन्स नहीं करना है जहाँ जहाँ पानी जा रहा है। यू नो द डिफरेंस इन आर्टरीज एंड वेन्स।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं, वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं उमेश वीनस तरकसवार के संगीत निर्देशन में मध्य प्रदेश गान।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: कुमारी मार्गरेट और नोबेल स्वामी जी द्वारा दी गई चेतावनी के बावजूद भारत आईं और कलकत्ता बंदरगाह पर स्वामी जी ने उनका स्वागत किया।
1: उन दिनों स्वामी जी के आदेश पर स्वामी शारदानंद अमेरिका में कार्यरत थे। उसके बाद स्वामी अभेदानंद ने अमेरिका जाकर वहां का कार्य संभाला और स्वामी जी को स्वदेश में कार्य संभालने के लिए शारदानंद जैसे धीर स्थिर कार्यकर्ता की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने शारदानंद को भारत वापस बुला लिया।
0: श्रीमती बुल और कुमारी मैकलाउड ने भी भारत आने के लिए स्वामी शारदानंद के साथ ही 12 जनवरी को अमेरिका से प्रस्थान किया। मैकलाउड ने आने के पूर्व जब स्वामी जी से अनुमति मांगी तो उन्होंने उत्तर में लिखा था,
2: हाँ, यदि तुम गंदगी अवनति एवं निर्धनता देखना चाहो और कौपीन पहने लोगों के मुख से धर्म चर्चा सुनना चाहती हो तो आ सकती हो। इनके अतिरिक्त और कुछ आशा हो तो मत आना। हम लोग अब और एक भी आलोचना सुनने को प्रस्तुत नहीं है।
0: इसके बावजूद कुमारी मैकलाउड लंदन होते हुए भारत आकर अपने दोनों संगियों के साथ 12 फरवरी को बंबई में उतरी और तुरंत ट्रेन पकड़कर 14 फरवरी को शाम के 4 बजे हावड़ा स्टेशन पर आ पहुंची। उन्होंने देखा कि स्वामी जी 10-12 शिष्यों के साथ वहां उपस्थित हैं। दोनों महिलाएं स्टेशन से ही कलकत्ते के होटल में चली गईं और स्वामी जी शारदानंद मठ में आए। इन लोगों के पहले ही मार्गरेट और नोबेल अपने घर को छोड़कर जहाज से 28 जनवरी को कलकत्ता आ चुकी थी। पहले वे एक होटल में ठहरी और बाद में कुमारी मुलर के भाड़े के मकान में रहने चली गई। मार्च में नए मठ की जमीन और मकान का कब्जा मिल जाने पर उपरोक्त दोनों महिलाएं और कुछ दिन बाद निवेदिता भी उसी मकान में निवास करने लगी।
1: इसके थोड़े ही दिन बाद श्री रामकृष्ण देव का जन्म दिवस आ गया। महोत्सव की व्यवस्था का भार स्वामी जी ने स्वयं ग्रहण किया। इस दिन प्रातःकाल स्वामी जी ने घोषित किया कि वे श्री रामकृष्ण के तथा अपने अब्राह्मण शिष्यों को जनेऊ प्रदान करेंगे। शिष्य श्री शरद चंद्र चक्रवर्ती को उपनयन संस्कार व गायत्री मंत्र प्रदान करने का कार्य सौंपा गया। स्वामी जी ने कहा,
2: श्री रामकृष्ण के भक्तगण सभी ब्राह्मण हैं। वेद कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों को ही उपनयन संस्कार का अधिकार है। संस्कार के अभाव में वे लोग अब तक जनेऊ धारण नहीं कर पाए हैं। आज श्री रामकृष्ण की जन्मतिथि है। इस पुण्य अवसर पर वे अपने अधिकार के अनुसार क्षत्रियत्व और वैश्यत्व को ग्रहण करेंगे। समय पर इन्हें ब्राह्मण बना डालना होगा।
0: स्वामी जी के निर्देशानुसार लगभग 50 व्यक्तियों ने गंगा स्नान करके श्री राम कृष्ण के चित्र के सामने जनेऊ तथा गायत्री मंत्र ग्रहण किया। जनेऊ ग्रहण करने के बाद उन भक्तों को संबोधित कर स्वामी जी ने आवश्यक उपदेश आदि दिए और उन्हें प्रतिदिन गायत्री मंत्र जप करने का निर्देश दिया।
1: ये पहले से ही निश्चित हुआ कि स्वामी जी अपनी पश्चिमी शिष्याओं के साथ हिमालय भ्रमण के लिए जाएंगे। प्लेग का प्रकोप घट जाने पर तथा सरकारी निषेध शिथिल हो जाने पर स्वामी जी ने श्री सेवियर के आमंत्रण के अनुसार अल्मोड़ा की ओर यात्रा की। उनके साथ थे स्वामी तूर्यानंद जी, निरंजनानंद जी, सदानंद जी, स्वरूपानंद जी आदि तथा उनकी 4 पश्चिमी शिष्याएं। नैनीताल पहुंचकर अपने साथियों के साथ स्वामी जी ने कुछ विश्राम किया। खेतरी के महाराजा अपने गुरुदेव के दर्शन की इच्छा से पहले से ही वहां पर मौजूद थे। स्वामी जी के श्री चरणों का दर्शन पाकर महाराजा साहब ने अपने को कृतार्थ माना तथा उनकी पश्चिमी शिष्याओं के साथ परिचित होकर वे आनंदित हुए।
0: इसी समय उन लोगों को एक बुरी खबर मिली। निवेदिता ने लिखा है,
3: 3 जून शुक्रवार प्रातःकाल हम लोग कार्य में जुटी थी। उसी समय एक तार आया। तार एक दिन देरी से पहुंचा था। उसमें लिखा था, गुडविन ने कल रात 2 जून को ऊटक वन में देह त्याग कर दिया। उस अंचल में टाइफाइड ज्वर की जो महामारी फैली थी, लगा कि हमारे मित्र उसी का ग्रास बने हैं। जीवन के अंतिम क्षण तक वे स्वामी जी के बारे में ही बोल रहे थे।
0: इसी दुह संवाद के साथ ही साथ पवहारी बाबा के देहांत की खबर आई। स्वामी जी ने इन दुख संवादों को शांत भाव से झेल लिए।
1: यहाँ से स्वामी जी अपने संगियों के साथ पंजाब होकर कश्मीर गए। वहाँ वे अपने पाश्चात्य अनुयायियों को भारत के बारे में बताया करते थे। स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति, इतिहास, धर्म तथा अपने दृष्टिकोण के बारे में कितनी ही बातें कही थी। साथ ही पाश्चात्य जीवन के साथ वे उनकी तुलना भी करते जाते थे। इन पाश्चात्य महिलाओं को उन्होंने तुलसीदास जी का एक दोहा भी सुनाया था, तुलसी जग में आई के सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेस में नारायण मिल जाए।
0: इसी प्रकार 4 जुलाई का दिन आ पहुंचा। उस दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वत्र बड़े धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन अमेरिका ने इंग्लैंड से स्वाधीनता प्राप्त की थी। स्वामी जी की टोली में श्रीमती पैटरसन, ओली बुल, धीरा माता, कुमारी मैकलाउड, जया, ये 3 अमेरिकी महिलाएं थी। चतुर्थ महिला भगिनी निवेदिता इंग्लैंड की नागरिक थी। पिछले दिन निवेदिता ने खेद व्यक्त करते हुए कहा,
3: हमारे पास अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, रहता तो प्रातःकाल जलपान के समय हम अपने दल के अन्य सदस्यों को उनके राष्ट्रीय समारोह के उपलक्ष में आनंद प्रदान करते। 3 की शाम को स्वामी जी बड़े आग्रह के साथ एक कश्मीरी पंडित दर्जी को ले आए और कहा, यदि इस व्यक्ति को ध्वज का प्रारूप बता दिया जाए तो वो उसे बना देगा। इसके फलस्वरूप एक वस्त्र खंड पर सितारे और पट्टियां लगाकर उसे अति सुंदर ढंग से बनाया और वृक्ष की कुछ टहनियों के साथ भोजनालय के ऊपरी हिस्से में लगा दिया। प्रवेश द्वार को भी पत्तियों से सजा दिया गया और स्वामी जी ने 4 जुलाई यानी 4 जुलाई के प्रति शीर्षक नाम की एक सुंदर कविता रची।
2: 4 जुलाई के प्रति काले बादल कट गए आकाश से, रात को बांधे हुए थे जो समा, पृथ्वी पर तानी थी चादर इस तरह, आंख खोली जादू की लकड़ी फिरी, चिड़ियां चहकी साथ फूलों के उठे सर, सितारे जैसे चमके ताज के, ओस के मोती लगे, स्वागत किया क्या तुम्हारा झूमकर झुककर, खुली और फैली दूर तक झीलें, खुशी जैसे आंखें कमलों की फाड़े हुए, दर्श करती हैं तुम्हारा हृदय से, कुछ निछावर ज्योति के जीवन, क्या आज अभिनंदन तुम्हारा धन्य है। आज रवि स्वाधीनता की फूटी कली, राह देखी विश्व ने कैसे खिली, देश कालिक खोज की तुमसे मिले, छोड़ा है घर मित्र छोड़ी मित्रता, खोजा तुमको आवारा मारा फिरा, गुजरा दहशत के समंदर से, कभी सघन पहले के गहन वन से, लड़ा हर कदम पर प्राणों की बाजी लिए, वक्त वो हासिल निकला काम का, प्यार का पूजा का जीवन दान का, हाथ उठाया संवर कर पूरा किया, लेकिन वो दिन भी आया जब संघर्ष फले, पूजा श्रद्धा और बलिदान पूर्ण हुए, अंगीकृत हुए, तुमने अनुग्रह किया और समस्त मानवता पर स्वातंत्र्य प्रकाश विकीर्ण किया, ओ देवता निर्बाध बढ़ो अपने पथ पर, तब तक जब तक कि ये सूर्य आकाश के मध्य में ना आ जाए, जब तक तुम्हारा आलोक विश्व के प्रत्येक देश में प्रतिफलित ना हो, जब तक नारी और पुरुष सभी उन्नत मस्तक होकर ये नहीं देखें कि उनकी जंजीरें टूट गईं और नवीन सुखों के वसंत में उन्हें नव जीवन

0: काश्मीर में रहते समय स्वामी जी ने निवेदिता को साथ लेकर अमरनाथ और क्षीर भवानी की यात्रा की थी।
1: इस विराट गुहा के एक अंधेरे हिस्से में विशाल हिमलिंग के सम्मुख खड़े होकर उन्हें प्रतीत हुआ मानो वे महादेव का ही साक्षात दर्शन कर धन्य हो गए हों। उनका शरीर भस्म से आच्छादित था, कौपीन के अतिरिक्त उन्होंने और कुछ भी नहीं पहन रखा था। उस समय गुहा महादेव के स्तुति निनाद और हर हर बम बम की ध्वनि से गुंजरित हो रही थी। स्वामी जी ने भक्ति विहल होकर कई बार साष्टांग प्रणाम किया और अपने भावावेग को संयमित करने के लिए सहसा तेजी से बाहर निकल आए। हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम, उन्होंने निवेदिता से कहा था,
2: मैंने बड़े आनंद का उपभोग किया। मुझे लग रहा था कि हिमलिंग साक्षात शिव ही हैं और वहां कोई लोभी पंडा, कोई व्यापार या कुछ भी बुरा न था। था तो केवल निश्चल पूजा का ही भाव। और किसी तीर्थ स्थान में मुझे इतना आनंद नहीं मिला।
0: कश्मीर में रहते हुए स्वामी जी ने अपने अमेरिकन शिष्यों को राजस्थान के बारे में बताया। टॉड की लिखी हुई राजस्थान की पुस्तक से मीराबाई का प्रसंग पढ़कर सुनाया और मीरा का एक भजन भी गाया था।

0: अब कश्मीर से विदा लेने का वक्त आ चुका था। सारी व्यवस्था हो जाने के बाद वे लोग नावों में सवार होकर बारामूला की ओर चल पड़े और संध्या के समय वहां जा पहुंचे। इस यात्रा के बारे में निवेदिता ने लिखा है,
1: ऐसा निश्चित हुआ था कि अगले दिन 12 अक्टूबर को दोपहर में स्वामी जी लाहौर की ओर प्रस्थान करेंगे और हम लोग कुछ दिन बारामूला में ही निवास करेंगी। नदी पर यात्रा करते हुए उन्हें हम बहुत कम ही देख पाए। वे आम तौर पर मौन ही रहते और नदी के तट पर अकेले ही दूर दूर तक भ्रमण करते। हम लोगों के बजरे में वे शायद ही कभी आए। भारत लौटने के बाद से ही वे जिस कठोर परिश्रम में लगे हुए थे उसके फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ चुका था। इसके अतिरिक्त उन्हें जो महान उपलब्धियां हुई थी उसके परिणाम स्वरूप भी उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वे स्वयं इसका बोध नहीं कर पाए, क्योंकि जिस प्रकार शारीरिक पीड़ा एक सीमा के बाद असहनीय हो उठती है, वैसे ही आध्यात्मिक अनुभूति की तीव्रता भी शरीर एक निश्चित काल के बाद सहन नहीं कर सकता।
0: 12 अक्टूबर को जलपान के पश्चात स्वामी जी शिष्याओं के पास आए और काफी समय तक बैठकर वार्तालाप करते रहे। सुनते सुनते उन लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे किसी उच्च भाव भूमि पर पहुंच गई हों। बीच में वे भावोद्दीपक भजन भी गा रहे थे और साथ ही साथ अनुवाद कर देते थे। सभी भजन काली विषयक थे। इन पंक्तियों को उन्होंने बारंबार गाया।
2: हे माँ श्यामा, तुम इस संसार रूपी बाजार के बीच पतंगें उड़ा रही हो। लाखों में से दो एक पतंगों के कट जाने पर तुम हंसते हुए तालियां बजाने लगती हो।
0: इसके बाद वे स्वरचित कविता काली माता से आवृत्ति करने लगी।
2: काली माता, छिप गए तारे गगन के, बादलों पर चढ़े बादल, कांप कर गहरा अंधेरा, गरजते तूफान में शत लाख पागल प्राण छूटे जल्द कारागार, द्रुम जड़ समेत उखाड़ कर हर बला पथा की साफ करके, शोर से आ मिला सागर, शिखर लहरों के पलटते उठ रहे हैं कृष्ण नभ का स्पर्श करने के लिए द्रुत किरण जैसे अमंगल की, हर तरफ से खोलती है मृत्यु छायाएं सहस्त्रों देह वाली घनी काली, आधि व्याधि बिखेरती है नाचती पागल हुलस कर, आ जननी आ जननी आ आ, नाम है आतंक तेरा, मृत्यु तेरे श्वास में है, चरण उठकर सर्वदा को विश्व एक मिटा रहा है, समय तू है सर्वनाशिनी, आ जननी आ जननी आ आ, साहसी जो चाहता है दुख मिल जाना मरण से, नाश की गति नाचता है, माँ उसी के पास आती। देखा, ये सब सत्य है, अक्षरशः सत्य है, माँ सचमुच ही उसके पास आती है। मैंने अपने जीवन में इसे प्रत्यक्ष किया है क्योंकि मैंने साक्षात मृत्यु का आलिंगन किया है।
0: सोलह अक्टूबर 1898 स्वामी जी स्वामी सदानंद के साथ लाहौर से सीधे कलकत्ता की ओर चले। 18 अक्टूबर को जब वे लोग नीलांबर बाबू के मकान में स्थित मठ में पहुंचे तो दीर्घ काल के बाद उनके लौटने के कारण वहां आनंद मनाया जाने लगा। परंतु उनकी शारीरिक अवस्था से सबकी दुश्चिंता भी बढ़ी। और भी देखने में आया कि अब वे अपने आप में ही मग्न रहते हैं, मानो बाहर की जीवन के साथ उनका कोई संपर्क ही ना हो। उनके लौटने के 2-3 दिन बाद जब शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती उनका दर्शन करने आए तब भी वो भाव दूर नहीं हुआ था। चक्रवर्ती महाशय को देखकर स्वामी ब्रह्मानंद बोले,
3: जाने क्यों कश्मीर से लौटने के बाद से ही स्वामी जी किसी से वार्तालाप आदि नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं। तुम स्वामी जी के साथ हल्की फुल्की बातें करके उनके मन को हल्का करने का प्रयास करो, जाओ जाओ।
4: शिष्य ने ऊपर जाकर देखा कि स्वामी जी मुक्त पद्मासन में पूर्व की ओर मुंह किए बैठे हैं मानो ध्यानमग्न हो। मुख पर हंसी नहीं थी, उज्जवल नेत्र अंतर्मुख थे। उन्होंने शिष्य को देखकर बैठने को कहा, परंतु इसके बाद मौन ही रहे। बाद में शिष्य द्वारा अमरनाथ दर्शन का प्रसंग उठाने पर स्वामी जी बोले,
2: अमरनाथ दर्शन के बाद से ही चौबीसों घंटे शिव जी मानो मेरे मस्तक पर सवार रहते हैं, कैसे भी उतरते नहीं। अमरनाथ और क्षीर भवानी के मंदिर में मैंने बहुत तपस्या की थी। अमरनाथ जाते समय मैं एक खड़ी चढ़ाई पार कर गया था। कोई भी यात्री उस पगडंडी से नहीं जाता, केवल पहाड़ी लोग ही उतरते चढ़ते हैं। उसी मार्ग से जाने की मेरे मन में जिद सी हो गई थी। उसी परिश्रम से शरीर थोड़ा दुर्बल हो गया है। वहां ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ती है कि शरीर में मानो सुइयां चुभ रही हूं। मैं भी कौपीन मात्र पहने भस्म लगाकर गुफा में प्रविष्ट हुआ। उस समय शीत गर्मी का कुछ पता नहीं चला, परंतु मंदिर से निकलते ही शरीर मानो ठंड से अकड़ गया था। तीन चार सफेद कबूतर देखने में आए थे, वे उसी गुफा में रहते हैं या आसपास के किसी पहाड़ में, ये ठीक से जान नहीं सका।
4: कुछ दिन बाद भगिनी निवेदिता कलकत्ता लौट आईं। श्री गुरुदेव के चरणों में संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर स्त्री शिक्षा के विस्तार के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। हिंदू स्त्रियों के दैनिक जीवन से प्रत्यक्ष रूप से परिचित होने के लिए वे बाग बाजार स्थित श्री माताजी के निवास स्थान पर रहने लगीं। श्री रामकृष्ण देव की अन्य स्त्री भक्तों ने बड़े आदर पूर्वक बिना किसी दुविधा के बड़े स्नेह से निवेदिता को अपने बीच स्थान दिया। थोड़े ही समय में बाग बाजार में एक बालिका विद्यालय स्थापित करने की व्यवस्था निश्चित हो गई।
0: निवेदिता का यही प्रथम उद्यम था। उन्होंने बाग बाजार मोहल्ले में एक बालिका विद्यालय खोलने का संकल्प किया था। एक दिन बलराम बाबू के मकान के हॉल में सभी गृहस्थ भक्तों का एक समारोह हुआ। इसमें आवेदन किया गया कि गृहस्थगण इस विद्यालय में अपनी बच्चियों को भेजें। सब लोग बैठे हुए थे। उसी समय स्वामी जी ने अप्रत्याशित रूप से आकर सबके पीछे आसन ग्रहण किया। निवेदिता ने अंग्रेजी में व्याख्यान दिया। मास्टर, महाशय, सुरेश दत्त, हरमोहन बाबू आदि उपस्थित थे। स्वामी जी हंसते हुए विनोद पूर्वक कह रहे थे,
2: उठ उठ ना, केवल बेटी का बाप होने से ही काम नहीं चलेगा। राष्ट्रीय भाव पर उनकी शिक्षा दीक्षा में सहयोग तुम सबको देना होगा। उठकर बोल, आवेदन का प्रत्युत्तर दे। बोल, हाँ हम लोग राजी हैं, हम आपको अपनी कन्याएं देंगे।
4: कोई इस प्रकार बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। अंत में स्वामी जी ने हठ पूर्वक हल्के स्वर में हरमोहन बाबू से कहा,
2: तुझे देना ही होगा।
0: उनकी ओर से तब स्वामी जी ने स्वयं ही कहा,
2: वेल मिस नोबल, दिस जेंटलमैन ऑफर्स हिज गर्ल टू यू।
0: निवेदिता पहले तो देख नहीं पाई थी कि भीड़ में स्वामी जी बैठे, फिर उनका दर्शन कर और उनकी उत्साहदायिनी वाणी सुनकर निवेदिता बड़ी हर्षित होकर तालियां बजाने लगी और अंत में आनंद विभोर होकर नाचने लगी, मानो वे एक छोटी सी बालिका।
4: बेलूर लौटने के बाद अब स्वामी जी का स्वास्थ्य काफी सुधर चुका था। उनके सपनों का बालिका विद्यालय आरंभ हो गया था। श्री रामकृष्ण के स्थायी मठ का कार्य भी संतोषजनक रूप से प्रगति पर था। भवन निर्माण आदि के लिए आवश्यक धनराशि श्रीमती बुल ने दे दी थी। इतना ही नहीं, इन सब कार्यों के पूरा हो जाने के बाद भी मठ के व्यय हेतु कुछ धन बच जाने की आशा थी। ये सब देखकर स्वामी जी का मन उन दिनों अत्यंत प्रफुल्लित था। वे नई भूमि पर टहलते हुए आनंद विभोर हो जाते और भविष्य में उस स्थान को केंद्र बनाकर कितने ही सत्कार्यों का पालन करना होगा आदि बातें सोचते तथा दूसरों को भी बताते।
0: जिस समय स्वामी जी अपने संकल्प के अनुसार ऋषियों द्वारा वनों में रचित वेदांत को नगर के कर्म कोलाहल के बीच भी स्थापित करने के प्रयास में लगे हुए थे और धीरे धीरे इसमें सफलता भी पा रहे थे, उसी समय उन्हें इसी भाव का एक प्रस्ताव उद्योगपति जमशेद जी एन टाटा से भी प्राप्त हुआ। प्रस्ताव पत्र इस प्रकार था।
5: प्रिय स्वामी विवेकानंद जी, आशा है कि आपको जापान से शिकागो तक यात्रा के अपने इस सहयात्री की याद होगी। आपके भी विचार अब मुझे विशेष रूप से स्मरण आ रहे हैं कि भारतवर्ष में त्याग तपस्या का जो भाव पुनः जागृत हो रहा है, हमारा उद्देश्य उसे नष्ट करना नहीं है बल्कि उसे रचनात्मक मार्गों पर परिचालित करने की विशेष आवश्यकता है। अपने वैज्ञानिक शोध संस्थान के संदर्भ में ही मैं आपके उन विचारों का स्मरण कर रहा हूँ जिसके विषय में आपने अवश्य सुना या पढ़ा होगा। मेरी राय में यदि ऐसे आश्रयों या आवास ग्रहों की स्थापना की जाए जहाँ त्याग व्रत धारण करने वाले साधा जीवन बिताते हुए भौतिक एवं मानवीय विज्ञानों की चर्चा में अपना जीवन उत्सर्ग करें, तो त्याग भावना की इससे अच्छी उपयोगिता और क्या हो सकती है। मेरा ख्याल है कि इस तरह के जिहाद का उत्तरदायित्व यदि कोई योग्य नेता स्वीकार कर ले तो इससे धर्म एवं विज्ञान दोनों की ही उन्नति होगी और हमारे देश की कीर्ति भी फैलेगी। इस अभियान में विवेकानंद से बढ़कर और कौन नेतृत्व दे सकेगा? क्या इस पथ से हमारी राष्ट्रीय परंपराओं को नवजीवन प्रदान करने में आप सहयोग करेंगे? इस दिशा में जन जागरण उत्पन्न करने के निमित्त सर्वप्रथम संभवतः आप अपनी अग्निमयी वाणी में एक पुस्तिका लिखेंगे और उसके प्रकाशन का व्यवहार मैं सहर्ष वहन करूंगा। सम्मान आपका विश्वस्त जमशेद जी एन टाटा।
0: 9 दिसंबर श्री रामकृष्ण संघ के इतिहास में एक स्मरणीय दिन है। नीलांबर बाबू के बगीचे वाले मकान में ब्रह्म मुहूर्त में स्वामी ने गुरु भाई और शिष्यों के साथ गंगा जी में स्नान कर नवीन गैरिक वस्त्र पहना। आज के विशेष अनुष्ठान के पौरोहित्य का भार स्वयं स्वामी जी ने ग्रहण किया है। ध्यान उपासना व पूजा यथा विधि समाप्त कर श्री रामकृष्ण देव के देहावशेष वाले पवित्र ताम्र पत्र को दक्षिण स्कंध पर रख वे बेलूर मठ की ओर चले। उनके पीछे शंख घंटा आदि की ध्वनि से दिशाओं को गुंजाते हुए गुरु भाई व शिष्य गण थे। उस शुभ प्रभात में भागीरथी के तट पर कुछ विश्वासी भक्तों के कंठ से उच्चारित श्री राम कृष्ण की जय ध्वनि ने अपूर्व आनंद उल्लास उत्पन्न कर दिया। पथ पर चलते हुए स्वामी जी ने पास वाले शिष्य से कहा,
2: श्री राम कृष्ण देव ने एक बार मुझसे कहा था, तू कंधे पर चढ़ाकर मुझे जहाँ भी खुशी से ले जाएगा मैं वहीं पर रहूंगा, चाहे वो झोपड़ी हो या वृक्षों का झुंड। परम दयालु श्री राम कृष्ण के उसी आशीर्वाद पर भरोसा करके ही उन्हें हमारे भावी मठ में ले जा रहा हूँ। वत्स, निश्चित जान, जितने दिन उनके नाम पर उनके अनुगामी भक्तगण पवित्रता आध्यात्मिकता व समस्त मानव से एक सी प्रीति के आदर्श की रक्षा कर सकेंगे उतने दिन श्री राम कृष्ण देव इस मठ को अपनी दिव्य उपस्थिति द्वारा धन्य बनाए रहेंगे।
0: ये जानकर कि स्वामी जी बेलूर मठ में निवास कर रहे हैं, प्रतिदिन कॉलेज के अनेक छात्र व शिक्षित युवक उनके दर्शन के लिए आने लगे। स्वामी जी अपनी शारीरिक अस्वस्थता की परवाह न करते हुए उत्साह पूर्वक उनके साथ धर्म दर्शन साहित्य इतिहास विज्ञान इत्यादि की चर्चा में लीन होते थे। स्वामी जी ने उन सब युवकों को ओजस्वी भाषा में सेवा धर्म की महिमा का संदेश इसी उद्देश्य से देते थे कि वे सब इस बात का हृदय से अनुभव करें कि देश सेवा में आत्मनियोग करना ही वर्तमान राष्ट्रीय जीवन का सर्वश्रेष्ठ व्रत है तथा उस आदर्श में तदनुसार वे अपने जीवन को ढालें। देश की दुर्दशा की चर्चा करते हुए समय समय पर भाव की अधिकता से वे आंसू बहाते थे और कभी कभी गंभीर चिंता में निमग्न रहते थे। अधिकांश युवकों की शारीरिक दुर्बलता, नैतिक चरित्रहीनता और अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से मस्तिष्क विकृति को देख वे समय समय पर शुद्ध हो तीव्र प्रतिक्रिया प्रकट करते थे। वे प्रायः कहा करते थे,
2: 2000 वीर हृदय विश्वासी चरित्रवान व बुद्धिमान और 30 करोड़ रुपए होने पर मैं भारत को अपने पैरों पर खड़ा कर देने में सक्षम हूँ।
4: फिर कभी कभी इस सब के अभाव में ये सोचकर कि उनके जीवन का उद्देश्य व्यर्थ हो रहा है, वे निराशा से व्याकुल होते थे। परंतु उन्होंने पूर्ण मन से ये निश्चय कर लिया था कि पर्वत जैसी विघ्न बाधाओं तथा निराशा के अंधकार के बीच में भी रास्ता तैयार कर लेना होगा। फिर उन्होंने तय किया कि उनके निस्वार्थ आह्वान से प्रेरित होकर जिन थोड़े से व्यक्तियों ने जगत के हित के लिए आत्मसमर्पण किया है, उन स्त्री पुरुषों को ही अग्रगामी सैन्य दल के रूप में संगठित कर लेना होगा।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 गीगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आ मृत्यु आ आ तू या आने के लिए निकली ही होगी तो आ ही जा अभी मुरझाने के डर से डर जाए फूल अंगूर भी रस पीने सूख जाने से डर जाऊं क्यों तुझसे मैं किस लिए मेरे इस प्याले में पीते पीते कभी न खत्म होने वाली है अभी भरी आंसुओं की मदिरा बस

आ आ यदि तू भूखी है, नैवेद्य के लिए और अभी दिन, यद्यपि यौवन युक्त फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं, इस दिन के किसी तरह जुगाड़ कर ऋण चुकता किया, जन्मार्जित जो सब ऋषि ऋण के लिए, श्रुति जननी चरण तीर सेवन करके आश्रय कर ध्रुव पद का संतन उसके, आ मृत्यु आ तू या आने के लिए निकली ही होगी तो आ ही जा।

और आचरण करके एक तप, ऐसे आशा के श्मशान में घोर तपस्या देवर्ण के लिए रणवाद्य बजा के धड़ धड़ और बढ़ भागे हमला करके ठीक उसी क्षण को जब हो गई प्रभु की प्रथम रणाज्ञा और उसी रणयज्ञ अग्नि में जली अस्थि अस्थि मांस मांस ईंधन जैसी और उसी रणयज्ञ अग्नि में जली अस्थि अस्थि मांस मांस ईंधन जैसी आ मृत्यु आ आ तू या आने के लिए निकली ही होगी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भारत भारती। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध वयोवृद्ध गायिका गिरिजा देवी का गायन।

ठुंडी के शब्द हैं, देखे बिना नहीं चैन श्रीखमाच में है।

ये मेरा सौभाग्य है, इतने लोग बोल चुके हैं पर ये आज मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। कारण ये है कि मेरे दादाजी जो मेरे गुरु बचपन से सिखाए, मेरे पिताजी, मेरे गुरु दादाजी के जो गुरु जी थे पंडित कंठे महाराज जी, वो बजा चुके हैं। तो ये संगीत में ही हो सकता है, ये किसी और चीज़ में नहीं हो सकता कि एक चार पीढ़ी पहले जिनको मैंने देखा ही नहीं उन्होंने बजाया, और मैं क्या बजा सकता हूँ। मेरा तो कोई सौभाग्य, मैं अपने आप को धन्य, ये जीवन धन्य हो गया मेरा आपके चरणों में बजा के।

आप समझिए कि पंडित गंडे महाराज जी जिनको हम लोग बब्बा बोलते थे उनके साथ गाए हैं, फिर किशन महाराज जी भैया थे मेरे उनके साथ गाए, फिर उनके बेटे पूरन महाराज जी के साथ गाए, अब उनके बहन का बेटा मेरा नाती हो गया चार खानदान शुभ महाराज उनके संग भी गाते हैं, अब शुभ का बच्चा भी हो गया दो तीन बरस उसके साथ भी गा रहे हाँ पीढ़ी से तबले वाले एक खानदान से गा रहे हैं भैया, ये सब तो बच्चे सामने के पैदा हुए हैं, इसलिए मौका दे रहे क्या क्या बनारस की खास लगी का अंदाज है वो बजाना आता है। चलो जल्दी जल्दी गाँव में भूल जाओ।

0: आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने सुप्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी को सुना। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम में आपको सुना रही हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी सभ्यता का।

0: यूं तो मेरी समझ में दुनिया की 1000 बातें नहीं आती, जैसे लोग प्रातः काल उठते ही बालों पर छुरा क्यों चलाते हैं। क्या अब पुरुषों में भी इतनी नजाकत आ गई है कि बालों का बोझ उनसे नहीं संभलता? एक साथ ही सभी पढ़े लिखे आदमियों की आंखें क्यों इतनी कमजोर हो गई हैं? दिमाग की कमजोरी ही इसका कारण है या कुछ और? लोग खिताबों के पीछे क्यों इतने हैरान होते हैं? इत्यादि इत्यादि। लेकिन इस समय मुझे इन बातों से मतलब नहीं। मेरे मन में एक नया प्रश्न उठ रहा है और उसका जवाब मुझे कोई नहीं देता। प्रश्न ये है कि सभ्य कौन है और असभ्य कौन? सभ्यता के लक्षण क्या हैं? सरसरी नजर से देखिए तो इससे ज्यादा आसान और कोई सवाल ही ना होगा। बच्चा बच्चा इसका समाधान कर सकता है, लेकिन जरा गौर से देखिए तो प्रश्न इतना आसान जान नहीं पड़ता। अगर कोट पतलून पहनना, टाई हैट कॉलर लगाना, मेज पर बैठकर खाना खाना, दिन में 13 बार कोको या चाय पीना और सिगार पीते हुए चलना सभ्यता है, तो उन गोरों को भी सभ्य कहना पड़ेगा जो शाम को सड़क पर चलते हुए कभी टहलते नजर आते हैं, शराब के नशे से आंखें सुर्ख, पैर लड़खड़ाए हुए, रास्ता चलने वालों को अनायास छेड़ने की धुन। क्या उन गोरों को सभ्य कहा जा सकता है? कभी नहीं। तो यह सिद्ध हुआ कि सभ्यता कोई और ही चीज है, उसका देह से इतना संबंध नहीं है जितना मन से। मेरे इन गिने चुने मित्रों में एक राय रतन किशोर भी हैं। वो बहुत ही सहृदय, बहुत ही उदार, बहुत अधिक शिक्षित और एक बहुत बड़े ओहदेदार हैं। बहुत अच्छा वेतन पाने पर भी उनकी आमदनी खर्चे के लिए काफी नहीं होती। 1/4 वेतन तो बंगले की ही भेंट हो जाता है, इसलिए वो बहुधा चिंतित रहते हैं। यहां तक कि इसके लिए हर साल बजट की किसी दूसरी मद से रुपए निकालने पड़ते हैं। उनके अफसर कहते हैं, इतने दौरे क्यों करते हो? तो जवाब देते हैं, इस जिले का काम ही ऐसा है कि जब तक खूब दौरे न किए जाएं, रियाया शांत नहीं रह सकती। लेकिन मजा तो यह है कि राय साहब वास्तव में उतने दौरे नहीं करते जितने के अपने रोजनामचे में लिखते हैं। उनके पड़ाव शहर से 50 मील पर होते हैं। खेमे वहां गड़े रहते हैं, कैंप के अमले वहां पड़े रहते हैं और राय साहब घर पर मित्रों के साथ गपशप करते रहते हैं। पर किसी की मजाल है कि राय साहब की नेक नियति पर संदेह कर सके? उनके सभ्य पुरुष होने में किसी को शंका नहीं हो सकती। एक दिन मैं उनसे मिलने गया। उस समय वो अपने घसियारे दमड़ी को डांट रहे थे। दमड़ी रात दिन का नौकर था, लेकिन घर रोटी खाने जाया करता था। उसका घर थोड़ी ही दूर पर एक गांव में था। कल रात को किसी कारण से यहां ना आ सका, इसलिए डांट पड़ रही थी। जब हम तुम्हें दिन रात के लिए रखे हुए हैं तो तुम घर पर क्यों रहे? कल के पैसे कट जाएंगे, समझे? जूर एक मेहमान आ गए थे, इसी से ना आ सका, तो कल के पैसे भी उसी मेहमान से ले लेना। सरकार अब कभी ऐसी खता ना होगी। बकबक मत कर हुजूर, 2 रुपए जुर्माना। दमड़ी रोता हुआ चला गया। रोजा बख्शाने आया था और नमाज गले पड़ गई। 2 रुपए जुर्माना ठुक गया। खता यही थी कि बेचारा कसूर माफ कराना चाहता था। ये एक रात को गैर हाजिर होने की सजा थी। बेचारा दिन भर काम कर चुका था, रात को यहां सोया ना था। उसका दंड और घर बैठे भत्ते उड़ाने वालों को कोई नहीं पूछता। कोई दंड नहीं देता, दंड तो मिले और ऐसा मिले कि जिंदगी भर याद रहे, पर पकड़ना तो मुश्किल है। दमड़ी भी अगर होशियार होता और जरा रात रहे आकर कोठरी में सो जाता, फिर किसे खबर होती कि वो रात को कहां रहा। पर गरीब इतना चंट न था। दमड़ी के पास कुल 6 बिस्वे जमीन थी, पर इतने ही प्राणियों का खर्च भी था। उसके 2 लड़के, 2 लड़कियां और स्त्री सब खेती में लगे रहते थे, फिर भी पेट की रोटियां नहीं मयस्सर होती थी। इतनी जमीन क्या सोना उगल देती? अगर सब के सब घर से निकल मजदूरी करने लगते तो आराम से रह सकते थे, लेकिन मौरूसी किसान मजदूर कहलाने का अपमान न सह सका। इस बदनामी से बचने के लिए 2 बैल बांध रखे थे। उसके वेतन का बड़ा भाग बैलों के दाने चारे में कहीं उड़ जाता था। ये सारी तकलीफें मंजूर थी, पर खेती छोड़कर मजदूर बन जाना मंजूर न था। किसान की जो प्रतिष्ठा है वो कहीं मजदूर की हो सकती है, चाहे वो रुपया रोज ही क्यों ना कमाए। किसानों के साथ मजदूरी करना इतने अपमान की बात नहीं। द्वार पर बंधे हुए बैल उसकी मान रक्षा किया करते हैं, पर बैलों को बेचकर फिर कहां मुंह दिखलाने की जगह रह सकती है। एक दिन राय साहब उससे बोले, कपड़े क्यों नहीं बनवाता? कांप क्यों रहा है? सरकार, पेट की रोटी तो पूरी नहीं पड़ती, कपड़े कहां से बनवाऊं? अरे बैलों को क्यों नहीं बेच डालता? सैकड़ों बार समझा चुका हूं, लेकिन न जाने क्यों इतनी मोटी सी बात तेरी समझ नहीं आती। सरकार, बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने लायक न रहूंगा, लड़की की सगाई ना हो पाएगी, टाट बाहर कर दिया जाऊंगा। अरे इन्हीं हिमाकतों से तुम लोगों की दुर्गति हो रही है, ऐसे आदमियों पर दया करना भी पाप है। क्यों मुंशी जी, इस पागलपन का भी कोई इलाज है? जाड़ों मर रहे हैं पर दरवाजे पर बैल जरूर बांधेंगे। धमड़ी ने कहा,
1: जनाब ये तो अपनी अपनी समझ है।
0: अरे ऐसी समझ को दूर से सलाम कीजिए। मेरे यहां कई पुष्टों से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता था, कई हजार रुपयों पर पानी फिर जाता था, गाना होता था, दावतें होती थी, रिश्तेदारों को न्योते दिए जाते थे, गरीबों को कपड़े बांटे जाते थे। वालिद साहब के बाद पहले ही साल मैंने उत्सव बंद कर दिया। अरे फायदा क्या, मुफ्त में 4-5 हजार की चपत पड़ती थी। सारे कस्बे में बवेला मचा, आवाजें कसी गईं, किसी ने नास्तिक कहा, किसी ने ईसाई बनाया, लेकिन यहां इन बातों की परवाह क्या। थोड़े ही दिनों में सारा कोलाहल शांत हो गया। अजीब बड़ी दिल लगी थी, कस्बे में किसी के यहां शादी हो, लकड़ी मुझसे लें। पुश्तों से रस्म चली आती थी, वालिद तो दूसरों से दरख्त मोल लेकर इस रस्म को निभाते थे। मैंने फौरन लकड़ी देना बंद कर दिया। इस पर भी बहुत लोग रोए धोए, लेकिन दूसरों का रोना धोना सुनूं या अपना फायदा देखूं? लकड़ी से ही कम से कम 500 रुपया सालाना की बचत हो गई। अब कोई भूल कर भी इन चीजों के लिए दिक करने नहीं आता। मेरे दिल में फिर से सवाल पैदा हुआ, दोनों में कौन सभ्य है? कुल प्रतिष्ठा पर प्राण देने वाले मूर्ख दमड़ी या धन पर कुल मर्यादा की बलि देने वाले राय रतन किशोर? राय साहब के इजलास में एक बड़े मार्के का मुकदमा पेश था। शहर का एक रईस खून के मामले में फंस गया था। उसकी जमानत के लिए राय साहब की खुशामदें होने लगी, इज्जत की बात थी। रईस साहब का हुक्म था कि चाहे रियासत बिक जाए पर इस मुकदमे से बेदाग निकल जाऊं। डालियां लगाई गईं, सिफारिशें पहुंचाई गईं, पर राय साहब पर कोई असर न हुआ। रईस के आदमियों को प्रत्यक्ष रूप से रिश्वत की चर्चा करने की हिम्मत न पड़ती थी। आखिर अब जब कोई बस न चला तो रईस की स्त्री ने राय साहब की स्त्री से मिलकर सौदा पटाने की ठानी। रात के 10 बजे थे, दोनों महिलाओं में बातें होने लगी, 20 हजार की बातचीत थी। राय साहब की पत्नी तो इतनी खुश हुई कि उस वक्त राय साहब के पास दौड़ी आई और कहने लगी, ले लो, तुम ना लोगे तो मैं ले लूंगी। राय साहब ने कहा, रे इतनी बेसब्र ना हो, वो तुम्हें अपने दिल में क्या समझेगी? कुछ अपनी इज्जत का ख्याल है या नहीं? माना कि रकम बड़ी है और इस समय एक बारगी तुम्हारे आए दिन की फरमाइशों से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन एक सिविलियन की इज्जत भी तो कोई मामूली चीज नहीं है। तुम्हें पहले बिगड़ कर कहना था कि मुझसे ऐसी बेहुदी बातचीत हो तो यहां से चली जाओ, मैं अपने कानों ये सुनना नहीं चाहती। अरे ये तो मैंने किया, बिगड़कर खूब खरी खोटी सुनाई, क्या मैं इतना भी नहीं जानती? बेचारी मेरे पैरों पर सिर रखकर रोने लगी। अच्छा, ये कहा था कि राय साहब से कहूंगी तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। ये कहते हुए राय साहब ने गदगद होकर अपनी पत्नी को गले लगा लिया। अरे अजी न जाने मैं ऐसी कितनी बातें कह चुकी, लेकिन किसी तरह टाली नहीं टलती, रो रो कर जान दे रही है। उससे वादा तो नहीं कर लिया? वादा? अरे मैं तो रुपए लेकर संदूक में रखाई, नोट थे नोट। ओहो कितनी जबरदस्त अहमक हो, ईश्वर तुम्हें कभी समझ देगा भी या नहीं? अब क्या देगा, देनी होती तो ना दे देती। हाँ हाँ मालूम तो ऐसा ही होता है, मुझसे कहा तक नहीं और रुपए लेकर संदूक में दाखिल कर दिए। अरे अगर किसी तरह बात खुल जाए तो मैं कहीं का ना रहूं। तो भाई सोच लो, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं जाकर रुपए लौटा दूं। अरे फिर वही हिमाकत, अरे अब तक जो होना था हो चुका, ईश्वर पर भरोसा करके जमानत लेनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हारी हिमाकत में शक नहीं, जानती हो ये सांप के मुंह में उंगली डालना है। ये भी जानती हो कि मुझे ऐसी बातों से कितनी नफरत है। मैंने दिल में ठान लिया था कि अब इस मामले में हाथ ना डालूंगा, लेकिन तुम्हारी हिमाकत के मारे भाई मेरी कुछ चल कहां पाती है। ठीक है मैं जाकर लौटाए देती हूं, हां और मैं जाकर जहर खा लेता हूं। तो इधर स्त्री पुरुष में यह अभिनय हो रहा था, उधर दमड़ी उसी वक्त अपने गांव की मुखिया के खेत से ज्वार काट रहा था। आज वो रात भर की छुट्टी लेकर घर गया था। बैलों के लिए चारे का एक तिनका भी नहीं है, अभी वेतन मिलने में कई दिन की देर थी, मोल ले न सकता था। घर वालों ने दिन को कुछ घास छील कर खिलाई तो थी, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा, उतनी घास से क्या हो सकता था। दोनों बैल भूखे पड़े थे। दमड़ी को देखते ही देखते दोनों पूंछें खड़ी करके हुंकारने लगे। जब वो पास गया तो दोनों उसकी हथेलियां चाटने लगे। बेचारा दमड़ी मन महसूस कर रह गया, सोचा इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता, सवेरे किसी से कुछ उधार लेकर चारा लाऊंगा। लेकिन जब 11 बजे रात उसकी आंख खुली तो देखा दोनों बैल अभी तक नांद पर खड़े हैं। चांदनी रात थी। दमड़ी को जान पड़ा कि दोनों उसकी ओर उपेक्षा और याचना की दृष्टि से देख रहे हैं। उनकी क्षुधा वेदना देखकर उसकी आंखें सजल हो आईं। किसान को अपने बैल अपने लड़कों की तरह लगते हैं। वो उन्हें पशु नहीं अपना मित्र अपना सहायक समझता है। बैलों को भूखे खड़े देखकर नींद आंखों से भाग गई। कुछ सोचता हुआ उठ बैठा, हंसिया निकाली और चारे की फिक्र में चला। गांव के बाहर बाजरे और ज्वार के खेत खड़े थे। दमड़ी के हाथ कांपने लगे, लेकिन बैलों की याद ने उसे उत्तेजित कर दिया। चाहता तो कई बोझ काट सकता था, लेकिन वो चोरी करते हुए भी चोर न था। उसने केवल उतना ही चारा काटा जितना बैलों को रात भर के लिए काफी हो। सोचा, अगर किसी ने देख भी लिया तो उससे कह दूंगा बैल भूखे थे इसलिए काट लिया। उसे विश्वास था कि थोड़े से चारे के लिए कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं कुछ बेचने के लिए तो काट नहीं रहा, फिर ऐसा निर्दयी कौन है जो मुझे पकड़ ले? बहुत करेगा, अपने दाम ले लेगा। उसने बहुत सोचा, चारे का थोड़ा होना ही उसे चोरी के अपराध से बचाने को काफी था। चोर उतना काटता जितना उससे उठ सकता, उसे किसी के फायदे और नुकसान से क्या मतलब। गांव के लोग दमड़ी को चारा लिए जाते देखकर बिगड़ते जरूर, पर कोई चोरी के इल्जाम में ना फंसाता। लेकिन संयोग से हल्के के थाने का सिपाही उधर जा निकला। वो पड़ोस के बनिए के यहां जुआ होने की खबर पाकर कुछ ऐंठने की टोह में आया था। दमड़ी को चारा सिर पर उठाते देखा तो संदेह हुआ, कितनी रात गए चारा कौन काटता है, हो ना हो कोई चोरी से काट रहा है। डांट कर बोला, कौन चारा लिए जाता है? खड़ा रह, वहीं खड़ा रह। दमड़ी ने चौंक कर पीछे देखा तो पुलिस का सिपाही हाथ पांव फूल गए, कांपते हुए बोला, थोड़ा सा ही काटा है हुजूर, देख लीजिए। अरे थोड़ा काटा है या बहुत, चोरी तो चोरी है, खेत किसका है? जी बलदेव महतो का। सिपाही ने समझा था शिकार फंसा, इससे कुछ ऐंठूंगा, लेकिन वहां क्या रखा था। पकड़कर गांव में लाया और जब वहां भी कुछ हत्थे चढ़ते ना दिखाई दिया तो थाने ले गया। थानेदार ने चालान कर दिया, मुकदमा राय साहब के ही इजलास में पेश किया। राय साहब ने दमड़ी को फंसे हुए देखा तो हमदर्दी के बदले कठोरता से काम लिया और बोले, ये मेरी बदनामी की बात है, तेरा क्या बिगड़ा? साल 6 महीने की सजा हो जाएगी, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ रहा है। लोग तो यही कहेंगे कि राय साहब के आदमी ऐसे बदमाश और चोर है। तू मेरा नौकर ना होता तो मैं हल्की सजा देता, लेकिन तू मेरा नौकर है इसलिए कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मैं ये नहीं सुन सकता कि राय साहब ने अपने नौकर के साथ रियायत की। यह कहकर

0: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद प्रस्तुत करता है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास से कुछ रोमांचक प्रसंग श्रृंखला, आजादी के मुकदमे। आज सुनिए 9 अगस्त सन 1925 की घटना पर केंद्रित काकोरी कांड की तीसरी कड़ी।

हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिंदा।

0: का दिल में है।
1: बनारसी लाल और बनवारी लाल की गिरफ्तारी से पहले पुलिस को पूरी तफ्तीश के दौरान कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला। इन दोनों ने भी पकड़ में आते ही अपने अपने कन्फेशंस रिकॉर्ड करा डाले। कन्फेशंस में पूरे वाकयात बयान किए गए थे। अब तो उनका पूरा नक्शा पुलिस के सामने मौजूद था और पुलिस का एक ही काम रह गया था, वैसे के वैसे वाकयात मुख्तलिफ गवाहों से कराना।
2: हुजूर, मेरा नाम अब्दुल वदूद है, ट्रेन में सोडा वाटर बेचता हूँ। वारदात के रोज मैं उसी ट्रेन में था। काकोर स्टेशन से गाड़ी आगे चली और थोड़ी दूरी पे अचानक रुक गई। गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। मैंने सोचा देखूं तो जरा क्या माजरा है, तो साहब मैं डब्बे से उतर पड़ा। देखता क्या हूँ साहब, 8-10 लोग एक जगह पर जमा है। किसी के हाथ में पिस्तौल है, किसी के पास बंदूक, कोई तिजोरी जैसी चीज तोड़ रहा है, तो कोई हथौड़ा पे हथौड़ा, हथौड़े पे हथौड़ा, और बहुत सारी तोड़ा ताड़ी मची हुई है। कुछ लोग तमंचे चला रहे हैं।
3: ओ ठीक है ठीक है, तुमने किसी की शक्ल भी देखी होगी?
2: हथौड़े चलाने वालों को तो नहीं देख पाया साहब।
3: किसी और की शक्ल देखी या नहीं?
2: हाँ, एक एक की शक्ल, सूरत, एक एक का होलिया अच्छे से याद है।
3: और जेल में भी उन्हें पहचान लिया था तुमने?
2: हाँ साहब, क्यों नहीं पहचानूंगा।
3: यहाँ अदालत में उनमें से कोई मौजूद है, पहचान सकते हो उन्हें?
2: अभी लीजिए साहब। हाँ, एक तो ये रहा साहब, और दूसरा ये रहा, और
3: मिस्टर पंत, योर विटनेस।
4: अब्दुल, ट्रेन काकोरी स्टेशन से किस वक्त रवाना हुई थी?
2: उस रोज तो 8 राइट टाइम था सर, शाम के ठीक 7 काकोरी जल पड़ी थी।
4: अच्छा, पर घड़ी बड़ी तो तुम बांधते ही नहीं।
2: जी साहब, हाँ साहब, कभी बांधी कभी नहीं बांधी। अलबत्ता उस रोज बांधी थी साहब, तभी तो गाड़ी रुकते ही घड़ी देखी, फिर बाहर कूद गया।
4: अंधेरे में?
2: हाँ साहब। नहीं, अंधेरा था मगर इतना नहीं था।
4: फिर भी ना वहाँ कोई स्टेशन था और ना कोई बस्ती, बियाबान जंगल था और लगातार गोलियां चल रही थी, है ना?
2: हाँ साहब, तड़ातड़ गोलियां चल रही थी।
4: और तुम घबरा गए हो? भाई कोई भी घबरा जाता।
2: अपन उनमें से नहीं है साहब, पूरी वारदात देखी अपन ने।
4: शाबाश, पुलिस को ये सब बताया था तुमने?
2: हाँ।
4: वारदात के कितने दिनों बाद? 8 बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद?
2: बताया तो वारदात के बाद ही था हुजूर, अब कितने दिनों बाद याद नहीं सर।
4: अच्छा अच्छा अच्छा, आज से पहले भी तो तुम अदालत आ चुके हो ना, मुलजिमों को आते जाते भी देखा होगा।
2: साहब, हाँ साहब। नहीं साहब।
4: जेल में भी तो तुम किसी को भी पहली बार नहीं पहचान पाए थे, है ना?
2: नहीं साहब, पहचान तो लिया था।
4: 3-3 मर्तबा गलत लोगों की शिनाख्त के बाद, राइट?
2: इंसान हूँ साहब, भूल चूक तो हो ही जाती है।
4: देखो, तुमने पुलिस के कहने पर बयान दिया है, ये बात सही है या नहीं?
2: अब साहब, अपन को जो कुछ बताना था बता दिया साहब, बस।
4: तुम ना कंपार्टमेंट से बाहर निकले थे और ना तुमने कुछ देखा, सही है ना?
2: अरे साहब, कैसे बताऊं, निकला था हुजूर, नीचे उतरा था।
4: उतरे और गोलियां चलती देख फौरन कंपार्टमेंट में घुस गए, 1-2 सेकंड में
2: तो पता नहीं साहब। हाँ बस, उतरे और फटाक से चढ़ गए डब्बे में।
1: ये कोई मामूली गवाह नहीं था। मौकाए वारदात पर बिस्मिल की मौजूदगी का तन्हा चश्मदीद गवाह था बेंडर। किस कदर दिलेर और जीवट वाला नौजवान था जो दंदनाती गोलियों की परवाह किए बगैर पूरी वारदात को देखने का दावा कर रहा था, लोगों की शक्ल देखने का भी दावा कर रहा था। ये और बात है कि तब दूर दूर तक अंधेरा था और मासूफ खुद खासी दूरी पर थे, वो भी 2 सेकंड के लिए। भला कितने काबिल एतबार था ये सो कॉल्ड गवाह। और इसके बाद हुई गवाही ढोर डंगर चराने वाले चंद छोकरों की।
5: बबलू, ढोर डंगर चराते सरकार भाई, रे थे अमेठिया गांव में, रेल की पटली तरफ ढोर ले जाते। उ दिन भी भाई हते, कलुआ और सितलबा भी हमारे संगे हते। तारीख नहीं मालूम सरकार, दिन चढ़े की बात है, बहुत से बाबू लोग दिखाने हुआ पुल के हिया, का कर रहे थे जे पता नहीं, फिर काकोरी की तरफ चले गए और रात को रेलगाड़ी लुट गई। अरे राम, इनमें कौन कौन लोग हते जे हमें नहीं मालूम सरकार।
4: नो क्रॉस,
3: योर ऑनर, नाउ मे आई कॉल द की विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन, मिस्टर बनवारीलाल। तो आपने मजिस्ट्रेट साहब के सामने अपना इकबालिया बयान दर्ज कराया था, देखिए क्या यही वो बयान है?
6: जज साहब, ये वो बयान है जरूर, लेकिन इसमें कही गई एक एक बात गलत है, बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है, झूठ है मिलोर्ड।
3: मिस्टर बनवारीलाल, ये बताइए कि ये बयान आपने मजिस्ट्रेट को दिया था या नहीं? हाँ या ना?
6: हाँ, ये बयान लिखा तो गया है मेरी मौजूदगी में, लेकिन पूरा मजमून वो था जो मैंने पुलिस के दबाव में बयान किया, जिसमें कई बातें झूठी थी लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती मेरे मुंह से कहलवाई। मजिस्ट्रेट साहब, मैं अपने उस इकबाले जुर्म के बयान से इनकार करता हूँ, इनकार करता हूँ मिलोर्ड, इनकार करता हूँ।
7: हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन
8: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
7: साम्राज्यशाही का
8: नाश हो, नाश हो।
7: डाउन विद, डाउन विद
8: ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर।
1: निचली अदालत में पेश 43 लोगों में से कुल 20 लोगों को एक साजिश के तहत राजद्रोह करने और उस मकसद से डाके डालने व कत्ल करने के इल्जाम लगाकर सेशंस कमिट कर दिया गया। इस सेशंस ट्रायल के लिए भी एक स्पेशल सेशंस जज मुकर्रर किया गया। स्पेशल जज मिस्टर हैमिल्टन की एक और खासियत थी कि उनका ताल्लुक ज्यूडिशियरी से न होकर सीधा सीधा एग्जीक्यूटिव से था। वो एक ICS थे, यानी बेहद पक्के नौकरशाह। ऊपर से थे भी अंग्रेज, यानी हुकूमत ने हर तरह से मुलजिमान को कड़ी से कड़ी सजाएं दिलाने का पूरा और पक्का बंदोबस्त कर डाला था। ये एक तरीका था ज्यूडिशियरी में सरकारी घुसपैठ का, अपने मनचाहे इरादों पर मुकदमे का ढोंग रचाकर अदालत की मुहर लगवाने का। ये काकोरी केस हुकूमत की इसी दोरंगी नीति की जीती जागती मिसाल था, जिसमें सेशंस जज की अजीम कुर्सी पर बैठकर मिस्टर हैमिल्टन ने जज से ज्यादा एक प्रोसिक्यूटर की भूमिका निभाई। अपने पद की गरिमा का खून करते हुए पुलिस और प्रोसिक्यूशन को हर मुमकिन मदद पहुंचाने में ना कोई झिझक महसूस की और ना ही कोई शर्म।
7: भारत माता की जय, भारत माता की
8: जय,
7: भारत माता।

0: अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है।
1: ऑर्डर।
2: कोर्ट में गवाह के तौर पर बनारसी को पेश किया गया।
1: आपका नाम?
3: बनारसी लाल।
1: हाजिर अदालत मुल्जिमान में से किसी को जानते हो?
3: जी हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, जोगेश चटर्जी, मुकंदी लाल, बल्कि मैं तो इन सभी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सन 1921 में मुझे शाहजहांपुर कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी बनाया गया और तभी से मेरी जान पहचान राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान से हुई। हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में हम तीनों साथ साथ शरीक हुए। फिर अगले साल गया अधिवेशन भी अटेंड किया, वहीं प्रेम किशन खन्ना एक्यूज से भी मुलाकात हो गई। राम प्रसाद अक्सर मुझे और अशफाक को पढ़ने के लिए किताबें दिया करते थे।
1: किस किस्म की किताबें?
3: रेवोल्यूशनरी किताबें। कुछ किताबें तो खुद उनकी ही लिखी हुई थी, जैसे अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली, रूस की देवी कैथराइन, फ्रांस की राज्य क्रांति, बोल्शेविका के कारनामे, कम्युनिज्म क्या है, निहिलिज्म की, ये सब वगैरह इस तरह की किताबें, बहुत सारी किताबें देते थे।
1: और क्या क्या बातें करते थे?
3: यही कि हिंदुस्तान कैसे आजाद हो, अक्सर रूस की कैथराइन का हवाला देकर बताते थे, जिस तरह गांव गांव किसानों के बीच घूमकर उसने उन्हें जारशाही के खिलाफ संगठित किया, उसी तरह हमें भी किसानों और मजदूरों में जागृति फैलाना चाहिए और उसी तरह का इनकलाब लाना चाहिए जैसे सोवियत रूस में आया, नौजवानों को इकट्ठा करना चाहिए वगैरह वगैरह।
1: सिर्फ बातें किया करते थे बस?
3: जी नहीं, 1924 की बात है, बारिश का मौसम शुरू ही हुआ था। बंगाल से ये जोगेश चंद्र चटर्जी शाहजहांपुर आए थे, तब इन्होंने अपना कुछ और नाम बताया था। हम सब इन्हें राय मोशाय या राय दादा के नाम से ही जानते थे। राम प्रसाद के घर इन्होंने एक मीटिंग ली थी जिसमें हम लोग और मुलजिम राम दुलारे वगैरह थे।
1: ये बताओ कि ये मीटिंग किस सिलसिले में थी?
3: जोगेश दादा ने एक क्रांतिकारी पार्टी शाहजहांपुर में कायम करने की सलाह दी थी। कहा था कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से मार भगाने के लिए हमें बड़े पैमाने पर हथियार इकट्ठे करने पड़ेंगे, जनता में बांटने होंगे। ये हथियार जुटाने के लिए जरूरत पर हमें डाके भी डालने पड़ेंगे। ब्रिटिश राज कैसे उखाड़ना है, जनता का राज क्यों कायम करना है, इन बातों का खुफिया तरीके से प्रचार प्रसार करना जरूरी है। पर्चे पंपलेट छापने होंगे, हर जगह बांटने होंगे वगैरह वगैरह। पार्टी के लोग अपने असली नामों से नहीं बल्कि बदले हुए नामों से जाने जाएंगे, कोई एक दूसरे का असल नाम नहीं पूछेगा। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो ये कही साहब कि अगर पार्टी के किसी मेंबर की गलती या गद्दारी से पार्टी को नुकसान पहुंचा तो उसे सीधे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बिस्मिल साहब और राम दुलारे जी ने उनकी हर बात का बड़े जोरों से समर्थन किया और इस तरह क्रांतिकारी पार्टी बना ली गई। राम प्रसाद यूपी का ऑर्गेनाइजर बनाया गया और अशफाक को उनका राइट हैंड और मुझे सिंपथाइजर।
1: व्हाट? जस्ट सिंपथाइजर?
3: जी हाँ, ये क्या प्रोग्राम बनाते थे क्या नहीं बनाते थे मुझे कोई भनक तक नहीं। हाँ, जब कभी उन्हें ये लगा कि इससे फला काम कराया जा सकता है तब अलबत्ता कोई ड्यूटी लगा देते थे, लेकिन उसका कोई सर पर मुझे नहीं बताया जाता था।
1: यानी बनारसी बाबू, एक तरह से इन्हें आप पर पक्का भरोसा नहीं था।
3: पता नहीं, हालांकि कभी हम बिस्मिल साहब के बड़े खास दोस्त हुआ करते थे। खैर।
1: अच्छा, इतना होने पर भी आप इस पार्टी से जुड़े रहे?
3: मजबूरी थी ना, उस पहली मीटिंग में जाता ना इस झंझट में पड़ता।
1: मतलब आप दिल से रेवोल्यूशनरी पार्टी के साथ नहीं थे?
3: मैं तो कांग्रेस पार्टी का आदमी था, अहिंसा के रास्ते चलने वाला। ये रेवोल्यूशनरी लोगों से हमदर्दी जरूर थी, पर वो भी एक हद तक। बाकी ये बम धमाके, गोलीबारी, लूटपाट, इनसे मेरा क्या वास्ता?
4: तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि फिर भी इस पार्टी में शामिल रहे?
3: बताया ना आपको, ये जोगेश दा पहली मीटिंग में धमका जो चुके थे, उधर किसी ने गलती या गद्दारी की, इधर इन्हें ताड़ से गोली मार दी। इसीलिए तो मैंने सिर्फ सिंपथाइजर बने रहने में ही भलाई समझी। सर, एक बात बताऊं आपको, ये कितनी भी सीक्रेसी बरतते रहे हों, मगर मालूमात तो मैं कैसे ना कैसे कर ही लेता था।
1: क्या मालूमात कर पाते होंगे भला, पार्टी के इनर सर्कल में तो आप कभी रहे नहीं।
3: ऐसा है सर जी, इनर सर्कल वालों के अलावा किसी को नहीं मालूम था क्रांतिकारी नाम से छपा वो येलो पंपलेट किसकी कारस्थानी थी। पुलिस यही समझती रही कि पूरी पार्टी के लोगों ने मिलकर उसे तैयार किया होगा, मगर असलियत यह है कि इसे बिना किसी से सलाह मशवरा किए एक ही शख्स ने तैयार किया था, और वो थे सचिंद्रनाथ सान्याल।
1: ये जो चार जगह डाके डाले गए, इनके बारे में कुछ बता सकते हो?
3: चारों डकैतियां पार्टी ने डाली, एक में तो मुझे भी ले गए थे।
1: अच्छा, कहाँ और ले गए थे का क्या मतलब?
3: बिजपुरी वाले डकैती में मैं बीच बीच में इन लोगों से यूं ही ऊपरी मन से कह दिया करता था, अरे भाई हमें भी तो किसी एक्शन में हिस्सा लेने का मौका दो, अब हमें क्या पता था ले ही जाएंगे ससुरे। लेकिन इस एक वारदात के अलावा मैं किसी और डकैती में शामिल नहीं हुआ।
1: ओहो, तो आप बिजपुरी डकैती में शामिल थे। अच्छा, अदालत को ये बताइए उसमें कौन कौन शामिल थे और क्या क्या हुआ था?
3: अब देखिए सुनिए, शुरू से बताता हूँ। हुआ ये कि बमरौली में डाका डालने के बाद एक दिन राम प्रसाद बिस्मिल ने मुझे कुछ सोने और चांदी के जेवर थमा दिए और कहा कि इन्हें गलवा लाओ। मैंने गलवा दिए, वो सोना चांदी बाद में बेचा भी गया। ये बात है सन 1924 की, क्रिसमस के बाद की। हाँ, साल भर भी नहीं बीता था कि एक दिन फिर बिस्मिल ने मुझसे कहा, भाई फंड्स की जरूरत है, कहीं ना कहीं डाका डालना पड़ेगा। मैंने पूछा कि भाई हमने जो जेवर गलवा बेचे थे वो सारी रकम कहाँ गई? तो बोले उस पर्चे क्रांतिकारी की छपाई वगैरह में खर्च हो गई। खैर, बिजपुरी में टोटी कुर्मी के घर में डाका डाला गया। बिस्मिल, अशफाकुल्ला, मनमत नाथ, रामकिशन खत्री, ये सब शामिल थे। 10-12 ऐसे भी लोग थे जिन्हें मैंने पहली बार देखा। वो इसी इलाके में लूटमार करने वालों में से एक थे जिन्हें मदद के लिए शामिल किया गया था साहब।
1: तो बनारसी बाबू, दिगर डकैतियों के बारे में क्या जानते हो?
5: ऑब्जेक्शन योर ऑनर, गवाह से बाकी तीन डकैतियों के बारे में सवाल नहीं पूछे जा सकते। सच हियरसे इज नॉट एडमिसिबल एविडेंस।
4: दैट विल बी सीन आफ्टरवर्ड्स, लेट हिम कंटिन्यू।
3: धन्यवाद सर जी। बिजपुरी से पहले बमरौली गांव में डकैती की वारदात बलदेव नाम के एक साहूकार के घर पर अंजाम दी गई। इसमें बिस्मिल, अशफाकुल्ला, मनमत नाथ, रामकिशन खत्री, इन सबके अलावा ठाकुर रोशन सिंह ने भी हिस्सा लिया था। वहां मोहन पहलवान नाम का आदमी मारा गया। इसके बाद एक डाका द्वारकापुर में डाला गया। फिर काकोरी वाली ट्रेन में डकैती हुई। इसे भी बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, अशफाक, मनमत नाथ मुकंदी, जोगेश चटर्जी, ये सब थे। इन्हीं सब ने मिलकर इस कारनामे को अंजाम दिया था।
1: अच्छा, ये बताओ कि काकोरी वाली डकैती के बारे में और क्या जानते हो?
3: बहुत कुछ। अब कैसे बताएं साहब, इस डकैती के बाद अशफाक ने मुझे बताया कि एक गड़बड़ हो गई। गोविंद चरण कार अपनी चादर ट्रेन में ही छोड़ आया। बाद में वो चादर पुलिस ने बरामद की और लालता धोबी की शिनाख्त पर गोविंद कार गिरफ्तार कर लिए गए। मुझे मालूम है डकैती की तैयारी के लिए कुछ लोग लखनऊ की छेदीलाल धर्मशाला में रुके थे। मुकंदी लाल वगैरह करीब ही कश्मीरी होटल में रुके थे। यहाँ मुकंदी ने एक बड़ी बुरी हरकत की साहब। एक तो होटल की बुकिंग झूठे नाम से करवाई, वो भी मेरे नाम से, जबकि उस रोज होटल क्या मैं लखनऊ शहर में ही नहीं था।
4: ऑर्डर ऑर्डर।
1: अच्छा, वहाँ कुछ हथियारों की शिनाख्त की थी?
3: जी हाँ, बिजपुरी डकैती में जो राइफलें इस्तेमाल हुई थी उन्हें मैंने राजकुमार सिन्हा मुलजिम के कमरे में पहचाना था। इसके अलावा अनुद्दीन साहब मजिस्ट्रेट को मैंने बिजपुरी की वो सारी जगह भी दिखाई जिनका ताल्लुक उस डकैती से था।
1: आखिर में ये बताइए कि इस रिवोल्यूशनरी पार्टी में सबसे ज्यादा किसकी बात मानी जाती है?
3: राम प्रसाद बिस्मिल की। पूरी पार्टी ही इनके सारे पर चलती थी, समझिए ये साहब पार्टी के रिंग लीडर थे। हालांकि अशफाक ने ये बात मुझसे नहीं कही, लेकिन मुझे मालूम है आखिर तक वो इनसे कहते रहे, राम ट्रेन डकैती से कुछ हासिल नहीं होने वाला सिवाय नुकसान के, इसका इरादा छोड़ दो। कितनी दलीलें थी, कितना समझाया, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। ये हजरत तो एक बार जो ठान लेते हैं वही करके रहते हैं। कोई साथ आए तो ठीक, कोई ना आए तो ठीक।
1: योर विटनेस मिस्टर पंत।
5: बनारसीलाल, तुमने बताया रेवोल्यूशनरी पार्टी में शामिल होने से पहले शाजापुर कांग्रेस कमेटी के तुम सेक्रेटरी थे, फिर कांग्रेस पार्टी तुमने खुद छोड़ी या तुम्हें निकाल दिया गया?
3: अरे हमने खुद ही इस्तीफा दे दिया, भला हमें क्यों निकाला जाता?
5: क्योंकि तुम्हारी शराबखोरी की खबर पार्टी के नेताओं तक पहुंची, ये भी कि पार्टी के चंदे की भारी रकम तुमने शराब में बहा डाली।
3: अरे ये आप कैसे बोल सकते हैं, ये सब झूठ है साहब। अरे बिल्कुल झूठ है।
4: ऑर्डर ऑर्डर।
5: और इसके अलावा डकैती और लूटमार करने वालों का एक ग्रोह भी तुमने बना रखा था, सही है या झूठ?
3: झूठ, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठा इल्जाम है। आप मेरी तौहीन कर रहे हैं।
5: और इसी सिलसिले में कई फौजदारी मामले भी तुम पर चले थे, कह दो ये भी झूठ है?
3: अब मामले चले तो क्या, मुझे तो छोड़ दिया गया, बाइज्जत बरी होता रहा हूँ जनाब।
5: पुलिस की मेहरबानियों से, क्योंकि तुमसे बतौर मुखबिर पुलिस को रेवोल्यूशनरी पार्टी की अंदरूनी खबरें मिलते रहने की उम्मीद थी।
3: गलत, भला बताइए, हम और पुलिस की मुखबरी करते?
5: हाँ, और तभी गिरफ्तार होते ही आनन फानन में तुमने इकबालिया बयान दिया और मुखबिर बन गए। आज तुम एक मुखबिर की हैसियत से ही बयान दे रहे हो। खैर, बिजपुरी के अलावा जिन तीन डकैतियों के बारे में तुमने जो भी कुछ बताया वो तुमने खुद तो नहीं देखा था?
3: खुद नहीं,
5: क्योंकि तुम उनमें शामिल ही नहीं थे।
3: हाँ, शामिल तो नहीं था।
5: तो जो तुमने बताया वो दूसरों से सुना था?
3: लेकिन एक एक बात सच थी।
5: हो सकता है तुम्हें यकीन हो, लेकिन अदालत सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करती। खैर, इस तरह पार्टी के अंदरूनी मामलों की भी तुम्हें कभी सीधी सीधी जानकारी नहीं रही?
3: नहीं, मतलब रही थी जानकारी
5: जो तुमने दूसरों से सुनी थी, सही? क्योंकि बकौल तुम्हारे ये लोग अंदर की बातें तुम्हें कभी बताते नहीं थे ना।
3: अब ये बात तो थी, फिर भी
5: इधर उधर से पूछकर ही तसल्ली कर लेते होगे।
3: अब और क्या कर सकते थे।
5: सही है, ठीक है बनारसी लाल, अब आप जा सकते हैं।
4: कॉल द नेक्स्ट विटनेस।
1: योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के अगले गवाह हैं मिर्जा अहमद शाह।
3: मेरा नाम मिर्जा अहमद शाह है। जिस रात काकोरी के करीब डकैती का वाकया हुआ, मैं उसी ट्रेन में सफर कर रहा था।
1: आपके साथ कोई और था?
3: जी हाँ, अहमद अली वकील थे जो अपनी बेगम के साथ लखनऊ जा रहे थे। उनकी बेगम जनाना डब्बे में थी।
1: फिर क्या हुआ?
3: फिर काकोरी से ट्रेन कुछ ही दूरी पर चली होगी, अचानक रुक गई। बाहर से गोलियां चलने की आवाजें आ रही थी। कोई आदमी चिल्ला चिल्ला कर मुसाफिरों को खबरदार कर रहा था, अपनी जगह से कोई ना हिले, हम किसी को जान माल का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ सरकारी रुपया ले जाना हमारा मकसद है, वगैरह वगैरह। अब हम सब तो सकते में आ गए, तभी किसी औरत के चीखने पुकारने की आवाजें सुनी। गालिबन वकील साहब की बेगम रही होंगी। हाँ, वकील साहब एकदम बेचैन हो उठे और बाहर जाने लगे। मैंने और दीगर लोगों ने उन्हें रोकना चाहा। अरे भाई रुक जाइए, बाहर ना निकलिए, गोलियां चल रही हैं, क्या कर रहे हैं आप? लेकिन एक तो जवान खून, ऊपर से नई ब्याहता की पुकार, रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं। या अल्लाह, कहने लगे मेरे होते बीवी पे आँच आए और मैं डर के बैठा रहूं, नामुमकिन। देखता हूँ एक एक को अभी, कह के उतर गए डब्बे से।
1: इसके बाद क्या हुआ?
3: होना क्या था जनाब, आ गए गोलीबारी की चपेट में।
1: आपने देखा?
5: ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ही कांट आस्क सच अ लीडिंग क्वेश्चन।
4: I don't think so. After all, the witness has to be asked as what you observed.
1: Thank you, Your Honor. The witness has himself said, "Aa gaye golibari ki chapet mein." Naturally, either he must have or must not have seen it.
0: He saw nothing. Mirza ji to committal court mein hi khidkiyan band karaye. Inqilab! Zindabad! Inqilab! Zindabad! Inqilab! Zindabad!
4: Mr. Mullah, repeat your question.
1: Your Honor. वकील साहब आपके सामने डब्बे से बाहर चले गए, इसके बाद क्या हुआ?
3: बात का कुछ पता नहीं जनाब, सबने फटाफट खिड़कियां जो बंद कर डाली थी।
4: ओह, खिड़की बंद करने के बाद नहीं देखा? ओके, लेकिन पहले तो देखा होगा।
3: गाड़ी बीच जंगल में थी, गुप्पू अंधेरा था, बस कभी कभी कोई चिंगारी सी नजर आ जाती थी फूटती हुई गोलियों की, बस।
5: वकील साहब बेगम को बचाने चल दिए क्या खाली हाथ?
3: सवाल ही पैदा नहीं होता, हमेशा लाइसेंसी राइफल रखते थे अपने साथ, दौड़ से लोड किया और कूद के बाहर। मैं चिल्लाता रहा, अरे मियां सेफ्टी लॉक तो लगा लेते हैं, लेकिन वो जनाब कहां सुनते हैं हमारी।
5: ओहो, तो बंदूक तो आप भी रखते होंगे?
3: 33 स्प्रिंगफील्ड हॉलैंड एंड हॉलैंड है जनाब, लेकिन लोड करते ही सेफ्टी लॉक पहले लगा लेते हैं। हाँ, वैसे अमूमन साथ लेकर नहीं चलते हम। हाँ,
5: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात तो बताइए, सुना है अगर लॉक ना हो तो लोडेड गन भी बड़ी खतरनाक होती, कहीं पैर वैर फिसल जाए या गन किसी चीज से टकरा जाए, दौड़।
3: तब तो जिसके हाथ में है उसी का काम तमाम कर सकती है।
5: सही कहा आपने। अच्छा वकील साहब, की लाश का पोस्टमार्टम तो हुआ होगा?
3: नहीं साहब, उस अफरा तफरी में होश कहां था किसी को।
5: उनकी राइफल तो पुलिस ने जब्त कर ली होगी।
3: हाँ साहब बेशक, वो तो रख ली पुलिस ने। लाश भी डॉक्टरी के बाद हमें सौंप दी, कफन दफन सब हमी ने कराया।
1: वाह पंत साहब वाह, मान गए आपको, आपने तो कमिटल कोर्ट में खिड़कियां बंद करा दी। यहाँ उनकी बंदूक उन्हीं के हाथों चलवा भी दी और अपनी ही गोली से शहीद भी करवा दिया। गजब करते हैं आप।
4: कॉल द नेक्स्ट विटनेस।
6: ब्रह्मा सिंह हाजिर हो।
7: मेरा नाम ब्रह्मा सिंह है, सीआईडी में एसआई की पोस्ट पर हूँ। 31 सितंबर 1925 को मेरठ के वैश्य अनाथालय में रेवोल्यूशनरी पार्टी की खुफिया मीटिंग होने वाली थी। एसपी हाटन साहब ने उस मीटिंग में शामिल होने वालों पर नजर रखने की मेरी ड्यूटी लगाई थी। पुलिस ने फेरू सिंह कांस्टेबल भी मेरे साथ किया था। 13 सितंबर को मैं अनाथालय के मैन गेट से निगरानी कर रहा था।
1: अच्छा इंस्पेक्टर साहब
7: जी,
1: तो आपने वहाँ कुछ देखा?
7: वहाँ मैनेजर विष्णु शरण दुबलिश शाम के वक्त 7 लोगों के साथ क्वार्टर से बाहर आए और करीब घंटा डेढ़ घंटा बाद फिर उसी क्वार्टर में लौट गए। दूसरे दिन सवेरे ये लोग क्वार्टर से बाहर निकल कर चले गए।
1: अच्छा ये बताओ
7: जी,
1: क्या विष्णु शरण दुबली से इस वक्त यहाँ मौजूद है?
7: जी हाँ।
1: अच्छा और जिन 7 लोगों को तुमने देखा था उन्हें भी पहचान लोगे?
7: जी हाँ। हाजिर अदालत, मुलजिम विष्णु शरण दुबलिस वही शख्स है जिसके क्वार्टर में उस रोज हाजिर अदालत मुलजिमान राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, दामोदर स्वरूप सेठ, रामकिशन खत्री, बनवारी लाल, मनमथ नाथ, सचिन बख्शी वही लोग हैं जिन्हें उस रोज वहां देखा था।
1: ये लोग वहां क्या कर रहे?
7: खुफिया मीटिंग कर रहे थे सर। इसी खुफिया मीटिंग में इन सब ने मुख्तलिफ डाकेट डालने की साजिश रची थी।
5: साजिश रचे जाने की बात कैसे कह सकते हो तुम?
7: एसपी हाटन साहब ने ऐसा ही बताया था।
4: ऑर्डर ऑर्डर।
5: देखो ब्रह्मा सिंह, लखनऊ से पहले तुम्हारी पोस्टिंग अलग अलग देहाती इलाकों में होती रही थी।
7: जी हाँ।
5: लखनऊ आने से पहले सीआईडी ने भी तुमसे कभी कोई काम नहीं लिया था।
7: हाँ साहब।
5: मेरठ केस ड्यूटी से करीब 20 दिन पहले ही लखनऊ भेजे गए थे ना तुम?
7: सही है।
5: इससे पहले इन क्रांतिकारियों के बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं थी?
7: मुझे कोई जानकारी नहीं थी।
5: ना तो इन्हें नाम से जानते थे और ना शक्ल से?
7: नहीं साहब, नाम तो बता दिए थे कप्तान साहब ने।
5: जरूर बताए होंगे, लेकिन तुम किसी को शक्ल से नहीं जानते थे क्योंकि ऐसा मौका कभी आया नहीं था। ठीक है ना?
7: ठीक है साहब, मगर फेरू सिंह मेरे साथ था ना।
5: अच्छा अच्छा, तो फेरू सिंह ने तुम्हें बताया, तुम खुद किसी को नहीं जानते थे, राइट?
7: अब फेरू सिंह कुछ को जानता था।
5: कुछ को मतलब क्या?
7: कुछ को।
5: और किस किस का नाम बताया था उसने तुम्हें?
7: याद नहीं साहब।
5: ना फेरू सिंह किसी को जानता था और ना तुम। अभी जिन जिन के नाम बताए हैं जाओ उन्हें छू छू कर नाम बताओ।
7: जी जी।
5: नहीं बता सकते? सच तो यह है कि तुमने इनमें से किसी को वहां नहीं देखा। अफसरों के दबाव में झूठा बयान दे रहे हो तुम, ठीक या गलत?
7: जी जी।

अभी आप आजादी के मुकदमे श्रृंखला में काकोरी कांड पर केंद्रित कार्यक्रम की तीसरी कड़ी सुन रहे थे। प्रस्तुति सुधा अनुपम। ये कार्यक्रम रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किया गया।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूं आज का भारत भारती कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं युगल ध्रुपद गायन। कलाकार हैं अमिता सिन्हा महापात्रा और जानवी मुसलकर।

आज के इस कार्यक्रम में आपने युगल ध्रुपद गायन अमिता सिन्हा महापात्रा और जानवी मुसलकर से सुना। अब आज का भारत भारती कार्यक्रम खत्म करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।

और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति कव्वाली। ना सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज, हंसते हंसते हमें जालिम ना रुलाना हरगिज।

और लीजिए अब सुनिए ये देशभक्ति रचना, आओ वीरो समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा, शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। लीजिए सुनिए तेरी अमृत आराधना, भारत न खो जाए कहीं। सौ सौ युगों की साधना, भारत न खो जाए कहीं।

हम अहिंसा के पुजारी हैं मगर बुजदिल नहीं, कायरों से आज तक ये काम है शामिल नहीं, आज मिटने को न हो जो वो दिल नहीं। हम अहिंसा के पुजारी हैं मगर बुजदिल नहीं। आइए सुनते हैं इसी गीत को।

देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल। सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। आइए सुनते हैं गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की इस रचना को।

कहते हैं अलविदा इस जहान को, जाकर खुदा के घर फिर आया ना जाएगा। कहते हैं अलविदा इस जहान को।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत प्रमिला के साथ। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: शुभ संध्या, नमस्कार। मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज की सांध्यकालीन प्रसारण सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, सांध्यकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो उसके पहले आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से आपको परिचित करवा दूं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि, उसके बाद भक्ति संगीत का प्रसारण होगा। शाम 6 बजे वतन का राग कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे भगवती चरण बोहरा की। बाल सभा कार्यक्रम में बच्चे सुनेंगे कि खेलना क्यों जरूरी है। प्रसारण का समय 6:30, हमारी सेना हमारा गर्व, ये कार्यक्रम शाम 7 बजे प्रसारित होगा। इसमें आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध सन 1971। हमारा विशेष कार्यक्रम शाम 7:30 होगा, इसमें आप सुनेंगे नाटक शहीद भगत सिंह की तीसरी कवि मार्च शैली में, ये नाटक। देश के संस्थान कार्यक्रम में DRDO की चर्चा होगी रात 8 बजे। 8:30 बजे याद करो कुर्बानी कार्यक्रम में हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर की। रेडियो रिपोर्ट का वक्त होगा रात 9 बजे और 9:30 बजे से मिलेगा धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद की 57। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और उसके बाद आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, कहते हैं वही मनुष्य जीवन में ऊपर उठ सकता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा होता है। तो आइए हम भी अपनी जड़ों की ओर चलें, वेदों उपनिषदों के ज्ञान को सुनें। कार्यक्रम का नाम अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 126वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं कक्षीवान दैर्घतमस, स्वनय भावयव्य, रोमशा और देवता हैं स्वनय भावयव्य, रोमशा और छंद है त्रिष्टुप और अनुष्टुप।
1: अमंदांत सोमान प्रभरे मनीषा सिंधावधि क्षियतो भाव्यस्य यो मे सहस्र ममिमीत सवान तूर्तो राजा श्रव इच्छमानः। हिंसादि कष्टों से परे जिस राजा भाव्य ने कीर्ति की कामना से युक्त होकर हमारे लिए सहस्रों यज्ञों को उत्पन्न किया, उस सिंधु नदी के किनारे वास करने वाले नरेश के लिए हम ज्ञान से भरे स्तवनों का विवेक बुद्धिपूर्वक उच्चारण करते हैं। शतम राज्ञों नाधमानस्य निष्कांक्षतमश्वान् प्रयतान् सद्य आदम शतम कक्षीवाम् असुरस्य गोनाम् दिवि श्रवो जरमा ततान। कक्षीवान ने स्तोता और धनदाता राजा से 100 स्वर्ण मुद्राएं, 100 वेगशाली अश्व तथा 100 श्रेष्ठ वृषभ ग्रहण किए। इससे उस नरेश की स्वर्गलोक में चारों ओर अक्षुण्य कीर्ति फैल रही है। उपमा श्यावाह स्वनयेन दत्ता वधूमन्तो दशरथासो अस्थुः षष्टिः सहस्रमनु गव्यमागात् सनत् कक्षीवाम् अभिपित्वे अहनाम। स्वनय द्वारा प्रदत्त श्रेष्ठ वर्णों के अश्वों से युक्त और श्रेष्ठ स्त्रियों से युक्त 10 रथ हमारे यहाँ आए हैं। दिन की प्रारंभिक वेला में राजा से कक्षीवान ने 60,000 गौओं को प्राप्त किया। चत्वारिंशत् दशरथस्य शोणाः सहस्याग्रे श्रेणीं नयन्ति मदच्युतः कृशनावतो अत्यान् कक्षीवन्त उदमृक्षन्त पज्राः। हजारों की पंक्ति के आगे 10 रथों को 40 घोड़े खींचे ले जा रहे हैं। अन्नयुक्त घास खाकर पुष्ट हुए स्वर्णालंकारों से युक्त जिनसे मद टपकता है ऐसे घोड़ों को कक्षीवंत अपने वश में करते हैं। पूर्वा मनु प्रयति माददे वस्त्रीन न्युक्ताम अष्टावरिधायसोगाः सुबंधवो ये विश्या इव व्रा अनस्त्वंतः श्रव एशंत पज्राः। हे अन्नादि से पुष्ट श्रेष्ठ आचरण युक्त बंधुओं, आपके लिए हमने 4-4 अश्वों तथा वैभवों से युक्त 8 और 3 11 अर्थात 10 इंद्रियां, 11वां मन को अगणित गौओं पोषण देने वाली धाराओं सहित प्रथम अनुदान के रूप में प्राप्त किया है। ये सब प्रेम पूर्वक रहने वाली प्रजाओं परिवारों की तरह रहकर रथादि युक्त होकर श्रेय की कामना करें। आगधिता परिगधिता या कशी केव जंगहे ददाति महियम यादुरी याशूनाम भोज्याशता। मेरी सहधर्मिणी मेरे लिए अनेक ऐश्वर्य एवं भोग्य पदार्थ उपलब्ध कराती है। यह सदा साथ रहने वाली, गुणों को धारण करने वाली मेरी सहस्वामिनी है। उपोप मे परा मृषमा मे दभ्राणी मन्यथाः सर्वाहमस्मि रोमशा गंधारीणा मिवाविका। हे पतिदेव, आप मेरे पास आकर बार बार मेरा स्पर्श करें, मेरे कार्यों को अन्यथा न लें। जिस प्रकार गंधार की भेड़ रोमों से भरी होती है, उसी प्रकार मैं गुणों से युक्त प्रौढ़ हूं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के
2: 126वें सूक्त से वाचन।
0: प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
3: ये था आपको आपकी जड़ों से जोड़ता कार्यक्रम अक्षय निधि। रेडियो आजाद हिंद की इस प्रसारण सभा में बहुत कुछ है खास आगे आपके लिए। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए। श्रोताओं, समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। आइए

सनातन प्रश्न है जो हर कालखंड में मानव मन को मथता रहा है। श्रद्धा, विश्वास और तर्क की कसौटी पर मानव ने ईश्वरीय सत्ता की हर दम छानबीन की और हर बार यही निष्कर्ष सामने आया कि जर्रे जर्रे में बसते हैं भगवान।

श्रोताओ, ईश्वर प्रेम, आस्था और विश्वास का तालमेल है। वो रहम है, रहमान है, दीन बंधु है, दयानिधि है। इसलिए जब भी मन में ईश्वर की तलाश का प्रश्न उभरे तो किसी को माफ करके देखिएगा। आपको अपनी रहम में ही उस खुदा के दीदार होंगे। किसी रोते हुए बच्चे के चेहरे पर हंसी की रंगोली सजाकर देखिए, यकीनन जगदीश्वर आपकी आंखों के सामने होंगे। उनका कोई आकार नहीं, वे कण कण में व्याप्त हैं। हर दुखियारे की हंसी में, प्रेम की तलाश में भटकते हृदयों में, स्वयं के पूर्ण होने की यात्रा कर रहे साधकों में, संगीत की झनकार में और गायन की मिठास में, हर कहीं वो ही हैं।

जीव मात्र से प्रेम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सारा संसार ईश्वर का ही रूप है। जड़ हो या चेतन, सब में ईश्वर व्याप्त है। कम से कम भारतीय मनीषा इसी सिद्धांत पर विश्वास करती है और हमारी आस्था धर्मिता इसी यकीन के इर्द गिर्द बुनी गई है। पानी, हवा, आग, वृक्ष, नदी, पुष्प, हम इन सब में ईश्वर को महसूस करते हैं, उनके होने पर यकीन करते हैं। हम मानते हैं कि ये संपूर्ण जगत उस विराट का ही स्वरूप है।

श्रोताओं, बहुत से लोग ईश्वर को अलग अलग रूपों, रंगों और आकार में पूजते हैं। कोई मूर्ति के रूप में पूजता है तो कोई अग्नि के रूप में और कोई निराकार। कुछ लोग प्रकृति के हर कण को ईश्वर मानते हैं। दरअसल ईश्वर हमारे भाव जगत का विषय है। जैसी हमारी भावना, वैसा ही हमारा ईश्वर।

ज्ञानी जन कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ है और कण कण में व्याप्त है। उसकी शक्ति से ही आकाश में विस्तार है, उसकी शक्ति से ही वायु का श्वास है, उसकी शक्ति से ही सूर्य चमकता है और उसकी शक्ति से ही सभी जीवित हैं। वही जगत का सत है, वही आत्म की आत्मा है।

श्रोताओं, हमारा ईश्वर हमारी आस्था, हमारे विश्वास, हमारी श्रद्धा का ही रूप है। उसे हम भीतर ढूंढें या बाहर जगत में, अंततः हम पाते यही हैं कि वो हर कण में शामिल है, जर्रे जर्रे में उसी का रूप है, उसी के नाम की झनकार है। तो इस संसार के कण कण में उसके दर्शन का संकल्प लिए संपन्न होती है आज की भजन यात्रा। अब अनुमति दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

हमें ऐसे लोग चाहिए जो आशा की अनुपस्थिति में भी भय और झिझक के बिना युद्ध जारी रख सकें। हमें ऐसे लोग चाहिए जो आदर सम्मान की आशा रखे बिना उस मृत्यु के वरण को तैयार हों जिसके लिए न कोई आंसू बहे और न ही कोई स्मारक बने। भारतीय स्वाधीनता के महायज्ञ में अपने जीवन की आहुति देने के लिए देश के युवाओं का इन शब्दों में आह्वान करने वाले महान क्रांतिकारी थे भगवती चरण वोहरा। भारत की स्वाधीनता के लिए बिना किसी अपेक्षा के बस क्रांति कर्म किए जाना जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। भगवती चरण वोहरा सशस्त्र क्रांति के अगुआ थे। बम बनाने में उन्हें महारत हासिल थी। वो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के सदस्य थे और सरदार भगत सिंह के साथ मिलकर इस दल में क्रांति गतिविधियों की रणनीति बनाने तथा दल को सैद्धांतिक दिशा प्रदान करने में उनकी प्रमुख भूमिका होती थी। क्रांतिकारियों के बीच प्रसिद्ध दुर्गा भाभी उनकी सहधर्मिणी थीं। भगवती चरण वोहरा दल में एक लेखक, विचारक, संगठक, सिद्धांतकार और प्रचारक की भूमिका में थे। कई क्रांति गतिविधियों में अभियुक्त होने के बावजूद न तो वो कभी गिरफ्तार हुए और न ही उन्हें कभी सजा सुनाई गई। अपराजेय, आदर्श निष्ठा, प्रतिबद्धता, साहस और मनोयोग से वो आखिरी सांस तक भारत की स्वाधीनता के लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे। भगवती चरण वोहरा का जन्म 15 नवंबर सन 1903 को लाहौर में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवचरण वोहरा था जो रेलवे के एक उच्च अधिकारी थे। बाद में वो आगरा से लाहौर चले गए थे। पिता आर्थिक रूप से अत्यंत समृद्ध थे। ब्रिटिश राज के प्रति वफादारी के कारण उन्हें राय बहादुर की उपाधि भी प्रदान की गई थी। ऐसे पारिवारिक वातावरण के बावजूद भगवती चरण वोहरा के मन में आजादी की लगन थी। उनकी शिक्षा दीक्षा लाहौर में हुई। मात्र 14 वर्ष की आयु में भगवती चरण वोहरा का विवाह इलाहाबाद की 11 वर्षीय दुर्गावती देवी के साथ संपन्न हुआ। वो अपने पति के साथ सदा कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहीं और आगे चलकर दुर्गा भाभी के नाम से विख्यात हुईं। भगवती चरण वोहरा अपने पिता के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत थे। उन पर 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। इसीलिए रूसी क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर भगवती चरण वोहरा ने एक अध्ययन मंडली का गठन किया था जिसके मूल में भारत को पराधीनता से मुक्त करने का विचार था। इस अध्ययन मंडली में नियमित रूप से शामिल होने वालों में भगत सिंह, सुखदेव आदि भी थे। आगे चलकर इन्हीं साथियों ने मिलकर नौजवान भारत सभा का गठन भी किया था। अभी जबकि वो कॉलेज में ही अध्ययनरत थे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और युवाओं का आह्वान किया। गांधी जी के आह्वान पर भगवती चरण वोहरा अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े।

भगवती चरण वोहरा एक अत्यंत विचारशील युवा थे। वैश्विक परिदृश्य में घटित क्रांतियों पर भी उनकी पैनी दृष्टि थी। वो भारत को गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कृषि संकट और शोषणकारी सामाजिक परिस्थितियों से मुक्ति दिलाना चाहते थे। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, इससे तमाम युवाओं की तरह भगवती चरण वोहरा भी निराश हुए। आंदोलन से वापस आने के बाद उन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर से पढ़ाई पुनः जारी रखी। यहीं उन्होंने राष्ट्र की परतंत्रता और उससे मुक्ति के प्रश्न पर स्टडी सर्कल चलाना शुरू किया, जिसमें सरदार भगत सिंह और सुखदेव भी शामिल थे। भगवती चरण वोहरा ने लाहौर नेशनल कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और भगत सिंह के साथ नौजवान भारत सभा के गठन और कार्य को आगे बढ़ाया। इस सभा के महासचिव के पद पर थे सरदार भगत सिंह और प्रचार सचिव थे भगवती चरण वोहरा। अप्रैल 1928 में नौजवान भारत सभा का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। भगत सिंह और अन्य साथियों के सलाह मशवरे से इस मसौदे को तैयार करने का काम भगवती चरण वोहरा ने ही किया था। नौजवान भारत सभा के उत्कर्ष में भगत सिंह के साथ भगवती चरण वोहरा की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सरदार भगत सिंह के साथ वही संगठन के प्रमुख सिद्धांतकार थे। अपनी पत्नी दुर्गावती देवी को भी उन्होंने पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। खादी के वस्त्र धारण कर दुर्गावती ने पढ़ाई जारी रखी और समय आने पर प्रभाकर की परीक्षा उत्तीर्ण की। भगवती चरण वोहरा के मन में क्रांतिकारियों के प्रति असीम श्रद्धा थी। यही कारण है कि जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उन्होंने महान क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल के सम्मान में अपने बेटे का नाम शचीन्द्रनाथ ही रखा था। भगवती चरण वोहरा वैचारिक रूप से बेहद परिपक्व थे। वो अपने समय में दल के प्रमुख विचारक और लेखक रहे थे। क्रांति कर्म में हर वैचारिक लेखन में भगत सिंह के साथ उनकी जुगलबंदी थी। एक लिखता तो दूसरा उसे ठीक करता। 1 जनवरी 1925 को हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ ने द रिवॉल्यूशनरी नाम से एक 4 पेज का घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने अपनी विचारधारा और उद्देश्य की उद्घोषणा की थी। इस पत्र का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार और भारतीयों के समक्ष संगठन की नीतियों और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उनके विचारों को स्पष्ट करना था। इस पत्र में संगठन की हिंसक गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हथियारों का उपयोग करने की भी बात कही थी। इसे हिंदुस्तान के सभी प्रमुख स्थानों पर वितरित किया गया। इसे वितरित करने की प्रमुख जिम्मेदारी भगवती चरण वोहरा पर ही थी। इस कार्य को उन्होंने अत्यंत कुशलता के साथ संपन्न किया। एक तरह से ये पत्र अंग्रेजों द्वारा भारत पर शासन करने की नीतियों और तरीकों पर एक प्रतिक्रिया थी। साथ ही इसमें युवाओं का आह्वान किया गया था कि वो भारत की स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे इस महासमर में शामिल हों।

आगे चलकर सरदार भगत सिंह के सुझाव पर संगठन का नाम हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ कर दिया गया। इसी संघ ने सांडर्स वध और असेंबली बम कांड जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण क्रांति घटनाओं को अंजाम दिया था। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जब सरदार भगत सिंह और राजगुरु ने सांडर्स का वध किया था, तब इस घटना के 3 दिन बाद पुलिस से बचते हुए सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु भगवती चरण वोहरा के घर पहुंचे थे। उस समय भगवती चरण वोहरा भूमिगत थे, लेकिन घर पर दुर्गा भाभी थीं। लाहौर से निकलने के लिए भगत सिंह ने अपनी वेशभूषा एक अफसर जैसी कर ली। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह की पत्नी का रूप लिया और राजगुरु ने अर्दली का वेश बनाया। भगत सिंह ने अपना नाम रंजीत रखा, दुर्गा भाभी का नाम सुजाता रखा गया। लाहौर स्टेशन पर भगत सिंह की तलाश में 500 पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन उन सबको चकमा देते हुए दुर्गा भाभी के सहयोग से भगत सिंह लाहौर से बाहर निकल आए। असेंबली बमकांड के बाद जब सरदार भगत सिंह जेल में थे, तब भगवती चरण बोहरा और यशपाल ने दिल्ली आगरा रेल लाइन पर भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन को ले जा रही विशेष ट्रेन को बम से उड़ाने की योजना बनाई। लंबी तैयारी के बाद ये हमला किया गया। बम फटा और ट्रेन के डिब्बे के परखच्चे उड़ गए। ट्रेन में सवार एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, लेकिन इरविन बच गया। हालांकि गांधी जी ने इस घटना की निंदा की थी और यंग इंडिया में बम की पूजा शीर्षक से लेख लिखा था। इस पर भगवती चरण वोहरा ने चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की सलाह पर गांधी जी के लेख के जवाब में बम का दर्शन इस शीर्षक से एक लेख लिखा। सरदार भगत सिंह ने जेल में इस लेख को अंतिम रूप दिया था। इस लेख में इरविन पर किए गए हमले के पक्ष में तर्क रखे गए तथा इसे राष्ट्रहित में बताया गया, जिसकी व्यापक चर्चा हुई। दल की योजना बनी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल से कोर्ट ले जाते समय छुड़ा लिया जाए। ब्रिटिश शासन की कड़ी सुरक्षा को चकमा देने के लिए शक्तिशाली बम की आवश्यकता थी। भगवती चरण वोहरा बम बनाने में सिद्धहस्त थे। वो अपने साथियों के साथ लाहौर की कश्मीर बिल्डिंग के एक किराए के कमरे में बम बनाने का कार्य किया करते थे। कुछ ही दिनों में शक्तिशाली बम बना लिए गए, लेकिन बम मौके पर धोखा न दे, इसलिए तय हुआ कि इसका एक परीक्षण किया जाए। 28 मई 1930 को परीक्षण के लिए क्रांतिकारी रावी नदी के किनारे पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य से बम भगवती चरण वोहरा के हाथ में ही फट गया। उनकी कलाई के आगे का पूरा हाथ उड़ गया। पेट में हुए बड़े घाव से आंतें बाहर आ गईं और वो ये कहते हुए शहीद हो गए कि ये नामुराद मौत 2 दिन और टल जाती तो इसका क्या बिगड़ जाता। उनका आशय यही था कि तब वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को छुड़ा लेते। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, बच्चों की महफिल तैयार है जगमगाती हुई, खिलखिलाती हुई और गुनगुनाती हुई। तो चलिए एक छोटे से अंतराल के बाद आपको हम लिए चलते हैं उनके बीच और सुनते हैं कार्यक्रम बाल सभा।

0: कि मैं हूँ मुकेश खन्ना आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है खेलना क्यों जरूरी है।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों नमस्ते, मैं हूँ आपकी मनीषा दीदी, और फिर बाल सभा लेकर आपको तो पता ही है मैं हर सप्ताह आपसे मिलती हूँ। बच्चों की बातें, बच्चों की दुनिया, उनके मन से जुड़े हुए विषय, और एक बार फिर से उन सब विषयों पर बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों आप जानते आज का विषय क्या है? आज का विषय है खेलना क्यों जरूरी है। बच्चों खेल बचपन की ना सबसे सुंदर पहचान होते हैं, क्योंकि खेल केवल समय बिताने के माध्यम नहीं है, बल्कि ये खेल बच्चों को स्वस्थ, आत्मविश्वासी और मिलनसार बनाते हैं। खेल में एक बात और होती है बच्चों, वो होती है जीवन की छोटी छोटी लेकिन बहुत बड़ी बड़ी सीखें। अब आप सोचोगे कि खेल से कैसे सीख मिलती है, तो ये तो बच्चों आपको पता ही है कि मैं आपसे कोई भी बात, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो, वही बात करती हूँ जिसमें कोई ना कोई सीख छुपी होती है। क्योंकि बच्चों हमेशा हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो मीनिंगफुल हो, थॉटफुल हो, जो हम देख रहे हैं उसका कोई अर्थ निकले। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, है ना। अगर हम सिर्फ ऐवई कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो बच्चों वो समय का दुरुपयोग है, और इस विषय पर हमने पिछली बाल सभा में बात की थी। आज जो बच्चा मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में आने वाला था, उसका मेरे पास सुबह सुबह फ़ोन आया, बोला दीदी मैंने ना आज ही सुबह बहुत ज़रूरी काम से जाना है। मैंने कहा किस काम से जाना है, तो उसने बताया कि एक कॉलोनी में उनकी खेल प्रतियोगिता है, उसमें जाना है। तो बोला दीदी सॉरी मैं आज स्टूडियो ना आऊँ, आज मैं अपनी खेल प्रतियोगिता में चला जाऊँ। बस वहीं से मुझे ये विषय मिल गया। मैंने कहा ठीक है तुम जाओ प्रतियोगिता में, ना सिर्फ खेल के आओ बल्कि जीत के आओ। और आज मैं अपने सभी श्रोताओं से, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने श्रोताओं से बात करूंगी कि खेलना क्यों ज़रूरी है, और क्यों मैंने उस बच्चे से कहा कि हाँ यहाँ बच्चों से बात करना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि जो प्रतियोगिता में तुम नाम लिखवा चुके हो पहले जाकर उसमें खेलो, और ना सिर्फ खेलो बल्कि जीतने का प्रयास भी करो। क्योंकि बच्चों ये तो आप जानते हैं कि आज के समय में जब बच्चों का अधिक समय स्क्रीन पे जा रहा है, और ये बात बिल्कुल सच भी है, छोटे छोटे बच्चों को मैं कितने इतने छोटे बच्चों को देखती हूँ, 4 साल के 5 साल के, जो खाना खाते वक्त अपनी मम्मा से ये बात ज़रूर कहते हैं कि थोड़ी सी देर के लिए फ़ोन दे दीजिए। मतलब भाषा में तोतलापन है, मतलब आप सोचिए मम्मा पानी पीना है लेकिन स्क्रीन देखते हुए पीना है। कितने बच्चे छोटे छोटे वजहों से स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल ऑनलाइन स्टडी भी है, उसका एक रीज़न है। लेकिन बच्चों जितना ज़रूरी है उसके अलावा हमें स्क्रीन पर समय नहीं बिताना है, बल्कि हमें खेलने जाना है। अब मैं पूछूं आप लोगों को कौन कौन से खेल पसंद हैं, तो वहाँ से आवाज़ आएगी कि मुझे कबड्डी पसंद है, क्रिकेट पसंद है, रस्सी कूद पसंद है, है ना, जो मैं अपने दोस्तों के साथ रोज़ खेलता हूँ या खेलती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को खेल खुश भी रखते हैं, पता है आपको। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे वाले समय में ले जाऊँ, जब हम लोग खेलते थे, ये सारे खेल तो खेलते ही थे, इसके साथ साथ कुछ और भी खेलते थे बच्चों। क्या होता था कि मम्मियाँ ना दोपहर में काम करके थक जाती थीं। अब जब थक गईं तो उन्हें एक चीज़ ये भी है कि दोपहर में धूप बहुत है, तो धूप में एकदम बाहर तो खेलने आपको नहीं जाना है। लेकिन जब तक मम्मी सो रही हैं, जब तक माँ और घर में दादी नानी ये लोग सो रही हैं, तब तक बच्चों का हल्ला करना, शोर करना बिल्कुल मना था। और हम लोग अपनी पेरेंट्स की ना बात बहुत मानते थे, तो अब ऐसे में क्या खेल खेलें कि आवाज़ भी ना आए। तो छोटे छोटे से खेल बना लेते थे हम लोग, जैसे आंगन में गए और अष्टाचंगा खेलने लगे। अब आप सोचो अष्टाचंगा क्या होता है। इमली बहुत खाते थे बच्चे गर्मियों में ना, इमली खा रहे हैं तोड़ तोड़ के पेड़ों से, उसके जो बीज निकल रहे हैं उससे हम लोग खेलते थे। आप लोग जैसे पासा और ये सब खेलते हो, लूडो खेलते हो आप लोग, उसी तरीके से हम लोग पत्थर पे किसी चीज़ से, चौक से या और पेंसिल किसी ऐसी चीज़ से जिससे वहाँ पर निशान बन जाए, एक चौकोर खाना बना लेते थे और उसमें अष्टाचंगा खेलते थे। सारे दोस्तों को बहुत मज़ा आता था। और फिर जैसे ही सब लोग जग जाते थे और हमें परमिशन मिल जाती थी थोड़ा शोर मचाने की, थोड़ा ऊधम करने की, तो हम लोग पिट्ठू खेलते थे, कंचे बहुत खेलते थे बच्चे। उससे एक चीज़ होती थी बच्चों, जो कंचे कई जगह उसे अंटा भी बोलते थे, उससे ना निशाना बहुत अच्छा साध पाते थे। तीरंदाजी बच्चे छोटी छोटी सी जगहों पे बहुत करते थे, गुलेल खेलते थे आप सोचो, और तो और पिट्ठू के अलावा खो खो खेलते थे। खो खो तो अभी भी अब बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। एक खेल हुआ करता था गिल्ली डंडा, उसमें छोटी सी लकड़ी से बच्चे अपने लिए वो बना लेते थे, और तो और जो साइकिल के पुराने टायर होते थे ना बच्चों, उसको भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे छोटी सी लकड़ी से बहुत दूर दूर तक दौड़ा कर ले जाते थे। अब आप सोचिए कि इस खेल में क्या है। इस खेल में जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि बहुत सारा खर्चा नहीं है, है ना, ठीक है। हमको हर चीज के लिए बाजार का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है। हम अपने खेल न सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि उनको बना भी खुद रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो बच्चा साइकिल के पुराने टायर को एक लकड़ी से दूर तक दौड़ाता हुआ ले जा रहा है, उसका फोकस कितना अच्छा हो जाता होगा। सोचिए सोचिए, क्योंकि ये सोचना जरूरी है बच्चों। अगर वो बच्चा अपनी मम्मा से रोज कहे कि आज मुझे ये खेल खेलना है, कल मुझे वो खेल खेलना है, आज ये बाजार से ले आइए, आज वो बाजार से, तो पता चलता है कि गर्मियों की छुट्टियों में मम्मी पापा का बजट बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है। तो हमको ये नहीं करना है। हमको ऐसे खेल खेलने की कोशिश करनी है जिसको हम थोड़े थोड़े खुद भी बना सकें, और सच बताऊं बच्चों इसमें मजा भी बहुत आता है। एक और खेल हम लोग खेलते थे, वो पता है क्या था। उस खेल का नाम था किल किल कांटे। अजीबो गरीब सा नाम है ना, पर मुझे आज था कि मैं स्टूडियो में जब आप लोग के साथ खेलों की बात करूंगी तो वो सारे खेल आपको बताऊंगी जो हम लोग खेला करते थे, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन तब बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होते थे बच्चों, है ना, कि छोटी छोटी सी चीज़ के लिए हम लोग बाजार भाग जाए, नहीं होता था। इनफैक्ट बाजार में भी इतने खेल नहीं थे जैसे आजकल मैं देखती हूँ, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों काम करें उसके लिए नए नए गेम्स आ रहे हैं, नई नई बुकलेट्स आ रही हैं। ठीक है, बाजार में नई चीज़ों का इन्वेंशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि आप जब खुद कोई खेल बनाते हैं उसमें जो मजा आता है, उसमें जो आपका ब्रेन यूज होता है ना, वो कहीं नहीं होता और कभी नहीं होता, सच मानिए। जैसे वो किल किल कांटे में हम लोग क्या करते थे कि आपको खूब सारी लाइनें खींचनी है लेकिन ऐसी जगह जो दूसरे को पता ना चले, वो फिर आपकी लाइनें ढूंढता था कि आपने कहां बनाई है और उसको काटता था। तो जो आपने लाइन बनाई है उसने अगर सारी काट दी तो वो जीत गया, और नहीं तो बाकी बच्चे ना एक कपड़ा लेते थे और उसकी पीठ पर कपड़े से मारते थे, तो चोट भी नहीं लगती थी, मजा भी आता था और खूब दौड़ा भागी होती थी, खूब दौड़ा भागी होती थी। ऐसे ही खो खो खेलते वक्त हम लोग बोलते थे कि घोड़ा जमाल खाए पीछे देखा मार खाए, तो ये सब चीजें हमें थोड़ा हमारी भाषा को भी समृद्ध करती थी। इसलिए मैं आज आपसे खेलना क्यों जरूरी है इस विषय पर बातचीत करना चाह रही थी। एक बात और थी कि मेरी कुछ दोस्तों को ना गुड़िया के कपड़े बनाना बहुत पसंद था। अब वो अपनी मम्मी से पुराने कपड़े लेती थी, उसमें फिर सुई धागा लेती थी और हाथों से छोटे छोटे से कपड़े बनाती थी कैंची से काट काट के, मुझे बहुत अच्छे से याद है। इनफैक्ट उनमें से एक दोस्त थी जिसको लगता था कि गुड़ियों को थोड़े से वेस्टर्न कपड़े पहनाने चाहिए, तो वो पता है किससे कपड़े बनाती थी, आश्चर्य करोगे, वो बैलून से कपड़े बनाती थी। वो गुब्बारे को पहनाकर गुड़िया को सजाती थी, और मैं आज आपको बताते हुए बहुत गर्व भी हो रहा है कि मेरी वो दोस्त इंडियन फैशन इंस्टीट्यूट में है। तो आपके बचपन के खेल की यात्रा कहाँ तक जाएगी बच्चों, ये किसी को नहीं पता, है ना। और आपको पता है आजकल आप देखते होंगे कि बच्चे चूंकि स्क्रीन टाइम बहुत है और चूंकि आंखों की बहुत एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, पहले हरियाली देखना, घूमना, टहलना, दूर दूर निशाना साधना, तो आपने देखा होगा कई बच्चों को आजकल बहुत कम उम्र में चश्मे लग जाते हैं। पहले हमारे यहाँ सुई धागा रेस भी होती थी, सुई में धागा डालो। अब सोचो आप सुई में धागा डालना, अब अगर आप आज कोशिश करना कि अपनी मम्मी पापा को बोलो कि एक सुई और धागे की आपसे रेस करवाएं, कितने लोग सुई में धागा डाल पाएंगे ये आप मुझे अगली बाल सभा में जरूर बताना, ठीक है? या तो आप मुझे जो बच्चे यहाँ स्टूडियो में आएंगे वो बताएंगे, या तो मैं कैसे ना कैसे अपने बच्चों से पूछ ही लूंगी, आज पार्क जाऊंगी शाम को तब भी पूछूंगी और ये बोलूंगी कि घर पे जाके एक्सरसाइज करो। अब आप देखिए कि सुई में धागा डालना कहने को बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन उसमें भी बच्चों आपका फोकस काम आता है ना। आप कितने ध्यान से सुई में जो छोटा सा बहुत बारीक सा छेद है उसको देख पा रहे हो और उसमें धागा पिरो पा रहे हो, है ना। ये छोटी छोटी सी चीज है, जैसे बैलेंसिंग के लिए एक बहुत अच्छी होती थी, चम्मच में नींबू को रखकर और फिर रेस करवाते थे, तो ये मैंने अभी भी बहुत देखी है, अभी भी बच्चे बहुत खेलते हैं। तो इससे क्या होता था, इससे बैलेंसिंग आती थी। अब ये संतुलन, ये फोकस, ये हर चीज क्या आपकी जिंदगी में काम नहीं आती बच्चों? आती है ना। बिल्कुल ऐसे ही हमें ये समझना होगा कि खेलों से दरअसल हमारी जिंदगी में क्या असर पड़ रहा है, क्या खास बात हम सीख पा रहे हैं, है ना। क्योंकि बैलेंस तो वैसे भी बहुत जरूरी है लाइफ में। अब जैसे एक छोटी सी बात बताऊं आपको, एक बच्ची है, वो जहां मैं रहती हूँ उसके पास में ही रहती है। अब उस बच्ची में मैं हमेशा देखती हूँ कि थोड़ा व्यवहार में संतुलन कहीं ना कहीं कम हो रहा है। कैसे हो रहा है कि जैसे उसे बाहर खेलना पसंद है तो वो पूरे समय बाहर खेलना चाहती है, ठीक। अब उसका देखिए बैलेंस्ड बिहेवियर कैसे डगमगा रहा है कि मैंने देखा कि कल वो बहुत धूप में भी ना सबके घर जाकर बच्चों को बुला रही थी, बाहर आओगे खेलने आओगे। अब क्या हुआ कि एक दो घरों में गई वो, मैं वापस लौट रही थी कहीं से कुछ सामान लेकर, तो मैं चुपचाप खड़े होकर उसकी गतिविधियां देख रही थी, तो उसने किसी एक का दरवाजा खटखटाया, तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी मम्मी ने बोला नहीं बेटा अभी हम नहीं भेजेंगे क्योंकि धूप बहुत है। फिर उसने क्या किया, बगल वाले घर का दरवाजा खटखटाया, आंटी उसको भेज दीजिए ना, मुझे उसके साथ खेलना है। तो उसकी मम्मी ने भी मना कर दिया कि नहीं बेटा धूप बहुत है अभी नहीं भेजेंगे, शाम को आना। अब जब दो तीन घरों में उसे मना किया गया तो चूंकि मैं सिर्फ उसी को देख रही थी, वो बच्ची थोड़ी देर बाद ना रुआंसी हो गई, तो मैं उसके पास गई क्योंकि मैं जानती हूँ और मैं, आप लोगों को तो पता ही है मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, कोई बच्चा दुखी हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं उसके पास गई, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा बेटा क्या हो गया, जबकि मैं देख सब रही थी, समझ सब रही थी कि यहाँ चल क्या रहा है। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, उसने मतलब ऐसा लगा जैसे वो रोने के लिए तैयार बैठी थी, वो रो पड़ी एकदम से, आंटी मेरे साथ कोई खेलने नहीं आता। मैंने कहा सब तो आते हैं, कहाँ आया आंटी, मैं पिछले कितनी देर से सबके घर पे जाके बैल बजा रही हूँ, कोई नहीं आया। मैंने कहा बेटा टाइम देखो कितना बज रहा है, तो उसने टाइम देखा, उसने बताया कि 3 बज रहा है। फिर मैंने कहा कि इस वक्त धूप देखो, तो ऊपर देखा उसने, मैंने कहा ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है सच में, मतलब ऐसा लगता है थोड़ी देर अगर खड़े हो जाओ बाहर तो जैसे जल रहे हैं। मैंने कहा इतनी धूप में आप कहाँ खेलोगे? बोली वो आंटी पेड़ के नीचे खेलूंगी। मैं कहा ये जो इतना धूप से एक्सपोजर होगा आपका उसका क्या, और कई बार लू जैसी भी स्थिति हो जाती, गर्म हवा भी चलती है धूप में। तो वो रोने लगी, बस उसको एक ही जिद थी कि नहीं मुझे अगर मैं बुलाऊं तो तुरंत दोस्त आ जाने चाहिए, अगर नहीं आ रहे तो वो अच्छे दोस्त नहीं है। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा बहुत बैलेंस्ड बिहेवियर रखना ही पड़ेगा, आपको टाइम देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि अगर किसी ने आपसे मना किया है तो क्यों मना किया है। कई बार बच्चों हम सोचते हैं ना कि हमारे किसी दोस्त ने या दोस्त की मम्मी ने या उसकी बड़ी दीदी ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, तो मैं देखती हूँ बच्चे तुरंत बोलते वो अच्छी नहीं है, उसकी दीदी अच्छी नहीं है, उसकी मम्मी मेरी बात नहीं मानती है। आजकल मैं ये वाले चर्चाएं बहुत सुन रही हूँ बच्चों से, तब मुझे लगता था कि मैं बाल सभा में बैठूंगी तो आपसे ज़रूर बैलेंस्ड बिहेवियर की बात करूंगी बच्चों, है ना। पता है इसके लिए आप लोग छोटी छोटी प्रैक्टिस करिए, मैं जो बाद में आपसे संकल्प के वक्त करवाती हूँ ना कि हम एक धीमा संगीत सुनेंगे, शांति से बैठेंगे, संकल्प लेंगे कि हम कुछ अच्छी चीज़ें करें, हम क्या करें और क्या ना करें, तो बच्चों सबसे पहले आप अपने अंदर धैर्य लाइए, सबसे पहले अधीर होना बंद कीजिए, है ना। थोड़ा शांति से 2 मिनट सोचना शुरू कीजिए, जो आपका कंसंट्रेशन टाइम है ना बच्चों वो बहुत कम होता जा रहा है। मैं देखती हूँ एक बच्चा एकदम बैठता है, फिर दूसरे काम में लग जाता है, दूसरे काम से तीसरे काम में लग जाता है, और जब तक उसको उसके मन की चीज़ ना दे दी जाए वो तब तक शोर करता है। ऐसे कितने बच्चों की कहानियाँ है मेरे पास बच्चों, पर मुझे पता है जो बच्चे मेरी बाल सभा सुनते हैं, जो मेरे साथ स्टूडियो में आते हैं और जो हर बार मुझे बहाने बहाने से कहीं कभी स्कूल जाती हूँ मैं तब बच्चे बताते हैं कि बाल सभा सुनकर दीदी हमने ये सीखा। तो बच्चों जो भी मुझे सुन रहा है ना, एक चीज़ ज़रूर सीख लेना, अधीर होना नहीं अच्छी बात नहीं है। हाँ, आपको किसी ने कुछ चीज़ के लिए मना किया है तो आप खुद भी आत्म मूल्यांकन कीजिए। बच्चों रुकिए, ठहरिए, सोचिए कि आपको इस काम के लिए मना क्यों किया गया। कोई ना कोई कारण जरूर होगा। वापस अपने विषय पर आ जाएं कि खेलना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज बहुत से बच्चे आपने देखा ही है कि किस तरीके से अभी जो बातें मैं बता रही हूँ, एक दूसरे से गुस्सा हो जाना। एक बहुत खास बात है, खेल भावना की विकास होता है खेल खेलने से। इसमें जो सबसे बड़ी सीख है ना, जब बच्चे टीम में खेलते हैं तो वो एक दूसरे के साथ सपोर्ट सिस्टम सीखते हैं। जैसे आपने देखा होगा बास्केटबॉल हो, या आपने देखा होगा कि फुटबॉल हो, या इवन वॉलीबॉल हो, ये जो आउटडोर गेम है और जो टीम गेम है, आपने देखा होगा कि सिर्फ जो गोल करता है या जो बॉल को बास्केट में डालता है वही इम्पोर्टेंट नहीं है, वही चैंपियन नहीं है। जो बॉल को पीछे से लेते चला रहा है, लाता चला रहा है, नेट के पास तक जो बॉल को लाया है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है ना। तो कई बार हमें ये होता है ना, अरे ये काम मेरे कारण हुआ। कई बच्चे आपने देखा होगा जब बहुत अच्छे आप जाते होगे, खेलते होगे पार्क में, कहीं टीम में, स्कूल टीम की तरफ से आप खेल रहे होगे, या आपने देखा होगा स्कूल में भी कई बच्चों को ना हल्का सा, बहुत छोटा सा ही सही, पर अहंकार जैसा आ जाता है। अरे उस मैच में तो मैंने गोल मारा था, अरे उस वाले गेम में तो मैंने सिक्स मारा था। नहीं, पूरी टीम का सपोर्ट था आपके उस सिक्स के पीछे। पूरी टीम चाहती थी कि आप जब नेट तक बॉल पहुंच जाए तो आप उसको बास्केट में डाल दें, सब चाहते थे। समझ रहे हैं आप? तो बच्चों कभी भी ये मत सोचिएगा कि खेल सिर्फ खेल है। खेल में बहुत छोटी छोटी छोटी छोटी सी इतनी इतनी माइक्रो सीख छुपी हुई है कि आपको ना अपने दिमाग का लेंस लगाना पड़ेगा कि अरे इसमें तो ये भी छुपा था। जैसे अभी मैंने बताया ना कि टीम में जब आप रहते हो तब आप सपोर्ट सिस्टम सीखते हो। दूसरा, जिन बच्चों को लगता है कि हार गए तो झगड़ लिए, आपने कई जगह देखा होगा कि कई बच्चे एकदम से खेलते खेलते अगर हार रहे तो बैट पटक देते हैं, या झल्ला जाते हैं, या उनका टोन ऑफ वॉइस थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता फिर। तो बच्चों हमें वो चीज़ें भी सीखनी है और हमें वो चीज़ें भी सोचनी है। अब अगर हम बात करें कि जैसे अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही मुझे एक बच्चे के पापा बता रहे थे कि वो बहुत मोबाइल पे खेलता है, मतलब हर खेल मोबाइल पे खेल लेता है, और बच्चा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। अब कौन कौन से गेम खेलता है, तो आजकल तो क्रिकेट भी आप मोबाइल पे खेल सकते हो, आजकल तो आप फुटबॉल भी मोबाइल पे खेल सकते हो, आप गाड़ी की रेस मोबाइल पे लगाते रहते हो। लेकिन आप बच्चों बस मुझे ये बताओ कि हाथ में स्क्रॉल करते करते आप कितना भी खेल लेना, उससे क्या होगा? उससे आप बैठे बैठे अनफिट होते जाओगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपकी फूड क्रेविंग बढ़ती है ना। फिर आप सोचोगे कुछ पैकेट में आपको खाने को मिल जाए, फिर आप क्या करोगे, फिर आप कुछ खा लोगे, फिर आप टॉफी चॉकलेट मुंह में डाल लोगे, और फिर थोड़ी देर बाद आप थक जाओगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं खेल रहे हैं, खेल कोई और ही रहा है जो वो खेल बना रहा है मोबाइल के लिए, है ना, और आप उसमें बंधते जा रहे हो, ठीक है। और बच्चों फिर आप क्या करते हो, धीरे धीरे आप रियलाइज करना आप अकेले होते जाते हो, क्योंकि आप बाहर नहीं जा रहे, मोबाइल बात तो कर नहीं सकता आपसे, है ना। बस वो आपके लिए खूब सारी गाड़ियां दौड़ाता जा रहा है, आप स्क्रॉल करते जा रहे हो और आपको लग रहा है आप खेल रहे हो। और ये बात मैं कर रही हूँ अपने छोटे छोटे बच्चों की, 7 साल के 8 साल के 9 साल के ऐसे बच्चों की। तो बच्चों ये बात आपको बहुत समझना जरूरी है कि जब आप बहुत समय मोबाइल पर गेम खेलते हुए बिताओगे, आपका दोस्त कौन बचेगा? सोचो आप किसके कंधे पर हाथ रखोगे। अगर आप स्कूल जाते वक्त आपके दोस्तों से बात नहीं करोगे तो आप बात करने का तरीका ही भूल जाओगे। सच्ची मानिए, मैंने बहुत बच्चों में ये चीज देख रही हूँ कि वो समझ ही नहीं पाते कि क्या बात करें। हेलो, बस चुपचाप बैठ गए, ये नहीं पूछते आज तुमने क्या पढ़ा, कहानी पढ़ी क्या कोई, और आज तुम खेलने गए थे, कौन सा खेल खेल रहे हो, तो क्या बताओगे आप? मैं मोबाइल पर गाड़ियों की रेस लगा रहा हूँ? क्या बताओगे आप? मैं मोबाइल पे वो खेल रहा हूँ, क्रिकेट? मैं मोबाइल पे ही बास्केटबॉल खेल रहा हूँ? तो ठीक है, आपके टीम प्लेयर्स कौन है? वो नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप अकेले रहते हो। जब आप स्क्रीन पे खेलते हो तब आप अकेले होते हो, और जब आप बाहर खेलते हो तो आपके साथ पूरी टीम होती है जो आपको एक संवेदनशील नागरिक बनाने में बहुत सपोर्ट करती है। क्योंकि जब कोई गिर जाता है तो आप उसका हाथ पकड़ के उठाते हो, जब किसी के चोट लग जाती है तो आप उसको पानी से साफ करते हो, उसके घर तक उसको लेके जाते हो। तो इससे आपको बिहेवियर में बहुत चेंजेस आने लगते हैं। आप अचानक से हेल्पिंग होने लगते हो, आप अचानक से बहुत मीठा बोलने लगते हो, आप अचानक से फ्रेंडली हो जाते हो, है ना? लेकिन ये सब कब आता है? जब आप घर के दरवाजे खोलते हो, अपने अकेलेपन से बाहर निकलते हो, जब आप लोगों के बीच उठते बैठते हो। नहीं तो क्या होता है? नहीं तो एक कमरा, आपकी स्क्रीन, आपका हाथ, और उससे आपका सारा खेल, खेलते जा रहे हो। तो बच्चों, मैं नहीं सुनूं अब कि कोई भी बच्चा स्क्रीन टाइम ज़्यादा ले रहा है। मैंने आज खेल क्यों ज़रूरी है इस विषय पर बात ही इसलिए रखी थी कि ये जो छुट्टियां चल रही हैं इसमें आप कोई ना कोई खेल ज़रूर खेलोगे, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, जूडो हो, कराटे हो, कुछ भी हो, सेल्फ डिफेंस से लेकर गेम जो भी जुड़े हुए हैं वो आपको ज़रूर सीखने चाहिए, वो भी आपको काम आते हैं, है ना? वो खेल ज़रूर खेलिए, क्योंकि यही खेल बच्चों आपको न सिर्फ फिट करेंगे बल्कि आपको, मैं बार बार बोलती हूँ कि खेल से खेल भावना का विकास होता है, और खेल भावना से आप एक बहुत अच्छे बच्चों में बढ़ते जाते हो, तब्दील होते जाते हो। आपकी अचानक से सारी कमजोरियां आपको बाय बाय कहने लगती हैं, है ना? और अब ऐसी ही एक, आपको तो पता ही है एवरेस्ट की बातें हम लोग कर रहे हैं आजकल, तो अब हम फिर से आपको सुनाते हैं बचेंद्री पाल जी का आगे का हिस्सा कि उनका जो प्रथम अभियान था एवरेस्ट का वो कैसा रहा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिसमें वो हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। काठमांडू में कुछ दिन बिताने के पश्चात हम जीरी चले गए, जो वहां से 4-5 घंटे की यात्रा पर था। जब हमने नामचे बाजार तक की 8 दिन की यात्रा आराम से की, पर्वतों के स्वभाव के विपरीत हम रोज लगभग 1000 मीटर ऊपर नीचे चढ़ते उतरते, जिससे हम में मजबूती आई और ऊंचाइयों के वातावरण और जलवायु के अनुकूल स्वयं को ढालने में हमें मदद मिली। रास्ते में हमें हसमुख और मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ उस क्षेत्र के व्यक्ति विशेष शेरपा मिले। नामचे बाजार शेरपा लैंड की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरी क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गाँव के होते हैं। मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को यहीं से निहारा था, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है, और मुझे ये नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का एक बड़ा फूल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज जैसा लग रहा था। मुझे बताया गया कि ये दृश्य शिखर की ऊपरी सतह से लगभग 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ का पत्थर उड़ता रहता था। बर्फ का ये ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। हम पर्वतीय लोग सदा से पर्वतों की पूजा करते आए हैं, अतः इस भय मिश्रित प्रेरणास्पद दृश्य के प्रति मेरे ऊपर हावी भावना एक प्रकार से श्रद्धा भाव की थी। मैंने अपने हाथ जोड़े और सागर माथा की तरफ श्रद्धा से सिर झुकाया। एक दिन के बाद हम प्रसिद्ध थ्यांग बोके मठ तक पहुंचे, जहां मूर्तिमान थामा ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी सफलता तथा सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की। थ्यांग बोके न केवल सुंदर था बल्कि उसकी 4000 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई हमारी जलवायु अनुकूलता प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त थी। तो बच्चों, ये पर्वत पर जाने की, आप जो हिमालय तक पहुंचने की यात्रा सुन रहे हैं बचेंद्री पाल जी की, वो भी हमें हर पल यही संदेश देती है कि हमें जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है, घर से बाहर निकलना ज़रूरी है, थोड़ी हिम्मत करना ज़रूरी है। तो बस एक बार जो आप सोच लें उसे पूरा करके दिखा दीजिए। और यहाँ जो बच्चे अभी हो सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट टीम में हों, किसी स्टेट टीम में हो या फिर हमारे यहाँ के कुछ बच्चे नेशनल भी खेल रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि जूनियर, सब जूनियर, ऐसे बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। और एक बार आप स्कूल का जो खेल विभाग है बच्चों, उसमें ज़रूर जाना। और जो आपके कोच, जो आपके स्पोर्ट्स टीचर जो भी होंगे, उनसे मिलकर कहना कि आपको कोई ना कोई खेल ज्वाइन करना है। और जब आप कोई खेल खेलने लगोगे तो सच बोल रही हूँ, आपकी मनीषा दी को बहुत अच्छा लगेगा। और यही बाल सभा में मेरी आपसे बातें करने का जो पूरा पूरा मंतव्य है, वो यही है कि हम यहाँ जो बोलते हैं ना बच्चों स्टूडियो में बैठ के, बस उसका असर बच्चों पे पड़े, है ना। तो अगर आप में से दो बच्चों ने भी अपना स्क्रीन टाइम कम कर दिया, दो चार बच्चे अगर किसी खेल टीम में चले गए, तो सच मानिए मेरा तो पर्पस पूरा हो गया। और रेडियो आज़ाद हिंद भी यही चाहता है कि जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हमको सुनते हैं ना, बस वो धीरे धीरे अच्छे मार्ग पर चलें, है ना। एक बात चलते चलते और बताऊंगी कि जो पारंपरिक खेल थे ना, जिनके बारे में आज मैंने चर्चा की थी आपसे, उसके बारे में अपनी मम्मी से, अपने पापा से पूछना कि आप लोग कौन से खेल खेलते थे जब छोटे थे, वो ज़रूर कुछ ना कुछ मज़ेदार कहानी किससे बताएंगे। और तो और एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ना, धीरे से अपनी दादी, दादा, नाना, नानी से भी पूछ लेना, दादू आप छोटे थे तो कौन सा खेल खेलते थे, देखना कितनी मज़ेदार कहानियाँ निकल के आएंगी और देखना कितने अच्छे अच्छे खेल आपको पता चलेंगे। और फिर आप उन पारंपरिक खेलों को खेलने की कोशिश करना, उससे क्या होगा, अच्छी चीज़ें अगली पीढ़ी तक ऐसे ही पहुँचेंगी। तो बच्चों अब चलने का वक्त आ गया है, आपको पता ही है हमारा आपसे जो अंतिम संवाद होता है वो होता है संकल्पों का। तो वो संवाद शुरू करते हैं, एक धीमा संगीत और उसके बाद अपनी बातें। शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अब आज खुद से ये प्रॉमिस कीजिए कि आप कोई ना कोई खेल जरूर खेलेंगे। जो भी बच्चे इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, वो अगर वीडियो गेम या स्क्रीन पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, उसे कम करने का प्रयास जरूर करेंगे। एक इंडोर गेम साथ ही साथ एक आउटडोर गेम में महारत हासिल करने का प्रयास करेंगे। अपनी कॉलोनी, अपने मोहल्ले में या जहां भी आप रहते हैं, आसपास बच्चों की एक टीम बनाएंगे और सप्ताह में कम से कम 3 दिन कोई ना कोई टीम गेम खेलेंगे, ताकि आप में खेल भावना का विकास हो। अब आंखें आप खोल सकते हैं और अब मुझे बाय बाय भी कह सकते हैं, क्योंकि बाल सभा का समय पूरा हो चुका है। बच्चों चलती हूँ, अपनी मनीषा दीदी को अनुमति दीजिए और ये प्रॉमिस कीजिए, भले ही चाहें तो रेडियो के पास आ जाइए। अगर आप मुझे कार में सुन रहे हैं, मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो अपने मन ही मन खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने मम्मी पापा की बात मानेंगे और कोई ना कोई खेल में हिस्सा ज़रूर लेंगे। तो चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए, गर्मी से खुद को बचा कर रखिए, थोड़ा सा धूप में कम निकलिए जैसे मैंने उस बच्चे की कहानी सुनाई थी, और शाम को खूब जम कर खेलिए। बाय बाय, और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।
2: बाल सभा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय था खेलना क्यों ज़रूरी है। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और आपके साथ थी मैं आपकी दोस्त मनीषा। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
3: तो श्रोताओं, ये थी बच्चों की खूबसूरत सी महफिल जिसे आप कहते हैं बाल सभा। आगे बहुत कुछ खास आपके लिए लेकर हम हाजिर हैं, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को और सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम भारतीय सेना के इतिहास के उन गौरवशाली पलों को जी रहे हैं जिसमें कि हमारी सेना के तीनों अंगों, चाहे वो थल सेना हो या फिर वायु सेना या फिर हमारी नौसेना हो, उनके एक बेहतरीन समन्वय, उनके अदम्य साहस और उनके बेहतरीन रण कौशल का अद्भुत मेल हमें देखने को मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की, जब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था और एक नए देश बांग्लादेश का अभ्युदय हुआ। कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में हमने जिक्र किया है कि लड़ाई में हमारी वायुसेना ने और हमारी नौसेना ने अपनी अपनी भूमिकाएं किस तरह निभाई। आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हमारी आर्मी यानी कि थल सेना ने इस युद्ध में किस तरह अपना पराक्रम दिखाया कि मात्र 14 दिनों के भीतर पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर होना पड़ा। हमारी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए एक बार फिर हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर।
3: नमस्कार बुरुआ जी एंड नमस्कार श्रोताओं। इट इज सेड दैट विक्ट्री लाइज अंडर द फीट ऑफ सोल्जर।
2: जी,
3: no strategic victory can be claimed until boots are physically on the ground. जो विजय होती है
2: जी,
3: वो तभी मानी जाती है जब उस जमीन पे आपका
2: हक हो, अधिकार
3: हो, कब्जा हो,
2: जी बिल्कुल
3: खड़े होते हैं। तो ये काम जो है आर्म फोर्सेस में आर्मी करती है।
2: जी बिल्कुल
3: ठीक। एंड आर्मी जो है तीनों अंगों में मतलब उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, इट्स अ डिसाइसिव फैक्टर।
2: जी,
3: तो सिमिलरली 71 वॉर में भी आर्मी प्लेड द डिसाइसिव रोल।
2: जी,
3: एंड उसने लैंड, एयर और सी तीनों में जो है
2: जी
3: हिस्सा लेके जो है ये ऑपरेशन पूरा किया।
2: जी,
3: जो 71 वॉर था वो हम जैसे समझते हैं कि ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ा गया था।
2: जी,
3: लेकिन जो आर्मी है वो एक्टिवली सारे बॉर्डर्स पे डिप्लॉयड थी, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट में भी जो चाइना है
2: जी, जी,
3: उससे भी हमें खतरा था।
2: जी बिल्कुल,
3: कि इस दौरान अगर उन्होंने वो फ्रंट खोल दिया
2: जी, पाकिस्तान का साथ दे दिया,
3: पाकिस्तान का साथ दे दिया
2: जी,
3: तो भी उसको हमें कंट्रोल करना है।
2: जी बिल्कुल,
3: ये ऑपरेशन है 71 का। इसको हम दो भागों में जो है डिस्कस करेंगे।
2: जी बिल्कुल,
3: ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर।
2: जी,
3: तो ईस्टर्न सेक्टर में बांग्लादेश जो इसको कि उस समय ईस्ट पाकिस्तान कहते थे,
2: हाँ जी,
3: जहाँ की मेन मतलब जो है जिसको आजाद कराने की लड़ाई चल रही थी। तो वॉर जैसे हम सबको पता है कि 3 दिसंबर को जो है शुरू हुआ था, लेकिन उसके बारे में जो है संकेत जो है काफी पहले से आने शुरू हो गए थे और दोनों कंट्रीज जो है अपनी प्रिपरेशन कर रही थी। ठीक है, बांग्लादेश में जो है काफी जो है टर्मोइल चल रहा था, रिवोल्ट चल रहा था, पाकिस्तान ने जो है काफी फोर्सेस डिप्लॉय कर रखी थी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, प्राइमरली अगेंस्ट मुक्ति वाहिनी और अवामी लीग लीडर्स के अगेंस्ट वो लोग लड़ रहे थे। 71 की शुरुआत में ईस्ट पाकिस्तान में तकरीबन 1 डिवीजन की फोर्सेस थी
2: जी,
3: जो कि वहां उन्होंने डिप्लॉय कर रही थी कि कंट्रोल करने के लिए, और ये बढ़ते बढ़ते जो है
2: जी
3: 5 डिवीजन तक पहुंच गया था।
2: यानी उन्हें भी लगने लगा था कि स्थिति नियंत्रण से
3: बाहर जा रही है
2: जी।
3: उसके अलावा जो है वहां पे तकरीबन 75,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस भी थी
2: अच्छा
3: पाकिस्तान की, और ये जो सिचुएशन थी जब डिटोरिएट होने लग गई तो इससे क्या है इंडिया में जो है रिफ्यूजीज आने शुरू हो गए थे, और इसके अलावा जो है ये बिल्डअप जो पाकिस्तान कर रहा था वो एक कॉज ऑफ कंसर्न बन गया था इंडिया के लिए. तो इसको काउंटर करने के लिए आर्मी ने ऑपरेशन कैक्टस लिली लॉन्च किया था.
2: अच्छा.
3: काउंटर बिल्डअप के लिए जो पाकिस्तान जो बिल्डअप कर रहा था उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए इंडियन फॉर्मेशन ने उसी तरह से अपना ऑर्गेनाइजेशन करना शुरू किया, ट्रेनिंग करनी शुरू करी, वेपन्स वगैरह जो है कलेक्शन एंड देन कंसंट्रेशन जो है बॉर्डर के ऊपर मिड अगस्त से शुरू हो गया जो है. ईस्टर्न सेक्टर जो है, एक और उसमें इशू ये है कि अगर आप देखें कि उसके साथ चाइनीज बॉर्डर भी लगता है, तो आर्मी को यहाँ पे बांग्लादेश के साथ भी लड़ना था
2: जी,
3: और चाइनीज के साथ भी अलर्ट रहना था जिनका बॉर्डर सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश के साथ जी, लगा जी, हुआ जी, है. साथ ही साथ उस समय नॉर्थ ईस्ट में एक और जो प्रॉब्लम चल रही थी वो थी इंसर्जेंसी की.
2: अच्छा.
3: जो कि कुछ स्टेट में इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम थी, उनसे भी जो है उसको निपटना
2: जी, जी.
3: क्योंकि ये भी एक तरह से अगर आप देखें खतरा रहता है कि पाकिस्तान काउंटर इंसर्जेंसी के जो ग्रुप्स थे
2: जी.
3: उनका साथ देके उनको भड़का के जैसे कि वो कर्तव्य है अगेंस्ट में खड़ा कर सकता
2: था. हाँ जी, अलगाववाद को बढ़ा दे.
3: हाँ, तो मेरा ये कहने का मकसद है कि जब बांग्लादेश के साथ ईस्टर्न सेक्टर में भी लड़ रहे थे
2: जी,
3: तो उस समय फोर्सेस जो थी
2: जी,
3: वो और भी जगह पे एंगेज थी, उनको और भी जगह पे जो है अलर्ट रहना,
2: उतना ही सतर्क रहना,
3: सतर्क रहना जरूरी था
2: जी.
3: तो अब इसमें जो प्लान किया था वो इस तरह से था कि जो ईस्ट पाकिस्तान है उसके जो इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं, इम्पोर्टेंट वाइटल लोकेशंस हैं उसको कब्जा करना है, और जल्द से जल्द जो है ढाका जो कि सीट ऑफ गवर्नेंस है उसके वहां पहुंच के उसके ऊपर
2: कब्जा
3: करना है. और इस दौरान जो पाकिस्तान की वॉर मशीनरी है उसको ज्यादा से ज्यादा नष्ट करना है ताकि उनका रेजिस्टेंस खत्म हो सके
2: जी.
3: अब इसमें एक अच्छी बात थी दिसंबर के महीने में कि जो ठंड का मौसम होता है जिससे जिस दौरान स्नोफॉल गिरती है तो उसमें जो हमारे हिमालयस हैं जहाँ पे नॉर्दर्न बॉर्डर चाइना के साथ बॉर्डर है
2: जी,
3: वो काफी कुछ सेफ हो जाते हैं क्योंकि बर्फ के कारण जो है रास्ते बंद हो जाते हैं. तो ये एक हमारे फेवर में एक बात थी. तो आर्मी लॉन्च अ वेरी वेल प्लान्ड अटैक फ्रॉम द मल्टी डायरेक्शंस. अगर आप बांग्लादेश को देखें तो वो तीन तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है
2: जी, बिल्कुल.
3: चौथी तरफ बे ऑफ बंगाल
2: जी.
3: तो तीनों तरफ से जो है आर्मी ने जो है अटैक लॉन्च किया था. इसमें 2 कोर 4 कोर 33 कोर और 101 कम्युनिकेशन जोन एरिया, ये अलग अलग फोर्सेस थी जो अलग अलग डायरेक्शन से बढ़ी थी.
2: अच्छा.
3: और हम पहले इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बे ऑफ बंगाल में नेवी ऑलरेडी
2: उपस्थित थी
3: और वो ऑपरेशन कैरी आउट कर रही थी, है ना. और साथ साथ एयरफोर्स भी सपोर्ट में थी. तो अभी जब फोर्सेस बढ़ रही थी इनको एक और बहुत बड़ा एडवांटेज था इन द सेंस कि जो लोकल पॉपुलेशन है वो सपोर्ट कर रही थी और मुक्ति वाहिनी भी जो है सपोर्ट कर रही थी. तो उनसे इनको जो है इंटेलिजेंस और गाइडेंस मतलब जो है देखिए रात के टाइम ऑपरेशंस कर रहे हैं और तो आपको अगर मालूम है कि रास्ता कहाँ है, किधर से जाना है, दुश्मन किधर है ऑलरेडी, तो बहुत बड़ी मदद
2: आसानी है.
3: हाँ, इंटेलिजेंस लोकल इंटेलिजेंस वाज अवेलेबल
2: जी.
3: वेल प्लान्ड ऑपरेशंस जो थे, लीडरशिप बहुत अच्छी थी
2: जी.
3: और हमने जैसे पहले जिक्र किया कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का जो है काफी अच्छा सपोर्ट था. तो इन सबको मिला के इंडियन आर्मी वॉज एबल टू कैप्चर द ऑब्जेक्टिव. ठीक है, ढाका पहुंचने में सफल हुई 14 दिन के अंदर जो है
2: जी.
3: ये हम 2-3 बार इसका जिक्र भी कर चुके हैं कैसे हुआ था. इस बीच में जो है आर्मी ने हेलीबॉर्न ऑपरेशंस भी कैरी आउट किए, जैसे हमने जो है एयरफोर्स के एपिसोड में जिक्र किया था उनका. एयरबॉर्न ऑपरेशंस भी किए, एम्फीबियस ऑपरेशंस भी लॉन्च किए थे, है ना. एंड विच डेमोन्स्ट्रेटेड इन वेरी क्लियर कट टर्म्स द जॉइंटमैनशिप बिटवीन द 3 फोर्सेस,
2: तीनों का समन्वय
3: जी, और एक एक्सपर्टीज कि ये मल्टीफेसेट ऑपरेशंस लॉन्च कर सकते हैं. और इसी के कारण जो है जो फोर्सेस थी उनको विक्ट्री हासिल हुई
2: जी.
3: और हम सबको जैसे विदित है कि 93,000 सोल्जर्स के साथ पाकिस्तान ने सरेंडर किया
2: जी.
3: था. अब जब हम बात करते हैं तो हम ऐसा लगता है कि हमने इसको बहुत ही जल्दी समेट दिया,
2: छोटा कर दिया है
3: जैसे लेकिन ऐसा नहीं है. ये जो 14 दिन भी होते हैं इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत है
2: जी. बहुत बड़ी व्यूह रचना है सर इसके
3: पीछे. बिल्कुल, बहुत
2: प्लान है बनाया हुआ पहले से ही.
3: बिल्कुल, इसके ऊपर प्लानिंग है, इसके ऊपर इसमें मूवमेंट्स है. एक एक बटालियन को एक एक को जो टास्किंग दी जाती है और हर बटालियन को जैसे छोटे छोटे टास्क होते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव्स कैप्चर करेंगे, तो वो बहुत छोटे छोटे जो बैटल्स होती हैं मिलके जो है फिर वो
2: बड़ा उद्देश्य बनते हैं। बिल्कुल सर।
3: तो बहुत छोटी छोटी बैटल्स जो थी वो बटालियन लेवल पे, कंपनी लेवल पे, प्लेटून लेवल पे ये लड़ी गई। अगर आप बांग्लादेश का मैप भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे नाले और बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं।
2: जी बिल्कुल।
3: तो उनको एग्जैक्टली कहाँ क्रॉस करना है, वहां पे कई जैसे जो ब्रिज हमने देखा था कि उन्होंने तो पाकिस्तान ने ब्रिज को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो एयरबॉर्न ऑपरेशन हेलीबॉर्न ऑपरेशन कैरी आउट किया, ठीक है, तांगेल में एयर ड्रॉप किया था। तो ये चाहे हमें लगे कि हमने जो है छोटा वो है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे ऑपरेशंस हुए थे और बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस रहे थे जिसके कारण कि हमें ये सफलता प्राप्त हुई थी। ईस्टर्न सेक्टर में जो सारे ऑपरेशन है इसमें मैं एक का जिक्र करना चाहूंगा।
2: जी बिल्कुल सर।
3: एक नाम है जो वीरता के तौर पे तौर के नाम पे हमेशा लिया जाता है, लांस नाइक अल्बेटिक का।
2: जी बिल्कुल।
3: 14 गार्ड्स के। तो इस बहादुर सोल्जर की कहानी का जिक्र जरूर करना चाहूंगा।
2: जी बिल्कुल सर।
3: तो अल्बर्ट इक्का जी जो थे वो रांची के रहने वाले थे। 62 में उन्होंने 14 गार्ड्स ज्वाइन करी थी और 71 वॉर में जो 14 गार्ड्स का यूनिट है उसको टास्क मिला था पाकिस्तान की एक पोजीशन जो कि गंगा सागर नाम की लोकेशन पे थी, ये अगरतला के वेस्ट में पड़ता है, ठीक है, उसको ऊपर कैप्चर करने के लिए। तो जो एनिमी की जो पोजीशन थी वो काफी वेल फोर्टिफाइड थी, मतलब इन द सेंस उसमें उसको काफी मजबूती से बनाया गया था, माइनफील्ड्स लगे हुए सब कुछ था जो है, और उसमें काफी लोग थे, स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा थी। तो इसको जो है कैप्चर करना जरूरी था क्योंकि इसके कारण जो है एक और आगे लोकेशन थी अकूरा वो उसको कैप्चर करने में मदद मिल रही थी।
2: अच्छा।
3: तो जब ये अटैक 3 दिसंबर को लॉन्च किया गया तो अल्बर्ट इक्का जी जो थे वो जो लीडिंग कंपनी थी उसका हिस्सा थे, जो कंपनी सबसे आगे जा रही थी। तो जब ये लोग आगे बढ़े तो इनके ऊपर बहुत ही इंटेंस आर्टिलरी शेलिंग और स्मॉल आर्म्स फायर आया। तो उस दौरान अल्बर्ट इक्का ने ऑब्जर्व किया कि दुश्मन की एक LMG है जो कि बहुत ज्यादा जिसके कारण की उन्हें नुकसान हो रहा, कैजुअलिटी हो रही थी। अब उन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए उस बंकर के ऊपर चार्ज किया।
2: अच्छा।
3: और जो दुश्मन के जो सोल्जर्स थे उनको मार गिराया। इस तरह से जो उन्होंने LMG को बिल्कुल जो है नष्ट कर दिया, ठीक है, इसमें उनको भी काफी चोटें लगी
2: जी।
3: बट इसके बावजूद जो है बहादुरी से अपने जो साथी थे कॉमरेड्स के साथ बढ़ते रहे आगे और जो है लड़ाई लड़ते रहे। ये और आगे बढ़े तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर जाने के बाद वो एक और अपने ऑब्जेक्टिव के पास जब पहुंचे हैं तो इनके ऊपर फिर से जो है काफी हैवी फायर आया।
2: अच्छा।
3: अब इस हैवी फायर में जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी वो मीडियम मशीन गन थी जिससे काफी ज्यादा मतलब जो फायरिंग राउंड फायर होते हैं तो उसके कारण जो इनका एडवांस रुक गया था और ये जो मीडियम मशीन गन थी उसकी लोकेशन भी जो थी वो जो एक फोर्टिफाइड बंकर था जो कि बिल्डिंग के डबल स्टोरी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे थी।
2: अच्छा।
3: तो मतलब ऊंचाई पे थी
2: जी।
3: वंस अगेन जो अल्बर्ट इक्का जी है उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा कि मैं जाके इसको नष्ट करूंगा और अपनी पर्सनल सेफ्टी को दरकिनार रखते हुए जो है ये बहादुर जवान आगे बढ़े और जो है वहां तक पहुंचे। वहां तक पहुंचने के बाद उन्होंने उसमें ग्रेनेड फेंका, ठीक है, जिससे कि एक जो है था अंदर सिपाही वो मर गया और दूसरा घायल हो गया, लेकिन MMG फिर भी एक्टिव थी।
2: अच्छा।
3: तो अब उन्होंने ये देखा तो फिर उन्होंने साइड से जो है चढ़ के ऊपर पहुंच के दोबारा उसके ऊपर अटैक किया। अटैक करने के बाद जो है MMG को उन्होंने मतलब न्यूट्रलाइज करा। इसी सुनने में आपको अभी भी लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन जब सामने से फायर आ रहा होता है, दुश्मन होता है और ये नहीं है कि उनको आपको ये भी नहीं पता कि वहाँ अकेले
2: कितने
3: लोग हैं
2: जी,
3: अंदर
2: जी।
3: कैसे हैं और उन सब के बावजूद आप इनिशिएटिव लेके जो है आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने एक बार नहीं किया ये, दो बार तीन बार लगातार जो है करते रहे एंड दिस ब्रेव सोल्जर लड़ते रहे और इस बीच में इनको काफी इंजरीज हुई एंड अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज लाइफ। तो इन्होंने जो है लड़ते लड़ते देश के लिए अपने प्राण दिए थे। तो इसके लिए उनको जो है परमवीर चक्र से
2: सम्मानित
3: किया गया था। तो ऐसे और भी कई बैटल्स थे, ऐसे और भी कई जवान थे, ऑफिसर्स थे जो उन्होंने बहुत बहादुरी से ये जंग में हिस्सा लिया और उसी के कारण जो है ये विजय हमें हासिल
2: हुई है। बिल्कुल सर, बिना बलिदान के इतनी बड़ी विजय मिलना तो नामुमकिन है।
3: नामुमकिन है
2: जी।
3: तो ये एक तरह से जो है ईस्टर्न सेक्टर का
2: अच्छा
3: वो था जिक्र था, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसके कारण जो है हमें विजय हासिल हुई।
2: तो सर यहाँ पर तो ये कहानी तो अधूरी है, क्योंकि ये तो केवल पूर्वी भाग की बात है।
3: एग्जैक्टली,
2: क्योंकि युद्ध तो पश्चिमी भाग पर भी उतनी ही गति से जारी था।
3: बिल्कुल।
2: तो जब तक दोनों ओर से युद्ध समाप्त नहीं हो जाता या विजय नहीं मिल जाती, तो युद्ध समाप्त नहीं हो सकता।
3: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: तो फिर अब आप हमें ये बताइए कि ऐसे ही समय में, इसी समय पर थल सेना की क्या भूमिका थी पश्चिमी भाग में।
3: अगर हम पश्चिमी भाग देखेंगे तो उसका जो फ्रंटेज है वो काफी बड़ा है
2: जी।
3: अब आप ये देखिए, लद्दाख सेक्टर से शुरू होके जो है नीचे रण ऑफ कच्छ तक, The complete thing is known as Western border.
2: जी, बिल्कुल।
3: With Pakistan जो है हमारा। तो इस पूरे के पूरे एरिया में you can visualize कि कितना डाइवर्स टेरेन है।
2: जी।
3: हाई एल्टीट्यूड एरिया है, स्टीप माउंटेन्स हैं, 19,000 से 20,000 की ऊंचाई पे।
2: जी।
3: उसके बाद प्लेन्स हैं पंजाब के, फिर डेजर्ट है राजस्थान का, सब कुछ आता है।
2: समुद्र की सीमा भी है।
3: हाँ जी। और हर एक इलाके के लिए आपको अलग अलग तरह से एक्सपर्टीज चाहिए लड़ने के लिए, अलग तरह की टैक्टिक्स चाहिए, अलग तरह की स्ट्रेटेजी चाहिए, अलग तरह के हथियार चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए।
2: जी बिल्कुल।
3: हर एक कुछ अलग अलग करना होता है।
2: बिल्कुल।
3: तो इट्स अ मैसिव जॉब टू कोऑर्डिनेट ऑल दीज एस्पेक्ट्स।
2: जी।
3: इसके लिए बहुत ही हाई स्टैंडर्ड और लीडरशिप चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ट्रेनिंग, उनको जो कोऑर्डिनेट करना। एंड दिस वॉज अचीव्ड बाय द इंडियन आर्मी। ठीक है। तो अगेन अगर हम बात करें, वही 3 दिसंबर से शुरू हुआ था जो है। और इसका अगर मैं जिक्र करना चाहूंगा तो अगर हम ऊपर लद्दाख सेक्टर से देखें तो लद्दाख में जो है शोक वैली जहाँ है उसको परतापुर सेक्टर बोलते हैं।
2: अच्छा।
3: तो परतापुर सेक्टर जो है इट इज वन ऑफ द टफेस्ट। इसी के अंदर सियाचिन ग्लेशियर आता है।
2: अच्छा।
3: ठीक है। उस समय ऑफकोर्स सियाचिन ग्लेशियर वॉज नॉट एक्टिव, एक्टिव इन द सेंस वहां पे ये हमारा जो अभी कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं चल रहा था, वो बाद में आया था। उस समय वो एरिया डॉर्मेंट था। लेकिन उसका जो बाकी एरिया जो है LOC जो है वो तो मतलब POK का एरिया था उसमें जो है। तो उसमें जो है एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन थी, दिसंबर का महीना था और माउंटेन्स जो है मतलब 16,000 से 19,000 फीट की ऊंचाई पे है वहां पे। तो वहां पे लद्दाख स्काउट और नुब्रा गार्ड्स थे, उनके अंडर में एक बहुत ही हाईली डेकोरेटेड सोल्जर थे, ऑफिसर थे मेजर सी रंजन।
2: अच्छा।
3: जो ऑलरेडी महावीर चक्र और सेना मेडल से
2: सम्मानित
3: थे।
2: जी, बिल्कुल।
3: तो उन्होंने जो है POK एरिया में अटैक लॉन्च किया था और ये देखे कि कितना मतलब उन्होंने जबरदस्त अटैक करके जो है एक के बाद एक उन्होंने ऑब्जेक्टिव कैप्चर करके ऑलमोस्ट पाकिस्तान के 5 गांवों के ऊपर कब्जा किया था।
2: क्या बात है।
3: जी। तुर्तुक त्याक्षी से होते हुए 5 गांव थे जो उन्होंने कब्जा किए थे और ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर की जो है टेरिटरी
2: कवर
3: करी उन्होंने
2: जी।
3: एक और मजेदार बात यह है कि जो 5 गांव थे जिसमें मुस्लिम्स रहते थे उन सबने जो है इंडियन सोल्जर्स का वेलकम किया था।
2: यानी वो पाकिस्तान से त्रस्त है सर।
3: त्रस्त है
2: जी।
3: तो मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है
2: जी,
3: जो है
2: बिल्कुल।
3: और इसके अलावा वहां पे उन्होंने एक पोस्ट पे भी कैप्चर किया था जो कि 19,000 की हाइट पे थी। तो उस मौसम में जहाँ सांस नहीं आती है
2: जी, जी, जी।
3: और उन दिनों तो इवन साधन भी नहीं होते थे इतने ज्यादा, उस वक्त इतनी ऊंचाई पर लड़ना काबिले तारीफ है।
2: बिल्कुल। अविश्वसनीय है।
3: अविश्वसनीय है। मैं खुद इन हाइट्स पर रहा हूँ, सचिन में रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल अभी के हालात में जबकि हमारे को इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल, तब 71 के टाइम पे मतलब जो है इसमें लड़ना बहुत बड़ी बात थी। एंड इसके कारण नो डाउट ये जो ट्रुप्स थे इन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही बहादुरी का काम किया था। उसके लिए मेजर इंचन साहब को एक बार फिर से महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और भी जो है काफी सारे जो लीडर्स थे जवान थे उनको जो है गैलेंट्री अवार्ड्स मिले थे। उसके पश्चात अगर हम थोड़ा वेस्ट में आते हैं तो कारगिल सेक्टर आता है। तो अगेन कारगिल सेक्टर वी ऑल नो के इट्स अ वेरी सेंसिटिव एंड स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट सेक्टर। ठीक है। हमारे लिए भी, पाकिस्तान के लिए। क्योंकि उसमें सबसे हमारे लिए सबसे जरूरी है कि पूरा लद्दाख जो है उसी रोड से जुड़ता है जो कि श्रीनगर से ले जाती है
2: जी।
3: और उसको डोमिनेट जो है कुछ पोस्ट करती थी पाकिस्तान की, तो इसको सेक्टर को समय भी 1-to-1 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ग्रुप जो है इसके डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था।
2: अच्छा।
3: और ब्रिगेडियर एम एल विग जो थे वो इसको कमांड कर रहे थे। ठीक है, तो इस सेक्टर में ऑफेंसिव ऑपरेशंस लॉन्च किए थे इंडियन आर्मी ने और पाकिस्तान की 80 में से जो है 36 पोस्ट पे कब्जा किया था।
2: 80 में से 36
3: जी। और एक तरह से मतलब जो है पाकिस्तान का जो डोमिनेशन था इस रोड के ऊपर वो एक तरह से पूरी तरह खत्म कर दिया। इफ यू सी इट इज अ मेजर अचीवमेंट, मेजर सक्सेस। ठीक है, एंड इसी दौरान जो है ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर से ऊपर, स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर जो है पाकिस्तान के टेरिटरी भी कब्जा किया था। और जो पाकिस्तान की वहां की जो डिफेंसेस थी
2: जी
3: उसको एक तरह से खत्म कर दिया,
2: पीछे हट गए वो
3: बिल्कुल
2: जी।
3: इसके लिए जो ब्रिगेड कमांडर साहब थे तो उनको जो है महावीर चक्र से
2: सम्मानित
3: किया गया था। एंड वेरी राइटली ही डिजर्व दिस ऑनर
2: जी, बिल्कुल,
3: फॉर हिज आउटस्टैंडिंग लीडरशिप एंड ब्रेवरी। ठीक है, एंड और भी जो ऑफिसर्स जो थे जिस योस और जवान लड़े थे भारत से उनको भी अवार्ड्स मिले थे जो है
2: जी।
3: इसी तरह से और हम वेस्ट में आते हैं तो श्रीनगर वैली उरी सेक्टर में जो है
2: वी
3: वर डिप्लॉयड इन डिफेंसिव रोल। ठीक है, यहाँ पे भी ऑफेंसिव ऑपरेशंस लॉन्च करके जो है डिफेंसिव पोस्चर्स को इम्प्रूव करा गया था एंड पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर जो है कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली जो है प्रेशर बनाए रखा था। सबसे ज्यादा जो मेजर ऑफेंसिव पाकिस्तान ने लॉन्च किया था वो पुंछ सेक्टर में 3 दिसंबर को किया था, जिसमें कि उन्होंने हमारी लोकेशन थी थानपीर और मंडी हाइट्स उस पर कब्जा किया था। लेकिन इंडियन आर्मी ने जो है उसके ऊपर जो है काउंटर ऑफेंसिव करके वो दोबारा कैप्चर कर ली थी एंड उसके बाद जो है पुंछ में
2: जी
3: उनका जो है अटैक नहीं आया था, फिजल आउट हो गया था, खत्म हो गया था। फिर पाकिस्तान का और सबसे जो है फियर्स अटैक आया था वो था छम सेक्टर, जहाँ पे कि दे सक्सीडेड कैप्चरिंग मंडियाला हाइट्स। ठीक है, और उसके बाद फिर से जो है पाकिस्तान लॉन्च मेजर अटैक एंड कैप्चर छम। और इस सफलता के बाद पाकिस्तान ने जो है मुनव्वर तवी रिवर के अक्रॉस जो है ऑपरेशन लॉन्च करा था। यहाँ पे जो इंडियन आर्मी ने उनको जो है काफी फियर्स फाइट दिया था एंड जो इसमें जो है पाकिस्तान के काफी सारे टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए थे एंड जिससे कि पाकिस्तान जो फोर्सेस है उनको पीछे हटना पड़ा।
2: यानी सर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के इलाके में यदि हम देखें तो लगभग सारे क्षेत्र में भारतीय सेना युद्ध में हावी रही थी और लगभग उसकी विजय थी
3: आप कह सकते हैं
2: जी,
3: क्योंकि हमने जो ऑपरेशन वहां करे थे उसमें क्लियर कट जो है कारगिल सेक्टर प्रतापपुर सेक्टर में हमें जो है विजय हासिल हुई थी
2: जी।
3: ऑफ कोर्स जैसे अभी हमने जिक्र किया कि छम सेक्टर में वी लॉस्ट टेरिटरी एंड इसके अलावा भी श्रीनगर में जो उरी सेक्टर था ठीक है उसमें इट इज नॉट दैट कि वी लॉस्ट एनीथिंग बट एट द सेम टाइम वी आर नॉट मेड मेजर सक्सेस। तो ये एक तरह से इस तरह का ऑपरेशन वहां पे चला था जो है। मेजर जो लड़ाई हुई थी उसके बाद वो थी शकरगढ़ बल्ज पंजाब में
2: जी। तो सर मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी कि ये शकरगढ़ बल्ज कहाँ है और ये बल्ज क्या होता है।
3: देखिए बल्ज का मतलब होता है कि जमीन जो है वो एक तरह से हमारी तरफ अंदर से उठी हुई, जैसे आपने गुब्बारे में अगर हवा भरी होती है तो किस तरह से फूलता है
2: जी।
3: उसी तरह से जमीन का जो हिस्सा है जो एक तरह से पाकिस्तान का हिस्सा है जो हमारे अंदर आया हुआ है।
2: अच्छा अच्छा,
3: जिसमें कि मतलब इनफैक्ट अगर आप देखें जैसे अगर एक गुब्बारा है उसके मतलब गुब्बारे के जो पूरी बॉर्डरी है
2: जी जी जी
3: उसपे इंडियन फोर्सेस लगी हुई हैं और अंदर जो एरिया है वो पाकिस्तान का है।
2: अच्छा जी जी,
3: उसको हम बल्ज बोलते हैं,
2: मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो हमारे देश के क्षेत्र में अंदर तक आया
3: हुआ है
2: जी।
3: और ये गोल शेप में
2: जी
3: है तो उसको हम बल्ज कहते हैं।
2: ओके,
3: तो ये शकरगढ़ बल्ज का जो एरिया है ये चिनाब और रावी रिवर के बीच में पड़ता है।
2: अच्छा अच्छा,
3: और इसका जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ये है कि इससे जो है हमारी जो मेन कम्युनिकेशन लाइन है जो जम्मू से जुड़ती है
2: जी,
3: जो रोड है वो इसके पास से गुजरती है।
2: अच्छा,
3: तो पाकिस्तान के लिए बहुत आसान है कि वहां से अपने फोर्सेस लाके अटैक करके सांबा के पास हमारा जो रोड कम्युनिकेशन है उस पे कब्जा कर, तो अगर वो ऐसा कर पाने में सफल होता तो उससे जम्मू सेक्टर एंड नदन सेक्टर को वो पूरा काट सकते थे, जिससे कि हमारे लिए काफी मुश्किल खड़ी हो सकती थी। तो ये एक्सपेक्टेड था एक तरह से कि पाकिस्तान वहां पे अपना ऑपरेशन ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च करेगा। उसके कारण जो है हमारी जो इंडियन आर्मी थी वो भी इस एरिया में काफी सजग थी,
2: पूर्व तैयारी में थी
3: काफी सजग थी। एंड एक तरह से जो है इंटेलिजेंस अवेलेबल भी यही थी, जैसे अभी मैंने कहा कि पाकिस्तान ने अपना आर्मर डिवीजन और एक इन्फेंट्री डिवीजन ऑफेंसिव लॉन्च करने के लिए इस सेक्टर में डिप्लॉय करा हुआ है, और पाकिस्तान ने जो बल्ज है इसकी जो डिफेंसेस भी बहुत स्ट्रांग बनाई हुई थी, क्योंकि उसको भी एक खतरा है कि अगर हम चारों तरफ हैं तो हम भी अंदर आ सकते हैं और या उसको कट कर सकते हैं, और उन्होंने काफी एक्सटेंसिव माइंड फील्ड उसमें वहां पर लगा रखी थी ताकि किसी तरह से भी उनको टेरिटरी लॉस ना हो, मतलब पराजय का सामना ना करना पड़े। लेकिन इस इलाके में जो है पाकिस्तान ने ऑपरेशन नहीं लॉन्च किया।
2: अच्छा।
3: इन स्पाइट ऑफ दिस कंफर्मेशन की उनकी फोर्सेस थी, उन्होंने ऑफेंसिव नहीं लॉन्च किया। इंडियन आर्मी लॉन्च इस ऑफेंसिव।
2: अच्छा, यानी पहले मौका भारतीय सेना को मिल गया। हाँ, ले लिया भारतीय सेना ने।
3: तो 5 दिसंबर को

0: इसमें जो एक बैटल लड़ी गई थी जिसको बैटल ऑफ बसंतर के नाम से जाना जाता है,
1: बेहद मशहूर है सर,
0: बेहद मशहूर है
1: जी।
0: एंड दिस वाज वन ऑफ द फियर्सेस्ट बैटल ऑफ 71 वॉर, मतलब सबसे ज्यादा जो है। आप ये देखिए, इस बैटल के अंदर दो परमवीर चक्र लोगों को सम्मानित किया गया था ऑफिसर्स को, तो मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि कितना मतलब जो है फियर्स बैटल रहा था।
1: सर, इस सिलसिले को हम तो जारी रखना चाहते हैं लेकिन समय अभाव है और आज के एपिसोड का यहीं पर समय जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो यदि बसंतर की इस लड़ाई को हम अगले एपिसोड में यदि आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए और हम भी सुनने के लिए बेताब रहेंगे अगले हफ्ते के लिए। सर
0: ज़रूर पूर्वा जी, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे
1: जी सर
0: अगले एपिसोड में।
1: जी बिल्कुल सर, और हम भी इंतज़ार करेंगे इस बैटल को सुनने के लिए क्योंकि ये एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही बहादुरी से भरी हुई एक जंग है।
0: जी बिल्कुल सही कहा
1: जी सर। तो श्रोताओं, सन 1971 में भारत ने केवल युद्ध ही नहीं जीता बल्कि इतिहास को बदल के रख दिया, इतिहास की दिशा बदल दी और इस युद्ध ने विश्व का भूगोल ही नहीं बदला बल्कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को भी बढ़ा दिया। और ये जंग जिसमें हम शकरगढ़ बल्ज तक पहुंच गए हैं, इसे हम यूं ही जारी रखेंगे आगे भी और इसके लिए आपको इंतजार करना होगा अगले हफ्ते तक। थैंक यू सर, आज आप हम

0: था हमारा आज का कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना की अदिति गौड़ ने और ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का। समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का और मैं थी आपके साथ आपकी अपनी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो दीजिए अनुमति अब इस कार्यक्रम से, नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
1: हमारी सेना हमारा गर्व। अभी आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे थे। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के विविध कार्यक्रम। ये है देश का चैनल, देश के लिए।

0: देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
2: नाइन्टी पॉइंट एट मेगा हर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शहीद भगत सिंह नाटक के संपादित अंश।

0: जिसका मंचन हुआ 23 मार्च यानी शहीद दिवस के मौके पर। इस नाटक का निर्देशन किया सुंदरलाल मालवीय ने। यह प्रस्तुति रही माच शैली में। यह इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग है।
1: मित्रों, मैंने जयदेव जी की असेंबली का पास वायस राय की निगरानी रखा कही दियो है।
2: ठीक है भगत, तुम असेंबली में बम फेंकवा के मत जाओ, आफत में पड़ी जाओ, और ये मैं नहीं चाहूंगा। अभी तुम्हारो भायर रहना जरूरी है।
3: सही बात है
1: आजाद जी, आप निश्चिंत रहो, मैं तो यो सब जनता के जगावा का वास्ते कर लू।
2: तो ठीक है,
1: हमारी चिंता मत करो।
2: तो ठीक है, पंचायतियों आप सब सुनी लो, आपके बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को ध्यान रखना। इंकलाब
4: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
4: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
4: जिंदाबाद,
2: इंकलाब जिंदाबाद।
3: आज 8 अप्रैल 1929 को दल ने अपने भगत सिंह, अपना साथी, उनका साथ असेंबली का माय कार्यवाही शुरू की जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, पे अटेंशन।
4: इंकलाब जिंदाबाद,
3: वंदे मातरम, संरक्षक।

0: हमारा सभी साथी लाहौर जेल में, आजाद जी फरार है और हमारा जीवन तो मृत्यु साधना का सिद्धांत पर चली रही है। और हम अपनो बयान या जेल में नहीं, सीधो सेशन जज की अदालत का मायदांगा। इंकलाब
1: जिंदाबाद,
0: वंदे
1: मातरम,
0: साम्राज्यवाद
1: मुर्दाबाद।
2: 4 जून 1924 का दिन भगत सिंह जी की पेशी दिल्ली की अदालत में हुई। कार्यवाही शुरू की जाए।
0: जज साहब, कानून पे कानून तमलाव हो और हमारे घना डराव हो। फ्रांस रूस की क्रांति देखो, कोई भी नहीं दबाई पायो। आजादी को कार वो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगो। और फांसी अगर न्याय तमारो तो फंदा कम पड़ी जाएगा। दस साहब, हमारी बात सुनी के नौजवान में जोश खूब भराएगा। सच्चा वीर सपूत भारत माँ का देश पे बलि बलि जाएगा। इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: वंदे
1: मातरम,
0: साम्राज्यवाद
1: मुर्दाबाद।
2: देखियो, देखियो आपने भगत सिंह के बयान का सच। आखो देश भगत सिंह जी का साथ हुई गयो। बच्चों देश का ऊपर बलिदान करवा के लिए तैयार हुई। अबे 10 जून 1929 का दिन फैसला आवे।
3: ओ रामलाल जी।
4: अरे हाँ, एक बात है रामलाल।
3: रहो थोड़ा, इधर आओ जरा।
4: हाँ,
3: काम की बात है।
4: हाँ।
3: हमारे मालूम है
4: कहीं
3: भगत सिंह ने बटुक केशर दत्त को आजीवन कारावास की सजा भई है।
4: हाँ,
3: और ने भगत सिंह के मियाँ वाली जेल में। हाँ। ने बटुक केशर दत्त के लाहौर जेल में भी सजा है।
4: अरे,
3: और वहाँ कहीं भी हो ना।
4: हाँ।
3: इनके साथ साथ सारा खेती उन भी सब भूख हड़ताल पे बैठी जा। भगत सिंह ने वहाँ कितना परेशान कर रखे।
4: तुम सही कह रहा हो, वहाँ लाहौर जेल में भी बटुक केशर दत्त ने ऐसा ही माहौल बनाई रखे।
3: हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखा कर अपना।
4: तुम भी अपना ध्यान रखा करो।
3: ठीक
4: है, मिलते हैं फिर।
0: मैंने इंस्पेक्टर जनरल के पत्र लिखो कि हमारे यहाँ से लाहौर जेल भेजो जाए। और भी ने हमारी बात मानी ली है और अब मैं भी लाहौर जेल में आई हूँ।
2: दस जुलाई 1929 का दिन भगत सिंह जी के पेशी हुआ वाली थी, लेकिन बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह की हालत ऐसी थी कि विद्रोही चले भी नहीं पा रहा था। जो सब सुनी के भारत की जनता का मन में अंग्रेज सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़तो जा रही थी। विद्रोही कदोई अदालत का माय हड़ताल पे बैठी गया। जो सब होने से अदालत की कार्रवाई में बाधा पहुंची, लेकिन के पाछो जेल में पहुंची।
0: सरकार की परेशानी तो बढ़ती जा रही है, हमारा साथियों की हालत दिन पे दिन खराब हो रही है। सरकार तो चाह रही है कि हड़ताल खत्म हो जाए, पर यहाँ हड़ताल तो चली रही है। हमारो ध्यान अब अपना साथियों की जान बचाव में। ए सुनो जरा, हमारा साथियों के पानी क्यों जाए।
5: ए सुनो, भगत सिंह वान हड़तालियों को पानी की जगह दूध दिया जाए।
4: सब दूध के मटके इनके लिए पहले से ही भरवा के रख दिए।
5: दूध हम में से कोई भी इना दूध पे हाथ भी नहीं लगाए दो,
6: हम पानी ही पियांगा। थोड़ी देर मटका के,
0: थोड़ी देर मटका उनके।
5: बस है भाई, सब इन हड़तालियों ने कैदियों ने तो सारे दूध का मटका फोड़ी दिया इन्हें। अरे, इन हड़तालियों को पानी ही देना पड़ेगा। अगर इनमें से किसी को कुछ हो गया तो उन पर क्या जवाब देंगे।
6: जी सर।
0: साथियों, अगर हमारा मित्र यतीन्द्र नाथ जी की मृत्यु नहीं होती तो हम पानी के कभी हाथ भी नहीं लगाता और या हड़ताल भी कभी समाप्त नहीं करता।
7: भगत, तुमने इन अंग्रेजों की हकीकत जनता के सामने लाके रखी दी।
0: मारो जो मकसद हो, मैं उनमें सफल हो तो चाहिए हूँ और हमारो मनोबल अब और बढ़ते जा रही है।

0: नौजवान मालूम है, ये नौजवान जो है नौजवान ये अपराधी नहीं है, और ये तो क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी,
1: क्रांतिकारी,
0: हाँ क्रांतिकारी है,
2: क्रांतिकारी नहीं देशभक्त।
0: जिसका जा
3: भगत सिंह जी की रणनीति से लाहौर षड्यंत्र रचियों ने पूरी अपना साथी उनका माय विनय जोश भरी। 1 मई के लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई थी।
4: इनकलाब
5: जिंदाबाद,
4: वंदे
5: मातरम,
4: भगत सिंह,
3: सुखदेव,
2: राजगुरु। कार्यवाही शुरू की जाए।
4: जज साहब, देश की खातिर कौन बाजी लगाएगा, और सुनिए कि महफिल में हमारा इम्तहान होएगा। ए खुदा, वो दन भी आएगो जदे हम कायम होवांगा, जदे अपनी जमीन और अपनो आसमान होएगा। इनकलाब
5: जिंदाबाद,
4: वंदे
5: मातरम,
4: साम्राज्यवाद
5: मुर्दाबाद।

इनकी पिटाई देखी के आगा हैदर खान वहां से चलिया गया। तो फिर एक दिन फैसला आयो कि सुखदेव राजगुरु ने भगत सिंह जी के जल्द से जल्द फांसी दे दी।

0: बेटा भगत?
1: हाँ पिताजी।
2: मैंने सुने थारे फांसी होवा वाली।
1: हाँ पिताजी, तमने सही सुनी, मारे फांसी होवा वाली है।
2: देशभक्ति है इतनी बड़ी, हम समझा मां ने बाप, हारो छोरो फांसी चढ़ी दी, सीना में चली दिया।
1: पिताजी म्हारी मौत जीवन से कीमती, सबके यो बतानो है, देश प्रेम की लो लगे ऐसो फर्ज निभानो है। तम मोह में मत पड़ जो, तमारो बेटो देश का वास्ते शहादत दई के देश की आजादी को रस्तो पक्को करनो चाहिए।
2: ठीक है भगत, वंदे मातरम।
3: वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम।
3: वंदे मातरम।
4: बेटा महारा, यो कई होएगी?
1: माँ तू रोएगी तो लोग कहेगा कि वीर की मार हो रही है, भगत सिंह की मार हो रही है। तुम्हारी बात सुन माँ,

0: मैं थारा जैसे वीर सपूत की माँ हूँ।
1: तू अपनो ध्यान रख जे माँ, बेन तू भी अपनो ध्यान रख जे।
2: ठीक है भैया। भैया तमारो यो बलिदान आपको देश याद रखेगा। इंकलाब
3: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
3: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
3: जिंदाबाद।

धोनी के गुण टाली सके, वह तो अटल सत्य। समय सब गुंगो हुई के देखी ले। लो फांसी को पैगाम है आपके मालूम। भगत सिंह की फांसी से अंग्रेज सरकार इतनी डरेगी कि उनके एक दिन पेलाच फांसी पे चढ़ाव को हुक्म दिया। अखो देश, अखो देश भगत सिंह के बचाव की प्रार्थना करके, माँ ऐसो भाई चाहिए, माँ ऐसो बेटो चाहिए, बहन ऐसो भाई चाहिए, सबकी आख्या नम, मारी भी नम।

0: ये था मार्च 6 शहीद भगत सिंह। इसे लिखा था श्री सुंदरलाल मालवीय और यशस्विनी निगम ने। परिकल्पना, निर्देशन और संगीत श्री सुंदरलाल मालवीय।
1: आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नाटक शहीद भगत सिंह के संपादित अंश। ये इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग था। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: छोटी सी बात। दोस्तों नमस्कार, हमारे सेगमेंट छोटी सी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, इस सेगमेंट में अक्सर हम आपसे छोटी छोटी बातों का जिक्र करते हैं, छोटी छोटी बातों पर चर्चा करते हैं जो बहुत बड़े फायदे हमें दे जाती हैं। जी हाँ, छोटी सी बात जिसके परिणाम हैं बहुत बड़े। अच्छा ये बताइए, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आजकल बहुत सी बातें आप भूल जाते हैं? समय पर कोई चीज याद नहीं आती, या कोई सामान कहाँ रखा, अभी तो हाथ में था जाने कहाँ रख छोड़ा, ऐसा होता है? अक्सर होता है ना कि चाबियां अभी तो हाथ में थी जाने कहाँ रख दी, और फिर पूरे घर में एक बवाल एक तहलका कि भाई गई कहाँ चाबी, और काम बिगड़ जाता है। या यूं ही चश्मा उतारा और जाने कहाँ रख दिया, और अब जब जरूरत हुई तो फिर वो मिलता ही नहीं। तो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा है तो हमारा आज का ये सेगमेंट छोटी सी बात आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। शोध बताते हैं कि संगीत सुनने से आपकी याददाश्त पर बहुत सकारात्मक असर होता है। हम सबको तो पहले से ही पता है कि संगीत सुनने से सेहत से जुड़े हुए कई अद्भुत लाभ होते हैं। लेकिन अब जर्नल ऑफ अल्जाइमर डिजीज में प्रकाशित हुए नए अध्ययन बताते हैं कि संगीत सुनने से याददाश्त मजबूत होती है। ध्यान और संगीत मूड, नींद और जीवन के स्तर में सुधार लाता है। ध्यान और मेमोरी में सुधार से संबंधित शोधों से पता लगता है कि संगीत भी इसमें एक महत्वपूर्ण कारक है। यूनिवर्सिटीज ऑफ कैलिफोर्निया में किए गए एक अध्ययन में छात्रों को 2 सप्ताह के लिए माइंडफुलनेस क्लास या न्यूट्रिशन क्लास लेने के लिए कहा गया। जिन छात्रों ने माइंडफुलनेस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया उनकी मेमोरी में सुधार हुआ। एक और शोध किया गया। इस शोध के मुताबिक संगीत सुनने से दिमाग क्रिसमस ट्री की तरह चमकने लगता है। जी हाँ, इसलिए संगीत को चमत्कारिक कहा जाता है। वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में 59 वर्ष के व्यक्तियों का चुनाव किया गया जिनकी व्यक्तिपरक संज्ञानात्मकता में गिरावट आई थी। ये अल्जाइमर बीमारी के लक्षणों के बहुत करीब थे। भागीदारों को 2 मस्तिष्क शरीर अभ्यास करने के लिए दिए गए थे। उन्हें शुरुआती ध्यान के लिए कहा गया या संगीत सुनने के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कहा गया। ऐसा 12 सप्ताह तक हर रोज 12 मिनट करने के लिए कहा गया। अध्ययन की अवधि की समाप्ति पर दोनों दलों ने व्यक्तिपरक स्मृति और संज्ञानात्मक बोध में पर्याप्त सुधार दर्ज किया, और साथ ही डिमेंशिया की शुरुआती स्टेज में होने वाले नकारात्मक प्रभावों में भी बहुत सुधार देखा गया। शोध में पाया गया कि एकाग्रता प्रोसेस की गति में बहुत इजाफा हुआ है। हालांकि अभी वैज्ञानिक पूरी तरह से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि कौन सा संगीत आपके दिमाग के लिए अच्छा है, पर आपको अपनी पसंदीदा ट्यून जरूर सुननी चाहिए। वैसे कहते हैं कि बांसुरी पर बजाई कोई धुन आपके दिमाग पर चमत्कारिक असर रखती है। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की छोटी सी बात। हमें उम्मीद है कि आपको इससे जरूर लाभ होगा। अगर ऐसी कोई समस्या आपके साथ है, आप भी चीजों को रख कर भूल जाते हैं, या कोई बात बिल्कुल समय पर याद नहीं आती, या किसी व्यक्ति से मिले और अचानक लगा कि इससे मुलाकात तो हुई थी, नाम भी पता था, लेकिन एग्जैक्टली उस वक्त आपको याद नहीं आता है कि कहाँ मुलाकात हुई थी और इनका नाम क्या है। तो अगर ऐसी बात आपके साथ हो रही है, ऐसी कोई समस्या आपके साथ हो रही है, तो संगीत सुनना शुरू कीजिए। संगीत सुनिए, आपको याद रहने लगेगा। छोटी सी बात।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम देश के संस्थान। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे DRDO के बारे में, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: चरण स्पर्श दादाजी।
2: अरे अरे अरे अरे बेटा, खुश रहो। क्या बात है, आज तो मेरी प्यारी रुचि बिटिया का जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा।
1: थैंक यू दादू।
2: तो बताओ, आज जन्मदिन पर क्या उपहार चाहिए?
1: दादू, आज मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ।
2: अच्छा, मतलब ज्ञान वाला उपहार चाहिए? तो फिर जरूर पूछो बिटिया, क्या उपहार चाहिए?
1: दादू, अब तक आप मुझे देश की सेनाओं के बारे में बता रहे थे कि कैसे भारतीय थल सेना, वायु सेना और दूसरी सेनाएं हमारे देश की रक्षा करती हैं। लेकिन अब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन सेनाओं के पास जो हथियार, मिसाइलें, रडार, टैंक और रक्षा उपकरण होते हैं, उन्हें कौन बनाता है और वो कौन कौन से संस्थान हैं जो देश की सुरक्षा के लिए नई तकनीक तैयार करते हैं?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। देखो बेटा, अक्सर लोग सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिकों को देखते हैं, लेकिन उनके पीछे हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ भी काम करते हैं, जो देश को मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं।
1: मतलब देश की रक्षा सिर्फ सैनिक ही नहीं, वैज्ञानिक भी करते हैं दादाजी?
2: हाँ बेटा, बिल्कुल। सैनिक सीमा पर लड़ते हैं और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में।
1: सच में दादू?
2: हाँ बेटा।
1: क्या वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से भी युद्ध लड़े जाते हैं?
2: बिल्कुल। चलो बेटा, आज तुम्हारे जन्मदिन के लिए ये बेहतर उपहार होगा। हम चर्चा करेंगे देश के संस्थानों के बारे में नए सिरे से। चलो चर्चा शुरू करते हैं। अब से मैं तुम्हें देश के ऐसे ही महान संस्थानों की कहानी सुनाऊंगा बेटा, जहां देश की उन्नति के लिए दिन रात तकनीकों पर काम किया जाता है।
1: सच में दादू?
2: हाँ बेटा।
1: तो फिर शुरुआत किससे करेंगे?
2: शुरुआत करेंगे, हाँ, भारत के सबसे बड़े रक्षा अनुसंधान संस्थान से, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी कहते हैं, समझे बेटा? और शॉर्ट में बोलते हैं DRDO।
1: DRDO यानी वो संस्थान जहां देश के लिए मिसाइलें और आधुनिक तकनीक बनाई जाती है।
2: हाँ बिटिया, जहां विज्ञान देशभक्ति से मिलता है और जहां से निकलती है मिसाइलें, रडार, ड्रोन, युद्ध तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की ताकत।
1: दादू, तो बताइए ना कि DRDO क्यों बना, ये कैसे काम करता है और कैसे भारतीय वैज्ञानिक देश को नई शक्ति दे रहे हैं, और DRDO में नौकरी पाना मुश्किल है या फिर आसान है?
2: आसान तो नहीं है बेटा, पर जिसने मेहनत की हो, लगन से पढ़ाई की हो, जिसके मन में देश सेवा का जज्बा हो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं।
1: दादू।
2: हाँ बेटा।
1: आपके एक दोस्त जो हमारे घर आया करते थे, वो मोहन अंकल, वो भी तो DRDO में वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने आपको जरूर बताया होगा कि वहाँ मिसाइलें कैसे बनती हैं।
2: तुम्हें खूब याद रहता है, हा? मेरा कौन दोस्त कब आया था?
1: हाँ दादाजी।
2: हाँ, DRDO सिर्फ मिसाइल नहीं बनाता, वो तो हमारे देश की रक्षा विज्ञान की रीढ़ है। ये संस्था वो जगह है जहां हमारे वैज्ञानिक रात दिन मेहनत करते हैं ताकि भारत आत्मनिर्भर बने और विश्व में मजबूती से खड़ा हो सके।
1: दादाजी, अब तो मुझे इसके बारे में डिटेल में बताइए, जैसे DRDO की स्थापना कब हुई थी और इसका इतिहास क्या है?
2: देखो बेटा, DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। असल में ये दो संस्थाओं के विलय से बना था, रक्षा विज्ञान संगठन, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन और तकनीकी विकास निदेशालय, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। और इसका उद्देश्य था भारत के सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करना, यानी हमारे सैनिकों को ऐसे हथियार, उपकरण और तकनीक देना जो पूरी तरह हमारे देश में बने हों।
1: मतलब अब हमें हथियारों और अन्य रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। दादाजी
2: बिल्कुल सही कहा बेटा, आज भारत के पास अपनी मिसाइलें हैं, अपने रडार सिस्टम हैं, यहाँ तक कि अपनी लड़ाकू तकनीकें भी हैं, और ये सब DRDO की देन है।
1: वैसे किस तरह की लड़ाकू तकनीक दादाजी?
2: आज DRDO ने देश को अग्नि, पृथ्वी, आकाश जैसी मिसाइलें दी हैं बेटा। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस बनाया है और सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर ड्रोन तक तैयार किए हैं। उनके वैज्ञानिक न केवल रक्षा में बल्कि अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा और मेडिकल तकनीक में भी योगदान दे रहे हैं।
1: वाह दादाजी, मतलब DRDO सिर्फ प्रयोगशाला नहीं बल्कि देश की रक्षा का मस्तिष्क है।
2: हाँ बेटा बिल्कुल सही कहा, DRDO वही है जो सीमा पर सैनिक की बंदूक में जान डालता है और आसमान में उड़ते विमान को भारतीय आत्मा बना देता है।
1: दादाजी अब मैं भी वैज्ञानिक ही बन जाऊं, ऐसा लग रहा है। मैं भी देश के लिए कुछ नया बनाऊंगी ताकि जब कोई कहे मेड इन इंडिया तो उसमें मेरा भी योगदान हो।
2: शाबाश मेरी बच्ची, यही तो असली देशभक्ति है, सिर्फ तिरंगा लहराना नहीं बल्कि अपने ज्ञान, अपनी मेहनत से उसे ऊंचा उठाना भी देशभक्ति है।
1: दादू एक सवाल है कि क्या DRDO एक बहुत बड़ी संस्था है?
2: बहुत विशाल बेटा, बहुत विशाल संस्था। DRDO का लगभग 41 प्रयोगशालाओं और 5 DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं DYSLS का अपना नेटवर्क है, या कहें कि एक संगठन है जिसमें हजारों वैज्ञानिक, तकनीकी और सहायक कर्मचारी देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कई अलग अलग विषयों को कवर करने वाली रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में काम कर रहे हैं।
1: 5,000 मिसाइलें शामिल हैं दादू?
2: हाँ बेटा, पृथ्वी मिसाइल, त्रिशूल, नाग, आकाश, अलग अलग वर्ग की मिसाइलें इसमें शामिल हैं। DRDO के द्वारा ही विकसित तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान LCA भी हमेशा खूब चर्चा में रहता है। रुस्तम, निशांत, इन जैसे UAVs यानी ड्रोन्स बनाने में DRDO का अहम योगदान है। अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश, ये सभी मिसाइलें तो अभेद मिसाइलें हैं बेटा, जिनको बनाने की उपलब्धियां DRDO ने काफी पहले ही हासिल कर ली थी। अग्नि 5 की रेंज 5,000 किलोमीटर है बेटा, 5,000 किलोमीटर।
1: अच्छा दादाजी, ये तो मिसाइलों का पूरा भंडार है।
2: हाँ बेटा, पूरा भंडार। दरअसल संस्था का विजन है कि देश को अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के साथ सशक्त बनाना है।
1: अच्छा दादू, क्या ये सब DRDO अकेले करता है?
2: नहीं बेटा, DRDO ये सब अकेले नहीं करता। इसे हाल इसरो, BEL और कई निजी कंपनियों से सहयोग मिलता है। आजकल DRDO और प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप तेजी से बढ़ रही है। इससे न केवल नई तकनीकें तेजी से बनती हैं, बल्कि युवाओं के लिए करियर के मौके भी बढ़ते हैं।
1: अच्छा, तो क्या DRDO ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का डिजाइन भी खुद तैयार किया था?
2: हाँ बेटा, साथ ही UVS जैसे रुस्तम, निशांत का निर्माण DRDO ने किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आधारित आधुनिक युद्ध प्रणालियों के लिए AI आधारित निगरानी और लक्ष्य पहचान, क्वांटम संचार, एनक्रिप्शन और साइबर सुरक्षा पर शोध, ये सब DRDO की उपलब्धियां हैं।
1: मतलब विज्ञान सिर्फ नई खोजों के लिए ही नहीं, सुरक्षा के लिए भी होता है दादाजी।
2: बिल्कुल सही बेटा। मोहन जी से चर्चा चल रही थी तब उन्होंने बताया,
1: अच्छा,
2: कि आजकल के युवा वैज्ञानिक हमसे भी एक कदम आगे हैं।
1: वो कैसे भला?
2: देखो बेटा, अब AI आधारित सर्विलांस सिस्टम यानी आर्टिफिशियल सर्विलांस से दुश्मन की पहचान ऑटोनोमस ड्रोन्स यानी बिना इंसान के उड़ने वाले ड्रोन्स और बैटलफील्ड रोबोट्स यानी खुद ही ऑपरेशन करने वाले रोबोट्स पर काम कर रहे हैं। देखना, तुम भविष्य का भारत आज के भारत से 100 गुना ज्यादा ताकतवर पाओगी बेटा।
1: बिल्कुल होगा दादाजी, हमारे वैज्ञानिक दिन रात इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, इसका मतलब DRDO का काम सिर्फ एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा।
2: हाँ बेटा बिल्कुल, इसमें कई क्षेत्र आते हैं, जैसे वैमानिकी, एरोनॉटिक्स, आयुध वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स लड़ाकू वाहन, कॉम्बैक्ट व्हीकल, इंजीनियरिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटरिंग और सिमुलेशन, नौसेना प्रणाली, जीवन विज्ञान, प्रशिक्षण, सूचना प्रणाली और यहाँ तक कि कृषि भी।
1: हे भगवान, ये तो काफी लंबी सूची है दादू। मुझे तो लगा था ये कोई एक सब्जेक्ट वाला ऑर्गेनाइजेशन होगा और DRDO बस मिसाइल बनाता होगा, पर ये तो अपने आप में कई संस्थाओं का अच्छा खासा एक संगठन है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का महासागर है दादू।
2: बिल्कुल बेटा, DRDO का विजन है कि भारत को एक ऐसी अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकें देना जो हमारी सुरक्षा को मजबूत करे, और यही आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत है।
1: तो क्या इस संस्था का विजन बेहतर हथियार बनाना है?
2: नहीं, सिर्फ हथियार बनाना नहीं, बल्कि DRDO वैज्ञानिक अनुसंधान और रक्षा तकनीकी विकास के कई क्षेत्रों में कार्य करता है। इस संस्था का विजन है देश को अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के साथ सशक्त बनाना।
1: तो DRDO भारत को आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनाने की दिशा में अग्रसर है।
2: हाँ बेटा, और ये न केवल भारत की सैन्य जरूरतों को पूरा करता है बल्कि निर्यात क्षमता भी बढ़ा रहा है। DRDO की तकनीकों का उपयोग नागरिक क्षेत्र जैसे कृषि, मेडिसिन में भी किया जा रहा है।
1: दादाजी, हमारे पास तो पहले से ही कई अत्याधुनिक रक्षा उपकरण है, तो और हथियारों के निर्माण की जरूरत भला क्यों है? वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था कि विज्ञान से शांति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, युद्ध को नहीं।
2: हाँ बेटा, देश को मजबूत रखना ही असली शांति है बेटा। अगर हमारे पास तकनीक और हथियार ना हो तो दुश्मन हमारी शांति छीन सकता है। वैसे भी हमारे शास्त्र कहते हैं बलस्य मूलम विज्ञान, मतलब शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो शांति और युद्ध दोनों में राष्ट्र को संचालित करता है। इसलिए DRDO ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में राष्ट्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़ संकल्प किया है, खासकर सैन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में बेटा।
1: दादाजी, DRDO की और क्या क्या उपलब्धियां हैं? उसके सबसे ताकतवर हथियार कौन कौन से हैं? जरा ये भी बताइए।
2: बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, शाबाश। देखो बेटा, DRDO रोज विकास की नई उड़ान भर रहा है। अब इसने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। क्या तुम यकीन करोगी कि इसकी कुछ खास मिसाइलें दुनिया भर में अब अपनी धाक जमा चुकी हैं, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बेटा। इनके पास अग्नि मिसाइलों की एक पूरी श्रृंखला है जिसमें अग्नि 5 की रेंज करीब 5000 किलोमीटर है। ये भारत की स्ट्रेटेजिक क्षमता है।
1: बिल्कुल होगा दादाजी, हमारे वैज्ञानिक दिन रात इतनी मेहनत जो कर रहे हैं। दादाजी, क्या और भी तकनीकें हैं इस तरह की?
2: हाँ बेटा, क्वांटम कम्युनिकेशन लैब यानी हैकिंग प्रूफ संचार व्यवस्था, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी लेजर और गामा रे बेस्ट हथियार देश के पास होंगे। आने वाली भविष्य की कुछ बेहतरीन तकनीकें हैं बेटा जो भारतीय रक्षा प्रणालियों को और मजबूत बनाएगी।
1: दादाजी, ये सब सुनने में तो बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म के जैसा लग रहा है।
2: हमारे पास मालवेयर डिफेंस, साइबर शील्डिंग और जीरो डे वल्नरेबिलिटी डिक्शन, इन जैसी तकनीकें विकसित हैं। ये सब सुनने में भले ही फिल्मों जैसे लगे बेटा, लेकिन मजे की बात ये है कि ये सब फिल्मों में नहीं बल्कि हम ये सब असली दुनिया में करने की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं।
1: मैं समझी नहीं दादाजी।
2: रुचि बेटा, DRDO सिर्फ हथियार नहीं बना रहा है, ये तो बायो डिफेंस जैसे CBRN, सुटस, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर और बायो डिटेक्शन किट्स भी बनाता है। कोविड महामारी के वक्त में इनकी टेक्नोलॉजी लाखों जिंदगियां बचाने में काफी मददगार साबित हुई थी बेटा। साइबर लैब जैसी विकसित तकनीकों की मदद से देश की सुरक्षा डिजिटल सीमाओं के माध्यम से की जा रही है।
1: यानी डीआरडीओ का मिशन है जमीन, हवा, समुद्र, अंतरिक्ष की सुरक्षा और साथ ही साइबर रक्षा। और सुरक्षा डोमेन में अत्याधुनिक सेंसर, हथियार प्रणालियों, प्लेटफॉर्म और इससे जुड़े उपकरणों के डिजाइन बनाना और इनका विकास करना, साथ ही साथ स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अनुसंधान, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, औषधियाँ, जैविक रक्षा के लिए खोज और अनुसंधान करना। सही समझा ना मैंने दादाजी?
2: शाबाश बेटा, बिल्कुल सही समझा। डीआरडीओ को हर तकनीक का परीक्षण, टेस्टिंग करना पड़ता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में थार रेगिस्तान से लेकर अंडमान तक, रेत, पहाड़, समंदर, हर जगह परिस्थिति, मौसम और तापमान के आधार पर किसी भी परीक्षण में हजारों चुनौतियां होती हैं बेटा। इसके अलावा रिसोर्सेज की लिमिटेशन कई बार लक्ष्य तक पहुंचने में अड़चने पैदा करती है।
1: दादाजी, फिर तो कभी कभी ये मिशन फेल भी होते होंगे?
2: हाँ बेटा, कई बार ये परीक्षण फेल हो जाते हैं। कई बार विदेशी तकनीक पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, लेकिन वैज्ञानिक हार नहीं मानते। आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ने नया जोश भर दिया है। भारत अब खुद के हथियार बना रहा है और दुनिया को भी बेच रहा है। ये डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की मेहनत का फल है बेटा। डीआरडीओ हर युवा के भविष्य का सपना है।
1: वाओ। अच्छा दादाजी, ये बताइए, क्या डीआरडीओ में सिर्फ इंजीनियर ही जा सकते हैं?
2: नहीं बेटा, डीआरडीओ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, साइकोलॉजी, लाइफ साइंसेज, इन सभी कई शाखाओं के लोग काम करते हैं। यहाँ तक कि डीआरडीओ में कानूनी विशेषज्ञ, एचआर, प्रशासनिक अफसर, अकाउंट्स आदि की भी जरूरत होती है बेटा।
1: अच्छा, तो क्या मैं डीआरडीओ ज्वाइन कर सकती हूँ?
2: बिल्कुल कर सकते हो। अगर तुम्हें विज्ञान से प्यार है तो डीआरडीओ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है बिटिया। और अभी तो डीआरडीओ ने और भी कई कई नई सारी पहल की हुई हैं, जिनमें टेक ड्राइव, यंग साइंटिस्ट लैब्स, आईडेक्स, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस शामिल है, जहां तुम जैसे छात्र छात्राएं न सिर्फ सीख सकते हैं बल्कि नए आइडिया पर काम भी कर सकते हैं।
1: पर दादाजी, जब कोई डीआरडीओ में सिलेक्ट हो जाता है तो उसे ट्रेनिंग कहाँ से और कैसे दी जाती है?
2: डीआरडीओ में प्रशिक्षण भी एकदम वैज्ञानिक तरीके से होता है। जैसे ही कोई युवा वैज्ञानिक साइंटिस्ट बी के रूप में नियुक्त होता है, उसे सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ट्रेनिंग एकेडमी में भेज दिया जाता है। डीआरडीओ हेडक्वार्टर दिल्ली में प्रारंभिक ट्रेनिंग दी जाती है बेटा। ये ट्रेनिंग करीब 4 से 8 हफ्तों की होती है, जिसमें उन्हें रक्षा विज्ञान, संगठन की नीतियां, प्रशासनिक प्रक्रिया, साइबर सुरक्षा और कार्यशाला प्रशिक्षण दिया जाता है।
1: यानी सीधा मिसाइल नहीं, पहले तैयारी।
2: हाँ बेटा, सीधा मिसाइल पे ही थोड़ी आ जाएंगे अपन। हाँ, इसके बाद उन्हें उनकी संबंधित प्रयोगशाला में भेजा जाता है बेटा, जहाँ ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। मसलन मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए DRDL और RCL हैदराबाद, कंप्यूटर साइंस और AI के लिए CIR या DYALAI बेंगलुरु, बायो डिफेंस के लिए INMS दिल्ली या DIPAS के अलावा कुछ वैज्ञानिकों को IITS, IISC, इसरो या विदेश तक भेजा जाता है MTech या PhD करने के लिए।
1: अच्छा दादाजी, भारत में DRDO की प्रमुख लैब्स कहाँ कहाँ पर है?
2: देखो बेटा, DRDO की प्रयोगशालाएं पूरे भारत में फैली हुई हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, जैसे कुछ प्रमुख राज्य, तेलंगाना के हैदराबाद में DRDL, RCI, ASL में मिसाइल एवियोनिक्स की लैब है, कर्नाटक के बेंगलोर में ADA, ADE, CAIR, LRDE में विमानन इलेक्ट्रॉनिक्स AI की।
1: अच्छा, तो इस तरह दिल्ली, मुंबई में और अन्य शहरों में भी तो होंगी?
2: हाँ बेटा, इसी तरह दिल्ली NCR के DRDO हेडक्वार्टर INMS दिल्ली या DIPAS में जीवन विज्ञान बायो डिफेंस की लैब है। वहीं तमिलनाडु चेन्नई के CVRDE में लड़ाकू वाहन और सैन्य इंजीनियरिंग की लैब है बेटा। महाराष्ट्र पुणे नागपुर ARDI हथियार प्रणाली की और उत्तराखंड देहरादून में IRDE इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की।
1: दादाजी, क्या इनके कोई परीक्षण लैब्स भी हैं?
2: हाँ बेटा, बिल्कुल है। राजस्थान के जोधपुर में DMRL, DLJ में सामग्री और उच्च तापमान परीक्षण की लैब है। ओडिशा के बालासोर में मिसाइल परीक्षण रेंज RTR की, और गुजरात के जगाड़िया में नवीन निर्माण सामग्री की। वहीं गोवा में नौसेना प्रणालियों की टेस्टिंग लैब है बेटा।
1: मतलब DRDO का नेटवर्क पूरे भारत में है दादाजी।
2: बिल्कुल बेटा, और यही इसकी ताकत है। देश के हर कोने में रक्षा विज्ञान की मशाल जल रही है। रुचि बेटा, हमेशा याद रखना, ज्ञान ही शक्ति है और विज्ञान ही रक्षा, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान शक्ति का आधार है, और तुम कभी भी इन दोनों में से एक विकल्प लेकर अपना जीवन नहीं चला सकते। तुम्हें हमेशा जीवन में ज्ञान और शक्ति का तालमेल बैठा कर ही चलना होगा।
1: अच्छा दादाजी, DRDO में भर्ती कैसे होती है, और इसमें भर्ती के लिए कौन कौन सी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं?
2: DRDO में भर्ती के लिए बेटा RAS रिक्रूटमेंट असिस्मेंट सेंटर, यहाँ साइंटिस्ट बी के लिए परीक्षा और इंटरव्यू होता है। इसके लिए गेट स्कोर बहुत जरूरी होता है। आमतौर पर इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी के छात्र इसमें शामिल होते हैं। सेप्टेम, सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, इसके माध्यम से टेक्नीशियन, एडमिन, स्टेनो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए परीक्षा ली जाती है। और इसमें ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर दोनों के लिए बराबर मौके होते हैं। और तीसरा है बेटा इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स के लिए DRDO, IIT नीट और कई कॉलेजों से इंटर्न भी लेता है। इसमें कई छात्र एमटेक या PhD के लिए DRDO के लैब्स में प्रोजेक्ट करते हैं।
1: दादाजी, बहुत कठिन डगर है पनगट की।
2: हाँ तो बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाता है। देखो बेटा, तुम्हें या तुम्हारे किसी परिचित को DRDO ज्वाइन करना हो तो ये ध्यान रखना कि तुम्हें गेट की तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा।
1: तो इंजीनियरिंग ही नहीं, ग्रेजुएट भी DRDO में जा सकते हैं दादाजी?
2: बिल्कुल बेटा, DRDO सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, पूरा सिस्टम है।
1: यहाँ इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स किस तरह से करवाए जाते हैं?
2: DRDO में एमटेक PhD के लिए इंटर्नशिप के भी मौके होते हैं बेटा। IIT नीट और बड़ी यूनिवर्सिटी के छात्र वहाँ प्रोजेक्ट करते हैं।
1: दादाजी, क्या मैं कॉलेज के दौरान भी DRDO में इंटर्न कर सकती हूँ?
2: क्यों नहीं बेटा, DRDO के दरवाजे मेहनती छात्रों के लिए हमेशा खुले हुए हैं।
1: दादाजी, क्या लड़कियाँ भी मिसाइल बना सकती हैं?
2: बिल्कुल, महिलाएं आज DRDO की ताकत हैं।
1: दादू, क्या आप महिला वैज्ञानिकों की कहानियाँ सुनाएंगे?
2: बिल्कुल। देखो बेटा, एक महिला वैज्ञानिक थी डॉक्टर टेसी थॉमस, जिन्हें लोग मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। Agni-4 और Agni-5 प्रोजेक्ट के निदेशक डॉक्टर टेसी थॉमस पहली भारतीय महिला हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम लीड कर चुकी हैं।
1: अच्छा।
2: डॉक्टर गगनदीप कंग, जिनका बायो डिफेंस और मेडिकल रिसर्च में अहम योगदान रहा है। डॉक्टर शांति रामास्वामी, जो DRDO में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स की विशेषज्ञ। तो बेटा, लड़कियां न सिर्फ मिसाइल बना रही हैं बल्कि उन्हें दिशा भी दे रही हैं।
1: वाह दादाजी, फिर तो मैं भी मिसाइल साइंटिस्ट बनूंगी।
2: बिल्कुल बेटा, भारतीय वैज्ञानिकों इंजीनियरों की मेहनत का नतीजा है कि आज भारत ताकतवर और आत्मनिर्भर है।
1: दादाजी, और कोविड में DRDO ने जो काम किया उसके बारे में भी बताइए ना। सब कहते हैं कि उन्होंने बहुत कम समय में चमत्कार कर दिया था।
2: हाँ बेटा, वो समय था जब पूरी दुनिया जैसे थम गई थी, पर हमारे DRDO के वैज्ञानिक दिन रात प्रयोगशालाओं में जुटे रहे। बहुत कम वक्त में उन्होंने डॉक्स वेंटिलेटर बनाया ताकि हर अस्पताल को मदद मिल सके। UV सैनिटेशन टनल्स बनाए ताकि सामान संक्रमण मुक्त रहे।
1: PPE किट्स, फेस शील्ड्स और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स भी इन्होंने ही डिजाइन किए थे।
2: हाँ बेटा, ताकि हमारे डॉक्टर और नर्स सुरक्षित रहें। याद रखो बेटा, DRDO सिर्फ हथियार नहीं बनाता, वो जीवन रक्षक तकनीक भी लाता है।
1: वाह दादाजी, DRDO के वैज्ञानिक तो असली योद्धा हैं। इनकी हर लैब, हर प्रयोग, हर शोध भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हाँ बेटा, DRDO का सपना है कि भारत रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बने। हम अपने सैनिकों को दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक दें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम में दुनिया से मुकाबला करें, और सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं बल्कि अपनी तकनीकें दुनिया को निर्यात करें। यही है आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना।
1: दादाजी, अब तो मैं पक्का तय कर चुकी हूँ, मैं वक्त आने पर DRDO में वैज्ञानिक बनूंगी।
2: शाबाश मेरी बिटिया, यही तो चाहिए देश को, युवा और विज्ञान की संगत। पर एक मुश्किल है इसमें।
1: वो क्या दादाजी?
2: अगर तुम्हें कल कोई नया टॉपिक ना मिला तो तुम जरूर DRDO ज्वाइन कर लोगी। है ना? याद रखना बेटा, देश की सेवा सिर्फ सीमा पर खड़े होकर नहीं होती, कभी कलम से, कभी प्रयोग से, कभी विचार से भी देश की रक्षा होती है। हर युवा अगर अपने क्षेत्र में ईमानदारी और समर्पण से काम करे तो वही असली डिफेंस है, अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने मान की रक्षा करना।
1: जय हिंद दादाजी।
2: जय हिंद प्यारी बच्ची, जय हिंद और जय विज्ञान, जो हर राष्ट्र को सशक्त बनाता है।
3: तो श्रोताओं, ये था आज का रेडियो नाटक देश के संस्थान, जिसमें आज हम बात कर रहे थे DRDO यानी विज्ञान से सुरक्षित भारत की। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का। आपके साथ हम थे आपके रेडियो सेट पर, मैं भगवती सक्सेना
2: और मैं दीपक नेमा।
3: लेखन किया स्वाति गिरी ने। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार।

0: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, ये समय है जब हम याद करते हैं अपने अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उनके त्याग, उनके बलिदान, उनकी कुर्बानियों को। बस थोड़ी ही देर बाद हम लेकर उपस्थित होंगे कार्यक्रम याद करो कुर्बानी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी।
2: दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर की। लंदन के विक्टोरिया रेलवे स्टेशन पर 13 मार्च 1910 को सशस्त्र पुलिस किसी भयंकर अपराधी को पकड़ने के लिए सनत खड़ी थी। प्लेटफॉर्म को चारों ओर से घेर रखा गया था। स्टेशन के बाहर भी पुलिस के बंदूकधारी जवान तैनात थे और उन्हें आदेश था कि यदि अपराधी चंगुल से निकल भागने का प्रयत्न करे तो उसे गोली मार दी जाए। स्टेशन के अंदर के मैदान की रेल लाइनों पर भी सशस्त्र पुलिस के जवानों का पहरा था। वे रेलगाड़ी आने की अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। पुलिस के अधिकारियों को यह भय था कि अपराधी कहीं सबको चकमा देकर निकल न जाए। वे उसे बहुत चालाक और भयंकर अपराधी मानते थे। रेलगाड़ी विक्टोरिया स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। अपराधी को पहचानने वाले व्यक्तियों की आंखें हर डिब्बे पर पड़ने लगी। वे आंखें एक भारतीय नौजवान को खोज रही थीं जिसने लंदन में तहलका मचा रखा था और जो कुछ दिन फ्रांस में रहकर इंग्लैंड लौट रहा था। तीसरे दर्जे के एक डब्बे से एक तेजस्वी भारतीय युवक के उतरते ही कई आंखें एक साथ उस पर पड़ी और कई पैर एक साथ उसकी ओर पड़े। कई हाथों ने एक साथ लपक कर उसे दबोच लिया और तत्काल उसे हथकड़ियां पहना दी गईं। यह युवक कहता ही रह गया कि गिरफ्तार करने का आदेश पत्र तो दिखाओ, पर ना तो किसी को उसकी बात सुनने का धैर्य था और ना आदेश पत्र दिखाने का नैतिक बल। जिस डिब्बे में युवक ने यात्रा की थी उस डिब्बे में भी नागरिक वेश में पुलिस के लोग उसकी गतिविधियों पर दृष्टि रखे हुए थे। युवक को गिरफ्तार करके लंदन की ब्रिस्टल जेल में डाल दिया गया। अगले ही दिन संसार के सारे समाचार पत्रों के पृष्ठ भारत के महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर की गिरफ्तारी के समाचारों से रंग गए। इस वीर को पकड़ने के लिए भारत की गोरी पुलिस लंदन पहुंची थी। भारत की पुलिस तथा इंग्लैंड की पुलिस ने मिलकर वीर सावरकर को गिरफ्तार करके गर्व का अनुभव किया और चैन की सांस ली। लंदन की एक अदालत में ही सावरकर का मुकदमा प्रस्तुत किया गया। ज्यों ही वीर ने न्यायालय में प्रवेश किया, सारा न्यायालय तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसके प्रोत्साहन के लिए सैकड़ों भारतीय नवयुवक न्यायालय में पहले से ही उपस्थित हो गए थे। क्रांतिकारी वीर सावरकर को न्यायालय ने क्या आदेश दिए, ये हम बताएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

न्यायालय ने निर्देश दिया कि अभियुक्त को भारत भेजा जाए। उसे भारत भेजने का अर्थ था अजन्म कारावास अथवा फांसी का दंड। वह वीर अपने भविष्य की ओर से निश्चित हो गया। वह समझ गया कि या तो फांसी का फंदा गले में पड़ेगा या जीवन भर सीकचों के अंदर रहना पड़ेगा। वीरभूमि महाराष्ट्र के इस बेटे की स्मृति में छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास सजीव हो उठा। जब मुगल सम्राट औरंगजेब की जेल से युक्तिपूर्वक निकलकर उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की, युवक सावरकर ने भी अंग्रेजों के चंगुल से छूटने का संकल्प किया और भारत को स्वाधीन करने के सपने संजोए। उन दिनों समुद्री रास्ते से इंग्लैंड पहुंचने के लिए इंग्लिश खाड़ी पार करके फ्रांस पहुंचना होता था और वहां से रेलगाड़ी द्वारा इटली और इटली से जहाज द्वारा भारत पहुंचा जाता था। क्रांतिवीर सावरकर को मौर्य जलायान द्वारा इंग्लैंड से भारत लाया जा रहा था। गोरे सिपाहियों का बड़ा सख्त पहरा था। उसकी हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही थी। यहां तक कि जहाज के शौचालय में भी बड़ा शीशा लगा दिया गया था जिससे उसकी गतिविधियां दिखाई देती रहें। सावरकर को ले जाने वाला जलायान 8 जुलाई 1910 को फ्रांस के मर्सेलज बंदरगाह के निकट पहुंचा और वहां उसने लंगर डाला। उन दिनों प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा फ्रांस में थे। सावरकर ने अनुमान लगाया कि शायद श्यामजी ने उनकी मुक्ति की कोई योजना बनाई हो, पर तट पर कोई भी भारतीय दिखाई नहीं दिया। इसका कारण यह था कि सावरकर की यात्रा के समाचार गोपनीय रखे गए थे। किसी सहायक को न देखकर उस वीर ने स्वयं कुछ कर गुजरने का संकल्प ठान लिया। उनके इसी संकल्प के बारे में हम बात करेंगे इस छोटे से देशभक्ति गीत के बाद।

कुछ कर गुजरने का क्या संकल्प ठाना, ये हम आपको बताते हैं। दिन के 11 बजे जहाज बंदरगाह से चल दिया। कुछ समय पश्चात सावरकर ने शौच का बहाना करके शौचालय में प्रवेश किया। उसने अपना कोट उतारा और उसे दरवाजे पर डालकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उछलकर शौचालय की दीवार के छेद पर चढ़ गया। इधर पहरे के संतरियों ने जब देखा कि कैदी ने दरवाजे पर कोट डाल दिया है तो उन्होंने झांक कर अंदर देखा। उन्होंने सावरकर को पोर्ट होल पर चढ़ते देख लिया। एक सिपाही जोर से चिल्लाया, क्या करता है? पर उसकी अनसुनी करके सावरकर ने पोर्ट होल से समुद्र में छलांग लगा दी। सिपाही ने शौचालय का दरवाजा तोड़ दिया और चीख पुकार मचा दी। कई सिपाही और कर्मचारी डेक पर दौड़े और उन्होंने वहीं से क्रांतिवीर पर गोलियां दागना प्रारंभ कर दिया। वीर सावरकर ने कभी डुबकी मारकर और कभी पानी में सांस लेने के लिए सतह पर प्रकट होकर अपना रास्ता नापना प्रारंभ कर दिया। सिपाहियों ने जहाज के कैप्टन को सूचना दी और जहाज से समुद्र में अधर पुल डाल दिया गया और सिपाही उस पर दौड़ दौड़ कर गोलियां चलाने लगे। पर इतने में तो सावरकर काफी फासला पार करके फ्रांस के किनारे जा लगे। जहाज ने भी उसका पीछा किया। तट पर पहुंचने पर ऊंची दीवार ने सावरकर का रास्ता रोक लिया, पर व्यायाम और अभ्यास काम आया और वह वीर फ्रांस की भूमि में पहुंच गया। उसके पीछे अंग्रेज सिपाही चोर चोर कहते हुए भागे जा रहे थे। सावरकर ने एक फ्रांसीसी सिपाही के हाथों आत्मसमर्पण कर दिया। फ्रांस की भूमि में पहुंचकर वीर क्रांतिकारी सावरकर ने क्या किया, ये हम बताएंगे इस देशभक्ति गीत के बाद।

0: दोस्तों, वीर क्रांतिकारी सावरकर जब फ्रांस की भूमि पर पहुंच गए तब उन्होंने एक फ्रांसीसी सिपाही के हाथों आत्मसमर्पण कर दिया और टूटी फूटी फ्रांसीसी भाषा में उसे समझाया कि वह भारतीय क्रांतिकारी है और अंग्रेज सिपाही उसे पकड़ना चाहते हैं, पर फ्रांस की भूमि में से किसी को पकड़ने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इतनी देर में अंग्रेज सिपाही भी वहां पहुंच गए। अंग्रेज सिपाहियों ने फ्रांसीसी सिपाही की जेब गर्म कर दी। यूरोप का यह भ्रष्टाचार एक भारतीय क्रांतिकारी को ले डूबा। फ्रांसीसी सिपाही ने वीर सावरकर को अंग्रेज सिपाहियों के हवाले कर दिया। अंग्रेज सिपाही उस वीर को बंदी बनाकर फिर जहाज पर ले गए। वह युवक जो एक बैरिस्टर के रूप में भारत पहुंचने वाला था, एक कैदी के रूप में भारत के किनारे लगा। हथकड़ियों युक्त हाथों से उस वीर ने मातृभूमि को प्रणाम किया। बंबई में संगीनों के पहरे में ले जाकर उस वीर को नासिक की जेल में डाल दिया गया। सावरकर के सहायकों ने अवैध रूप से उसे फ्रांस की भूमि से पकड़ने के विरोध में हैग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक मुकदमा पहुंचाया, पर उस समय वहां से भी न्याय न मिल सका और निर्णय अंग्रेजी शासन के पक्ष में ही रहा। भारत में वीर सावरकर पर 3 मुकदमे एक साथ चले। 2 मुकदमे संगीन थे और उस पर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप थे। 1 मुकदमे में यह सिद्ध किया गया कि इंग्लैंड में मदनलाल ढींगरा द्वारा कर्जन वायली की हत्या में सावरकर का भी हाथ था। उसे अजन्म कारावास का दंड सुना दिया गया। 2 मुकदमे द्वारा यह सिद्ध किया गया कि भारत में कलेक्टर मिस्टर जैक्सन की हत्या जिस पिस्तौल से की गई थी, वह पिस्तौल इंग्लैंड से सावरकर ने ही चतुर्भुज अमीन द्वारा भारत पहुंचाई थी। इस प्रकरण में भी अभियुक्त को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। निर्णय सुनकर वीर सावरकर ने हंसते हुए करारा व्यंग किया, मैं प्रसन्न हूं कि मुझे 2 जन्म की काले पानी की सजा देकर ब्रिटिश सरकार ने हिंदू धर्म का पुनर्जन्म का सिद्धांत तो मान लिया। वीर सावरकर की सारी संपत्ति जब्त कर दी गई। उसे कुछ दिन डोंगरी जेल में रखकर अंडमान की जेल में भेज दिया गया। वीर को भांति भांति की यातनाएं दी गई। उनसे दिन भर कोल्हू चलवाया जाता था। खाना ऐसा दिया जाता था जैसे जानवरों को दिया जाता है। वीर सावरकर के कारावास की कथा स्वयं में एक बहुत बड़ा इतिहास है। कई भारतीय नेताओं के अथक प्रयत्नों और ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रभावशाली सदस्य मिस्टर बेजवुड के सहयोग से वीर सावरकर को सन 1924 में अंडमान से भारत लाया गया। जब सन 1937 में बंबई में कांग्रेस मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ तो कई नेताओं के प्रयत्नों के फलस्वरूप वीर सावरकर को 10 मई 1937 को बंदी गृह से मुक्त कर दिया गया। यह बड़ी ऐतिहासिक तिथि थी जिस दिन 1857 का स्वाधीनता संग्राम छिड़ा था। इंग्लैंड में रहते हुए वीर सावरकर के प्रयत्नों से ही उस प्रथम स्वाधीनता संग्राम की अर्धशताब्दी समारोह पूर्वक मनाई गई थी। वीर सावरकर ने शेष जीवन भारत की अथक सेवा में बिताया और स्वाधीन भारत में 26 फरवरी सन 1966 को वह दीप बुझ गया जिसने 28 मई 1883 को प्रकाशित होकर भारत को नई रोशनी प्रदान की थी। तो दोस्तों, ये गाथा थी हिंदुस्तान के वीर क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर की। अब दीजिए अपने दोस्त दानिश को इजाजत इस कार्यक्रम से। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: याद करो कुर्बानी।

याद करो कुर्बानी। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बहुत कुछ है खास आपके लिए। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। श्रोताओं, बस थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे आज की रेडियो रिपोर्ट। इंतजार कीजिएगा बस कुछ पलों का।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं भारत भवन के अंतरंग सभागार में, जहां 27 मई को शुभारंभ हुआ सदा नीरा जल गंगा संवर्धन का।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए भारत भवन के अंतरंग सभागार में।
1: देखिए, हम जो बात करना चाहते हैं आपको, सबसे पहले जो है, आई एम एड्रेसिंग स्टूडेंट्स प्राइमरीली ना, आदतन 40 साल की आदत है वो, तो उसमें हम आपको बताते हैं, जैसे अभी यहाँ का पंच महाभूत की जो बात हो रही है, वो सब आप जानते भी हैं पंच महाभूत क्या है। पंच महाभूत जब वेद लिखे गए थे तब आया था, और आज पंच महाभूत में उसका जो उसके जो प्रिंसिपल सिद्धांत हैं, उसके जो साइंस के सिद्धांत हैं, एक है इंटरडिपेंडेंस। आप बायोलॉजी के विद्यार्थी भी होंगे ना कुछ बहुत इसमें, तो एक इंटरडिपेंडेंस, जितने भी उसके फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, एक दूसरे पे आधारित रहते हैं, एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं होते हैं, एक को प्रभावित करो तो पूरा का पूरा सिस्टम प्रभावित होता है उससे। और दूसरा होता है इक्विलिब्रियम, यानी उनमें इक्विलिब्रियम बना रहता है उन कंपोनेंट्स में, तभी ये पृथ्वी चल रही है, तभी हमारा गाँव चलता है, तभी हमारा शरीर चलता है। एक माइक्रोकॉस्मॉस है, एक मेगाकॉस्मॉस है, मैक्रोकॉस्मॉस है, सब एक ही सिद्धांत वही लगता है। तो अब बताइए, ये जो चीज है, इसमें साइंस है, और ये अब मॉडर्न साइंस जैसे हम पढ़ाते थे, तो आपने होम्योस्टेसिस का नाम सुना हुआ है। होम्योस्टेसिस मतलब अगर कोई भी सिस्टम में कोई खराबी आती है तो उसमें एक ऑटो करेक्शन का उसका एक उसकी एक एबिलिटी होती है, अपने आप को ऑटो करेक्ट करके, और फिर वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ये होम्योस्टेसिस सब में लगता है, अपने बॉडी में भी लगता है, तालाब में भी लगता है। अब आपको एक बात बता दें, मुझे बोलना था पानी पे, मगर वो बह के पानी वहां से पानी के सत्र से इसमें पृथ्वी के सत्र में आ गया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत बोलूँ जो पानी से जुड़ा हुआ है। वो एक होमोस्टेसिस मतलब वो इक्विलिब्रियम में रखने का, जो अभी हम बता रहे हैं साइंस में खोज करके, वो तब का पंच महाभूत में बताया गया हुआ था। और इसी तरह से बहुत सी चीजें हैं, जैसे आपने वसुधैव कुटुंबकम भी सुना होगा ना महाउपनिषद में, कि पूरा विश्व एक कुटुंब है। तो वसुधैव कुटुंबकम में कुटुंब की जो परिभाषा है, इसे इट हैज गॉन बियॉन्ड दी यू नो ह्यूमन लीनिएज, यानी आदमी के नहीं है कि भाई बहन सब कुछ है, इट इंक्लूड्स द एंटायर बायोस्फीयर। So the human being and the entire biosphere is a Vasudeva Kutumbakam. और यही तो उसने कहा हुआ है, पंचभूत ने भी कहा है कि all the entire cosmos and everything is made by these five elements, or they are sub and they closely knit and then they make the system. अलग अलग कोई नहीं बनाता उसमें सिस्टम। दिस इज द इम्पॉर्टेंस एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन गिवन इन द साइंस आल्सो अबाउट पंच महाभूत एंड द मॉडर्न साइंस आल्सो। मॉडर्न साइंस में जो अभी जो एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम जो बात करते हैं वो है, मतलब ये जो फ्रेमवर्क एनवायरनमेंट का, इकोलॉजी का फ्रेमवर्क है जो मॉडर्न साइंस कहता है, वो बिल्कुल पंच महाभूत जैसा ही है। और शायद जरूरी ये होगा भी कि पंच महाभूत से पढ़ा होगा और पढ़ने से ही वो प्रेरित होकर ये वाले प्रिंसिपल्स बनाए होंगे। एक कहलाता है इकोलॉजिकल सॉलिडेरिटी कहलाती है। इकोलॉजिकल सॉलिडेरिटी यानी क्या कहती है? इकोलॉजिकल सॉलिडेरिटी ये रहती है कि ये जो जितना भी पूरे कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, इन सब में कनेक्टेडनेस बनी है, अनब्रेकेबल कनेक्टेडनेस है, ये पूरी है। एंड दे इफेक्ट ईच अदर, जैसे कि ह्यूमन सोसाइटी है, ह्यूमन सोसाइटी यानी जो हम लोगों की सोसाइटी है वो, और नेचुरल इकोसिस्टम, दे आर इंट्रिकेटली दे आर रिलेटेड, दे बाउंड टुगेदर। अगर एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में कुछ भी होगा तो ह्यूमन हेल्थ अफेक्टेड होगी, और हमें कुछ होगा या हम कुछ करेंगे तो इकोसिस्टम की हेल्थ खराब होगी। एंड दे आर, ये जो सिद्धांत हैं ये अभी नए सिद्धांत हैं, मॉडर्न इकोलॉजिकल साइंस बताती है, जो पंच महाभूत से प्रेरित हैं या पंच महाभूत जैसे ही हैं। तो अब अगर हमको एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना है और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ करना है, इकोसिस्टम को बचाने के लिए कुछ करना है, जैसे कि मैं तो पानी के बारे में पढ़ाता रहा, तो अगर आपको पानी के बारे में कुछ सोचना है तो अकेले पानी के बारे में नहीं सोच सकते, पंच महाभूत इसको परमिट नहीं करता है। वो ये कहता है कि सब एलिमेंट इंटररिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, और उसके बाद एक उनमें इक्विलिब्रियम बना रहता है। तो पानी के बारे में सोचना, यानी हमको अर्थ के बारे में सोचना ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? अर्थ से ही आता है भाई। जो भी पानी बह के आता है, जैसे अपने भोपाल यूनिवर्सिटी, अपने सॉरी ये भोपाल तालाब का पानी है 30 स्क्वायर किलोमीटर का, ये बह के जो आ रहा है वो 365 स्क्वायर किलोमीटर का जो कैचमेंट एरिया है इस लेक का, ये सीक्वेंस कुछ बिगड़ सकता है तो बिगड़ने देना है ना, मगर बात में सीक्वेंस बनी रहे, तो अगर समझ में नहीं आए तो टोक देना। तो जो पानी, तो हमको तो पानी है, मगर 365 सीहोर पता नहीं कहाँ कहाँ से ये बह के आता है पानी। तो इंटरकनेक्टेडनेस देखिए उसमें, एक तो अर्थ वाला एलिमेंट और पानी वाला एलिमेंट, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और अगर इस 365 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो है, जहां से पानी बह के आता है इस तालाब में, उसमें कुछ भी होगा तो ये तालाब उससे अफेक्टेड होगा, इतना होता है। जैसे जब वहां से सिल्ट आती है, जब पानी बरसता है और जो सिल्ट आती है या जो एग्रोकेमिकल आता है वो इस तालाब में आता है, तो एग्रोकेमिकल जो आता है वो तो क्या प्रभाव डालता है आप पे हम पे और पानी की क्वालिटी पे आपको पता ही है, मगर जो सिल्ट आती है वहां से जो बह के जो सिल्ट आती है वो दैट इज ग्रेजुअली डिटोरेटिंग नॉट द क्वालिटी बट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस सिस्टम। उसमें हमारे पास एक फार्मूला है, हम लोगों ने निकाला भी हुआ था उसमें कि ग्रेजुअली द सिल्ट इज डिपॉजिटिंग किया और 365 स्क्वायर किलोमीटर में 80% जो है वो एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से बहुत इजीली पानी बरसता है तो इरोड होता है, प्लोड रहती है ना फूल लेके, वो सब बह बह के आके इस तालाब में इकट्ठी होती रहती है और इसकी धीरे धीरे डेप्थ कम होती जाती है। तो ये अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट, इन दोनों का मैं रिलेशनशिप आपको बताना है। तो हम अलग से नहीं सोच सकते कि वो जो 365 स्क्वायर किलोमीटर में हो गया वो होता रहेगा, हम तो तालाब को ठीक कर लें बैठ के, इसकी वाटर क्वालिटी ठीक कर लें, इट कैन नॉट हैपन, इट नेवर हैपन्स। यही प्रिंसिपल यहाँ जो अप्लाई है यही नदियों के लिए भी होता है। नदियों में नर्मदा जी अगर बह रही हैं तो अगर जबलपुर में कुछ हो गया वहां पर तो वो वहां से नरसिंहगढ़ और जबलपुर में नदी में नहीं होगा, जबलपुर शहर में अगर कुछ होगा या वहां के फॉरेस्ट में कुछ होगा या वहां का जो अर्थ इकोसिस्टम है जो यू नो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जिसे हम कहते हैं वहां कुछ भी होगा, चलिए अगर फॉरेस्ट ही कम हो गया वहां पे या वहां पे पोल्यूशन ऑफ द सॉइल पोल्यूशन हो गया किसी इंडस्ट्री के कारण, तो जो वहां होगा वो आके 100 किलोमीटर या 200, 300, 500 किलोमीटर दूर यहाँ आके उसको इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए उसमें इंटरकनेक्टेडनेस है। तो अगर अपन कभी भी विचार करें इस तरह का कि हमको इकोसिस्टम को सुधारना है या इकोलॉजिकल क्वालिटी हमको सुधारना है तो हमको बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा, यानी जब आप मतलब पूरा का पूरा सिस्टम देख के बात करना पड़ेगा उसमें लेके। जैसे अगर हमको अगर कहीं भी शरीर में तकलीफ होती है तो बाकी डॉक्टर बाकी ऑर्गन्स भी देखता है कि वो किस तरह से इससे रिलेटेड है। इट इज लाइक दिस, एक तो ये हो गया और दूसरा मैं अब पानी पे ही हमको बोलना पड़ेगा, मेजर एम्फेसिस रहेगा। व्हाई वाटर? वाटर इसलिए कि हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए वाटर ही जरूरी है और वाटर का जो रिलीजियस इंपॉर्टेंट भी है, इट इज एसेंशियल एंड इट्स अ वेरी डिवाइन थिंग। वाटर इज नॉट ए वस्तु, जैसे सभी लोग ने पहले भी कहा था। तो इसलिए हम पानी को, अगर पानी ठीक रखेंगे ना तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो पानी ऐसे बहता है जैसे ब्लड बहता है हमारे शरीर में ना, हमारे वेंस में और आर्टरीज और वेंस में, उस तरह से पानी बहता है। तो उसको हमको आर्टरीज बना के रखना है, वेंस नहीं करना है अपने जहाँ जहाँ पानी जा रहा है। यू नो द डिफरेंस इन आर्टरीज एंड वेंस।

श्रोताओं, ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: और अब आइए सुनते हैं ये देशभक्ति रचना।

अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशगान। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है, जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: कुमारी मार्गरेट और नोबेल स्वामी जी द्वारा दी गई चेतावनी के बावजूद भारत आईं और कलकत्ता बंदरगाह पर स्वामी जी ने उनका स्वागत किया।
1: उन दिनों स्वामी जी के आदेश पर स्वामी शारदानंद अमेरिका में कार्यरत थे। उसके बाद स्वामी अभेदानंद ने अमेरिका जाकर वहां का कार्य संभाला और स्वामी जी को स्वदेश में कार्य संभालने के लिए शारदानंद जैसे धीर स्थिर कार्यकर्ता की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने शारदानंद को भारत वापस बुला लिया।
0: श्रीमती बुल और कुमारी मैकलाउड ने भी भारत आने के लिए स्वामी शारदानंद के साथ ही 12 जनवरी को अमेरिका से प्रस्थान किया। मैकलाउड ने आने के पूर्व जब स्वामी जी से अनुमति मांगी तो उन्होंने उत्तर में लिखा था,
2: हाँ, यदि तुम गंदगी अवनति एवं निर्धनता देखना चाहो और कॉपीन पहने लोगों के मुख से धर्म चर्चा सुनना चाहती हो तो आ सकती हो। इनके अतिरिक्त और कुछ आशा हो तो मत आना। हम लोग अब और एक भी आलोचना सुनने को प्रस्तुत नहीं है।
0: इसके बावजूद कुमारी मैकलाउड लंदन होते हुए भारत आकर अपने दोनों संगियों के साथ 12 फरवरी को बंबई में उतरी और तुरंत ट्रेन पकड़कर 14 फरवरी को शाम के 4 बजे हावड़ा स्टेशन पर आ पहुंची। उन्होंने देखा कि स्वामी जी 10-12 शिष्यों के साथ वहां उपस्थित हैं। दोनों महिलाएं स्टेशन से ही कलकत्ते के होटल में चली गईं और स्वामी जी शारदानंद मठ में आए। इन लोगों के पहले ही मार्गरेट और नोबेल अपने घर को छोड़कर जहाज से 28 जनवरी को कलकत्ता आ चुकी थी। पहले वे एक होटल में ठहरी और बाद में कुमारी मुलर के भाड़े के मकान में रहने चली गई। मार्च में नए मठ की जमीन और मकान का कब्जा मिल जाने पर उपरोक्त दोनों महिलाएं और कुछ दिन बाद निवेदिता भी उसी मकान में निवास करने लगी।
1: इसके थोड़े ही दिन बाद श्री रामकृष्ण देव का जन्म दिवस आ गया। महोत्सव की व्यवस्था का भार स्वामी जी ने स्वयं ग्रहण किया। इस दिन

0: उदाहरण नहीं कर पाए हैं। आज श्री रामकृष्ण की जन्मतिथि है। इस पुण्य अवसर पर वे अपने अधिकार के अनुसार क्षत्रियत्व और वैश्यत्व को ग्रहण करेंगे। समय पर इन्हें ब्राह्मण बना डालना होगा।
1: स्वामी जी के निर्देशानुसार लगभग 50 व्यक्तियों ने गंगा स्नान करके श्री राम कृष्ण के चित्र के सामने जनेऊ तथा गायत्री मंत्र ग्रहण किया। जनेऊ ग्रहण करने के बाद उन भक्तों को संबोधित कर स्वामी जी ने आवश्यक उपदेश आदि दिए और उन्हें प्रतिदिन गायत्री मंत्र जप करने का निर्देश दिया।
2: ये पहले से ही निश्चित हुआ कि स्वामी जी अपनी पश्चिमी शिष्याओं के साथ हिमालय भ्रमण के लिए जाएंगे। प्लेग का प्रकोप घट जाने पर तथा सरकारी निषेध शिथिल हो जाने पर स्वामी जी ने श्री सेवियर के आमंत्रण के अनुसार अल्मोड़ा की ओर यात्रा की। उनके साथ थे स्वामी तूर्यानंद जी, निरंजनानंद जी, सदानंद जी, स्वरूपानंद जी आदि तथा उनकी 4 पश्चिमी शिष्याएं। नैनीताल पहुंचकर अपने साथियों के साथ स्वामी जी ने कुछ विश्राम किया। खेतरी के महाराजा अपने गुरुदेव के दर्शन की इच्छा से पहले से ही वहां पर मौजूद थे। स्वामी जी के श्री चरणों का दर्शन पाकर महाराजा साहब ने अपने को कृतार्थ माना तथा उनकी पश्चिमी शिष्याओं के साथ परिचित होकर वे आनंदित हुए।
1: इसी समय उन लोगों को एक बुरी खबर मिली। निवेदिता ने लिखा है,
3: 3 जून शुक्रवार प्रातः काल हम लोग कार्य में जुटी थी। उसी समय एक तार आया। तार एक दिन देरी से पहुंचा था। उसमें लिखा था, गुडविन ने कल रात 2 जून को ऊटक मन में देह त्याग कर दिया। उस अंचल में टाइफाइड ज्वर की जो महामारी फैली थी, लगा कि हमारे मित्र उसी का ग्रास बने हैं। जीवन के अंतिम क्षण तक वे स्वामी जी के बारे में ही बोल रहे थे।
1: इसी दुह संवाद के साथ ही साथ पवहारी बाबा के देहांत की खबर आई। स्वामी जी ने इन दुख संवादों को शांत भाव से झेल लिया।
2: यहाँ से स्वामी जी अपने संगियों के साथ पंजाब होकर कश्मीर गए। वहाँ वे अपने पाश्चात्य अनुयायियों को भारत के बारे में बताया करते थे। स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति, इतिहास, धर्म तथा अपने दृष्टिकोण के बारे में कितनी ही बातें कही थी। साथ ही पाश्चात्य जीवन के साथ वे उनकी तुलना भी करते जाते थे। इन पाश्चात्य महिलाओं को उन्होंने तुलसीदास जी का एक दोहा भी सुनाया था, तुलसी जग में आई के सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेस में नारायण मिल जाए।
1: इसी प्रकार 4 जुलाई का दिन आ पहुंचा। उस दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वत्र बड़े धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन अमेरिका ने इंग्लैंड से स्वाधीनता प्राप्त की थी। स्वामी जी की टोली में श्रीमती पैटरसन, ओली बुल, धीरा माता, कुमारी मैकलाउड, जया, ये 3 अमेरिकी महिलाएं थी। चतुर्थ महिला भगिनी निवेदिता इंग्लैंड की नागरिक थी। पिछले दिन निवेदिता ने खेद व्यक्त करते हुए कहा,
3: हमारे पास अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। रहता तो प्रातः काल जलपान के समय हम अपने दल के अन्य सदस्यों को उनके राष्ट्रीय समारोह के उपलक्ष में आनंद प्रदान करते। 3 की शाम को स्वामी जी बड़े आग्रह के साथ एक कश्मीरी पंडित दर्जी को ले आए और कहा, यदि इस व्यक्ति को ध्वज का प्रारूप बता दिया जाए तो वो उसे बना देगा। इसके फलस्वरूप एक वस्त्र खंड पर सितारे और पट्टियां लगाकर उसे अति सुंदर ढंग से बनाया और वृक्ष की कुछ टहनियों के साथ भोजनालय के ऊपरी हिस्से में लगा दिया। प्रवेश द्वार को भी पत्तियों से सजा दिया गया और स्वामी जी ने 4 जुलाई यानी 4 जुलाई के प्रति शीर्षक नाम की एक सुंदर कविता रची।
0: 4 जुलाई के प्रति काले बादल कट गए आकाश से, रात को बांधे हुए थे जो समा, पृथ्वी पर तानी थी चादर इस तरह, आंख खोली जादू की लकड़ी फिरी, चिड़ियां चहकी साथ फूलों के उठे सर, सितारे जैसे चमके ताज के, ओस के मोती लगे, स्वागत किया क्या तुम्हारा झूम कर झुक कर, खुली और फैली दूर तक झीलें, खुशी जैसे आंखें कमलों की भाड़े हुए, दर्श करती हैं तुम्हारा हृदय से कुछ निछावर ज्योति के जीवन, क्या आज अभिनंदन तुम्हारा धन्य है। आज रवि स्वाधीनता की फूटी कली, राह देखी विश्व ने कैसे खिली, देश कालिक खोज की तुमसे मिले, छोड़ा है घर मित्र छोड़ी मित्रता, खोजा तुमको आवारा मारा फिरा, गुजरा दहशत के समंदर से, कभी सघन पहले के गहन वन से, लड़ा हर कदम पर प्राणों की बाजी लिए, वक्त वो हासिल निकला काम का, प्यार का पूजा का जीवन दान का, हाथ उठाया संवर कर पूरा किया, लेकिन वो दिन भी आया जब संघर्ष फले, पूजा श्रद्धा और बलिदान पूर्ण हुए, अंगीकृत हुए, तुमने अनुग्रह किया और समस्त मानवता पर स्वातंत्र्य प्रकाश विकीर्ण किया। ओ देवता निर्बाध बढ़ो अपने पथ पर, तब तक जब तक कि ये सूर्य आकाश के मध्य में ना आ जाए, जब तक तुम्हारा आलोक विश्व के प्रत्येक देश में प्रतिफलित ना हो, जब तक नारी और पुरुष सभी उन्नत मस्तक होकर ये नहीं देखें कि उनकी जंजीरें टूट गईं और नवीन सुखों के वसंत में उन्हें नव जीवन मिला।

0: काश्मीर में रहते समय स्वामी जी ने निवेदिता को साथ लेकर अमरनाथ और क्षीर भवानी की यात्रा की थी।
1: इस विराट गुहा के एक अंधेरे हिस्से में विशाल हिमलिंग के सम्मुख खड़े होकर उन्हें प्रतीत हुआ मानो वे महादेव का ही साक्षात दर्शन कर धन्य हो गए हों। उनका शरीर भस्म से आच्छादित था, कौपीन के अतिरिक्त उन्होंने और कुछ भी नहीं पहन रखा था। उस समय गुहा महादेव के स्तुति निनाद और हर हर बम बम की ध्वनि से गुंजरित हो रही थी। स्वामी जी ने भक्ति विहल होकर कई बार साष्टांग प्रणाम किया और अपने भावावेग को संयमित करने के लिए सहसा तेजी से बाहर निकल आए। हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम। उन्होंने निवेदिता से कहा था,
2: मैंने बड़े आनंद का उपभोग किया। मुझे लग रहा था कि हिमलिंग साक्षात शिव ही हैं और वहां कोई लोभी पंडा, कोई व्यापार या कुछ भी बुरा न था। था तो केवल निश्चल पूजा का ही भाव। और किसी तीर्थ स्थान में मुझे इतना आनंद नहीं मिला।
0: कश्मीर में रहते हुए स्वामी जी ने अपने अमेरिकन शिष्यों को राजस्थान के बारे में बताया। टॉड की लिखी हुई राजस्थान की पुस्तक से मीराबाई का प्रसंग पढ़कर सुनाया और मीरा का एक भजन भी गाया था।

0: अब कश्मीर से विदा लेने का वक्त आ चुका था। सारी व्यवस्था हो जाने के बाद वे लोग नावों में सवार होकर बारामूला की ओर चल पड़े और संध्या के समय वहां जा पहुंचे। इस यात्रा के बारे में निवेदिता ने लिखा है,
1: ऐसा निश्चित हुआ था कि अगले दिन 12 अक्टूबर को दोपहर में स्वामी जी लाहौर की ओर प्रस्थान करेंगे और हम लोग कुछ दिन बारामूला में ही निवास करेंगी। नदी पर यात्रा करते हुए उन्हें हम बहुत कम ही देख पाई। वे आम तौर पर मौन ही रहते और नदी के तट पर अकेले ही दूर दूर तक भ्रमण करते। हम लोगों के बजरे में वे शायद ही कभी आए। भारत लौटने के बाद से ही वे जिस कठोर परिश्रम में लगे हुए थे उसके फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ चुका था। इसके अतिरिक्त उन्हें जो महान उपलब्धियां हुई थी उसके परिणाम स्वरूप भी उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वे स्वयं इसका बोध नहीं कर पाए, क्योंकि जिस प्रकार शारीरिक पीड़ा एक सीमा के बाद असहनीय हो उठती है, वैसे ही आध्यात्मिक अनुभूति की तीव्रता भी शरीर एक निश्चित काल के बाद सहन नहीं कर सकता।
0: 12 अक्टूबर को जलपान के पश्चात स्वामी जी शिष्याओं के पास आए और काफी समय तक बैठकर वार्तालाप करते रहे। सुनते सुनते उन लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे किसी उच्च भाव भूमि पर पहुंच गई हो। बीच में वे भावोद्दीपक भजन भी गा रहे थे और साथ ही साथ अनुवाद कर देते थे। सभी भजन काली विषयक थे। इन पंक्तियों को उन्होंने बारंबार गाया,
2: हे माँ श्यामा, तुम इस संसार रूपी बाजार के बीच पतंगे उड़ा रही हो। लाखों में से दो एक पतंगों के कट जाने पर तुम हंसते हुए तालियां बजाने लगती हो।
0: इसके बाद वे स्वरचित कविता काली माता से आवृत्ति करने लगे।
2: काली माता, छिप गए तारे गगन के, बादलों पर चढ़े बादल, कांप कर गहरा अंधेरा, गरजते तूफान में शत लाख पागल प्राण छूटे जल्द कारागार, द्रुम जड़ समेत उखाड़ कर हर बला पथा की साफ करके, शोर से आ मिला सागर, शिखर लहरों के पलटते उठ रहे हैं कृष्ण नभ का स्पर्श करने के लिए द्रुत किरण, जैसे अमंगल की हर तरफ से खोलती है मृत्यु छायाएं सहस्त्रों देह वाली घनी काली, आधि व्याधि बिखेरती है नाचती पागल हुलस कर, आ जननी आ जननी आ आ, नाम है आतंक तेरा, मृत्यु तेरे श्वास में है, चरण उठकर सर्वदा को विश्व एक मिटा रहा है, समय तू है सर्वनाशिनी, आ जननी आ जननी आ आ, साहसी जो चाहता है दुख मिल जाना मरण से, नाश की गति नाचता है माँ उसी के पास आती। देखा, ये सब सत्य है, अक्षरशः सत्य है, माँ सचमुच ही उसके पास आती है। मैंने अपने जीवन में इसे प्रत्यक्ष किया है क्योंकि मैंने साक्षात मृत्यु का आलिंगन किया है।
0: सोलह अक्टूबर 1898 स्वामी जी स्वामी सदानंद के साथ लाहौर से सीधे कलकत्ता की ओर चले। 18 अक्टूबर को जब वे लोग नीलांबर बाबू के मकान में स्थित मठ में पहुंचे तो दीर्घ काल के बाद उनके लौटने के कारण वहां आनंद मनाया जाने लगा। परंतु उनकी शारीरिक अवस्था से सबकी दुश्चिंता भी बढ़ी। और भी देखने में आया कि अब वे अपने आप में ही मग्न रहते हैं, मानो बाहर की जीवन के साथ उनका कोई संपर्क ही ना हो। उनके लौटने के दो तीन दिन बाद जब शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती उनका दर्शन करने आए तब भी वो भाव दूर नहीं हुआ था। चक्रवर्ती महाशय को देखकर स्वामी ब्रह्मानंद बोले,
3: जाने क्यों कश्मीर से लौटने के बाद से ही स्वामी जी किसी से वार्तालाप आदि नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं। तुम स्वामी जी के साथ हल्की फुल्की बातें करके उनके मन को हल्का करने का प्रयास करो, जाओ जाओ।
4: शिष्य ने ऊपर जाकर देखा कि स्वामी जी मुक्त पद्मासन में पूर्व की ओर मुंह किए बैठे हैं मानो ध्यानमग्न हो। मुख पर हंसी नहीं थी, उज्जवल नेत्र अंतर्मुख थे। उन्होंने शिष्य को देखकर बैठने को कहा, परंतु इसके बाद मौन ही रहे। बाद में शिष्य द्वारा अमरनाथ दर्शन का प्रसंग उठाने पर स्वामी जी बोले,
2: अमरनाथ दर्शन के बाद से ही चौबीसों घंटे शिव जी मानो मेरे मस्तक पर सवार रहते हैं, कैसे भी उतरते नहीं। अमरनाथ और क्षीर भवानी के मंदिर में मैंने बहुत तपस्या की थी। अमरनाथ जाते समय मैं एक खड़ी चढ़ाई पार कर गया था। कोई भी यात्री उस पगडंडी से नहीं जाता, केवल पहाड़ी लोग ही उतरते चढ़ते हैं। उसी मार्ग से जाने की मेरे मन में जिद सी हो गई थी। उसी परिश्रम से शरीर थोड़ा दुर्बल हो गया है। वहां ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ती है कि शरीर में मानो सुइयां चुभ रही हूं। मैं भी कौपीन मात्र पहने भस्म लगाकर गुफा में प्रविष्ट हुआ। उस समय शीत गर्मी का कुछ पता नहीं चला, परंतु मंदिर से निकलते ही शरीर मानो ठंड से अकड़ गया था। तीन चार सफेद कबूतर देखने में आए थे, वे उसी गुफा में रहते हैं या आसपास के किसी पहाड़ में, ये ठीक से जान नहीं सका।
4: कुछ दिन बाद भगिनी निवेदिता कलकत्ता लौट आईं। श्री गुरुदेव के चरणों में संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर स्त्री शिक्षा के विस्तार के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। हिंदू स्त्रियों के दैनिक जीवन से प्रत्यक्ष रूप से परिचित होने के लिए वे बाग बाजार स्थित श्री माताजी के निवास स्थान पर रहने लगी। श्री रामकृष्ण देव की अन्य स्त्री भक्तों ने बड़े आदर पूर्वक बिना किसी दुविधा के बड़े स्नेह से निवेदिता को अपने बीच स्थान दिया। थोड़े ही समय में बाग बाजार में एक बालिका विद्यालय स्थापित करने की व्यवस्था निश्चित हो गई।
0: निवेदिता का यही प्रथम उद्यम था। उन्होंने बाग बाजार मोहल्ले में एक बालिका विद्यालय खोलने का संकल्प किया था। एक दिन बलराम बाबू के मकान के हॉल में सभी गृहस्थ भक्तों का एक समारोह हुआ। इसमें आवेदन किया गया कि गृहस्थगण इस विद्यालय में अपनी बच्चियों को भेजें। सब लोग बैठे हुए थे। उसी समय स्वामी जी ने अप्रत्याशित रूप से आकर सबके पीछे आसन ग्रहण किया। निवेदिता ने अंग्रेजी में व्याख्यान दिया। मास्टर, महाशय, सुरेश दत्त, हरमोहन बाबू आदि उपस्थित थे। स्वामी जी हंसते हुए विनोद पूर्वक कह रहे थे,
2: उठ उठ ना, केवल बेटी का बाप होने से ही काम नहीं चलेगा, राष्ट्रीय भाव पर उनकी शिक्षा दीक्षा में सहयोग तुम सबको देना होगा। उठकर बोल, आवेदन का प्रत्युत्तर दे। बोल, हाँ हम लोग राजी हैं, हम आपको अपनी कन्याएं देंगे।
4: कोई इस प्रकार बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। अंत में स्वामी जी ने हठ पूर्वक हल्के स्वर में हरमोहन बाबू से कहा,
2: तुझे देना ही होगा।
0: उनकी ओर से तब स्वामी जी ने स्वयं ही कहा,
2: वेल मिस नोबल, द जेंटलमैन ऑफर्स इज गर्ल टू यू।
0: निवेदिता पहले तो देख नहीं पाई थी कि भीड़ में स्वामी जी बैठे, फिर उनका दर्शन कर और उनकी उत्साहदायिनी वाणी सुनकर निवेदिता बड़ी हर्षित होकर तालियां बजाने लगी और अंत में आनंद विभोर होकर नाचने लगी, मानो वे एक छोटी सी बालिका।
4: बेलूर लौटने के बाद अब स्वामी जी का स्वास्थ्य काफी सुधर चुका था। उनके सपनों का बालिका विद्यालय आरंभ हो गया था। श्री रामकृष्ण के स्थायी मठ का कार्य भी संतोषजनक रूप से प्रगति पर था। भवन निर्माण आदि के लिए आवश्यक धनराशि श्रीमती बुल ने दे दी थी। इतना ही नहीं, इन सब कार्यों के पूरा हो जाने के बाद भी मठ के व्यय हेतु कुछ धन बच जाने की आशा थी। ये सब देखकर स्वामी जी का मन उन दिनों अत्यंत प्रफुल्लित था। वे नई भूमि पर टहलते हुए आनंद विभोर हो जाते और भविष्य में उस स्थान को केंद्र बनाकर कितने ही सत्कार्यों का पालन करना होगा आदि बातें सोचते तथा दूसरों को भी बताते।
0: जिस समय स्वामी जी अपने संकल्प के अनुसार ऋषियों द्वारा वनों में रचित वेदांत को नगर के कर्म कोलाहल के बीच भी स्थापित करने के प्रयास में लगे हुए थे और धीरे धीरे इसमें सफलता भी पा रहे थे, उसी समय उन्हें इसी भाव का एक प्रस्ताव उद्योगपति जमशेद जी एन टाटा से भी प्राप्त हुआ। प्रस्ताव पत्र इस प्रकार था।
5: प्रिय स्वामी विवेकानंद जी, आशा है कि आपको जापान से शिकागो तक यात्रा के अपने इस सहयात्री की याद होगी। आपके भी विचार अब मुझे विशेष रूप से स्मरण आ रहे हैं कि भारतवर्ष में त्याग तपस्या का जो भाव पुनः जागृत हो रहा है, हमारा उद्देश्य उसे नष्ट करना नहीं है बल्कि उसे रचनात्मक मार्गों पर परिचालित करने की विशेष आवश्यकता है। अपने वैज्ञानिक शोध संस्थान के संदर्भ में ही मैं आपके उन विचारों का स्मरण कर रहा हूँ जिसके विषय में आपने अवश्य सुना या पढ़ा होगा। मेरी राय में यदि ऐसे आश्रयों या आवास ग्रहों की स्थापना की जाए जहाँ त्याग व्रत धारण करने वाले साधा जीवन बिताते हुए भौतिक एवं मानवीय विज्ञानों की चर्चा में अपना जीवन उत्सर्ग करें, तो त्याग भावना की इससे अच्छी उपयोगिता और क्या हो सकती है। मेरा ख्याल है कि इस तरह के जिहाद का उत्तरदायित्व यदि कोई योग्य नेता स्वीकार कर ले तो इससे धर्म एवं विज्ञान दोनों की ही उन्नति होगी और हमारे देश की कीर्ति भी फैलेगी। इस अभियान में विवेकानंद से बढ़कर और कौन नेतृत्व दे सकेगा? क्या इस पद से हमारी राष्ट्रीय परंपराओं को नवजीवन प्रदान करने में आप सहयोग करेंगे? इस दिशा में जन जागरण उत्पन्न करने के निमित्त सर्वप्रथम संभवतः आप अपनी अग्निमय वाणी में एक पुस्तिका लिखेंगे और उसके प्रकाशन का व्यवहार मैं सहर्ष वहन करूंगा। ससम्मान आपका विश्वस्त जमशेद जी एन टाटा।
0: 9 दिसंबर श्री रामकृष्ण संघ के इतिहास में एक स्मरणीय दिन है। नीलांबर बाबू के बगीचे वाले मकान में ब्रह्म मुहूर्त में स्वामी ने गुरु भाई और शिष्यों के साथ गंगा जी में स्नान कर नवीन गैरिक वस्त्र पहना। आज के विशेष अनुष्ठान के पौरोहित्य का भार स्वयं स्वामी जी ने ग्रहण किया है। ध्यान, उपासना व पूजा यथा विधि समाप्त कर श्री रामकृष्ण देव के देहावशेष वाले पवित्र ताम्र पत्र को दक्षिण स्कंध पर रख वे बेलूड़ मठ की ओर चले। उनके पीछे शंख, घंटा आदि की ध्वनि से दिशाओं को गुंजाते हुए गुरु भाई व शिष्य गण थे। उस शुभ प्रभात में भागीरथी के तट पर कुछ विश्वासी भक्तों के कंठ से उच्चारित श्री राम कृष्ण की जय ध्वनि ने अपूर्व आनंद उल्लास उत्पन्न कर दिया। पथ पर चलते हुए स्वामी जी ने पास वाले शिष्य से कहा,
2: श्री राम कृष्ण देव ने एक बार मुझसे कहा था, तू कंधे पर चढ़ाकर मुझे जहाँ भी खुशी से ले जाएगा मैं वहीं पर रहूंगा, चाहे वो झोपड़ी हो या वृक्षों का झुंड। परम दयालु श्री राम कृष्ण के उसी आशीर्वाद पर भरोसा करके ही उन्हें हमारे भावी मठ में ले जा रहा हूँ। वत्स, निश्चित जानो जितने दिन उनके नाम पर उनके अनुगामी भक्तगण पवित्रता, आध्यात्मिकता व समस्त मानव से एक सी प्रीति के आदर्श की रक्षा कर सकेंगे, उतने दिन श्री राम कृष्ण देव इस मठ को अपनी दिव्य उपस्थिति द्वारा धन्य बनाए रहेंगे।
0: ये जानकर कि स्वामी जी बेलूड़ मठ में निवास कर रहे हैं, प्रतिदिन कॉलेज के अनेक छात्र व शिक्षित युवक उनके दर्शन के लिए आने लगे। स्वामी जी अपनी शारीरिक अस्वस्थता की परवाह न करते हुए उत्साह पूर्वक उनके साथ धर्म, दर्शन, साहित्य, इतिहास, विज्ञान इत्यादि की चर्चा में लीन होते थे। स्वामी जी ने उन सब युवकों को ओजस्वी भाषा में सेवा धर्म की महिमा का संदेश इसी उद्देश्य से देते थे कि वे सब इस बात का हृदय से अनुभव करें कि देश सेवा में आत्मनियोग करना ही वर्तमान राष्ट्रीय जीवन का सर्वश्रेष्ठ व्रत है तथा उस आदर्श में तदनुसार वे अपने जीवन को ढालें। देश की दुर्दशा की चर्चा करते हुए समय समय पर भाव की अधिकता से वे आंसू बहाते थे और कभी कभी गंभीर चिंता में निमग्न रहते थे। अधिकांश युवकों की शारीरिक दुर्बलता, नैतिक चरित्रहीनता और अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से मस्तिष्क विकृति को देख वे समय समय पर शुद्ध हो तीव्र प्रतिक्रिया प्रकट करते थे। वे प्रायः कहा करते थे,
2: 2000 वीर हृदय, विश्वासी, चरित्रवान व बुद्धिमान और 30 करोड़ रुपए होने पर मैं भारत को अपने पैरों पर खड़ा कर देने में सक्षम हूँ।
4: फिर कभी कभी इस सब के अभाव में ये सोचकर कि उनके जीवन का उद्देश्य व्यर्थ हो रहा है, वे निराशा से व्याकुल होते थे। परंतु उन्होंने पूर्ण मन से ये निश्चय कर लिया था कि पर्वत जैसी विघ्न बाधाओं तथा निराशा के अंधकार के बीच में भी रास्ता तैयार कर लेना होगा। फिर उन्होंने तय किया कि उनके निस्वार्थ आह्वान से प्रेरित होकर जिन थोड़े से व्यक्तियों ने जगत के हित के लिए आत्मसमर्पण किया है, उन स्त्री पुरुषों को ही अग्रगामी सैन्य दल के रूप में संगठित कर लेना होगा।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

युग प्रवर्तक विवेकानंद। अभी आप ये धारावाहिक सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आपसे हम विदा लें उसके पहले कल सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से आपको परिचित करवा दें। हमारी सभा शुरू होती है सुबह 7 बजे, पहली प्रस्तुति जीवन सौरभ, उसके बाद आप सुनते हैं अक्षय निधि और फिर आनंद लेते हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। सुबह 8 बजे वतन का राग कार्यक्रम होगा, इसमें कल हम चर्चा करेंगे शरद जोशी की। आमने सामने ये कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे प्रसारित होगा। वागर्थ कार्यक्रम में सुबह 9 बजे सुनिएगा सविता भार्गव का कविता पाठ। हमारा विशेष कार्यक्रम होगा सुबह 9:30 बजे, नगर की सामाजिक साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा का प्रसारण होगा सुबह 10 बजे। 10:30 पर हिंदुस्तान हमारा कार्यक्रम में हम बात करेंगे आजाद हिंद फौज की। कला कल्लोलिनी इस कार्यक्रम में सुबह 11 बजे सुनिएगा उस्ताद अली अकबर खां पर केंद्रित कार्यक्रम और 11:30 बजे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद की 58वीं कड़ी। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय कल सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। सभा समापन का समय हो रहा है, कल सुबह ठीक 7 बजे आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, शुभरात्रि, जय हिंद। सभा का समापन राष्ट्रगीत वंदे मातरम से।